क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई सरगोशी हो और उनके दरमियान चौथा अल्लाह न हो, या पांच आदमियों में सरगोशी हो और उनके अंदर छठा अल्लाह न हो। खुफिया बात करने वाले खाह इससे कम हो या ज्यादा, जहां कहीं भी वो हो अल्लाह उनके साथ होता है। फिर कयामत के रोज वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफी है।

उसी का वो ईंधन बनेंगे, बड़ा ही बुरा अंजाम है उनका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें नहीं, बल्कि नेकी और तकवा की बातें करो, और उस खुदा से डरते रहो जिसके हुजूर तुम्हें हश्र में पेश होना है। काना फूसी तो एक शैतानी काम है, और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग उससे रंजीदा हों, हालांकि बे इज़्ने खुदा वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से तखलिये में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका दे दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा तर है। अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ न पाओ तो अल्लाह गफूर और रहीम है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तखलिये में गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें सदकात देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा न करो और अल्लाह ने तुमको उससे माफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो, जकात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है।

क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे ग्रोह को जो अल्लाह का मग़ज़ूब है, वो न तुम्हारे हैं न उनके, और वो जानबूझकर झूठी बात पर कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है, बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं, इस पर उनके लिए जिल्लत का आजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद, वो दोजख के यार हैं, उसी में वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज अल्लाह उन सबको उठाएगा वो उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और अपने नजदीक ये समझेंगे कि इससे उनका कुछ काम बन जाएगा।

कार इंडस्ट्री लोगों को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है और कॉस्ट सेविंग भी होती है। ये इंडस्ट्री खतर की इकोनॉमी का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है और विजन 2030 के अंदर भी मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूँ, थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊँ, तो रेंटर कार बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हाई डिमांड और स्टेबल मार्केट है, रेंटा कार की डिमांड हर वक्त ही रहती है, टूरिस्ट को ट्रैवल के लिए, बिजनेस लोगों को मीटिंग्स के लिए, रेजिडेंट्स को टेम्परेरी यूज के लिए, और शायद इसी वजह से बिजनेस जो है वो रिलेटिवली कहा जा सकता है कि स्टेबल है। वहीं पर बार बार इनकम होती है, रीअकरिंग इनकम भी होती है। अगर आपके पास फ्लीट है, यानी बहुत सारी कार्स है, तो हर गाड़ी मल्टीपल कस्टमर्स यूज कर सकते हैं, है ना। आप एक ही एसेट, जो आपकी एक गाड़ी है वो एक एसेट है, उसे बार बार पैसा कमा सकते हैं। ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी है जिसे गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है। फिर एक और चीज जो मेरे और आपके जहन में आनी ही चाहिए वो है कि ये मॉडल जो है बिजनेस का काफी फ्लेक्सिबल है। आप अपना बिजनेस डिफरेंट तरीके से चला सकते हैं, आई मीन टू से शॉर्ट टर्म रेंटल्स, या फिर लॉन्ग टर्म लीजिंग्स, या फिर यू नो कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर लग्जरी कार रेंटल्स। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स टारगेट भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो कतर में, जैसे हम और आप जानते हैं कि टूरिज्म ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर टूरिज्म ग्रो जो है वो डायरेक्टली रेंटल कार इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है। जितना ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आएंगे, उतने ज्यादा रेंटल कार की डिमांड्स भी होंगी। वहीं ये बिजनेस स्केलेबल बिजनेस भी है, आप छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं, यानी 2-3-5 कार से स्टार्ट कर लिया और फिर ग्रेजुअली आपने उसको एक्सपैंड कर लिया। वहीं पर एक और चीज जो हमें और आपको समझने की जरूरत है इस बिजनेस के हवाले से, जो हमारे गेस्ट ने भी बताया, वो ये कि डिजिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। ऑनलाइन बुकिंग और एप्स की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो इजीली गाड़ी आसानी से घर बैठे बुक करते हैं, बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। आजकल ज्यादातर मैं कह सकती हूँ बुकिंग, जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया, कि ऑनलाइन ही होती है। वहीं देखिए, इतने सारे फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के अपने चैलेंजेस नहीं है, सिर्फ ये एक बहुत ही अच्छा हेल्दी प्रॉफिटेबल स्टेबल बिजनेस है। लेकिन फिर भी इस बिजनेस के कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बिजनेस सस्ता नहीं होता, कार खरीदनी होती है, इंश्योरेंस लेना होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। जहां इन्होंने बताया कि इनका खुद का अपना इन्होंने गैरेज भी सेटअप किया, क्योंकि गाड़ियों की मेंटेनेंस तो फ्रीक्वेंटली होगी ही होगी। अब जब लोग इतना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो उसको उस तरह से मेंटेन भी करना है, तो ये सारी चीजें भी आपके ऊपर ही आ जाती हैं। वहीं पर मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट एडिशनली इस बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग बड़ी जरूरी है, फिर टायर्स की हो देखभाल, ऑयल चेंज करना है, रिपेयर करना है। अगर आपने मेंटेनेंस को इग्नोर किया तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और यहाँ पे जो ये बिजनेस है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है। एक बार खराब हो गया नाम मार्केट में आपका, फिर क्लाइंट्स शायद धीरे धीरे जो है वो आपसे हटते चले जाए। वहीं कतर की बात करें तो कतर में बहुत सारी लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स नहीं है। टफ कॉम्पिटिशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, प्राइसिंग प्रेशर भी होता है, डिफ्रेंसिएशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है खुद को स्टैंड आउट करने के लिए। वहीं पर एक तरह से कुछ चीज़ों में मैं कह सकती हूँ सीजनल डिमांड्स भी हैं। कुछ मंथ्स में डिमांड जो है वो हाई है, यानी जो टूरिज्म सीजन्स होते हैं, और कुछ में होता है कि काफ़ी कम होती हैं, तो इसमें भी एक गुड बैलेंस बनाए रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कस्टमर्स जो हैं वो कभी कभी गाड़ी डैमेज कर देते हैं, या फिर होता है कि वो यू नो लेट रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट हो गया, वो सारे इश्यूज भी आते हैं जिसके लिए आपको पैरेलली मेंटली खुद को प्रिपेयर भी रखना है। फिर अगर हम कतर की ही बात करते हैं तो कतर में लाइसेंसिंग रूल्स हैं, इंश्योरेंस लॉज हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि इन सारी चैलेंजेस के बावजूद भी कतर में आप जो है वो रेंटल कार बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहते हैं, जैसे मैंने अपने गेस्ट से भी पूछा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने वाजे की वो ये कि रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए, टारगेट कस्टमर

पास कौन से हैं आपके, डिमांड किस टाइप की कार्स की है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसी बिजनेस में नहीं बल्कि सारे बिजनेसेस में। फिर आप जानते हैं कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वो आपको पता ही है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड लाइसेंस है, लेने होते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो लीगल कंप्लायंस के लिए बड़ा जरूरी भी है। उसके साथ ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सी कार्स जो है वो चूज करना चाहते हैं, इकोनॉमी कार्स हैं यानी चीप ऑप्शंस आपको रखने हैं, एसयूवीज रखनी है फैमिली के लिए रखनी है, या लग्जरी कार्स रखनी है आपको, जो कभी आपको अगर प्रीमियम कस्टमर्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वैरायटी तो रखनी ही है। वहीं पर डिफरेंट टारगेट्स करना बहुत ज़्यादा, यू नो, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक तरीके के टारगेट लेके चलते हो तो शायद आप जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते, तो ये भी आपको देखना है, ये चीज़ें भी रखनी है। फिर हर गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कराइए, ड्राइवर की पॉलिसीज जो हैं वो सारी चीज़ें, ड्राइवर के लाइसेंस वगैरह की भी कई बार आपको ही देखनी पड़ जाती हैं चीज़ें, तो ये सारा बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। फिर आपका ऑफिस कहाँ हो आइडियली, मतलब कोशिश ये कीजिए कि लोकेशन जो है या सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज का दौर ऑनलाइन दौर है, डिजिटल दौर है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपका जो ऑफिस है, जो भी आप बनाते जहाँ भी, वो एयरपोर्ट के आसपास हो या फिर यू नो होटल्स के आसपास हो या बिजनेस एरियाज हैं जैसे वेस्ट वे है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड आपकी हाई रहेगी, लोगों को पता जल्दी चलेगा और आपका जो है वो बिजनेस अच्छे से ग्रो भी करेगा। फिर आपको अपने कॉम्पिटिटिव की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को रखना होगा, मतलब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर बड़ा समझदारी से काम करना होता है, डेली रेट्स को मॉनिटर करना, वीकली पैकेजेस को बनाना, फिर मंथली डील्स जो भी हो सकती हैं वो सारी आपको खुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का बिजनेस जो है वो ग्रो करे। वहीं पर मॉडर्न बिजनेस के लिए आज के टाइम में ना डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट हो, मोबाइल बुकिंग सिस्टम हो, व्हाट्सएप बुकिंग हो, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केटिंग, कहने को तो कहते हैं लोग कह रहे अभी क्या ही जरूरत है इस तरह के बिजनेस में, लेकिन हाँ प्रमोशन जरूरी है, फिर चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप हाँ कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी भी होटल इंडस्ट्री के साथ, किसी भी होटल पार्टनरशिप्स उस तरह के जो होते हैं ऑफर्स वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका फायदा होगा। लेकिन एक चीज जिस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर आप अपना बिजनेस चाहते हैं कि वो कामयाब हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र ये है कि सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। सर्विस यहाँ पे फास्ट होनी चाहिए, कार एकदम क्लीन साफ होनी चाहिए और बुकिंग आसान होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करके सस्टेन कर चुका हूँ, ठीक ठाक पोजीशन में आ चुका हूँ, मुझे अब इसे एक्सपैंड करना है, तो अपनी फ्लीट इंक्रीज करने पर भी ध्यान देना होगा, कई नई लोकेशंस पर सोचना होगा, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं उन्हें हर हाल में ऐड करना ही करना है। देखिए रेंटल कार का जो बिजनेस कतर में है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, टूरिज्म तो ग्रो कर रहा है, मैंने आपको बताया ईवी कार्स आएंगी, डिजिटल सिस्टम और ज़्यादा इंप्रूव होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट मोबिलिटी फ्यूचर का हिस्सा बन चुके हैं और कंपनीज ये इन्हें अडॉप्ट करना ही करना है। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से अच्छे से होमवर्क के साथ आप मार्केट में एंटर करते हैं और इस तरह के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट, कार रेंटल बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो, आपकी सर्विस क्वालिटी हाई हो और आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी क्लियर हो। इस बिजनेस में ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और चैलेंजेस भी बहुत है। जो लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी और इनोवेशन अडॉप्ट करते हैं वो इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कतर जैसे मार्केट में इस बिजनेस को स्टार्ट करना, तो आप एक ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं जो फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और एक्सपैंड होने वाला है। जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जो मैंने पूछा भी, इसीलिए बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रेंटल कार बिजनेस सिर्फ गाड़ी रेंट देने का नाम नहीं है, ये एक मोबिलिटी सोल्यूशन है। जी हाँ, ये एक मोबिलिटी सॉल्यूशन है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। बस अब आपकी और हमारी देर

गोल अचीव करने की तरफ आप जाते हैं, भले ही आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, बट आपका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका होमवर्क बहुत ही तगड़ा है और आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट उस काम को करने के लिए, देन देयर इज नो एज सच कॉल स्टैग्नेशन, जस्ट गो फॉर इट. मैं तो ये कहूंगी, फिर मत रुकिए, मत सोचिए, उस चीज को स्टार्ट कीजिए एंड गिव योर सेल्फ अ चांस. याद रखिए, बिजनेस में रातों रात कोई कभी कामयाब नहीं होता. यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रहना और खुद पर यकीन करना और अपनी अच्छी टीम बनाना, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और हाँ, खुद पर यकीन रखना, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना और बस धीरे धीरे सब्र के साथ, मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को रन करना. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5-6 साल में आप देखिएगा आप कितने बड़े और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं. चलिए भाई, ये तो हो गया आज का हमारा सेगमेंट. अब मुझे यानी नाजिया को दीजिए इजाजत और हम अपने गेस्ट को एक बार वापस से थैंक यू कहना चाहेंगे, दो हम उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. बट यस, अगेन वी वुड लव टू थैंक मिस्टर सैयद उस्मान कि उन्होंने वक्त निकाला और इतनी अच्छी और वैल्यूबल इंसाइट हमारे सबके साथ शेयर की. सो थैंक यू वंस अगेन. विद दिस, मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए. सुनते रहिए FM 107.

दरवाजा ऐसा खोला है जिससे दाखिल होता हूं तो मेरा ईमान सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। ठीक है, ये पहचान लेना बड़ी बसीरत का काम है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान बाकी नेक अमाल छोड़ दे, बात ऐसी नहीं। असल बात यानी तर्क की नहीं, हजर की नहीं, छोड़ देना नहीं, असल बात मरकजियत की है। आप कुरान भी पढ़ें, जिक्र भी करें, वालिदैन की खिदमत भी करें, इल्म भी हासिल करें, दूसरों के काम भी आएं, लेकिन इन सब के दरमियान अगर आपने ये पहचान लिया कि एक खास मशरू अमल आपके कल्बी सफर में गैर मामूली तासीर रखता है तो उसे अपनी जिंदगी में खुसूसी जगह दीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसमें इखलास पैदा कीजिए, उसे हालात के रहम करम पर न छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपका वो मुहाज हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जहां खड़े होकर आप अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। और यही अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल की गहराई है। यानी वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि नेकियां करो, बल्कि ये बता रहे हैं कि अपनी नेकियों के असर को भी पहचानो, अपने कल्ब पर उसका नक्श भी देखो, ये भी देखो कि कुरान ने तुम्हारे अंदर क्या बदला है, ये भी देखो कि नमाज के बाद गुनाह के मुकाबले में तुम कितने मजबूत हुए, इल्म ने तुम्हारे रवैये में कितना इजाफा किया है। क्योंकि कभी इंसान के पास आमाल की फहरिस्त बहुत लंबी होती है, मगर कल्बी सफर बहुत मुख्तसर है, और बसीरत इंसान को तादाद से उठाकर तासीर तक ले जाती है। समीन किराम, लोगों के मिजाज मुख्तलिफ हैं, सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, कल्बी मैलान मुख्तलिफ हैं, तो लाजमन खैर के वो मैदान भी मुख्तलिफ होंगे जिनमें हर शख्स अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम कर सकता है। और शायद इसी हकीकत को समझ लेने की वजह से हमारे असलाफ में कोई इल्म का इमाम बना, कोई इबादत में नुमाया हुआ, कोई सखावत और खिदमत में, और कोई उम्मत के किसी दूसरे महाज पर खड़ा हुआ। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि सब एक ही काम करें, बल्कि हर शख्स ने अपने लिए खुलने वाले खैर के दरवाजे को पहचाना और फिर एक दूसरे की तकमील करते हुए मुआशरे और उम्मत की खिदमत की। इसी हकीकत को इमाम मालिक इब्न अनस रहिमहुल्लाह और अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल अजीज उमरी रहिमहुल्लाह के दरमियान होने वाली एक नहायत खूबसूरत गुफ्तगू वाज़ह करती है। इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ने तमहीद में इस वाक़े को नकल किया है। अब्दुल्लाह उमरी रहिमहुल्लाह इबादत और ज़ुहद में मारूफ थे। उन्होंने इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को एक खत लिखा। मफहूम यह था कि लोगों को पढ़ाने, इल्मी मजालिस मुनाकिद करने और तलबा के हजूम में इतना वक्त सर्फ करने के बजाय कुछ इसमें कम कीजिए और ज़ाती इबादत, खलवत और नवाफिल के लिए ज्यादा वक्त निकालिए। मशवरा अपनी जगह खैरखाही पर मबनी था, लेकिन इमाम उदारिल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया उसमें बसीरत नफ्स का एक पूरा फलसफा मौजूद है। आपने लिखा, इन्नल्लाह कसम अल आमाल कमा कसम अल अरज़ाक, अल्लाह ताला ने आमाल को भी उसी तरह तकसीम फरमाया है जैसे रिज़्क़ तकसीम फरमाया है। फिर फरमाया, किसी के लिए नमाज का दरवाजा खोल दिया जाता है लेकिन रोजे में उसे वो कुशादगी हासिल नहीं होती। किसी के लिए सदक़े का दरवाजा खुलता है, किसी के लिए किसी और खैर का, और किसी के लिए एक दूसरे मैदान का। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपने मैदान की बात की कि इल्म को फैलाना और उसकी तालीम देना भी अफजल आमाल बिर में से है, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए जिस दरवाजे को खोला है मैं उस पर राजी हूँ। और फिर कितने मुतवाजन बात फरमाई, मैं ये नहीं समझता कि जिस काम में मैं हूँ वो उस काम से कमतर है जिसमें आप हैं। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों खैर पर हैं और हम में से हर शख्स को अल्लाह ने उसके लिए जो हिस्सा रखा है उस पर राजी होना चाहिए। सामिन इकराम, मुख्तसर जवाब है, गोया इमाम मालिक रहमतुल्लाह कह रहे हैं आपका दरवाज़ा खैर है और मेरा दरवाज़ा भी खैर है, आप अपने दरवाजे से अल्लाह तक पहुँच रहे हैं, मुझे मेरे दरवाजे से चलने दीजिए। तो यहाँ पहली बड़ी बात जो समझ में आती है कि हर इंसान की नफसी और अमली इस्तेदाद एक जैसी नहीं होती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के अल्फाज देखिए कि अल्लाह ने अमाल को भी रिज़्क की तरह तकसीम किया है, यानी खैर की तौफीक भी एक तरह का रिज़्क है। किसी का रिज़्क इल्म में है, किसी का नमाज और इबादत में, किसी का सदका और सखावत में, किसी का वालिदैन की खिदमत में, किसी का सिला रहमी में, किसी का तालीम और तरबियत में, और बाज़ लोगों के लिए तो अल्लाह खैर के एक से ज्यादा दरवाजे भी खोल देता है। तो असल नुक्ता यह है कि हम सब खैर चाहते हैं लेकिन खैर के मैदान में हमारी इस्तेदादें सलाहियतें यकसां नहीं, और यह फर्क कोई खराबी नहीं, ये उम्मत की जरूरत है। सोचिए कि अगर हर शख्स सिर्फ आलिम बन जाए तो बीमार की खिदमत कौन करेगा, जरूरतमंद तक कौन पहुंचेगा, इदारे कौन चलाएगा? अगर सब अपनी ज़ाती इबादत में ऐसे मशगूल हो जाएं कि मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारियां खाली रह जाएं तो उम्मत के दूसरे महाज कौन संभालेगा? एक इंसान की उम्र महदूद है, उसकी कुव्वत भी महदूद है, उसके पास सिर्फ दिन के 24 ही घंटे हैं, किसी के पास तो 72 घंटे नहीं दिन के। जो शख्स बरसों इल्म में गहराई पैदा करेगा लाजमन उसका बहुत सा वक्त मुताले, तालीम और तहकीक में जाएगा। जो शख्स

0: उसके साथ लेकर खड़ा हो जाए तो अलग अलग चिराग मिलकर एक बड़ी रोशनी बन जाते हैं। लिहाजा किसी दूसरे मुसलमान को अल्लाह ने किसी मुख्तलिफ खैर में मसरूफ देखा तो फौरन ये ना पूछिए ये वो काम क्यों नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ। शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत सवाल ये हो कि अल्लाह ने उसे जिस खैर में इस्तेमाल किया है मैं उस खैर का एहतराम कैसे करूँ और अपने हिस्से की जिम्मेदारी मजीद बेहतर कैसे अदा करूँ। इन्हीं सवालात के साथ सामने किराम आज के इस हलके को हम ख़त्म करते हैं। आज के इस हलके से तकनीकी मामिन नदीम अंसारी और मुझे तलाश हफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: क्रिकेट हो
5: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स 4 runs।
4: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: और इसी के साथ 6:01 पे वीकेंड के मैदान में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, सबके हाथों में व्हाट्सएप, एक हाथ से एक आंख मलते हुए सवेरे सवेरे सब तैयार, और ऐसे में मैदान में आ रहे हैं 107 की धुरंधर बल्लेबाजी करने के लिए। और ये पहली गेंद का इशारा, और देखिए साथ

0: एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब हाजिर है, और सारे जितने भी जन सुन रहे हैं सबको भाई हमारी ओर से, मैं तो यूं गांव दिल के भीतर हूं भाई, ऐसे धकड़ धुकड़ हो रही है, सबको हैप्पी वीकेंड। क्या हाल है पब्लिक? 666-2107 नंबर है, 666-2107 भाई, सारे आ जाओ, क्योंकि आपके बिना भाई शो का आगाज हो नहीं सकता। जब तक आप नहीं आओगे ना, हम भाई साहब ये रेस शुरू नहीं करेंगे। तो आज बहुत मजे करा देंगे आपको, 3 घंटे में आपको मौज आ जाएगी इस बात का पूरा पूरा, मतलब क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, प्रॉमिस है। लेकिन व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही है, पहले मैसेज आएगा, पहले मैसेज, उसके बाद सारे काम होंगे भाई, ठीक है। कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, मोहसिन भाई वालेकुम सलाम, रोल नंबर 2 है भाई, आ चुके हैं मोहसिन भाई वालेकुम सलाम। सुभाष भाई कह रहे हैं सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड भाई को बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच। और आसिफ भाई आ गए, अरे सरपंच जी आपको एक बात बोलूं क्या, मां आ गया, हाजिरी लगा दो भाई, इनके हाजिरी लगा दो भाई, आसिफ भाई है ये, नहीं इनका, हाँ चेक कर लो इनका भाई, आधार कार्ड दे देना इनको आसिफ भाई। और एक और मैसेज आया भाई, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट डे लिसनिंग टू यू यस्टरडे एंड आई फेल इन लव विद द शो। अरे थैंक यू सो मच, इतनी सुबह सुबह अंग्रेजी सुन के मेरा तो मतलब बाग बाग हो गया बच्चे। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताया आपने, बट सिंस यू स्टार्टेड लिसनिंग और कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, तो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वसीफ भाई कहते हैं आपकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, किसी खूबसूरत एहसास की पहचान है। आरजे तो बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, पर आरजे कबीर जैसा दोस्त मिलना कहाँ आसान है। अरे री री वसीफ भाई के लिए, भाई वसीफ भाई बहुत क्यूट आदमी है वसीफ भाई, वसीफ भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी भाई वसीफ भाई। आप ना मेरे एक दोस्त की याद दिलाते हैं, ये मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन एक मेरा दोस्त है वासिल नाम का, कभी दिखाऊंगा आपको फोटो भाई, आप दोनों जिगरी हो भाई, सेम लगते हो मुझे सीरियसली। एक मैसेज है भाई, हैप्पी वीकेंड, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई। रिजवान भाई ने अगर ऑरेंज शर्ट की बात पे ऑरेंज हलवा भेजा था मुझे रिजवान भाई, यार क्वाइट स्मार्ट यार, रिजवान भाई के लिए, सॉरी रिजवान भाई के लिए, रिजवान भाई। एक मैसेज है, अच्छा FM की तरफ अपना कबीर भाई एक तरफ, अच्छा FM एक तरफ ना कबीर भाई एक तरफ, आसिफ भाई आप भी ले लो यार। क्या बात है पब्लिक, आज तो भाई सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं भी कह देना चाहता हूँ। आज जो कहानी है सस्पेंसफुल कहानी है, तो आपको जो है आज हम वापस एक जहाज़ में बिठाने वाले हैं, तो यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बिलीव इट एंड टू बाय द टाइम आई से एक्सपीरियंस, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको आज मजे आने वाले हैं। बहुत ही अलग किस्म की कहानी है, पर 666-2107 नंबर, 666-2107 एंड मिलेंगे 10 मिनट 30 सेकंड के बाद सुबह के अधिकार तला भाई की आवाज़ में, एंड देन होगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात। जाना आपने नहीं, आपको पता ही बेस्ट जगह पर है यार, कहाँ जाओगे यार, हैं बढ़िया जगह पर है, अब टेंशन को नहीं लेनी, ठीक है। 6:05 हो रहे हैं, स्टे का ट्यून्ड हो गया जी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप
1: जी
0: दो हवाला में कबीर
1: गुड मॉर्निंग
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
1: दोनों ने मैसेज किया दोनों ने आज मतलब पराठे खाए अंडे के साथ माशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी फॉर यू अभी मैंने कुछ नहीं खाया बच्चे अभी कुछ नहीं इंशाल्लाह आफ्टर द शो बिकॉज इट्स अ वीकेंड नो तो मेरा भी आज प्लान है आपकी तरह मैं पराठे खाऊंगा लेकिन आज मेरा मन है गोभी दे पराठे या फिर प्याज दे पराठे खाने का ये मेरा प्लान है बेटे दुआ करना अंकल के लिए ठीक है सुम्बुल बहन गुड मॉर्निंग हैप्पी वीकेंड अलीना की तरफ से मैसेज आया है वालेकुम सलाम अलीना हाउ आर यू स्वीट हार्ट सब बढ़िया एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड और वो मम्मा मान गई थी ना वहाँ जाने के लिए चली गई ना जस्ट कन्फर्मिंग एक मैसेज आया मुझे मैं सूक वाकिफ के बिग मॉस्क का बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ तला अशरफुज़मान मेरे साथ औकाफ में नौकरी शुरू किया था आपको मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी अगर सूक में आए तो अरे क्या बात है अरे तला भाई इज़ अमेजिंग मैन वो बहुत ही बढ़िया आदमी है यार आई एम ब्रिटिश और आपके साथ काम किया तो आप जानते भी होंगे इज जस्ट अमेजिंग मैन बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब एक मैसेज तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम और वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई और कोई मैसेज है आसिफ भाई का लिखते हैं मुझे भी हैं खिला दें भाई चार दिन से मैंने कुछ नहीं खाया क्या बात कर रहे हो यार और एक मैसेज आया है वॉइस नोट है जी अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहमान का अभी सुनता हूँ भाई शी सेड इफ स्टडी देन शी विल अलाउ सिद्रा बहन ये तो मतलब बार्टर सिस्टम हो गया जाने दो ना बहन प्लीज आपकी बच्ची तो मतलब माशाल्लाह अच्छी है पढ़ाई में तो टेंशन किधर है एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई क्या चल रहा है सलमान भाई सब बढ़िया शानदार तो

देखो आज आज जो जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, लेकिन आपको जो है वो क्योंकि जहाज की कहानी है भाई, तो जहाज की कहानी आपको पता ही कैसी होती है, आपको जहाज में अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा तब आएगी आपको वाई फील, ऐसे आने की नहीं भाई। तो आपने ना आज सिर्फ एक ऑडियंस बन के नहीं सुननीगा, आपने लिटरली उस जहाज का पैसेंजर बन के सुननी है, तब आएगा मजा असली, तब आएगी किक, तब जो है गाड़ी आप साइड में लाके बोलेंगे और भाई क्या कहानी थी, मजा ही आ गया। तो ये सब कुछ होगा 7:30 बजे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे एक बात कहूँ, आज जो है ना ज़्यादा कुछ सवाल पूछने का मेरा मन भी नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, आज कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं आपसे कहूँ अरे ये बताओ न्यू हो जाता तो न्यू क्या हो जाता। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है ना दिन है एक कौन सा दिन था कि इस दिन को कुछ कहते हैं पर्टिकुलरली, आज पोइट्री डे है और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी आज, तो कॉफ़ी पीने वाले मुबारक हो भाई, बस बढ़िया। आई हैव ट्राइड कॉफ़ी अ लॉट ऑफ टाइम्स, ये तो ब्लैक कॉफ़ी वाली जनता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा मैंने ट्राई करी है भाई, ब्लैक कॉफ़ी नहीं हो पाती भाई, आप कैसे पी रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, मेरे समझ के परे बहुत बढ़िया होती होगी, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया चीज़ होती होगी ब्लैक कॉफ़ी, मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया चीज़ कॉफ़ी है, हमसे नहीं हो पा रही भाई। तो आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, हर कॉफ़ी वाले को बहुत सारा प्यार भाई। एक मैसेज आया है भाई, आपने कल की स्टोरी शेयर नहीं करी, भाई आपको एक जगह बताता हूँ परवेज भाई, वहाँ पे मैं स्टोरी भेजता हूँ और वहीं पे आपको

बीरुल इस्लाम कौन है भाई? अच्छा हो, कल जो सरोवर भाई ने बोला था उस पर बोल रहे हो क्या? नसीम भाई, नसीम भाई, नहीं कल सरोवर भाई ने मुझे बहुत बढ़िया भाई आलू की कतलियाँ खिलाई हैं, मजा आ गया भाई, सही बता रहा हूँ मैं कसम से। एक मैसेज है इनका भैया यासिन, यासिन भाई आपको भी मैं रास्ता दिखाता हूँ कहाँ पर आपको कहानी मिल जाएगी, ठीक है भाई? यासिन भाई ये लो, इस पर चले जाओ भाई, सब मिल जाएगा। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, अंधेरा हटा तो फिर सुनहरी सुबह आई, दिल भर दिल पर हाथ रखा तो फिर आपकी याद आई। ए बढ़िया, मजा आ गया भाई। ये जो मुझे मैसेज किया है, ये मैसेज किया है आसिम साहब ने, आसिम साहब आपकी डीपी देख के लगता ना भाई सीधा हीरो उतरा मार्केट में, अभी घोड़े पे आएगा विलन को मारने के लिए धक्के। एक मैसेज आया है शायरी डे पे, मैसेज किया है समी भाई, अभी पढ़ता हूँ मैं सबकी शायरी, मैं शुरू कर रहा हूँ मैं। एक मैसेज भाई, ये ग्रुप पे ही शेयर कर दो स्टोरी, मैं भाई आपको बिल्कुल बताता हूँ मैं ये, रुको आसिफ भाई, वसीफ भाई आपको आई एम सेंडिंग समथिंग, जस्ट सी इट। अरे प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, सबह अलखैर, के लिखा है उन्होंने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए सवेरे सवेरे। अच्छा तो आज आज है पोइट्री डे एंड हम कोई सीरियस पोइट्री नहीं करेंगे भाई, प्लीज़। अगर सीरियस पोइट्री करेंगे तो मैं हूटर नहीं दूंगा आपको, ये जो है ना ये वाला हूटर, ये डिजर्व करने के लिए आपने कुछ बढ़िया शायरी सुना नहीं, ऐसी शायरी हो गया मतलब आदमी के चेहरे मुस्कुराहट आ जाए। कोई भी हार्ड कोर ऐसी शायरी नहीं करनी है जिसमें आप बिल्कुल खो जाएं, मगन हो जाएं, दिल टूटे आशिक की तरह, आपने कुछ नहीं कहना है। आपने जो है ना आज जिस बारे में बात करनी है ना, बढ़िया शायरी भेजनी है भाई, मतलब मज़ा आ जाना चाहिए, ऐसा ओके लगे होए होए होए होए, ये मेरे दिल पर जाके लगी है, तो भाई हमारे व्हाट्सएप के भीतर भाई भेज दो वो सारे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, भाई आपकी आवाज़ बहुत कंफर्टेबल लाइक द दिल्ली। ये शानवाज भाई, आई डोंट नो आपने पहली मरतबा मैसेज किया है दूसरी मरतबा किया है, लेकिन जो आपने ये लास्ट वाली लाइन बोली ना भाई कि आपकी वॉइस बहुत कंफर्टेबल है लाइक दिल्ली, मेरे शहर का नाम जोड़ दिया ना भाई, दिल ले गया आप, रुको भाई, होटर होटर। आज आपने ना, सच में बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं उसको, एक तो मेरा दिल भरा है पढ़ने के बाद, कोई भी चाहेगा कि अपने शहर का नाम ऐसे रोशन हो पाए भाई, थैंक यू यार, थैंक यू, दिस इज सच अ ग्रेट मोटिवेशन। शानवाज भाई क्या कर दिया यार, सवेरे सवेरे मोटिवेट भी कर दिया, इमोशनल भी कर दिया, पर थैंक यू सो मच। सुमूल बहन कहती है मेरा कोई लेना देना नहीं, अरे आपको पता है टीचर जी, आप आराम से बैठ के बात सुनिए, ठीक है, मजे करो, आज वीकेंड है, आपको हम ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे। एक मैसेज है इश्तियाक अंसारी साहब का, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, तब उसमें मैंने मैसेज करती है अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड, आज आशिकों की शायरी की लाइन लगेगी, बहन मैं लगने ही नहीं दूंगा, मैं लगने ही नहीं दूंगा, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कह रहे हैं फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, भाई हूँ तुम्हारा बाजू वाले का मत समझना मेरा भाई। बहुत बढ़िया, आसिफ भाई ने जो है खाता खोल दिया है हमारे इस शेर शायरी का, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आसिफ भाई। आज आसिफ भाई ने सबसे पहले रिप्लाई दिया और धांसु रिप्लाई दिया भाई, आज जीत गए आप दिल। तो आज बेसिकली क्या, आज पोइट्री फॉर फन डे है, आई रियली वॉन्ट कि आप जो है ना अपने अंदर के जितने भी आपने फालतू के शेर सुने वो सारे आज डंप कर दो भाई हमारे पास, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप पे घेर दो भाई, 666-22107 नंबर है, ज़्यादा आशिकी वाले मत भेजना मुझे प्लीज़, डोंट डू दैट, मैं बता रहा हूँ, मैं यहीं से माइक में टक्कर मार दूंगा और लगेगी आपको। एक मैसेज है, अंकल मैं भी दिल्ली से हूँ, हैं बटला हाउस से, म्यूजिक रोको भाई, बटला हाउस से, ये फाइजर मैसेज, बटला हाउस में किधर से यार, ये तो मतलब ये तो बहुत सेंटी हो जाएगा मामला, ये तो मेरे मोहल्ले की बात हो गई, सिर्फ शहर की नहीं। और मैसेज क्या है वसीफ भाई ने, वसीफ साहब ने अपनी शायरी पेश करी है और वो लिखते हैं, वीकेंड आया सोचा कुछ कमाल करेंगे, सुबह जल्दी उठकर बड़े बड़े काम करेंगे, अलार्म बजा तो बोला भाई फ्राइडे को करेंगे, फिर कंबल में घुस के वीकेंड भी बर्बाद करेंगे, ना कोई प्लान ना कोई टेंशन, बस फोन हाथ में और फुल कंसंट्रेशन, दोस्त बोले बाहर चलते हैं कुछ करते हैं, हम बोले पहले डिसाइड करो खाना कौन खिलाएंगे। वाह वाह, ये मैं लोगों को बता दूं, वसीफ भाई उनमें से हैं जो चाय पीने के लिए बॉर्डर पे चले जाते हैं। अगर वसीफ भाई के साथ आप मिलेंगे और वसीफ भाई के साथ बोलेंगे वसीफ भाई आओ चाय पीने चलते हैं, वसीफ भाई ये नहीं बोलेंगे कि इस मोहल्ले में वहाँ चलते हैं, ना ना ना ना, वसीफ भाई बोलेंगे चलो सऊदी अरब जाके चाय पियेंगे। तो ये मैं समझ सकता हूँ इनका जो है ना ये वीकेंड वाला, आई कैन टोटली रिलेट। ये कॉफ़ी डे पे मुझे समी भाई ने भेजा, समी भाई बहुत बहुत सारा प्यार भाई आपको। और एक मैसेज है, चम्मच पे चम्मच पे, चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे
जीरा अपना कभी ला

0: गोमी हीरा, अरे मेरा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मुंबई वालों के अंदर से तो भड़ास निकल रही है, वेरी गुड। एक मैसेज है, आपको क्या लगता है गालिब, मुझे तो गर्मी लगती है अरे यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो असद भाई ने मैसेज किया असद भाई बहुत बढ़िया था भाई, बहुत ही बढ़िया था भाई कह रहे आपको क्या लगता है गालिब, मुझे तो गर्मी लगती है एक मैसेज है, आज फिर तुम्हारी याद में बह गया, फिर चाय क्या है, फिर चाय खत्म हो गई और बिस्कुट रह गया, मेरा भाई मेरा दर्द भरी शायरी लेकिन अच्छी वाली है। टू यू मेरा भाई, मैं कुछ अगर निकाल पाया ना तो मैं सुनाऊंगा, बिकॉज आई हैव समथिंग बट मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने बहुत टाइम पहले कुछ लिखा था, अगर मुझे मिल गया तो भाई मैं पक्का सुनाऊंगा आपको, बस मिल जाना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ मैंने रखा हुआ है, आई हैव अ वेरी स्मॉल डायरी समवेयर बट आई जस्ट डोंट नो कि वो किधर है अगर मिल गई तो भाई पक्का सुना दूंगा, इस बात की कोई मतलब वो नहीं है, दोहराई नहीं है, पर 666-22-107 नंबर है और आपके पास कुछ ऐसी मज़ेदार शायरी है, मतलब मज़ेदार शायरी का कहना मतलब ये सीरियस वाली नहीं भाई, ठीक है, हमें आपकी नज़में गज़लें नहीं चाहिए, वो हम इंटरनेट पे पढ़ लेंगे, हमें चाहिए ऐसी जो मतलब मज़े वाली हो, तो इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अच्छा लगे, थोड़ी हंसी मजाक वाली, वीकेंड है, ज़्यादा बोझ लेके हम चलते नहीं हैं, तो हम लेंगे भी नहीं, तो अगर आप बहुत बड़ी नज़म लिख के भेज देंगे ये मैंने दिल से निकाल के लिख, वो नहीं चलेगा। एक कॉल आ रही है, रुको भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अरे मेरा भाई अदाएं हैं यार तुम्हारे, मुझे पता है तुम कौन हो जो शायरी शायरी का गला घोट देते हैं मेरा भाई, हाँ बताओ,
1: गला तो घोट देते हैं मगर जान तो बची रहती है।
0: अरे भाई भाई क्या बात बोली भाई भाई भाई भाई भाई, क्या बात है यार, क्या बात है भाई, फैन हूं यार मैं आपका, सुना दो भाई कोई बढ़िया सी सुना दो, आज क्या कहना चाहोगे, क्या आ रहा है मन में?
1: अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। कबीर भाई जब सुबह कहानी सुनाते हैं, कबीर भाई जब सुबह कहानी सुनाते हैं हम नींद से उठ कर भी फिर सो जाते हैं।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बुरी भाई
1: कहानी ऐसी कि चाय भी हंस पड़े, कहानी ऐसी कि चाय भी हंस पड़े, बस वाला भी कहे जरा और सुन ले,
0: ये थोड़ा राइम नहीं करी
1: कहानी ऐसी कि चाय भी हंस पड़े, बस वाला कहे जरा और सुन ले, सुबह सुबह कबीर का स्टाइल है निराला, सुबह सुबह
0: कबीर का
1: स्टाइल है निराला, हंसी का डोज दे कर दे दिन उजाला।
0: अरे रे रे, उजाला हो गया उजाला हो गया उजाला हो गया उजाला हो गया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या उजाला किया आपने, मजा आ गया भाई मजा आ गया। और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: बस चल रहा है अल्लाह शुक्र है।
0: आज तो आप शायरी सुना सुना के धनिया बोने वाले हैं, आज तो भाई का दिन है आज तो भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्यों भाई?
1: शुक्रिया,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाश्ता वानी हो गया?
1: अभी तो सो के उठा हूँ, 6 बजे
0: मन नहीं है काम करने का, मुझे ऐसा लग रहा है।
1: नहीं नहीं, काम पे तो निकला हूँ।
0: अच्छा निकले हैं काम पे, अच्छा मुझे लगा आज मन नहीं है भाई का काम वाम करने का, ऐसा लगा मुझे।
1: मन नहीं रहे फिर भी काम करना पड़े
0: बात तो सही है बहुत बढ़िया, हाँ क्या,
1: बगैर काम का कोई चारा नहीं
0: है। होए होए होए होए होए होए, इस पे भी कुछ लिख दो, कलम तोड़ दो आज, लिख दो कुछ इस पे भी,
1: शुक्रिया
0: है ना, लिख के सुनाना मेरे को, ठीक है मेरा भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई आज तो भाई जो है कलम तोड़ने वाले हैं, अभी कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे ना खतरनाक वाला, मैं वेट कर रहा हूँ भाई आज कुछ तो हो के रहेगा बट आप भी जो है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी शायरी सुना देंगे बिल्कुल ऐसी औंधे मुंह गिर जाए, मगर जैसे भाई ने सुना है हंसी मजाक वाली शायरी, वो मज़ा आना चाहिए। अब वसीम भाई कह रहे हैं भाई पोइट्री डे और कॉफ़ी डे पे शायरी, ना चीनी ना दूध ना कोई मिठास है, है? सुनिएगा गौर से, गौर फरमाइए, ना चीनी ना दूध ना कोई मिठास है, ब्लैक कॉफ़ी में बस कड़वाहट खास है, फिर भी रोज़ पीते हैं बड़े शौक से, शायद जिंदगी की कड़वाहट

0: सकते, कॉफी की कड़वाहट कम है। अरे वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई इज जस्ट गोइंग क्रेजी टुडे। वसीम भाई को किसी ने सुबह सुबह उठा दिया, वसीम भाई आज जो है कलम तोड़ दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वसीम भाई। और एक मैसेज क्या हमारे हसन भाई लिखते हैं, सलाम कबीर भाई, कुछ देर इंतजार रहा फिर नहीं रहा, दिल सख्त बेकरार रहा फिर नहीं रहा, जब तक कि उसको कोई और मिल नहीं गया, वो सिर्फ मेरा यार रहा फिर नहीं रहा। अरे हसन भाई, यू डिजर्व इट भाई, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड भाई को, हैप्पी वीकेंड। बढ़िया था यार ये, अच्छा था, मज़ा आया मुझे। एक तबस्सुम मैन का मैसेज है, मैं जो लिखती हूँ सारे सीरियस होते हैं, और किसी दौर में उस ज़माने में जो लिखे थे वो सारे नेपाली, अच्छा नेपाल में रखे होंगे किसी कोने में। अरे बहन ने क्या बात है, पूरी डायरी छुपा के रखी है बहन, वो ढूंढ के लेके आइएगा अगली बार, उसको ऐसे धूल नहीं खानी चाहिए। एक मैसेज है हमारे प्रिंस भाई का, लिखते हैं, ना इश्क करो ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा मेरी शायरी मेरी मर्जी। बात तो सही है भाई, सस्पेंसफुल हैं आप, बहुत गहराई में चले गए। एक मैसेज है, क्यों इतनी रात गए अपनी कब्र खोद रहा, अच्छा क्यों इतनी रात गए अपनी कब्र खोद रहा गालिब, ला फावड़ा मुझे दे दे। और ये बात भाई ने एकदम भाई साहब कमाल है भाई, कमाल की पब्लिक है भाई। बढ़िया था गुरु, बढ़िया था ये, बढ़िया था। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम ऑन पोएट्री डे, ये किसने उड़ा दी कि मुझे पैसे से मोहब्बत है, बैंक बैलेंस में कमी है तो अफवाह भी नहीं है। ये काफी ख्वाजा साहब, आई कुड रिलेट टू इट with you on this भाई। आज तो हूटर बजता ही रहेगा मुझे लग रहा है। फरद भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, खैरियत? कह रहा हूँ भाई ये क्या था। एक चाय दो समोसा, लिसनर्स कब क्या कह दें, क्या भरोसा। भाई भाई भाई भाई भाई, यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था। वेरी गुड, क्या मोमेंटम बना है। और एक मैसेज क्या है मुझे, ये भाई असीम भाई, अब मुझे पता है आज कैसी फीलिंग आ रही है, मैं मेले के किसी स्टेज पर हूँ। आइए आइए भाई, अगला अगला लिखते हैं असीम भाई, मत कर इतना गुरूर अपने हुस्न पर कबीर, तेरे हुस्न, तेरा हुस्न तब तक है जब तक फेयर एंड लवली सस्ती। मुझे तो कर, थोड़ा तो गुरूर करने दो असीम भाई, ऐसा नहीं यार असीम भाई, आप तो रुलाने पर आ गए यार। एक मैसेज है, मेरी तो सिस्टर की मैरिज भी दिल्ली में हुई है, सीलमपुर में। क्या बात है, सीलमपुर में मेरे रिश्तेदार हैं, हालांकि वो कुछ खास रिश्तेदार नहीं है, वो ना के बराबर ही रिश्ते अंसारी भाई, पर क्योंकि आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब कश्मीर से लिखते हैं, अर्ज़ किया है, दुनिया जुपिटर पर चली गई लेकिन मैं इसी में कन्फ्यूज हूँ कि 107 के ऑफिशियल इंडिया से हैं या पाकिस्तान से। ये कन्फ्यूजन आप बना के रखिए, पर आपको जानना क्यों है कि 107 में कितने पाकिस्तानी हो कितने इंडियन हैं, हाउ डज दैट मैटर ब्रो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो मेरे को ये बताओ फर्क क्या पड़ रहा है उससे। एक मैसेज है प्रिंस भाई के नाम, प्रिंस भाई आपके लिए शायरी आई है, प्रिंस भाई इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, लिखते हैं, पैरों की किस्मत देखो प्रिंस ने पेडिक्योर कर दिया, हम तो आम थे जनाब पांव को रॉयल कर दिया। वाह वाह वाह, आपने शायरी को महंगा कर दिया भाई, क्या बात है क्या बात है। कासिम साहब सीधा प्रिंस भाई के लिए शायरी, ये तो आउट ऑफ द ब्लू था भाई। सलाम भाई, कल सर्वर भाई ने आपको बंगाल का बना दिया। अच्छा फराज भाई, ये भी हो गया क्या कल, आज देखो मैंने कहाँ कहाँ का बनाता हूँ। एक मैसेज है, ये हमारी मोना बहन लिखती हैं, तेरे घर पे सनम हज़ार बार, मैं वो गाना गाने वाला था, तेरे घर पे सनम, मैं बज गया भाई। वरना मेरे कानों में ये गूंजता रहता। एनीवे हाँ, क्या लिखती हैं, तेरे घर पे सनम हज़ार बार आएंगे, तेरे घर पे सनम हज़ार बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे, बट डू यू रियली विश टू कंटिन्यू। माज कहाँ है वो आदमी, मोना बहन चुप चुप सा क्यों है ये व्यक्ति। एक मैसेज है सलीम भाई का, शेखू सुनाया जाए, कहते हैं, अगरचे बगीचे में बगीचे में बगीचे में बंदर, ये कबीर भाई इतना सुंदर सबके दिल के अंदर। सुना आपने क्या कहा सलीम भाई ने, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, अगरचे बगीचा बगीचे में बगीचा बगीचे में बंदर, ये कबीर भाई कितना सुंदर सबके दिल के अंदर। सलीम भाई मैं यही कहूँगा कि कलम को तोड़ दो भाई, सही में तोड़ दो, और नाखून को दांत से कुतर लो भाई, फायदा नहीं है भाई इस जीवन का, फायदा नहीं है भाई। क्या था ये भाई? कुछ किया जाए शेखू, व्हाट इज दिस व्हाट इज द टॉपिक? फनी शायरी का? हाँ बहन सही है, आप सही है, आपने सही शायरी करी है. मैं कह रहा हूँ आज जो है फनी शायरी भेजो भाई, मतलब मजे करो आप, बड़े शायरी अंधाधुन भेजते चले जाओ, जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो हंसा देगी वैसी वाली भेजो भाई. शेखू वॉइस नोट का फायदा नहीं है, मैं सुनूंगा ही नहीं. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आपको बोले कब, मैं अभी उनका भी हिसाब किताब करता हूँ भाई, टेंशन मत लो. इरशाद यूसुफ़ यूसुफ अल्लाह साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, तुम्हारे इश्क के समंदर में कूदा ही था. वाह वाह करो, वाह वाह करो, वाह वाह करो जल्दी से. हाँ तो कह रहे तुम्हारे इश्क के समंदर में कूदा ही था, ठंड लगते ही वापस कूद आया. थोड़ा एंड में थोड़ा लगता नहीं आपको, एकदम बात नहीं बनी लास्ट में. एक मैसेज है वसीम भाई का, लिखते हैं, हमने कहा आज से डाइट, दिल ने कहा ठीक है. बिरयानी आई सामने, डाइट बोली मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज. वसीम भाई ऐसा नहीं करो, इतना मुश्किल से तो वीकेंड पे वो मिलती है थोड़ी मोटिवेशन, इन्होंने मोटिवेशन ही तोड़ दी. तला भाई कह रहे हैं एक सट्टा दो चाहिए, अमीन टप्पू वाई वाई, ये क्या है तला भाई? ये तो मेरी नॉलेज के परे वाली बात कह दी आपने. पेंस क्या है? पेंसिल तेरा वीकेंड कैंसिल, फराज भाई कह रहे हैं. अरे यार क्या बात है, एक जरा कॉल उठा लेते हैं, देखें भाई क्या है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी मेरा भाई, कह दे भाई क्या कहना चाह रहे हैं मेरा भाई.
1: No understand my shayari, my dear.
0: I would love to understand your shayari, bro. My dhari hai, money will follow, bro.
1: can I reminding again you? Please give me 1 minute, possible?
0: Give you what? अरे
1: कबीर भाई.
0: हाँ.
1: कबीर भाई वो शायरी ऐसी थी ना.
0: हाँ.
1: हम लोग ये वोटिंग का जो इलेक्शन होता था ना.
0: हाँ.
1: तो प्रचार नहीं होता था बहुत पहले.
0: हाँ, हाँ.
1: तो हम जी जी शायरियां बोलते थे, तो वो हमारे जो हम इसके लिए कांग्रेस के लिए ना ही कर रहे थे प्रचार.
0: अच्छा.
1: तो उसमें पूछा था मालूम, वो मैंने आपको डेलीगेट किया.
0: अच्छा.
1: एक्चुअली वो ऐसे ना कि बगीचे में बगीचा, बगीचे में बंदर.
0: हाँ.
1: ये कबीर है कितना सुंदर सबके दिल के अंदर.
0: वाह वाह वाह यार, ये यहीं बोलो यार. शेखू कमाल कर दिया, कपड़ा फाड़ के रुमाल कर दिया.
1: और जिस पार्टी के लिए हमने प्रचार किया था ना, उसका ट्रेडमार्क था ना हाथ का पंजा था, तो उसका शायद ये थी कि बगीचे में बगीचा, बगीचे में बंदर, ये हाथ है कितना सुंदर सबके दिल के अंदर.
0: भाई आगे से किसी पार्टी के लिए स्लोगन मत लिखना, कसम है तुम्हें. अरे यार बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर हो ज्यादा. सलीम और कैसा चल रहा है भाई, तबीयत अभी भी ठीक है, सब बढ़िया?
1: नहीं तबीयत बहुत खराब है.
0: हाँ मुझे पता लग रहा है यार, पता लग रहा है आपकी तबीयत से
1: बहुत. हाँ मैं इसके लिए कॉल भी नहीं कर पा रहा था.
0: हाँ.
1: और दवाइयाँ हेल्थ सेंटर से दवाई सब लिया मैंने.
0: अल्लाह
1: मैंने खाना शुरू किया.
0: नहीं शहजादा सलीम, देखो शहजादा भाई मैं दिल से बोलूंगा भाई, दिल से दुआ भाई आपकी तबीयत एकदम, वो मुझे बहुत चहकते हुए सलीम भाई लगे ना आज, इसलिए मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है. आप ख्याल रखिए मेरी जान, आप खुश अच्छे लगते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत प्यार भाई.
1: और ऑल लिसनर्स के जो शायरी है ना, ब्रिलियंट ब्रिलियंट,
0: ऑल एपिसोड, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार भाई को, बहुत प्यार भाई, ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज मेरे भाई, अल्लाह हाफिज. और भाई के बाद एक कॉल आ रही है, मैं जानता हूँ कौन सी कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, क्या हाल है भाई?
2: क्या हो?
0: अच्छे हो? स्कूल के लिए चल दिए हो? चलो बढ़िया.
2: टॉपिक क्या है?
0: टॉपिक बेटे आज शायरी सुना रहे हैं लोग. शायरी सुना पाओगे?
2: शायरी मतलब?
0: शायरी मतलब पोइट्री, पोइट्री.
2: अच्छा पोइट्री. अंडे का आया तो, अंडे का आया तो एक चीज लिखना है.
0: अच्छा बताओ.
2: अंडे हो क्या मंडे, रोज खाओ अंडे.
0: वेरी गुड वेरी गुड, ये तुम्हारे लिए वेरी गुड. पर क्या तुम अंडा खा
2: के? मम्मी के लिए नहीं है, मम्मी के लिए नहीं है.
0: अच्छी बात है बेटे, मम्मी की माना करो. तो अंडे खा के आए हो या नहीं?
2: नहीं आज अंडे नहीं है और मंडे भी नहीं है, तो अंडे नहीं खाने का.
0: यार बढ़िया पंचता ये, क्या बात है. लाना संडे मंडे तो है नहीं, तुम्हें क्यों खाओ अंडे, ये भी सही है. खाया करो ठीक है, तुम्हारे चक्कर में लोग बोलेंगे ये बच्चे को बिगाड़ने के लिए बैठे. अच्छा बात बताओ, आज तो वीकेंड है फिर, मतलब स्कूल के बाद क्या प्लान है फिर?
2: फूल के बाद।

0: नेपोटो
1: नहीं पता। अरे
0: पार्क जाते हम लगा
1: क्या क्या क्या
0: पार्क जाएंगे हम लगा।
1: हाँ अच्छा चलो यार बढ़िया है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, फाइनली छुट्टी आ गई है, बढ़िया मजे करो क्योंकि फिर तो तुम्हारा पीटीएम होगा कुछ टाइम बाद। फिर
0: नेक्स्ट वीक से,
1: नेक्स्ट वीक है ना, फिर तो क्लास लगेगी।
0: आज छुट्टी बंद है ना।
1: हाँ तो आज बेटे आज 1 तारीख हो गई है बच्चे। क्या
0: नहीं नहीं नहीं नेक्स्ट वीक बोल रहे हैं
1: तो पीटीएम है तो क्लास लगेगी ना तुम्हारी फिर, है ना, मुझे पता है। ऑल द बेस्ट ना, तुम्हारे चक्कर में मैं डरने लगा हूँ तुम्हारी पीटीएम से, समझ रहे हो तुम। तो पीटीएम से डर लग रहा है, नहीं लग रहा,
0: नहीं लग रहा है,
1: नहीं लग रहा है,
0: नहीं लग रहा है।
1: क्यों क्यों, मतलब टीचर खुश होंगे तुमसे बहुत।
0: नहीं आप भूल गए मेरा स्वैग।
1: हाँ वो तो तुम्हारा स्वैग तो मैं जानता हूँ, तो बात ही दूसरी है।
0: नहीं करता हूँ मैं किसी से।
1: हाँ शाबाश यार, तुम्हारे जैसा होना चाहिए।
0: लोगों की मेरे सामने फटती है।
1: अरे अरे अरे यार रोको भाई। नहीं ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू स्कूल के लिए भी और पीटीएम के लिए भी, समझे। अच्छा अच्छी तरह से रहो, बस ख्याल रखो अपना।
0: रुको रुको रुको रुको रुको।
1: हाँ हाँ इधर ही हूँ मैं। अरे तुम्हारी इजाजत के बिना फोन काट दूंगा क्या मैं, ये बताओ बताओ क्या कहना चाह रहे हो।
2: अच्छा से बोलो, अच्छा बोलो,
1: अच्छा से बोलो, अच्छा बोलो।
0: क्या पूछना था मेरे को,
1: पूछो।
0: कल मैं टॉपिक बोल सकता हूँ।
1: क्या क्या बोल सकता हूँ
0: कल टॉपिक मैं बोल सकता
1: हूँ। कल तो छुट्टी है ना,
0: संडे को, नहीं नहीं संडे को मैं टॉपिक बोल सकता हूँ।
1: हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है,
0: ठीक है ले,
1: है ना, संडे को फिर बताना मुझे तुम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, चलो ख्याल रखो फिर।
2: ओके
1: ओके अल्लाह हाफिज भाई। दिल के अरमा आंसू में बह गए, वो बच्चे के भी बह गए। अच्छा कुछ मैं जल्दी से मैसेज पढ़ देता हूँ। तो मेरे पास बहुत मज़ेदार शायरी आई है, मैं कहता हूँ शायरी भेजो भाई ऐसी वाली जो मतलब मुस्कुराहट बिखेरती। एक मैसेज आया है रिप्लाई, तुम खुद को दुनिया की बुरी नज़रों से बचाया करो, सिर्फ आंखों में सुरमा काफ़ी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। प्रिंस भाई, प्रिंस भाई, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। एक और मैसेज आया है, मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है कि जो लोग चाय को इनकार करते हैं उनसे दोस्ती नहीं रखी जाए। भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ इश्तियाक भाई। एक कॉल आ रही है, जरा कॉल उठाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: जी नदीम भाई क्या हाल है भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बच्चा तो बहुत ही खतरनाक
1: है ना भाई। मेरे साथ ही होता है, सारे के सारे लाइव वायर जो है ना, बिल्कुल बिजली वाले तार मेरे पास आते हैं भाई। अरे भाई दिल धड़क गया मेरा, बताओ नदीम भाई क्या कहना चाहेंगे आप।
2: देखो मैं शायरी तो बोल दूंगा, ठीक है, जज नहीं करना, क्योंकि अपन जो है वो थोड़ा सैड शायर शायर है, पुराने वाले, कॉमेडी बहुत मुश्किल है।
1: अच्छा चलो
2: फिर भी देखो,
1: पढ़ दो पढ़ दो।
2: आंखों में आंसू चेहरे पर हंसी है, सांसों में आहे दिल में बेबसी है, ये इश्क का बुखार नहीं यारो, दरवाजे में मेरी उंगली फंसी।
1: नदीम भाई के लिए, नदीम भाई की उंगली के लिए भाई ऑर्डर बजाया। वेरी गुड नदीम भाई, यही तो चाहिए भाई, एकदम लाइट किस्म की शायरी, ज्यादा भारी नहीं, बहुत बढ़िया नदीम भाई।
2: पहले की दो लाइन सुन के तो आपको लगा होगा क्या,
1: मुझे लगा ये नदीम भाई कहाँ जा रहे हैं, नदीम भाई सीरियस कैसे हो गए, ये बढ़िया था भाई। अरे यार नहीं पर मैं सच में बता रहा हूँ, अभी जो ये साहबजादे भी फोन पे आके गए हैं, ये अक्सर डरा देते हैं भाई। ये बिल्कुल छटपटा था बिजली के तार है। नहीं नहीं भाई मैं बच के रहना पड़ेगा, और सब मेरे ही हिस्से में आते हैं पता, दैट इज द थिंग।
2: एक इसका ये भी है ना कि आप बाकी लोगों के शो से जो भी है, आपका शो सबसे ज्यादा फ्री है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा आपके।
1: हाँ जब ही फैल रहे हैं
2: टॉपिक से हटते ही नहीं है,
1: जब ही फैल जाते
2: हैं तो बस लगे कि बाकी लोग तो टॉपिक से हटते ही नहीं है, मतलब वो ज्ञान वाली बातों से कोई हटता ही नहीं है।
1: हाँ।
2: तो वो फिर वहाँ पे लोग बंद जाते हैं कि सिर्फ

0: वही बात करनी है, तो यहाँ पे क्या है, जो दिल की बात है बंदा कुछ भी बोल सकता है।
1: फैल जाते एकदम। नदीम भाई हैप्पी वीकेंड मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, हम गेमर्स के लिए बहुत जरूरी है ये हैप्पी वीकेंड। तो
0: अपना तो वीकेंड ही वीकेंड चल रहा है कबीर भाई, दुआ ये करो कि वीकेंड ना हो, काम है।
1: नहीं भाई ऑपोजिट दुआ करेंगे हम नदीम भाई के लिए, वीकेंड बहुत हो गया अभी काम है भाई, इंशाल्लाह आएगा काम, कैसी बात कर रहा है यार। नदीम भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और तना भाई कह रहे हैं तो आज कॉल नहीं करूँ भाई, कर लेना, मैं कर लूँगा वो कॉल, में जरा मैसेजेस पढ़ दूँ उसके बाद मैं सारी कॉल्स लेता हूँ। तो भाई ने मैसेज किया है, सुलगते सिगरेट फेंक देता हूँ अब भी उसको देख कर, ये अदब इश्क के हैं, किसी स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते। सीरियस हो गई ये वाला हूटर जो मैं अपने मुँह से बजा रहा हूँ, ये बुरी शायरी के लिए होगा, ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। इरशादुल्लाही तो सही साहब कहते हैं, एक और अर्ज किया है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ चल बेटा कतर में टैक्सी चला। ये किसने आपको दी? एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कैसे हैं, आज मेरे साथ एक सीन हो गया, सुबह सुबह रेडियो तो चालू कर दिया लेकिन चैनल दूसरा था, इतनी नींद में, गहरी नींद में था कि मैं बंद चालू कर रहा था रेडियो चैनल, कहीं क्या चैनल नहीं बदल रहा, मैं क्या सोचने लगा कबीर भाई चेंज हो गए क्या? अरे अरे भैया ऐसा मुदस्सर भाई खुद को शॉकर मत दिया करो भाई, नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। एक मैसेज हसन भाई का, मेरे हाथ में फूल क्या, मेरे हाथ में फूल हाथ में कई हाथ में है, एक सेकंड, मेरे हाथ में फूल हाथ में है कोई असला तो नहीं, अच्छा मेरे हाथ में फूल है हाथ में कोई असला तो नहीं, तुम तो परेशान हो गए, कोई मसला तो नहीं है भाई साहब, है रांटे बहुत आ रहे हैं हसन भाई। एक मैसेज है, इरफान भाई ने नंबर प्लेट पर ऐसा अजीब नंबर लिखाया है कि गाड़ी निकालते ही पूरे मोहल्ले में मजाक उड़ाया है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी चलान काटना भूल गए, पहले सेल्फी ली फिर हंस के घर भगाया है। मैं बता रहा हूँ मैं इरफान भाई के नंबर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, कल मेरी गाड़ी ने रुला दिया भाई, तो आज से इरफान भाई का नंबर प्रीमियम है भाई। साफ सीधी बात, बदला ले लिया इरफान भाई ने बैठे बैठे घर पे। वाईफाई बदला है, वाईफाई बदला। ताहिर भाई कह रहे हैं, बिरयानी से याद आया कि एक उम्र लगती है कमरे को कमर होने तक। ये भाई मैं आज चिपकाने वाला हूं 1:30 बजे वाले शो में, ताहिर भाई आपके लिए। दिशान भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दिशान भाई, कहते हैं सलाम कभी ब्रो, अच्छा सुनो एक बात पूछनी थी, ये जो आपको गुस्सा आता है तो कैसे आता है, पैदल या टैक्सी से? भाई मेरे को स्कूटर पे आता है भाई गुस्सा, धीरे धीरे चल। आसिम भाई बढ़िया था, आसिम बढ़िया था, तब उसमें लिखती हैं, आई ऑलरेडी लाइक हैदराबादी लैंग्वेज और ऊपर से बच्चे की बोली बहुत प्यारी लगती है, पार्क जाएंगे हम लोग है ना। बहुत डर भी लगता है बहन मुझे, कह रहा बच्चा इमोशन से बह गया फराज भाई, ऐसे ही है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अर्ज किया है, गली गली में जीरा है कबीर भाई हीरा है, मुझे पहली लाइन पढ़ के डर लग गया था खाजा भाई, मेरे को पता नहीं अगली लाइन क्या आएगी। और वसी भाई लिखते हैं, दिल में अरमान जब में जेब में जीरो बैलेंस, फिर भी एटीट्यूड ऐसा जैसे अपना है पैलेस। वो वेरी वेरी हैदराबादी स्टाइल शायरी। और हमारे इरफान भाई की वेलकम, इनको जरा कारपेट बिछाया जाए। वालेकुम अस्सलाम भाई इरफान, क्या हाल है? आई एम गुड। और मैं कह रहा था कोई ऐसी शायरी सुना दें आपके, मतलब चेहरे मुस्कुराहट आ जाए। और एक मैसेज है, थर्सडे है, फनी शायरी डे है, कबीर की तारीफ का वार, शेर शुरू कहीं से भी हो एंड में कबीर ही सुपरस्टार। अरे मेरा भाई, मेरा भाई, ये लो भाई हुटर। कासिम भाई वेरी वेल डिजर्व हुटर, वेरी वेल डिजर्व हुटर, ऐसी तारीफ करते रहो, ठीक है, फायदे में रहोगे। एक और मैसेज है भाई, एक और आई, दिल के अरमा आंसुओं बह गए, हम गली में थे कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए, भागते भागते हम तो इतने दूर निकल गए कि समोसे वहीं छूट गए और हम भूखे रह गए। देखो मुंबई वालों, कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज। इश्याक उस्मानी भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लिखा उन्होंने, कैसे हो, मैं भी शाहीन बाग में 7 साल गुजारे हैं, कालिंदी कुंज पे क्रिकेट खेला है, दिल में कोई गम नहीं, बस एक ही फिक्र सताती है, ये डाइटिंग शुरू करते ही बिरयानी की याद आती है, डॉक्टर ने कहा है कि सैलेड खाया करो मेरे दोस्त, पर सलाद देखकर दिल से सिर्फ बर्गर की आवाज़ आती है। मेरा भाई ये दर्द मैं समझ सकता हूँ, इससे आप उस्मानी भाई, इट पेंस इट पेन्स ब्रो. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हुसैन साहब, क्या हाल है आपके. एक मैसेज है, भाई मैं ऑरेंज शर्ट वाला, सलाम वालेकुम. धोखा दिया है तुमने कल, ठीक है, एआई से बना के इमरान. एक मैसेज है ऑन कॉफी डे. अच्छा कॉफी डे भी लिखे उन्होंने. नौकरी का हर सवेरा जिसके नाम लिखा वो कॉफी थी, दोपहर की उस नींद को जिसने हराम किया वो कॉफी थी, और शाम को जब सफर में आंखें मूंदने लगी तो जिसने फिर से होश में लाया वो भी एक कॉफी थी. खाजा साहब आपने जो कॉफी के लिए लिखा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इरफान भाई कहते हैं, शादी के बाद समझ आया ये राज, बीवी सही हो तो शौहर की भी होती है आवाज. अरे अरे अरे क्या बात है इरफान भाई, स्वैग साडा देश ही सारे लोग के सानू जान दे, बहुत बढ़िया भाई. और कहते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा कभी लाखों में एक. फराज भाई और तब उसमें लिखती हैं, दिल के उस दरीचे से जब भी उनका हसीन चेहरा नजर आया, पहली नजर में लगा कोई बहुत खास आया, पास गए तो पीछे से अम्मी का बेलन आया. बहन ये नेपाल की कहानी है, ब्रिटिश हो. एक मैसेज, भाई मैं बिजी हो गया था, मेरे मैसेज रीड किया था, अभी वापस आया हूँ. रीड किया था रमज़ान भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपको ये कन्फ्यूजन जो 107 को लेके है, कितने इंडियन कितने पाकिस्तानी. ऑफिशियली इट इज़ नॉट इंडियन, ऑफिशियली इट इज़ नॉट पाकिस्तानी, इट इज़ द गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन ब्रो. बट हाउ डज दैट मैटर, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ. और इश्तियाक उस्मानी भाई कहते हैं, इन्होंने अगला फनी शेर भेजा हमें, खून जलाया हमने, सलाद खाया सुबह शाम, सोचा था फिटनेस में अब बनाएंगे अपना नाम, पर रस्ते में जब दिखी गरम गरम बिरयानी तो दिल ने कहा भाड़ में जाए फिटनेस, चलो शुरू करें काम. वेल डन पिटी, वेल डन. स्लो क्लैप्स, आपके ही चक्कर में नहीं हो पा रहा है ये जो मैं 3 BHK का बना चुका हूँ घर. आप जैसे दोस्तों की वजह से. वसीब भाई कह रहे हैं, मियाँ भाई बोले आज से सीरियस लाइफ जियेंगे, बिरयानी की खुशबू आई हो, कल से शुरू करेंगे. ये तो सर्वर भाई है वसीब भाई, दिस इज अ वेरी सर्वर भाई शेर. एक मैसेज है सर्वर भाई का, कुछ कीजिए आज, आज करेंगे भाई. एक मैसेज जैस भाई का, लिखते हैं, कबीर भाई ये खास आपके लिए, कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और कुछ लोग जिंदगी में आकर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. कबीर भाई आप उन्हीं खास लोगों में से हैं जिनके लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं मगर दिल में इज्जत और अपनापन हमेशा जिंदा रहता. मेरा भाई स्वीट शायरी है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार. सुबह की पब्लिक की बात ही और है, वेरी इट्स अ फैमिली रीयूनियन एवरी मॉर्निंग. मजा आता है मुझे, मजा तो आता है. हाँ तो मैं कह रहा था कोई ऐसा शेर हो ना कि मतलब सुन के आदमी हंस दे, ऐसा आज भेज दो भाई. आज गहरे वहरे नहीं पढ़ने हमें, प्यार मोहब्बत वाले ये सब नहीं चाहिए, वो अपने अंदर के आशिक को आप छुट्टी पे देख लेना, जब वेकेशन पे जाओगे तब निपट लेना उससे. लेकिन अभी जो है हमें चाहिए ऐसी बढ़िया शायरी जैसे अभी पब्लिक ने भेजी है, मजेदार भेजिए भाई. तो तला भाई को हम लगाते हैं कॉल. क्या कहते हैं, मत मोहब्बत में हमने सब कुछ लुटा दिया, फिर अम्मी ने पूछा दूध के पैसे कहाँ गया, हैं तला उड़ा उड़ा के आया ना, हैं तला तला बेटी इधर आओ, तला वेर आर यू, प्लीज लेट मी नो. तला भाई ने बहुत कुछ किया बचपन में, समझ में आ रहा मेरे. एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई.
1: बस कमाल भाई, कमाल कर रहे हैं.
2: भटक गए भाई आप.
1: कहाँ मैं किधर भटक गया.
2: अरे वही तो आज भटके हुए लग रहे हैं.
1: भटके हुए
2: लोगों से शायरी
1: हाँ भाई, भाई आज आज पोएट्री डे ना
2: हो रहा है कि आपके आपके शो पे शायरी.
1: हाँ भाई लेकिन वैसी वाली शायरी नहीं है, रोने धोने वाली शायरी.
2: हाँ समझ रहा हूँ.
1: हाँ
2: समझ रहा हूँ भाई.
1: हाँ
2: ऐसा लगता है कि जैसे बर्रे के खोते में जैसे कोई पत्थर मार दे, अलग से अलग शायरी निकल के आ रही है.
1: पत्थर मार शायरी कर रहे हैं हम आज, पत्थर मार शायरी,
2: पत्थर मार शायरी हो रही है. अच्छा लग रहा है.
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई. और बताइए भाई क्या सीन है.
2: बस अच्छा है भाई, ठीक है, मामला ज्यादा देखा जाए.
1: नहीं नहीं बस बढ़िया शानदार
2: तो
1: है.
2: हाँ. आती है फिर भूल जाते हैं.
1: अरे रे रे
2: इसे लिखते हैं. यही समझ लीजिए.
1: अरे रे रे मैं जमाल भाई से ट्रेनिंग लीजिए, जमाल शेख है हमारे, हमारे बहुत पुराने लिस्टनर है, उनसे मिलिए आप, ऐसी गाड़ी उर्दू देंगे ना आपको, ऐसी गाड़ी उर्दू
2: भाई. मैं सुनते हुए आ रहा हूँ, बहुत वक्त से सुन रहा हूँ
1: है ना. तो अरे
2: जमाल जैसा भाई। प्रोग्राम वैसा उनका लहजा.
1: हाँ वो बहुत सही टाइम पे चेंज करते हैं अपने आपको कि यहाँ पे मुझे ऐसे रहना, यहाँ पे मुझे ऐसे रहना, बहुत बढ़िया करते हैं. तो आएंगे देखते हैं. आज आज उनको मैं सीरियस शायरी सुनाने नहीं दूंगा, मैं रोक दूंगा वहीं पर ही.
2: अरे भाई उनके पास शायरी का भंडार है.
1: हाँ वही तो मैं
2: कभी.
1: हाँ बस मैं वेट कर रहा हूँ आए और फिर उनसे हम जो है जरा सुने कुछ बढ़िया सा. और अब जरा जो है मैं भाई को लगा रहा हूँ कॉल। मेरा भाई ये अच्छा ओके ये रहा नंबर का नंबर एक सेकंड ये लगी कॉल आ गई तो बाकी कहाँ है अस्सलाम वालेकुम
3: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई जान क्या हाल है आप
1: मैं तो ठीक हूँ बेटे ये जो आपने ये पैसे उड़ाए हैं बाहर उसके बारे में जरा थोड़ा हिसाब किताब हो जाए तला आप बताइए तला भाई
3: दो किलो दूध के पैसे उड़ाए आपके भाई ने
1: मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ मुझे आप पे बहुत भरोसा है भाई और सुनाइए आप
3: यार आज क्या टॉपिक लिया यार मैं तो बिल्कुल ही आज तो ऐसा लग रहा है लेफ्ट ओवर नहीं होते आज सोते
1: नहीं लेफ्ट ओवर नहीं आपने बढ़िया शायरी करी भाई आखिर में इट वाज नाइस
3: नहीं ये देखो यही मोटिवेशन कर कर तुम लोग आगे करते तो पहली सफ में तो जावेद जब मेरी फीलिंग आती ये मैं आगे कैसे आ जाता हूँ
1: अच्छा है भाई अब आगे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बहुत बढ़िया
3: तो जो है ना आज प्रिंस छा गया आज प्रिंस ने दो मारे ना बैक टू बैक अंधा करा दिया प्रिंस ने
1: है ना आज प्रिंस भाई ने धनिया बो दिया भाई
3: आज प्रिंस भाई ने एंड करा दिया आज पेडीगोर के ऊपर वाली बात हो गई
1: हाँ आज प्रिंस भाई ने कहा मैं अपना जो है पहले ही दो मतलब हथियार डाल दूंगा उसके बाद कोई बोल नहीं पाएगा तो आज प्रिंस भाई ने दो एकदम किए शॉट और चले गए आएंगे तो देखेंगे
3: बेहतरीन करते
1: और बताइए
3: एक बार आज ये जो तुमने जुमेरात के दिन जो है जुमेरात बड़ी बड़ी मुराद के दिन जो है तुमने जो ये आज शायरी लाया ये किसका बीज बोया भाई
1: आज एक तो है पोएट्री डे ऊपर से मेरे दोस्त हैं आप जैसे तो मैंने कहा क्यों ना कुछ किया जाए
3: तुमसे ना होगा
1: ये हो रहा है भाई अभी ऐसे ऐसे ऐसे शेर आए हुए ना बैकग्राउंड मेरे पास व्हाट्सएप पे आप सुनोगे ना डर जाओगे भाई
3: भाई वो सुनाना नहीं तुम्हारा ये मुझे आखिरी शो लगेगा फिर बस ठीक है एक दो शेरों के अंदर अगर एक दो अल्फाबेट आगे पीछे हो गया तो पक्की वायलेशन है वो
1: हाँ वो मुझे पता है भाई वो मुझे पता है एक एक एक जो लफ्ज है इधर का उधर हुआ बस बस
3: मुझे पता है इम्प्रोवाइजेशन भी चल रही है पढ़ने में
1: थैंक यू तला भाई यार
3: चंदादा हो रहा है
1: ये टैलेंट की जो आपने कदर करी है बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए
3: ये जो आप मैसेज पढ़ते पढ़ते ना एकदम से आपके लिए है फिर आपका पूरा कंटिन्यू होता ना वो अंदाजा हो रहा मुझे इम्प्रोवाइजेशन
1: पर आप ये देखें इम्प्रोवाइजेशन है कितनी बढ़िया ये नहीं देख रहे आप
3: नहीं अब ये तो नहीं बोला ना मैंने इम्प्रोवाइजेशन बोला मैंने बढ़िया गया साइड पे भाई
1: तो तारीफ होनी चाहिए ना इम्प्रोवाइजेशन किसी ने किया है व्हाई आर यू नॉट प्रेजिंग समबडी यार तला भाई इतना इतनी जलन अच्छी नहीं है
3: जलता हूँ मैं भाई मैं जलता
1: हूँ नहीं तो तला भाई आप भी कुछ भेजे मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ लेट मी ट्राई आप भेजेगा मुझे कुछ सुनाओ सुनाओ
3: भाई इरशाद बोलो लड़को
1: इरशाद
3: क्या था इश्क क्या था इश्क में दिल टूट गया कोई गम तो नहीं इश्क में दिल टूट गया कोई गम तो नहीं लेकिन बिरयानी का रायता खत्म हो गया ये जुल्म नहीं
1: सही है बिल्कुल सही
3: खत्म हो गया
1: ये मतलब शेर उठा था जरा सा वापिस धाम देने वो आवाज आती ना धुप आज सिली डे है आज सब चलेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है तला भाई
3: तेरा यकीन करो कोई और सुना रहा होता ना ये वाला मैं यकीन करो थप्पड़ मार देता ये बनता है
1: भाई अब क्या करें आपकी मोहब्बत है माफ करना पड़ रहा है आपको भाई नहीं तो बताऊं बताता भाई
3: मैं
1: करूं
3: हैं बस उद्देश्य एक्टिव
1: थैंक यू
3: गन लोड हो गई है चलाना नहीं है
1: ठीक है तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान लॉट्स ऑफ लव भाई को ओके भाई
3: बहुत बुरा है
1: थैंक यू चलो अब जरा जिंगल का टाइम हो गया

0: FM 107. Time check.
1: टाइम चेक मैं चिक्की चिक्की करने वाला था तो घड़ी में हो रहे सात दो आप भी मेरा साथ दो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी तो मैं कह रहा था आज पोइट्री डे तो क्यों ना आपसे जो है ऐसी पोइट्री सुनी जाए जिसको सिली पोइट्री फन पोइट्री कहा जाता है तब लोग आसाद हो यार आज ऐसी पोइट्री सुनाओ जो गहरी ना हो मज़ेदार हो तो माज भाई ने मुझे भेजा है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए माशूक का नाम एंजल प्रिया जान के क्यों सब हंस दिए बेटे लास्ट में एक तो राइम नहीं किया ऊपर से मुझे लग रहा है कि आपसे एंजल प्रिया ने कराया है रिचार्ज हेलो मास बस 500 का कर दो डू यू रियली विश टू कंटिन्यू दिस मास एक मैसेज है ये रिजवान भाई कहते हैं तो शाहीन है बसेरा हर पहाड़ों की चट्टानों पे कबीर भाई आप बसेरा करो हम सबकी दिल की दुकानों पे मेरा भाई क्या बात मोमोज की दुकान खोल दूं भाई दिल में एक मैसेज है जाफर भाई को आ रहे हैं अलग मजे भाई डू यू रियली विश टू कंटिन्यू मच लेते हैं कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम जाफर दिस साइड ना दिल का सुकून ना ही रूह का करार है मेरी सैलरी आई सारे पैसे फरार है भाई इधर भी यही हाल है भाई हाई फाइव एक मैसेज है भाई सरवर भाई एक का के बना दूं क्या बना दो भाई बना दो बढ़िया सा नदीमा कह रहे हैं तला भाई की कॉल आई वो सबको हंसाएंगी पर बात ज़्यादा लंबी मत करना वरना वो आ जाएंगे उनका नाम नहीं ले रहा भाई नदीम भाई अरे बढ़िया था नदीम भाई ये शानदार था भाई एक मैसेज है तला भाई का शायरी सुनाने के बाद कहते हैं बर्बाद कर दिया तूने मुझे आज मैंने कहा था करीब मत आओ फना कर दूंगी मैं वही हुआ एक मैसेज है चलो दोस्त अब मौसम का मज़ा चखें तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर करें तमाम दवाइयां हैं मोहसिन भाई मैं सही पढ़ रहा हूँ या मतलब ये मुझे समझा दो एक बारी एक और मैसेज है मरिया जी ने मैसेज किया है मरिया लिखती हैं दूर से देखा तो है करीब जाके दे कभी आए क्या हो रही थी ये मैं एक मुझे दूसरी लाइन समझ में आ रही है करीब जाके देखा तो कबीर की पिटाई हो रही थी ये तो बहुत डेंजर नहीं हो गया मामला एक मैसेज है तला भाई अपने अब्बा की जेब से नहीं चुराए पैसे तो नहीं चुराए ये तला भाई बता सकेंगे भाई एक मैसेज है ये जिंदगी भी आखिर फानी देखी हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा जो आके ना आए वो जवानी देखी क्या हो गया भाई हिदायत भाई किसने परेशान कर दिया भाई को एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम बाबा जी अर्ज़ किया है ये शादी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए कहते हैं ये शादी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए मिर्ची की कुल्फी है और चूस के खाना है वाह वाह वाह बेटे वाह वाह वाह ये इनके तरह उठ जाए I would not say a single word on this, भाई. You know why. और मैसेज क्या है हमारे सुदत्तो सर ने लिखते हैं सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग कबीर भाई आज संडे है ना तो मंडे है हसमुख शायरी का दिन है एक शायरी मुंह फट एम्प्लॉयज के नाम भाई शायरी सुनो सुदत्तो सर ने भेजी है कहते हैं जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहोगे बॉस की नजरों में मुस्कुराते रहोगे जिस दिन गलती से भी बोल दिया सच तुमने उसी दिन से तुम आफतों में आते रहोगे मेरे भाई ये बहुत मूल मंत्र है याद करो सुदेवता जी क्या आपने भाई बात बोली है बहुत बढ़िया और एक मैसेज आया है ये क्या है हमारी मुना बहन ने लिखती है इन अशकों को आंखों से जुदा कर देना अपने दिल से सारे गमों को जुदा कर देना अगर फिर भी दिल ना लगे जाने वफा तो आकर मेरे घर की सफाई कर देना 3 BHK का बहुत मुश्किल है सफाई करना बहन स्पेशली व्हेन यू हैव 2 kids अराउंड जो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह तो मैं ठीक हूँ मोहम्मद वकास इकबाल सब कहते हैं अर्ज़ किया है क्या करते हो कहाँ रहते हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है जहाँ भी रहते हो और सृजन भाई कह रहे हैं एंजल प्रिया जी भाई बहुत लड़कों ने रिचार्ज कराए भाई एंजल प्रियाओं के क्या समझ रहे हैं आप बहुत लड़कों ने रिचार्ज कराए एक ज़माने में 200 रुपये के, 100 रुपये के, 50 रुपये के। एक मैसेज है इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब का, कहते हैं कबीर पहले आप हैं, पहले आप पढ़े अगर लाइव पढ़ने काबिल हो तो सुनाओ, नहीं तो माजरा। अच्छा, एक शायरी, एक शायर की शादी हुई तो कुछ दिन बाद, नहीं भाई ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना इरशादुल्लाह ये सब, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक मैसेज है, ए फूल मेरे फूल, ये फूल दे देना, कहना कि ते फूल ने फूल भेजा है। मुजाहिद भाई आपको और मेरा झगड़ा हो जाएगा भाई बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है इस शायरी में तो बनता भाई हमारा बिड़ना। एक मैसेज जावेद, ये जावेद साहब का, वालेकुम सलाम भाई, हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल। क्या क्या भेज रहे हैं लोग भाई मेरे को, आज लगता है मैंने ही ये अपने लिए खुदाई करी। एक मैसेज भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी शायरी भेजिए, क्या बात है भाई। लिखते हैं, का बताई हो कितना कहर लागे लू, रतिया में बनारस शहर लागे लू, और तू माने चाहे मत माने, ए मोर करे जा सच कही तो काला साड़ी में जहर लागे लू। अले मिला भाई, अले मिला आशिक छोटा बाबू अरे हुसैन भाई अरे आई जस्ट रियलाइज मेरी भोजपुरी इतनी बुरी नहीं है, डोंट यू थिंक सो हुसैन भाई, आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड, पढ़ सकता हूँ मैं अमन भाई कह रहे हैं टॉपिक क्या है, टॉपिक कुछ नहीं भाई आज हम मजे कर रहे हैं साफ सीधी बात। मैं कह रहा हूँ पोइट्री भेज दो बढ़िया सी, इस पर सुन के हंसी आ जा, पर भोजपुरी मेरी बढ़िया है आज हुसैन भाई, मैंने डिस्कवर कर लिया। क्यों फरत भाई आप हंस तो रहे हो लेकिन बताओ मस्त नहीं बोला। एक मैसेज है, पोइट्री भेजिए जावेद भट्टी भाई ने, कहते हैं ये जो जूता उठा के लाया हूँ ये ना समझो कि चुरा के लाया हूँ, इसको मौला की देन ही समझो, उसी के घर से उठा के लाया हूँ। जावेद भट्टी साहब आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड, दिस इज अ लव मैटर, व्हाट इज द मैटर। एक मैसेज है वसीम भाई का, लिखते हैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लाइफ बनी रिपीटेशन, वीकेंड आया तो बस एक ही मिशन, स्लीप बिरयानी एयर कंडीशन बनाओ बनाओ कमर को कमरा। आपसे ही तो हम इंस्पायर हो रहे हैं भाई, यही तो दिक्कत है। एक मैसेज है भाई, आपके वाली शायरी में ब्रांड है इसलिए पढ़ नहीं सकता मैं अब्दुल करीम भाई। एक मैसेज है इश्तियाक उस्मानी भाई का, ये भी कहते हैं अर्ज किया है, पूरे हफ्ते काम करके बदन टूट जाता है, वीकेंड आते ही दिमाग सुकून पाता है, मम्मी कहती हैं उठ जाओ दोपहर की 2 बज गई, पर ये कमहद कंबल है कि मुझसे लिपट ही जाता है। ये तो मेरे साथ भी है भाई, और जब ऐसे कंबल लिपट जाता ना, वो जो एक टांग बाहर हो जाती है जिसको हवा लग रही होती है भाई, वो अलग टेंशन है भाई, बहुत अलग टेंशन है वो। एक मैसेज और आया है, क्या कहते हैं ये, डब्बे में डब्बा डब्बे में किए कबीर भाई, लाखों में एक, थैंक यू हसन बुखारी भाई और एक शायरी ऊपर, हाँ भाई सरवर भाई की बातों में अलग ही मिठास है, उनकी महफिल में हमेशा खुशियों की बरसात है, दिल के बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं, बस एक बात समझ नहीं आती, खाना खाते हो या खाना आपको देखकर खुद बढ़। लास्ट वाली लाइन में जासिम भाई मज़ा नहीं आया, माज भाई सॉरी मैं उन्हीं से बोलूँगा, मैं एंड का खुद आपका शेर ठीक कर दूँगा, अल्लाह का करम है बिरयानी गर्म है, अनीस भाई कह रहे हैं वेरी गुड। एक मैसेज है क्या है, काले साड़ी में नागिन लागे लू, तुमको देखा तो नौ दो ग्यारह भागे लू

सुदीप्त सर यू अटेम्प्टिंग भोजपुरी इज द लास्ट थिंग आई एक्सेप्टेड, कसम से बता रहा हूं. अरे यार, अरे भाई, के यकीन करो मैं आवारा नहीं हूँ, एक लहर हूँ किनारा नहीं हूँ, ऐसे ना देखो मुस्कुरा कर मुझे, मैं शादीशुदा हूँ कवारा नहीं हूँ. अरे भैया यार, नदीम भाई, एक और बार हो जाए वंस मोर भाई, लिखते हैं यकीन करो मैं आवारा नहीं हूँ, एक लहर हूँ किनारा नहीं हूँ, ऐसे न देखो मुस्कुरा कर मुझे, मैं शादीशुदा हूँ कवारा नहीं हूँ. भाई भाई भाई भाई भाई भाई कर रहा था भाई, ये कर रहा था भाई. हसन भाई कहते हैं ये नहीं वो एहसान बहुत करता है, हाँ वो एहसान का ऐलान बहुत करता है, उसी की हर बात को सच में समझ लेना, वो मेरी जान बहुत करता है. हसन भाई ये तो दिल वाली शायरी हो गई भाई, क्या हो गया हसन भाई को, किसने चिढ़ा ये बताओ. हसन भाई अपनी कहानी बताओ मेरे को. और कहते हैं दिल के अरमा आंसू बह गए जब चाय पीने गए, तो पैसे गाड़ी पैसे क्या रह गए, पैसे बाहर रह गए. रिजवान भाई लास्ट वाला थोड़ा मैच करो. एक मैसेज कर रहे हैं तेरी निगाहों का जादू कुछ ऐसा छाया मियाँ, दिल का मीटर एकदम ऑफ हो गया, जब से तुम दिखे रास्ते में हमें ये लुकमी और चाय का मज़ा भी फीका हो गया. इमरान भाई बढ़िया था भाई, कहते हैं हम प्यार में बर्दाश्त का बंटवारा नहीं करते, तेरे साथ और कोई गवारा नहीं करते, जिस दिन दिखे तेरा फूल सा चेहरा बंद रखते हैं आँखों को नहीं यार वो प्यार मोहब्बत वाले इशारे नहीं चाहिए इसमें, मैं वो दूसरा गुटर बजाऊंगा. इशाक उस्मान भाई कहते हैं सुबह से शाम तक पूरी मार्केट घूम आई वो आई है, वो हर दुकानदार का दिमाग अच्छे से ख़राब कर आई है, वो हाथ में 5 थैलियां हैं और शोहर से कहती है चलो किसी और मार्केट चले, यहाँ तो कुछ पसंद आया ही नहीं. आपके चक्कर में ना कितनों को हिसाब देना पड़ जाएगा, आपको अंदाज़ा है मेरा भाई, अंदाज़ा है कि नहीं है. एक मैसेज है हमारी समीरा बहन का, वो कहती हैं एक दिन तुम ऐसे शख्स से मिलोगे जो तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा तुम्हारी रूह से मोहब्बत करेगा और वो मलकुल मौत होगा. अरे भाई बहन ये लो, टोटली डिजर्विंग बहन, ये तो बहुत डार्क हो गया भाई, सुबह सुबह मामला बहुत डार्क हो गया भाई, गाना चलाना पड़ेगा. वेरी गुड बहन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू अटेम्प्टेड, एंड क्या अटेम्प्ट किया भाई पूरे. ये गाना याद है आपको, लॉट ऑफ पीपल डोंट रिमेम्बर दिस पर हमारे वाले जानते हैं.

क्या गाना है भाई, ये सबकी प्लेलिस्ट में शामिल रहता है भाई ये वाला गाना। और वो 12 साल याद है आपको, क्या गाना था भाई वो। एक और ये मेरे पास मैसेज आया भाई का, शाहनवाज भाई लिखते हैं भाई दो नंबर अभी मेरी प्लेलिस्ट में। जी भाई वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक एक शेर मुझे भेजा क्योंकि फ़नी शेर हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एक इरफान भाई हमारे, ये तीसरे चौथे इरफान भाई हैं, बहुत सारे इरफान हैं हमारे पास। तो ये कहते हैं महंगे जूते खरीदना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दोस्तों को बताना कि ये सच में महंगे हैं। अरे हैं भाई सच में।

0: Wake up. Hey, Doha wala mein Kabir.
1: हाँ जी.
2: यही कहूँगा.
0: सुबह सुबह.
1: Wake up. क्या हाल है भाई? एक से बढ़कर एक शायर है भाई हमारे यहाँ. मैं बताऊँ एक और बहुत बड़े शायर हैं. इनको जरा कॉल लगाई जाए. इन्होंने तो मुझे भेजा ना. मैं चाहता हूँ अब ये अपनी जबान से ही इसको अर्ज कर दें. ये हमारे फवाद भाई हैं. इफ इज फ्री राइट नाउ ही विल से समथिंग. फवाद भाई को हमने लगा दी है कॉल. फवाद भाई फोन उठा लो. दो नंबर में देवा. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर?
1: बात जी बढ़िया है. आप सुनाइए फवाद भाई क्या हाल है?
3: ठीक है. मैंने कहा खुद ही पढ़ देंगे. आपने क्यों नहीं पढ़ा?
1: क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने भेजा है मुझे ये आप पढ़े. मैं क्यों रिस्क लूं भाई? जी
3: नहीं आप पढ़ते बड़ा अच्छा है ना इसलिए.
1: नहीं नहीं नो थैंक यू. ना ना ना ना ना ना ना ये आप पढ़ेंगे. ये आप पढ़िए पढ़िए शुरू करिए.
3: तो सर मैं पढ़ू सर?
1: जी जी
3: सर. मैं पढ़ने में वैसे अच्छा नहीं हूँ.
1: कोई बात नहीं. इरशाद इरशाद.
3: कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में.
1: हाँ हाँ.
3: कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरे लफ्जों के का दीदार बेगम हर नवाले में.
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ. रुको रुको रुको. क्या कह दिया? क्या कह दिया भाई? खत्म. टाटा बाय. फवाद भाई यार डेडली था. डेडली था. तो ये इसलिए मैं चाहता आप पढ़ें बिकॉज ये है कमाल का. ये मैं फॉरवर्ड करूंगा बहुत बहुत सारे लोगों को. डेफिनेटली भाई
3: इसको दोनों अल्फाजों में लिया जा सकता ना.
1: हाँ नहीं मैं दूसरे में लूंगा क्यों भाई. मैं रिस्क से बच रहा हूँ. आप कह रहे नहीं ये भी देखो. कैसे नहीं देखोगे? वाह जी वाह. ऐसे नहीं करो यार. ऐसे नहीं करो.
3: आपने क्या मौत का फरिश्ता बुला दिया? अभी हमने कहा मौत के नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था. बेगम सुंदर ही यार.
1: देखा देखा आपने. मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था ये शेर समझे आप. आई वॉन्टेड यू टू टेक द रिस्क.
3: हाँ

0: ने बोला है कि लफ्जों नहीं जुल्फों की बात हो रही है, ये तो इन्होंने मेरा वाला पढ़ दिया। हाँ आपका वाला ही पढ़ा है। भाई ताहिर भाई, ताहिर भाई ये बच के निकले आप समझिए।
1: ताहिर भाई, हमने शेर को चेंज करना था ना।
0: सब अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ रहे हैं भाई। ये मैं समझ गया, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ा है, ये तो पक्का है। वेरी गुड,
1: सारी बात है ना सर, हर कोई अपनी मुनासिबत से पढ़ेगा सर। आज शायरी करी ना, उर्दू में बोलते हैं, मुनासिबत से पढ़ेगा।
0: हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं जमाल भाई को बुलाऊंगा, जमाल भाई एक गाढ़ा सा शेर फेंक के मारो भाई फवाद भाई के लिए।
1: जमाल भाई के शेर भी अच्छे,
0: शेर भी अच्छे हैं भाई, अगर वो अपनी बात है ना अभी उर्दू में तो फिर देखो क्या करेंगे। ये बता रहा हूँ मैं जमाल भाई, यार आपसे बड़ी उम्मीद है, मैसेज कर देना, वैसे उन्होंने किया है मैसेज। फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया शायरी हमें सुनाने के लिए, ताहिर भाई का भी शुक्रिया, दोनों के सेम शेर हैं और इक्वली अच्छे हैं। अपनी अपनी तरफ से आपने उसे किया है, ऑल्टर किया है, ठीक है चलता है। हाँ दोनों ने अपने अपने डिफेंस तैयार किए हैं, वेरी गुड, तालियां भाई साहब, तालियां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।
1: कहानी का
0: वक्त शुरू होने वाला है, बस शुरू करें फौरन, आज कहानी भी बढ़िया है, ठीक है भाई, ख्याल रखे भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक दो मैसेज आए हैं, इश्तियाक उस्मानी भाई कहते हैं, कबीर भाई हद हो गई यार, मैंने आपका प्रोग्राम सुनने के चक्कर में दिमाग को लगता है होल्ड पे डाल देता हूँ, पिछले 5 मिनट से कार की चाबी ढूंढ रहा हूँ और चाबी मिली मेरे हाथ की उंगली में, हद हो गई भाई। इतने से चाबी ढूंढ रहे हैं और हाथ में चाबी है इनके। इश्तियाक उस्मानी भाई यही है हमारे शोका जद चल गई। इरफान मैंने मैसेज किया है कि लिखते हैं, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना कबीर, मैं घर आऊं तो आटे को अच्छे से, आटे को अच्छे से गूंद लेना। आगे लिखते हैं, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्यास काटते वक्त नदीम बिल्कुल रोना नहीं। अरे वाह, लिखते हैं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पका लो सलीम, आलू अभी कच्चा है। आगे लिखते हैं, मिलकर फिर खुशियों को बनता है, है? मिलकर फिर खुशियों को बनाता है मांस टमाटर बारी क्यों काटा है। अरे भाई साहब। आगे भी है, कैसी लगी हमारी गजल बता देना, प्रिंस नमक कम लगे तो मिला देना। और लास्ट लाइन है, तलहा तुम्हारी अदा दिल को भा गई, पड़ोसन जल्दी घर जाओ मेरी बीवी घर आ गई। अरे भैया। तो बहुत डेंजर था। अरे यार एक और भाई। इरफान भाई लूट लिया भाई आपने, समा लूट लिया भाई, सबको लपेट लिया उन्होंने अपनी शायरी में। और प्रिंस भाई आई होप यू हर्ड दिस, लिखते हैं, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। आई अग्री 10,000% प्रिंस भाई, वो भाई जो अलार्म बंद करके जो नींद आती है ना, और भाई साहब ऐसा लगा कि दोपहर में दाल चावल खा लिए। यासिन उल्ला भाई कहते हैं, गुड मॉर्निंग ढाका वाला कबीर। ये कल वो छोड़ के गए ना हमारे, बताऊँ उन्हें मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हैं, लॉट ऑफ पर्सन वुड हैव स्विच्ड स्टार्टेड इरशाद हुसैन सा। एक मैसेज है, कबीर भाई ये कहानी का डिस्क्लेमर इंश्योरेंस कंपनी से लाए हो, और इसकी क्या कहानी का डिस्क्लेमर देना पड़ता है, और इसकी क्या कहानी है कि डिस्क्लेमर देना पड़ता है। फैजान भाई डिस्क्लेमर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपने देखा होगा कई मरतबा लोग मुझसे आके रेडियो पे भिड़ चुके हैं। समझ रहे हैं आप, तो आज की दुनिया में फैजान भाई लोग अपने लिए बुरा नहीं फील करते, किसी और की भी हाफ भी बुरा मान जाते हैं, सॉफ्टी दुनिया है, तो उसके लिए डिस्क्लेमर देना पड़ता है भाई, ताकि मैं कम से कम मेरा जो गार्ड है, मेरा जो डिफेंस है वो तैयार रहे भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट बिकॉज यू नेवर नो। आप तो जानते ही हैं, मेरी आवाज़ सुनते कुछ लोगों को लगता है अभी मैं लड़ूंगा इससे जाके, अभी मैं लड़ूंगा। हाँ स्नोफ्लिक्स, एग्जैक्टली माई पॉइंट। इरफान अली भाई वालेकुम अस्सलाम, छोटे इरफान। ये छोटे इरफान बड़े इरफान चल रहा है यहाँ पे। एक मैसेज नदीम भाई का, ये तला भाई के साथ पड़ोसन क्यों मिला दिए। नदीम भाई ये चाल है इरफान भाई की, ये चाल है इनकी। और इरफान भाई बहुत बढ़िया था, नसीम भाई भी कह रहे हैं बहुत शानदार था। कॉल क्यों नहीं, जमाल शेख साहब अभी कॉल लगेगी नहीं क्योंकि कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं आपको कॉल लगाऊंगा इसके बाद। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर मेरा भाई, कबीरुल इस्लाम भाई, सब खैरियत है भाई। ये कबीरुल इस्लाम मुझे पता है कहाँ से आया है। लिखते हैं, मेरी सांसों में जो समाया بہت لگتا ہے، وہی شخص مجھے پیارا بھی بہت لگتا ہے۔

0: है, उनसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है मगर आने जाने में किराया बहुत लगता है। ये हर दिल्ली वाले की कहानी है जिसका रिश्ता गाज़ियाबाद में हुआ हो भाई। जितने भी मेन दिल्ली वाले हैं ना, आप मैप पे देख लेना, अगर कोई सेंट्रल दिल्ली का है और उसका रिश्ता लग गया गाज़ियाबाद में तो भाई मामला ख़त्म है भाई मामला ख़त्म है या तो फरीदाबाद जाना पड़ गया तो हो गया काम भाई एक वैसे भाई हमारी वॉइस ऐसी है सबको लगता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं। करेक्ट, एक हुटर बजाने के लिए शाहनवाज भाई। एक्चुअली पता क्या है, ये समझा भी नहीं पाएंगे हम, समझ रहे हो, इनको लगता है भाई ये तो लड़ते ही हैं दिल्ली वाले तो भाई होते ही ऐसे क्या करें, कांट हेल्प इट ब्रो, और हम चेंज हो नहीं सकते। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, कोई एथिया कोई जैथिया महफिल दा रंग वही आ, सखी से नवाजिश जारी है लेकिन मेहमान बदलते रहते हैं, बहुत ही गहराई में आप चले गए, ये मैं समझ गया। एक मैसेज है जैस भाई, कहते हैं अरे भाई आज नंबर बिजी डाल दे, नहीं बिजी मैंने डाला नहीं है भाई, बिजी चल रहा है। एक मैसेज और है अनीस भाई का, भाई आज ऑफिस में बहुत काम है, सबको इतला कर दूं निकल जाएं, गराफा पे बहुत जाम है। अरे वाह, ये भी शायरी में बताया भाई, वाह वाह अनीस भाई, अनीस भाई कह रहे हैं आज ऑफिस में बहुत काम है, सबको इतला कर दूं निकल जाएं, गराफा पे बहुत जाम है। आई काइंड ऑफ अग्री, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और इरफान भाई कहते हैं बटोरे ख़ास सब मज़लूम शोहर के लिए, अब बीवी लानी है मुझे छांट कर, रख सको जिसे मैं सुनिए इरफान भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब बीवी लानी है मुझे छांट कर, रख सकूं जिसे मैं डांट कर। बेटे ये सिर्फ किताबी बातें हैं इरफान, बच्चे ये किताबी बातें हैं खाम खाएँ। एक मैसेज, वाह इरफान भाई, ये इरफान भाई आपके लिए मैसेज आया, ये एहसन कमाल साहब कह रहे हैं वाह इरफान भाई शेर तो बढ़िया है लेकिन भाई नंबर प्लेट भाई बहुत बुरी एहसन भाई मैं बोलूँगा नहीं, पता इनकी नंबर प्लेट पे दो दिन बोला है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई भाई मैं तो चुप हो गया जब से। इरफान भाई का नंबर प्लेट बहुत प्रीमियम है आज से। मुमताज़ भाई कहते हैं मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें भाई कुछ माफ़ करेंगे इतना झूठ। मुमताज़ भाई सीरियस शेर नहीं पढ़ना था इस पे, मेरे लिए मेरे पास एक हूटर है आपके लिए। एक मैसेज है इरफान भाई कह रहे हैं ऐसी नहीं मिलती भाई ने पूरा एकदम कूद के मैसेज किया सुरेश भाई ने, अरे इरफान भाई सुनो ऐसी बहकी बहकी बातें मत क्या करो। एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, अजाज भाई लिखते हैं ना ताज चाहिए न तख्त चाहिए, बस घर में थोड़ा सा सुकून चाहिए, बीवी अगर पूछ ले मेरी कोई गलती है क्या तो जनाब बस चुप रहना चाहिए। इरफान भाई समझ गए ये क्या किया, एकदम सही बात कही है इन्होंने अजाज भाई ने। ओके तो बहुत मज़े कर लिए भाई, अब ज़रा कहानी की तरफ बढ़ेंगे जो आज की कहानी है। क्या मैसेज है इरफान भाई, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट तो क्या छांट ना सके ये बीवी कहाँ से छांटेंगे अरे रे रे रे रे। और असलान भट्ट भाई ने जो लिखा है वो मैं आधा पढ़ पाऊँगा, कहते हैं अर्ज़ किया है टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, टिंडे मीठे हम नहीं खाते हम हैं देसी आरे अरसलान भाई जो आपने बोला है मैं जानता हूँ आपने क्या बोला, सर मैं जानता हूँ और बहुत प्यार भाई इस चीज़ के लिए, ये ऐसे भाई लोग चाहिए जो बिड़ जाएं किसी से भी। अरसलान भाई बहुत सारा प्यार भाई। और एक सुभाष भाई लिखते हैं चेहरा तेरा बड़ा प्यारा लगता है दिल को भी तू हमारा लगता है, लेकिन जब तू ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं करती तो वाईफाई भी बेचारा लगता है, ये वाईफाई बेचारा नहीं है बेटे, ये क्या करूँ नाम से पहले आर्ज है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा समझ रहे हो ना सुभाष मेरे दोस्त। अब जो है मैं एक गाना चलाऊँगा और गाने के बाद है क्या गुलशीर अहमद साहब लिखते हैं हफ्ते भर की थकान को भूल जाने दो, ये वीकेंड है ज़रा दिल को मुस्कुराने दो, चाय की चुस्की दोस्तों की बातें ऐसे ही गुजरें वीकेंड की रातें। अभी कोई आ जाएगा भाई, आप ज़्यादा मज़े मत लें, अभी मज़े लेने पे भी आ जाएंगे, ये हंस रहा था आप रेडियो भाई। एक मैसेज मैं लास्ट पढ़ता हूँ, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, कबीर भाई लाखों में एक, जज़ाकअल्लाह उमर शहजाद साहब आपको बहुत सारा प्यार। आप ज़रा मैं कहानी की तरफ बढ़ाऊँ, सो आज की स्टोरी इज़ ऑफकोर्स मैंने शुरुआत में बता दी थी जहाज़ की है भाई, आज एविएशन स्टोरी है एंड यू विल
1: लव इट. एक मैसेज नहीं नहीं है क्या पढ़ना पड़ेगा भाई अरसलान भाई यही तो नहीं हो सकता. चलो पढ़ देता हूँ. लेते हैं अर्ज किया है मेरी जी आलिफ टंडे. मीठे हम नहीं खाते हम हैं देसी. देखो मैंने पढ़ दिया तेज जॉक जॉक कर गया मैं वर्ड्स पर एकदम. एक मुझसे रह गया मैसेज पढ़ता हूँ. शुएब मंसूर साहब का लिखते हैं और भी है? और भी कई चीज़ें लुट चुकी हैं दिल के साथ ये बताया दोस्तों ने इश्क फरमाने के बाद. इसीलिए कमरे की एक एक चीज़ चेक करता हूँ एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद. ये तो बॉनी एंड क्लाइड वाला रिश्ता लग रहा है भाई. ओके तो मिलते हैं गाने के बाद एंड देन द एविएशन स्टोरी विल बिगिन. जो मैसेज नहीं पढ़े पढ़ दूंगा डोंट वरी. मेरे को जज नहीं करना ठीक है. हाँ कि ये तो पढ़ता ही नहीं है पढ़ता ही नहीं है बाजरे दा सित्ता. दीप काजी के संगीत पे रश्मित कौर हरिका. इसके बाद सीधा कहानी लाइव सुन रहे तो मैसेज कर दीजिएगा.

लेट्स गो। तो भाई जी बात सारी ऐसी है कि अभी एक जो है मैं आपको क्या चाय पीजिए भाई जी, थैंक यू सो मच भाई जी। अभी मैं कुछ मैसेज नहीं पढ़ पाया हूँ, कॉल भी नहीं उठा पाया हूँ, आई टोटली गेट इट। थोड़ी नाराजगी होगी आपके दिल में, अब प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नाराज़ नहीं होना भाई। मैं भी मतलब थोड़ा सा आज बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मेरे को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं अब आज के किस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो एज आई मैंशनड अर्लियर, आज के किस्से को जब आप सुनेंगे सो जस्ट बी विद मी इन द फ्लाइट, है ना, बी इन द फ्लाइट, बिकॉज ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने आप को जहाज़ में महसूस करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट डू दैट नहीं, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, वो वाला सीन हो जाएगा। सो जस्ट बी विद मी इन द स्टोरी, ओके। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसे मैंने कहा कि डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। तो इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड बहुत कमाल का किस्सा है। सो थ्रू आउट द स्टोरी जस्ट बी विद मी एंड इन द प्लेन इटसेल्फ। चलो कहानी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे शुरू करने के लिए मुझे बहुत साल पीछे ले जाना होगा आपको, जब जहाज एयरलाइंस एयरक्राफ्ट हर तरीके से सब कुछ अलग था आज के मुकाबले। तो जरा ले चलते हैं आपको 1978 में, अगस्त की 19 तारीख थी, जगह एथेंस ग्रीस, दोपहर के 1 बजे के आसपास। इस वक्त 400 पैसेंजर्स जो थे वो तैयारी कर रहे थे, रेडी हो रहे थे बोर्ड करने के लिए बोइंग 747। सफर बहुत सिंपल था येट थोड़ा सा लंबा था। ये सफर था एथेंस ग्रीस से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक, यानी यूएस तक, और मोस्टली इस जहाज में यूएस टूरिस्ट थे जो कि ट्रिप खत्म करके अपने अपने घर को लौट रहे थे। ये जो फ्लाइट थी ये थी ओलंपिक एयरवेज फ्लाइट 411 और जहाज का नाम था ओलंपिक ज्यूस। ये नेशनल एयरलाइंस जो वहाँ की थी उस टाइम पे, उन जहाज़ों की शान था ये जहाज, शान और शौकत। 5 साल पुराना था बस, और दो जंबो जेट इस एयरलाइंस के पास, उनमें से एक ये था जो उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था। और ये जहाज तभी इस्तेमाल होता था जहां जब डेस्टिनेशन बहुत मुश्किल हो पहुंचना या फिर लंबा सफर हो, तो देन ये जंबो जेट निकाला जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रीमियम जहाज होगा जिसमें ये सब अभी ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं। ये सफर 11 घंटे का सफर था और ये समझ लीजिए कि इसमें क्रू भी भर भर के भेजे गए थे, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू मैनेज एवरीथिंग। तो सबसे पहले जो कैप्टन साहब थे कॉकपिट में वो थे 55 साल के, इनका नाम था सेफिस मेगाडिस। कैप्टन मेगाडिस जो थे, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग करियर था। अर्ली 40s में ये ग्रीस की तरफ से लड़े थे और जर्मन्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी करी थी, तो उस लिहाज से भी बहुत एक्सपीरियंस थे। और सब कुछ ख़त्म होते होते इन्होंने रॉयल हेलेनिक एयरफोर्स भी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद फिर ये सिविल एविएशन में आ गए थे। तो इन्होंने बहुत जहाज़ उड़ाया अपनी ज़िंदगी भर, इन्होंने मेजरली यही काम किया। और बहुत बड़ी बात कैप्टन मेगाडिस की कि दुनिया का, माइंड यू, दुनिया का सबसे पहला पैसेंजर जेट भी इन्होंने उड़ाया, जिसे कहा जाता था दे हैवलैंड कॉमेट, तो वो भी इन्होंने उड़ाया। और 1973 से, मतलब पिछले 5 सालों से ये जहाज जब आया था तब से कैप्टन मेगाडिस ये जहाज को उड़ाते आए हैं, और उसके बाद इन्हें इंस्ट्रक्टर भी बनाया गया कि भैया कैसे उड़ाते हैं, बाकियों को सिखा दो। तो आप समझ ही होंगे कि एक्सपीरियंस कैप्टन साहब का कितना भारी है। ही हैड मोर देन 15,000 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एविएशन के बारे में जरा सा भी जानते तो आप समझ पा रहे होंगे कि 15,000 घंटे फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस क्या होता है। इट्स अ लॉट, मैं इतना बता सकता हूं आपको। तो इनके साथ एक और कैप्टन थे क्योंकि जहाज लंबे सफर पे निकल रहा था, तो दूसरे कैप्टन का नाम था कॉन्स्टेंटिनोस विकार्डोस, और उनके साथ जो कि बेसिकली फर्स्ट ऑफिसर भी थे, और इन दोनों के साथ और भी लोग कॉकपिट में बिठाए गए थे। दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस था बाय द वे, तो फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन साहब दोनों की दोस्ती भी बड़ी गहरी थी और दोनों
काफ़ी साथ में फ्लाइट्स उड़ा चुके थे, तो वेरी गुड हेल्दी रिलेशनशिप। इन दोनों की सीट के पीछे, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे, एक फ्लाइट इंजीनियर साहब थे जिनका नाम था डी मैकेलिडिस, और इनका काम भी बहुत ज़रूरी था। फ्लाइट क्योंकि लंबी है, एक रिलीफ कैप्टन भी बिठाया गया है, एक रिलीफ इंजीनियर भी बिठाया गया, तो प्लान बड़ा सिंपल है, रेस्ट कर लेंगे बीच में, ठीक है भाई, आधे रास्ते तो उड़ा लो, आधे रास्ते हम उड़ा लेंगे, वेरी सिंपल देसी भाषा में। तो पैसेंजर्स पीछे कैबिन में सारे सेटल डाउन हो रहे थे, और ये जहाज क्योंकि जंबो जेट था, 11 घंटे का सफर है, तो 120 टन फ्यूल इसमें भरा गया, देसी भाषा में 120 टन तेल डाला गया कि जहाज उड़ सके, समझ रहे हैं, बहुत होता है 120 टन। इन्हें 8000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना है वेस्ट की तरफ से निकल के, पूरा यूरोप क्रॉस करना है एंड अटलांटिक ओशन के ऊपर से जाना है। इसमें बैगेज लोड भी है, वो भर दिया गया सब, एंड फ्लाइट 411 रेडी टू गो हो गई। 1:30 बज रहे थे तकरीबन दोपहर के, चारों इंजन चालू किए गए, कैप्टन साहब ने टैक्सिंग करना शुरू किया टुवर्ड्स रनवे 33 राइट। अब उन्होंने फ्लैप्स को, जो जहाज के अंदर फंक्शन होता है फ्लैप्स को, 20 डिग्रीज पे किया क्योंकि इतने लगते हैं उड़ान भरने के लिए। उसके बाद चेकलिस्ट देखने लगे क्या है क्या नहीं है, मौसम कैसा है, सब कुछ उन्होंने रीडिंग करी, और जहाज जो था अब वो टैक्सिंग आउट करा था रनवे की तरफ। एक्सपीरियंस्ड पायलट्स का होना एथेंस उड़ाने में, एथेंस से जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से उड़ान भरना और निकल पाना आसान नहीं है। आज तो बहुत अलग सीन है, लेकिन उस ज़माने में चाहिए था कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हो, तभी ये काम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एयरपोर्ट कैसा है, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है इस कहानी के लिए। सो एयरपोर्ट कैसा, एक बेसन की तरह है, मतलब यूँ समझ लीजिए पूरा शहर तो इर्द गिर्द है ना, वो पहाड़ पहाड़ पहाड़ पहाड़ और एकदम बीच में एयरपोर्ट है, समझ गए, सारी जगह पे साइडों से पहाड़ है, एक जगह एक साइड छोड़ के जहां से जहाज को निकलना है बाकी सब पहाड़ है, और ये बिल्कुल बीच में है, शहर की बिल्कुल गोद में एयरपोर्ट है। तो रनवे 33 राइट से उड़ान भरने वाले जो ये जहाज था फ्लाइट 411, ये उस तरफ बढ़ रहा था, और ये जानते थे पायलट साहब कि एक हल्की सी भी गलती हुई जहाज को मोड़ने में, जब ये हवा में होगा तो दिक्कत हो सकती है, पर इन्हें सामने जाना है, सामने एक पहाड़ से लेफ्ट लेना है और समुद्र के ऊपर से जाना है, दिस इज द थिंग ही नीड्स टू डू। अब ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन ये आसान है नहीं, ये सिर्फ ऑन पेपर कह देना आसान है। मुश्किल क्या है, ये जो फ्लाइट थी 411 ये बहुत बहुत हैवी थी, फुली लोडेड, 400 तो पैसेंजर्स थे, फिर उनका बैगेज, फिर फ्यूल टैंक जो इतना ज्यादा भरा हुआ था, तो जो टोटल वजन था जहाज का जो अभी रनवे पर था, टोटल वजन था 350,000 किलो। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, है ना, मैं भी नहीं इमेजिन कर सकता 350,000 किलो कितना हो सकता है, पर यूं समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम अलाउड था जहाज के उड़ने के लिए वो कितना है, 351,000 351,000 अलाउड है, ये मैक्सिमम है, और जहाज कितना है 350,000, तो 99.6% तो भरा हुआ है जहाज, लिमिट के एकदम करीब है। जैसे होता है ना, कहा जाता है कि भाई आपका बैगेज 30 kg अलाउड है, तो लोग बिल्कुल 29 kg ले जाते हैं या 30 kg ले जाते हैं, बिल्कुल ब्रिम तक भरा हुआ ये जहाज था। अब इतना भरा हुआ जहाज है तो उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए जहाज को बहुत पावर चाहिए टेक ऑफ के लिए। मसला लेकिन एक था कि इंजन तो चलो 4 हैं, ठीक है, मगर एक इंजन थोड़ा सा फॉल्टी था जिसका इल्म पूरी तरह से नहीं था, इन्हें लगा कि वो काम कर जाएगा। तो 4 इंजन में से जो सेकंड इंजन था विंग के नीचे वाला, वो 95% थ्रस्ट पावर पे था, तो बेसिकली बाकी 100% पावर दे रहे हैं, इसकी पावर है 95%। अब ज़्यादा फर्क यूजुअली पड़ता नहीं है इस चीज़ से, लेकिन मौसम थोड़ा गर्म था और जहाज था लोडेड, इसलिए पावर तो चाहिए। रनवे आया सामने, जहाज रनवे पे दौड़ने लगा। ये जो रनवे था ये 3.4 किलोमीटर लंबा समझ लीजिए, और तपती हुई गर्मी, मतलब पूरा जो कारपेट रनवे का वो
भट्टी जैसा हो रहा है बिल्कुल। इस मौसम और कंडीशन में उड़ान लेना और वो भी एक फॉल्टी इंजन के साथ इज नॉट ईजी एट ऑल। पर इस वाले जहाज में एक खासियत थी, एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस जहाज में एक फंक्शन था अंदर, वाटर इंजेक्शन सिस्टम। समझाता हूं देसी भाषा में, डोंट वरी। ये यूनिक सिस्टम कैसे, बेसिकली जहाज के जो पर थे लेफ्ट राइट, आप यू समझ लीजिए आप जहाज को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, आप जो जहाज के पर हैं इसमें टैंक्स लगे होते हैं पानी के, 2000 लीटर उसमें भरा होता है पानी। इस पानी का मकसद क्या है ये भी बता देता हूं। पहले ये जान लीजिए कि क्या हुआ रनवे पे दौड़ते हुए। कैप्टन को मिला क्लियरेंस, उन्होंने ब्रेक्स रिलीज किए, थ्रॉटल को आगे पुश किया और उसके बाद इंजन चारों के चारों जाग गए, एक्सेलरेशन और उसके बाद वॉल्व्स खुले। अब ये जो पानी है 2000 लीटर, ये ऑन करने के बाद पूरी खिंच के ये पानी जाता है इंजन्स की तरफ। अब आप कहेंगे यार ये कितनी बेतुकी बात है, मतलब इंजन में फ्यूल होता है वहां पानी, ये अजीब बात नहीं है। पर देखिए उस टाइम इनका काम होता था बहुत, ये थ्रस्ट पावर बढ़ाते थे, मतलब समझ लीजिए इंजन खुले पावर निकल रही है उसमें से, उस पावर को और बढ़ाने के लिए ये पानी उस तरह मूव किया जाता था ताकि इंजन भी कूल रहे और फुल पावर दे सके, कूल रहेगा तो, और साथ साथ जो पीछे की तरफ वजन चाहिए ऊपर उड़ने के लिए वो पानी के इस जरा से ब्लास्ट से बढ़ जाता है। तो ये कुल इसकी जरूरत पड़ती थी 1978 के लिहाज से। तो जहाज रनवे पे दौड़ रहा है, वाटर इंजेक्शन सिस्टम से 3% थ्रस्ट जहाज को मिला, कुल मिला के 2700 किलो का जो थ्रस्ट है वो चारों इंजन पे डालने की कोशिश की गई ये वाटर इंजेक्शन सिस्टम से। 3% आपको सुनने में बेहद कम लग रहा होगा, ज्यादा नहीं लग रहा होगा, मगर जैसे मैंने कहा वेदर कंडीशन के हिसाब से ये जरूरी था क्योंकि जहाज बहुत हैवी था। कुछ देर में जहाज जो था दौड़ते हुए रनवे पे, और ये नॉलेज के लिए आपके लिए, रनवे पे दौड़ रहा है जहाज और फिर वो पहुंचा डिसीजन स्पीड पे। जहाज जब रनवे पे होता है ना तो एक पॉइंट आता है उसकी स्पीड पहुंच जाती है डिसीजन स्पीड पे, जहां से मुड़ने का अब कोई टाइम नहीं है, नो टर्निंग बैक, मतलब अब ब्रेक नहीं लगा सकता जहाज। गाड़ी में क्या, आप गाड़ी में 120 की स्पीड से जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आपको लगा स्पीड बहुत ज्यादा है, आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, कैमरा आया, आपने स्पीड हल्की कर दी। पर जहाज के साथ ऐसा नहीं है, अगर रनवे पर जहाज उस स्पीड तक पहुंच गया है जिसे डिसीजन स्पीड कहते हैं तो नो टर्निंग बैक, पायलट को अब टेक ऑफ करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। रिमेंबर दिस, कुछ भी हो जाए अब टेक ऑफ करना पड़ेगा, अब ब्रेक का सिस्टम नहीं है। तो कैप्टन ने थ्रॉटल से हाथ अपने हटा लिए कि भाई पता लगा गलती से कोई टेम्पटेशन आ जाए और मैं पुल बैक कर लूं तो दिक्कत हो जाएगी, बिखर जाएगा जहाज, तो उन्होंने अपने हाथ ही हटा लिए थ्रॉटल से। कुछ देर में जहाज पहुंच गया रोटेशन स्पीड पे, बताता हूं इसका मतलब भी क्या है, मतलब कि अब जो है नोज जहाज की ऊपर करने का वक्त आ गया है। तो कैप्टन मैकगैडिस ने कंट्रोल कॉलम को खींचा और जहाज की जो नोज है बिल्कुल आगे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर होने लगा, पर जहाज के आगे का हिस्सा जैसे ही जरा सा ऊपर हुआ एकदम से आवाज आई भम, और वो जो आवाज थी वो इतना शेक कर गई जहाज को, ये पूरा जहाज कांप गया, पूरा एयरक्राफ्ट हिल गया। हुआ दरअसल ये कि इंजन 3 जो था, मतलब राइट हैंड वाले विंग के नीचे वाला, वो एक्सप्लोड कर गया, फट गया लिटरली, और उसके जो टुकड़े थे वो अब शोर मचाते हुए गिर रहे थे पूरे रनवे पे। जस्ट इमेजिन जो लोग रनवे पे काम कर रहे होंगे उस वक्त उनको क्या नजर आ रहा होगा, पर कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा वो स्पीड पे आ चुके हैं जहां पे कुछ नहीं किया जा सकता, यू हैव टू टेक ऑफ। और फिर कैप्टन को पता था ही नीड्स टू टेक अ डिसीजन। नोज जहाज की ऊपर ही थी मगर अभी भी जहाज के जो पहिए थे, जो व्हील से जो मेन गियर था, वो रनवे से चिपक के चल रहा था और जहाज ऊपर जाने को तैयार ही नहीं था। बड़े अजीब तरीके से, जैसे व्हीली मारते हैं बाइक से, बिल्कुल वैसे ही जहाज रनवे पर भाग रहा था। पर फाइनली मेन गियर जो जहाज का है, जो दो पहिए, जो पहिए बेसिकली जमीन को छू रहे थे, वो जहाज के अंदर हुए, उठे उस पे से, और व्हील्स का वजन
जो व्हील्स पूरे जहाज का वजन संभाल रहे थे, अब जहाज का पूरा भार, पूरा वजन उसके पंखों पे आ चुका था, विंग्स पे आ चुका था। ये जहाज जो था भारी होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उठा था जमीन से, बस यूं समझ लीजिए कि लंगड़ाता हुआ जहाज था ये, बहुत मुश्किल से हवा में आया था। I'll give you an example, जैसे पतंगा उड़ाते हैं कई मरतबा उम्मीद के हिसाब से नहीं उड़ती है, बट आपके पास ट्रायल होते हैं बहुत सारे करने के ना, बार बार कि कन्नी बांध के उड़ा दिया, यू हैव ऑप्शंस, यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन, पर जहाज अगर इस कंडीशन में हो तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो अब हवा में तो आ गया है पर वो और ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, जरा सा ऊपर उठाइए, ये इतना कम ऊपर था जमीन से कि जो एयरपोर्ट का पैरामीटर था जहां पे एयरपोर्ट एंड होता है उसका फेंसिंग की जाती है, उस फेंस के कुछ ही मीटर के ऊपर से जहाज बस जरा सा निकला है, वो बहुत करीब से। पर कैप्टन को इतनी फिक्र उस टाइम हो नहीं रही थी क्योंकि बोइंग 747 इस काबिल है कि अगर एक इंजन नहीं भी रहा तो संभाला जा सकता है, मगर फिर इंजन के एक्सप्लोड होने के 7 सेकंड के बाद फ्लाइट इंजीनियर ने नोटिस करा कि वाटर इंजेक्शन सिस्टम उसकी लाइट्स बंद हो गई हैं। तो बेसिकली ऐसा तब होता है जब वाटर सप्लाई या तो पूरी की पूरी बंद हो जाए या टैंक्स पूरे के पूरे खाली हो जाए, और फ्लाइट इंजीनियर साहब ने ये वाटर पंप सिस्टम बंद कर दिया। अच्छा, उन्हें उस वक्त ये पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि अभी भी टैंक्स में पानी बचा है, और ये जरूरी था बाकी 3 इंजन्स को पुश करने के लिए और पावर देने के लिए, मगर उन्हें लगा कि खाली हो चुका है, उन्होंने पावर बंद कर दी। अब इसका असर फौरन दिखा, तीनों इंजन अब बगैर किसी बूस्ट के थे, बगैर किसी एक्स्ट्रा पावर के, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया इनमें से इंजन नंबर 2 पहले ही फुल पावर नहीं दे रहा था, वो 95% पे था, एक्स्ट्रा पावर जिससे वो उड़ रहा था वो पावर अब जा चुकी थी। हुआ क्या कि जहाज तो हवा में है मगर उसकी स्पीड धीरे धीरे जा रही है, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है, और कुछ सेकंड्स के बाद जहाज बिल्कुल राजी नहीं था और ऊपर उड़ान भरने के लिए। पायलट्स थोड़े कंफ्यूज थे पहले तो कि ये जो फ्लाइट इंजीनियर है इसने वाटर सप्लाई क्यों बंद कर दी, मतलब समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कुछ लॉजिक होगा इसकी वजह से इसने बंद कर दी, हो सकता है कुछ सोच रहा हो, मगर थ्रस्ट तो कम हो गया, पावर तो कम हो गई। कैप्टन मैकडिज जो थे वो सोचने लगे क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना है विद इन सेकेंड्स, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्पीड नहीं बढ़ी इस जहाज की तो दिक्कत हो जाएगी, आगे डाउनटाउन एथेंस है और धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ। वो समझ गए थे कि थ्रस्ट नहीं है तो ड्रैग कम करना पड़ेगा। ड्रैग बेसिकली क्या होता है, तो जहाज को नीचे धरती की तरफ खींचता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसकी वजह से वो खींचता है नीचे की तरफ, उनमें से एक होता है लैंडिंग गियर, जो जहाज के नीचे हम देखें जो पहिए होते हैं वो लैंडिंग गियर है उसके, तो वो नीचे खींचते हैं उसको, तो उनको इसीलिए जहाज के अंदर किया जाता है। पर मसला जानते हैं क्या था, ये जहाज बहुत नीचे उड़ रहा था, होगा क्या कि अगर वो बटन दबाएंगे कि गियर अंदर की तरफ चला जाए तो उसके लिए एक डोर खुलेगा, 2 डोर्स खुलते हैं ना जहाज के नीचे से, वो डोर खुलेंगे उसके बाद वो गियर अंदर जाएगा और इतने सेकंड में और ज्यादा ड्रैग आ जाएगा जहाज में, तो वो और भारी सा हो जाएगा, और ये सेकंड का रिस्क जो है बहुत छोटा मार्जिन है, मगर उन्हें पता था कैप्टन को कि ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को देखा, बोला आर यू श्योर, बोला यस, रेज द गियर, उन्होंने गियर को बटन दबाया, गियर का डोर्स खुले नीचे से, ड्रैग बड़ा जहाज का, जहाज और नीचे आया और क्लाइम उसकी कम हुई लेकिन गियर अंदर चले गए। सामने नजर आ रही थी उन्हें एक हिल, एक पहाड़ी, पानी हिल के नाम से, 200 फीट की ऊंचाई पे ये जो हिल थी, दिस वॉज इन द रीजन ऑफ एलामोस, और मैकडिज जानते थे कि अभी जहाज को अगर ऊपर नहीं किया तो बेहद खराब हो सकता है मामला। उन्होंने बहुत कोशिश करी जहाज को
कि रफ्तार इसकी बढ़ जाए कैसे ना कैसे ऊपर जा पाए, लेकिन जहाज 200 फीट से भी नीचे की हाइट पे था इस वक्त, बहुत कम है ये किसी भी जहाज के लिए, एंड रफ्तार जो थी जहाज की वो कम होती चली जा रही थी। उन्हें दरअसल इसी हिल के सामने से लेफ्ट मारना था समुद्र के ऊपर ताकि वो निकल जाएं, एक ही एग्जिट है निकलने की। अब आप कहेंगे सिंपल है ना, लेफ्ट कर लेते जहाज को, निकल जाते। बट अगेन रिमेंबर, ये कोई गाड़ी नहीं है, आप एकदम से लेफ्ट नहीं मार सकते। कैप्टन मैगेडिस को पता था ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्होंने लेफ्ट लिया जहाज को तो जो सेंटर की पावर है ना, जिसकी वजह से जहाज थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस हैं, वो कट जाएंगे, वो डिवाइड होके लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे, और लेफ्ट लिया तो जो सेंटर में वो सब कुछ साइड में हो जाएगा, तो वो मार्जिन जो उम्मीद है जहाज के ऊपर चढ़ने की वो और कम हो जाएगी, और अभी ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। जहाज उड़ रहा था, सामने ये पहाड़ी करीब आ रही थी, कैप्टन मैगेडिस एडजस्ट कर रहे थे कंट्रोल्स को, क्योंकि वो जानते थे अगर ज्यादा जल्दबाजी करी अभी उन्होंने सिस्टम्स के साथ तो जहाज स्टॉल कर जाएगा। तो बेसिकली क्या है, सामने हिल आ रही है, पहाड़ी आ रही है, जहाज उड़ रहा है, और कैप्टन जानते हैं अगर उन्होंने एकदम से एक झटके से जहाज को हिल के ऊपर ले जाने की कोशिश करी तो जहाज की स्पीड बिल्कुल गिर जाएगी और जहाज स्टॉल कर जाएगा। स्टॉल मतलब जीरो स्पीड और सीधा नीचे, और अगर कम की स्पीड वो कुछ नहीं किया तो पहाड़ी से टकरा जाएगा। कैप्टन ने धीरे धीरे कैलकुलेशन के साथ धीरे धीरे स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करके जहाज को थोड़ा सा ऊपर किया, और बेहद करीबी मामला रहा, पहाड़ी के ठीक ऊपर से ये जहाज गुजरा है। कितने फीट से बचे जानते हैं ये लोग? बचे 9 फीट से, महज 9 फीट से, बहुत कम है एक जहाज के लिए। तो 200 फीट का तो ये पहाड़ी थी और 209 फीट की हाइट पे से जहाज गुजरा था। इट वॉज क्रेजी, मगर कैप्टन ये कर पाए। कैप्टन को ऑब्वियसली स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हिल क्रॉस करने के लिए, मगर और कोई चारा भी नहीं था। वो जानते थे कि एयरक्राफ्ट अभी स्टॉल होने के बहुत करीब है, मतलब स्पीड जा रही है, और क्या करें। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मगर कैप्टन मैगेडिस ने फिर सोचा कि एक चीज है बस स्पीड के लिए, एक और कोशिश की जा सकती है, वो ये कि उन्हें जहाज को थोड़ा सा नीचे डिप करना पड़ेगा। अब देखें फ्लो कैसे आता है। सो जहाज उड़ रहा है, जहाज को स्पीड चाहिए, ऊपर करने के कोई फायदा नहीं, जहाज ऊपर उड़ान नहीं भर पा रहा है। अब जहाज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर नीचे जाके एक्सेलरेट करेंगे और फिर जहाज को वापस ऊपर ले आएंगे। ये जो मैन्यूवर है ये बड़ा अजीब है, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। ये जब मैंने भी पहली मरतबा पढ़ा तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि जहाज सीधा जा रहा है, स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा नीचे डिप किया, फिर एकदम से स्पीड बढ़ा के सीधा ऊपर खींच लिया। इट्स नॉट ईजी, ये सिर्फ कहना बहुत आसान है, पर वो ये भी जानते थे कि ऐसा करना इसलिए भी मुश्किल है कि आगे एथेंस सिटी है, पूरे का पूरा शहर है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, पर चॉइस ही नहीं है ना, क्या करें। कैप्टन मैगेडिस ने कंट्रोल कॉलम उसे संभाला, थोड़ा रिलैक्स हुए और जहाज को थोड़ा सा नीचे किया। फ्लाइट 411 धीरे से नीचे जाने लगी। अब कैप्टन को लगा कि अब यही रास्ता है। सबके सब डरे हुए थे, नोबडी वॉज टॉकिंग, क्योंकि अभी कैप्टन के हाथों में सब कुछ है। अब जो पैसेंजर्स थे उनको तो लग ही नहीं रहा था कुछ हुआ है, दे थॉट सब कंट्रोल में, ये कैप्टन साहब हमें एथेंस घुमा रहे हैं, करीब से सब कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वर लिटरली नियर टू देयर आईज, दे कुड सी एवरीथिंग। कुछ मीटरों का ही फासला था बिल्डिंगों से, टेम्परेचर इस वक्त 32 डिग्री था, और पायलट्स उम्मीद करते हैं कि ऐसी कंडीशन में ठंडा मौसम हो, क्योंकि ठंडी हवा थोड़ी डेंस होती है, थोड़ी भारी होती है, तो जहाज के लिए बहुत फायदेमंद है ये। अब हवा जो है वह ही नहीं, एक तो गर्मी बहुत है, अब ऊपर से विंग्स पे से हवा बह ही नहीं रही है, तो ऊपर जाएगा कैसे जहाज। एक और चीज होती है, हाई टेम्परेचर जब होता है ना तो वो इंजन पे भी फर्क डालता है।
क्योंकि गर्म हवा डेंस नहीं होती, भारी नहीं होती, तो इंजन को थ्रस्ट बड़ा कम मिलता है। तो सारी कंडीशंस अभी इस जहाज के बिल्कुल खिलाफ हैं। कुछ सेकंड्स के बाद 50 फीट समझ रहे हैं, महज 50 फीट जहाज था इतनी हाइट पे, कैप्टन ने आने दिया। दिस वाज 160 फीट अबव सी लेवल, 50 फीट अब समझ रहे हैं शहर के ऊपर। जब जहाज निकला ना, एक दो एंटीना जो लोगों के छतों पे लगे हुए थे, टीवी के एंटीना जो थे, उनको बिल्कुल क्लिप करता हुआ निकला है, बिल्कुल टच करता हुआ निकला है टिप से, इतना करीब से जहाज निकला है। इमेजिन उस वक्त कोई छत पे अगर हो तो उसको क्या मंजर नजर आ रहा होगा। और जहाज अभी भी ऊपर से भारी, 120 टन तेल, क्योंकि चला ही उड़ा ही कितना है जहाज। और कैप्टन साहब जानते थे अगर ये गलती से इस वक्त क्रैश हुआ तो संभाले नहीं संभलेगी सिचुएशन और बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो शहर से दूर ले जाना पड़ेगा ये जहाज। स्पीड 165 नॉट्स और बस जहाज ऑलमोस्ट गिरने वाली कंडीशन में। मगर एक चीज, एक बहुत ही खूबसूरत चीज इस जहाज के हक में थी, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड इफेक्ट। ग्राउंड इफेक्ट समझा देता हूं कुछ देसी भाषा में। तो जो हवा है वो, मतलब यू समझ ली, ओके, जो जहाज के पर हैं, जो विंग है, ऊपर से बह रही थी, लेकिन जो हवा ऊपर से बह रही है वो टकरा रही है, क्योंकि जहाज एक तरह से जमीन के बहुत करीब है, काफी लो उड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से ड्रैग कम हो रहा है, क्योंकि हवा के पास बहने के लिए कुछ है ही नहीं,

जगह ही नहीं है, जो हल्की फुल्की हवा आ भी रही है तो उसकी वजह से जहाज उड़ तो कम हाइट पे रहा है लेकिन नीचे गिर नहीं रहा है। अजीब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। अगर ग्राउंड इफेक्ट से दूर गए तो ये सीधा नीचे एकदम। अब ये जो कंडीशन है ये सिखाई भी नहीं जाती, इमरजेंसी में भी उस वक्त सिखाई नहीं गई थी, किसी को पता नहीं करना क्या, सब तो ये देख रहे हैं कि स्पीड नहीं आ रही है। कैप्टन मैकगैटिस ने सोचा कि अब जो है कुछ नहीं किया जा सकता, और उनके चेहरे पे था, फर्स्ट ऑफिसर देख पा रहे थे कि नथिंग कैन बी डन, और वो बस शहर से दूर ले जा रहे हैं जहाज को, कहीं पे क्रैश करने वाले हैं, कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पीड मिल ही नहीं रही है। हार मान चुके थे कैप्टन भी और फर्स्ट ऑफिसर भी। उन्होंने दबी आवाज में कहा कि अब हमें एक सही जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां पे हम क्रैश कर सकें। सबको लगा बोइंग 747 जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्हें लग रहा है उन्हें नजारा दिखाया जा रहा है, पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, एथेंस शहर घुमाया जा रहा है, मगर कैप्टन को सामने वो जगह दिख रही थी जहां पे उन्हें क्रैश करना है। ये जगह थी माउंट इगेलियो। उन्होंने उस तरफ ही निशाना लगा लिया था, मगर एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, एक बहुत ही अलग किस्म का मिरेकल। कॉकपिट में अंदाजा हुआ कि जब से वाटर इंजेक्शन सिस्टम बंद किया गया है जो थ्रॉटल्स होते हैं जहाज के उन्हें हाथ ही नहीं लगाया गया। कैप्टन साहब ने देखा कि इसको किसी ने टच ही नहीं किया तो थोड़ा ट्राई करते हैं, और उन थ्रॉटल्स पे नजर जब बाद में गए तो बड़े हैरान हुए क्योंकि बहुत करीब थे वो। उन्होंने कहा चलो एक लास्ट कोशिश करते हैं। उन्होंने तीनों इंजन को वापस से पावर दी। ठीक है मैक्सिमम थ्रस्ट नहीं मिला मगर इसका असर दिखा। पायलट स्पीड देख रहे थे कि काश बढ़ जाए, थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ी बढ़ जाए। 400 पैसेंजर्स आप समझ रहे हैं कुछ गड़बड़ है, पहले जो सर्विस नजर आ रही थी। मगर फिर कॉकपिट के मीटर पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी, बिल्कुल जरा सी। वेस्ट की तरफ जाते हुए जब जहाज मुड़ा इसी स्पीड में तो फिर एक और कुदरत का करिश्मा हुआ। हल्की हवा, एक लाइट ब्रीज, हेडविंड। जहाज के लिए हेडविंड बड़ी जरूरी क्योंकि वो बहती है जहाज के ऊपर से और उससे स्पीड बढ़ती है। जहाज को बनाया ही ऐसे गया है तो जो हेडविंड मिली इससे बड़ी स्पीड और बड़ी। अब इस मोमेंट कैप्टन मैकगैटिस को हिम्मत आई कि नहीं नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। और उन्हें एक और चीज याद आई जो पता नहीं कैसे किसी को याद नहीं आई, जो फ्लैप्स थे वो अभी भी 20 डिग्री पे ही थे टेक ऑफ के टाइम से। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू टेक ऑफ के टाइम से 20 डिग्री पे ही थे, किसी ने उसे छुआ ही नहीं था। डर के मारे इतना कुछ हो गया बीच में कि याद ही नहीं रहा कि फ्लैप तो हमने छुआ ही नहीं। अब हेडविंड भी आ रही है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ी। कैप्टन जानते थे अब उनके पास चांस है। उन्होंने फ्लैप्स को 20 से 10 डिग्रीज पे किया, स्पीड और बढ़ी, 165 से 170 नॉट्स पे पहुंची। कंट्रोल कॉलम को जेंटली उन्होंने और थोड़ा ऊपर किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या जहाज ऊपर जाएगा। स्पीड बढ़ी, जरा सा ऊपर हुआ। वो जानते थे अगर मैंने यहां ओवरडू कर दिया, जोश में ज्यादा थ्रॉटल ऊपर किया, कंट्रोल कॉलम खींचा जहाज ऊपर ले जाने के लिए, तो स्पीड चली जाएगी। एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, धीरे धीरे इस कॉलम को खींचना है और जहाज को ऊपर ले जाना है बहुत स्लोली। 200 फीट पर जहाज पहुंचा, स्पीड थोड़ी स्टेबल हुई। उन्होंने थोड़ी देर, कैप्टन साहब ने स्पीड को कंट्रोल किया, कैप्टन मैकगैटिस ने फिर थोड़ा सा जहाज को ऊपर किया, अगेन धीरे धीरे, और वो इंस्ट्रूमेंट्स को लगातार देख रहे थे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, गिरी नहीं, 250 फीट पे आए, कुछ देर में 300 फीट पे आए। ये अभी भी बहुत नीचे थे लेकिन ये कमाल की बात थी क्योंकि 300 फीट पे जहाज जब से उड़ा है एयरपोर्ट से आया ही नहीं था। पहली बार लग रहा था कि कुछ चांसेस हैं। क्रू जो था पूरा, उनकी सिचुएशंस बड़ी खराब थी। कैप्टन जानते थे उन्हें कुछ अभी और एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, और वो समंदर के ऊपर थे इस टाइम पे, ले आए थे जहाज को, तो उन्होंने कहा रिस्क लेता हूं मैं। उन्होंने जहाज को थोड़ा सा टेढ़ा किया कि बस बैलेंस बैठा रहे, माउंटेन को इग्नोर कर जाए वो, एंड नीचे खींचने वाली ग्रेविटी जो थी उसके साथ लड़ाई करते हुए कैप्टन मैकगैटिस ने स्पीड से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, केयरफुली लेफ्ट ले गए। उनका मिशन ये था कि बस कैसे ना कैसे ये पहाड़ी निकल जाए, बाकी मैं देख लूंगा।

बैलेंस बिठाते हुए वो समुद्र के ऊपर ले आए। ही केयरफुली टर्न्ड, स्पीड थोड़ी गई लेकिन 350 फीट पे जहाज आ गया। प्लेन को सेटल होने दिया थोड़ा सा कि चलो स्पीड थोड़ी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुअली जहाज 400 पे आया, फिर 500 फीट पे आया एंड फ्लाइट 411 माउंटेन से बच गई। पायलट्स जो थे इस जहाज के, उनकी सांसें भूल रही थी। अब जाना है वापस, बिकॉज दे हैव टू रिटर्न। अभी लैंडिंग करने के लिए जहाज का वजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब जहाज लैंड करता है तो वजन कम होना चाहिए, तेल बर्न होता है ना जहाज का, तो 100 टन से ज्यादा था, 100 टन से भी ज्यादा का फर्क आ रहा था, जबकि 256 टन होना चाहिए उतरने के लिए। तो अगर इस इतने भारी जहाज को इतने वजन पे लैंड किया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और कैप्टन जानते थे कि कुछ तो करना पड़ेगा। और उस जमाने में और आज भी, अब तो एडवांस है, एक सिस्टम होता है फ्यूल जेटिसन सिस्टम। एयरक्राफ्ट के विंग्स में परों के बिल्कुल नीचे वॉल्व्स होते हैं, जहाज पे लगे होते हैं छोटे छोटे वॉल्व्स, और उनमें पाइप्स जुड़े होते हैं अंदर की तरफ, जो नॉजल्स होती हैं वहां से तेल गिराते हैं वो समुद्र के ऊपर हल्का करने के लिए जहाज को। तो फ्लाइट इंजीनियर को कहा गया कि भैया फ्यूल जेटिसन सिस्टम ऑन कर दो और डंप करेंगे हम फ्यूल। फ्लाइट इंजीनियर ने जेटिसन पंप को ऑन कर दिया और जो तेल था जहाज से वो गिरने लगा, और बहुत स्पीड से 36 kg, 36 kg पर सेकंड, मतलब 2 टन से भी ज्यादा पर मिनट इस जहाज से वो तेल डंप कर रहे थे समुद्र के ऊपर। और पैसेंजर जो खिड़की से देख पा रहे थे उन्हें दिख रहा था सफेद सफेद जो तेल उसका केरोसिन होता है वो बिल्कुल गिरता हुआ, धीरे धीरे मिस्ट होता हुआ समुद्र के ऊपर। वजन इसका धीरे धीरे कैप्टन साहब गिरा रहे थे, रीगेन कर रहे थे स्पीड, फ्लैप्स को और उन्होंने रिट्रैक्ट किया। एक और चीज जो नोटिस नहीं करी गई थी अभी तक, वो थे थ्रस्ट लीवर्स जहाज के। तीनों इंजन को और थ्रस्ट दिया ही नहीं गया, कोशिश ही नहीं की गई थी एमरजेंसी के दौरान, तब से ऐसे ही चल रहा है मामला। पायलट ने जल्दी गिरा, थ्रॉटल्स आगे किए और अब तैयार हुए वापस एथेंस लौटने के लिए। फ्लाइट 411 अब ऊपर चढ़ने लगी, 1500 फीट। पहली बार थोड़ा ठीक लगा, प्लेन अभी भी भारी था मगर ठीक था, वाटर इंजेक्शन सिस्टम बंद था अभी भी, पर अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। कैबिन में थोड़ा बहुत कामनेस आई। कैप्टन ने फिर अनाउंस करके बता दिया उनको कि हम क्या करने वाले हैं पैसेंजर्स को भी। एथेंस में लैंडिंग की तैयारी होने लगी, अप्रोच चार्ट्स को रेडी किया गया, गो अराउंड कर चुके थे लोग, एथेंस के रनवे पर तैयारी जारी थी फुल्ली लोडेड जहाज की। 45 मिनट्स की फ्लाइट में अब फाइनली एथेंस पास आ रहा था। फ्यूल जेटिसन वॉल्व्स को बंद कर दिया गया और फ्यूल डंप कर दिया गया। 80 टन फ्यूल गिराया गया, समझते कितना वजन है ये? एक बोइंग 737 जहाज से ज्यादा वजन है जितना तेल गिराया गया। कैप्टन मैगडिस ने एयरपोर्ट की तरफ इस जहाज को किया, चैलेंज अभी भी था, थोड़ा बहुत चैलेंज अभी भी था। फ्लैप्स को और नीचे किया, रनवे 33 राइट। फ्लाइट इंजीनियर बोलने लगे, अब अनाउंस कर रहे थे हाइट को, 100 फीट, 50 फीट, ये बड़ा सा जम्बू जेट 20 फीट, 10 फीट, एंड फाइनली जहाज ने टच डाउन किया रनवे से। 400 के 400 पैसेंजर्स वर सेफ एंड साउंड, और कैप्टन की क्विक थिंकिंग के चलते और उनकी स्किल सेट की वजह से ही हो पाया। अगर उस दिन दूसरा कोई क्रू होता तो शायद कहानी कुछ और होती। आज के जहाज़ों में वाटर इंजेक्शन सिस्टम नहीं होता है, बहुत एडवांस हो चुके हैं, और अब इंजीनियर्स का काम थोड़ा दूसरा है, उन्हें अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती, सब कुछ पैनल्स में नज़र आ जाता है। एंड जहाज़ अभी मैक्सिमम लेवल पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, बट बैक इन द डे 1978 में ये प्रॉब्लम बहुत बहुत अलग किस्म की थी। This was the story. Everybody was safe. कोई इस पे केस पे कुछ नहीं हुआ. It was just an error जो गर्मी की वजह से उस वक्त हो गया था, and power भी नहीं थी तो तीसरे इंजन पे पावर ज्यादा हो गई थी. That's all. This was the story. अब आपके हवाले. 666-22107 नंबर है, 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: टाइम चाहिए 8:13 और आपको आज का किस्सा कैसा लगा प्लीज बताइएगा आई विल प्ले अ ट्रैक एंड देन आपके सारे मैसेजेस पढ़ूंगा प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस लेकिन आज वीकेंड है तो वाइब बरकरार रहेगी जन्नत 2 का मैशअप व्हाट कैन बी बेटर देन दिस ब्रो आज की सुबह आ हा हा हा 8:13 गुड मॉर्निंग अरे इमरान भाई

हाँ जी, हैप्पी वीकेंड। और बताइए, कहानी सुन ली आपने? भाई साहब, जहाज उड़ाना आसान नहीं बताऊँ, मजे आएगा मुझे सुना के। लेकिन आपको कैसी लगी कहानी, मुझे प्लीज बताइएगा। एंड

0: हाँ जी उठ जो उठ जो। वैसे तो अब आज तो जोशो खरोश से उठे होंगे सेकंड शिफ्ट वाले भी। और क्या हाल है भाटी? बढ़िया। हाँ तो जी अब जरा देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया है आज की कहानी का। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, जबरदस्त कबीर एविएशन स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट जॉनराज, आउटस्टैंडिंग नरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पैसेंजर्स बच गए, वो मिरेकल तो ही हुआ ना, कैप्टन की इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस भी रहा, बहुत ही शानदार पूरे वीकेंड वाली स्टोरी। थैंक यू सो मच भाई। भाई इन कहानियों में ना मुझे, मैं अभी जहाज को पूरा समझ गया हूँ मैं मतलब पूरा बल्ले पड़ गया है मेरे। क्या है, क्या क्या कर रहा हूँ? अच्छा आप सुन रहे हैं? और सुनिए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जवान शेख साहब लिखते हैं, भाई साहब क्या लिखते हैं, कुछ दिनों पहले एक सिलसिला था, हाँ तो आज भाई सुना दिया मैंने, एक मैंने कबीर भाई मौत को छू के टक से वापस आ गए रिजवान भाई ऐसे ही है अपना। तो इश्तियाक उस्मानी भाई लिखते हैं, फाइनली आज आपने कई लोगों की जान बचाई, स्टोरी सुन के मजा आ गया कबीर भाई, इस हफ्ते आपने सिर्फ एक को मारा है लेकिन आज की स्टोरी में पूरे जहाज को क्रैश होने से बचा लिया, पायलट वाली स्टोरी वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, यही यही मकसद है भाई। तला भाई लिखते हैं कि भाई ये क्या बात थी, सब बच गए भरोसा करो तला, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मतलब पायलट हूँ। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। अमन भाई थैंक यू सो मच, उन्होंने लिखा है नाइस स्टोरी। और क्या मैसेज आया है, जहाज तेरा भाई उड़ाएगा, भाई आज आपके भाई ने जहाज उड़ा दिया। यूसुफ भाई भी कहानी सुन रहे हैं, अच्छा आप सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं? ओके सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, अब ऐसे तो सुना दी मैंने यूसुफ भाई, दोबारा तिबारा सुनोगे कहानी कमाल कर दिया भाई। अच्छा इनके बाद एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और आप कॉल भी कर सकते हैं, नाउ द लाइन्स आर ओपन 4434377 4434377। एक कॉल आ गई है हमारे जमाल भाई की, अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। क्या हाल है आपके?
1: अरे भाई जैसे ही अब तैयारी कर रहे हैं एक दो महीने के बाद घर जाने की, तो फिर से डराना शुरू कर दिया
0: अरे मेरी भी फ्लाइट है भाई बहुत जल्दी, अभी मेरे वेकेशन शुरू, आपसे पहले मेरा वेकेशन है भाई।
1: हाँ वो तो है, पता है मुझे।
0: हाँ
1: फिर आप की बात अलग है।
0: अब मेरी बात क्यों लगे भाई मैं कोई पायलट हूँ, मेरी बात अलग है
1: ना, चार हाथ पैर रखते है ना।
0: अच्छा ओ क्या बात जमाल भाई, बहुत तेज हो रहा है जमाल भाई। वैसे कहानी कैसी लगी आपको, मतलब कैसा
1: लगा भाई? वो मतलब हफ्ते का आखिरी दिन थोड़ा सा वो उसी टाइप की थी।
0: हाँ।
1: जबरदस्त।
0: हाँ।
1: और सही बात है यार, वो किसी ने कहा था कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, जब तक सांस अटके ना और फिर से थोड़ी सांस ना भरी जाए और उसके बाद फिर से
0: शानदार बोली आपने, मजा आ गया, किक मिली एकदम।
1: अरे भाई मैं इतना परेशान हुआ यार कि आज थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा माहौल मेरा था, मैंने शुरू में कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जमाल भाई, हम आपके यार आपके फैन हैं जमाल भाई, आपको हम कौन लगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप जमाल भाई, पढ़ दीजिए कोई शायरी, कोई आज कुछ अलग शायरी कर दो जमाल भाई, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे।
1: अब देखिए मजाहिया शायरी का दौर था तो किसी तरह का उसमें रंग नहीं डालना चाहूंगा अलग से मैं।
0: हाँ।
1: तो मैं भाई देखो शायरी वही पसंद करता हूँ जो मजाक भी हो तो बड़े मतलब संजीदगी के माहौल में हो।
0: अच्छा
1: मजा भी आए। हाँ। मगर यह है कि थोड़ा और क्या कहते हैं, अरे जरा अदब का लिहाज हो।
0: चलो कर दो शुरू हो जाओ।
1: तो किसी ने कहा था कि जमाने वाले हम दोनों को इब्नुल वक्त कहते हैं, नवाजिश जाने किसकी थी कि पैदा हो गए हम तुम, ये नाटापन तुम्हारा और हमारे कद की लंबाई, बजाय हुस्ने उल्फत के गुल्ली डंडा हो गए।
0: अरे अरे वाइस अरे यार जमाल भाई बहुत बढ़िया था भाई, ये तो भेजो भाई आप, ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा भाई, ये लिख के भेजना पड़ेगा, लव्ड इट भाई। एक और बार हो जाए भाई जमाल भाई प्लीज, एक बार और प्लीज मेरे लिए।
1: इशरत हो अगर साथ तो रिफात नहीं मिलती, रिफात का मतलब बुलंदियां। शायर भी एक जगह नाम इस्तेमाल किया है और दूसरी जगह लफ्ज का मीनिंग, क्या गजब तरीके से उसने शेयर कहा है भाई।
0: नहीं एक और बार हो जाए, अभी जो आपने पढ़ा था ना वाला एक बार पढ़ दो पब्लिक के लिए प्लीज।
1: जमाने हम दोनों को इब्नुल वक्त कहते हैं,
0: जमाने
1: वाले। हाँ। हम दोनों को इब्नुल वक्त कहते हैं, नवाजिश जाने किसकी थी कि पैदा हो गए हम तुम।
0: हाँ।
1: ये नाटापन तुम्हारा और हमारे कद की लंबाई।
0: हाँ।
1: बजाय हुस्ने उल्फत।

0: बात है जॉन भाई, टू गुड भाई, टू गुड, सीरियसली मजा आ गया, सीरियसली क्या निकाल के लेके आया दोनों शेर, ये थे हमारे मतलब के, मजा आ गया, लव्ड इट भाई। पर गिल्ली डंडा वाला तो गिल्ली डंडा वाला नहीं भूलूंगा मैं शेर, वेरी नाइस।
1: ठीक है मैं लिख के भेज देता हूँ,
0: प्लीज प्लीज लिख के
1: भेजिए, टाइप कर देता हूँ, थोड़ा सा अभी ड्राइविंग में हो।
0: नहीं नहीं आराम से,
1: फिर आपको हम जो है ना अभी भेजेंगे।
0: नहीं बहुत मजा आया भाई, बहुत प्यार जमाल भाई, आपको बहुत प्यार, जज़ाकअल्लाह कि आपने वक्त निकाला,
1: बहुत ढेर ढेर ढेर भर भर के एकदम क्या कहते हैं ड्रम भर भर के प्यार आपको।
0: अरे जमाल भाई
1: बहुत प्यार ना, कि जितने लिसनर होंगे उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपकी जात से मुझे होता है।
0: अरे मेरा भाई बहुत प्यार है, बहुत
1: रियली मेरा भाई कसम से,
0: बहुत प्यार है,
1: ये बिला मुबालगा बिला तरद्दुद में है ना,
0: अरे
1: कहीं खुले मंच और आसमान स्टेज से भी कर दूंगा।
0: अरे रे रे मेरा भाई। नहीं आपके बोलने में कन्विक्शन है भाई, आई नो कि आप जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए बहुत प्यार भाई को, थैंक यू फॉर बीइंग काइंड।
1: बता रहा हूँ ये आंखें जो हमेशा हमेशा रास्ते पे चलते हुए नींद की आगोश में जाने को बेताब होती थी, और जहां से फिर मुझे ये महसूस होता था कि जिंदगी बड़ी खतरनाक हो सकती है, वो सारा मसला उस सारे दर्द का मदावा बनकर आप ऐसे उभरे भाई, मजाक नहीं कह नहीं सकता, लफ्जों में उसको बोल भी नहीं सकता।
0: अरे मेरा भाई वर्चुअल झप्पी भाई को है भाई, थैंक यू सो मच, सुबह बना दी आपने मेरी सच में, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखिए मेरे भाई।
1: जी जी जी भाई बहुत शुक्रिया आपका,
0: बहुत प्यार भाई,
1: बहुत प्यार आपको भी,
0: अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। जो जमाल भाई, भाई बात है मानना तो पड़ेगा आपको, बंदे में कन्विक्शन तो है भाई, मजा आ गया। अच्छा कुछ मैसेजेस और हैं आज की स्टोरी को लेके, लेकिन जमाल भाई क्या शेर था भाई, भेजेगा जरूर। तब उसमें मैं लिखते हैं सुपर्ब स्टोरी कबीर भाई, आई फेल्ट लाइक आई ऑन द प्लेन, माई सेल्फ वॉज हैविंग गूज बम्स एंड द वे यू नरेट इट टेक्स अस टू द रियल फीलिंग ऑफ अ रोलर कोस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह दैट एवरीवन वाज सेफ। जी बहना इट इज़ सो डिफिकल्ट ना, ये सारे जहाज की चीज़ों को देसी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई एविएशन का सुन रहा होगा ना मुझे, वो कोने में हंस देगा जाके, अरे ये क्या बोल रहा था। एक मैसेज है मुश्ताक सही साहब, कहते हैं भाई आई वॉन्ट क्या, आई वॉन्ट ट्रेनिंग दिस डाइवर, के बात हो गई भाई। साथ ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप जब भी एविएशन के इंसिडेंट होते हैं तो ये उम्मीद रहती है कबीर भाई की जुबानी सुनने को मिलेगी, जैसे देशभक्त के लिए अक्षय कुमार की फिल्म है। अरे मेरा भाई सादिक साहब, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ ह्यूमर ना, आपने जो आप स्टैंड अप क्यों नहीं करते, मुझे हमेशा से लगता है सादिक भाई यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। एक मैसेज, यूसुफ भाई इज यूजिंग 2G। तला भाई अभी आ जाएगा कोई, बता रहा हूँ फिर मैं। एक मैसेज है आगे जमाल भाई, जमाल भाई अलग है भाई। एक मैसेज नदीम भाई का, कह रहे हैं टेंशन में थे जब फ्लाइट ने ली थी उड़ान, पायलट के एक्सपीरियंस का था बड़ा इम्तिहान, हमें लगा था आज भी गवा देंगे कुछ लोग अपने प्राण, पर कबीर भाई ने बचा ली 400 लोगों की जान। अरे नदीम भाई यार, नदीम भाई ट्रॉफी होती ना आज मैं आपको दे देता भाई, पक्की बात है, कमाल कर दिया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर, जमाल भाई ने सर शेर शेर में शकीला का नाम ले लिया। माशाल्लाह सर कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप लेकिन मैं आपसे क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या कह गए आखिर में, ये मुझे दोबारा समझाओ, कि आज गालिब लगता है कतर आ चुके हैं। एक मैसेज और आया है, नदीमा मैंने आपका शेर ठीक कर दिया भाई, आप करेक्शन ना करें, आपका भाई है आपके साथ भाई, ट्रॉफी वाला काम किया जब नहीं। यूसुफ भाई कह रहे हैं कौन बोला 2G, वो समझ नहीं पाया, अरे छोड़ दिए तला भाई, वो छेड़ते रहते हैं भाई, उनकी आदत है छेड़खानी करना। अच्छा 4434347 ये नंबर है, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 8:26 पर क्लॉक, और कतर से जुड़ी हुई खबरें भी आने वाली है। बट फिलहाल तो जी काला जोड़ा भाई साहब, बढ़िया गाना आयो वीकेंड के हिसाब से, बिना AI के जिसने काला जोड़ा पाया है, क्योंकि मैंने तो आज काला जोड़ा ही पाया भाई। 8:27 by the clock, तमने बेरा बाट देगा भाई, बढ़िया गाना, हैप्पी वीकेंड।

0: लो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: हाँ जी
0: ये कहूंगा सुबह सुबह वेक अप।
1: तो बात ये है भाई कि अभी सबसे पहले तो खबरें पड़ जाएंगी। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि मैंने कुछ और मैं देखो यूसुफ भाई हम आपको छेड़ते रहते हैं यूसुफ भाई, आप हमारे बड़े हैं, बड़े भाई से थोड़ी तो हम तो मतलब छेड़खानी करेंगे। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पोर्ट। एक मैसेज है क्या लिखा, लिस्ट यू अ लिटिल अगेन स्टिल ऑन द रोड, क्या बोलती पब्लिक। अरे भाई आपका शेर नहीं पढ़ा था क्या मैंने, मैं अभी पढ़ता हूँ यार। माजिद भाई गलती हो गई भाई, आज बहुत सारे शेर रहते हैं ना इसलिए मुआज़रत मुआफ़ी। हाँ सबसे पहले खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो कतर एनर्जी ने अनाउंस कर दी है वेंसडे को ही, कल ही अनाउंस कर दिए थे पर क्योंकि कल बाद में अनाउंस किए थे शो हो चुका था, तो बता दूँ कि प्राइसेस आ चुके हैं गैसोलीन के तेल भरवाने की गाड़ी को, तो ये आपको जानना जरूरी है। डीजल और सुपर गैसोलीन 95 प्राइस टेबल, तो बेसिकली जो प्राइसेस हैं डीजल के वो सेट किए गए हैं 2.05 कतरे रियाल पर लीटर और सुपर गैसोलीन सुपर जो है वो है 2.10 कतरे रियाल पर लीटर और जो प्रीमियम है वो है 1.95 कतरे रियाल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये रेट्स आप जहन में रखिएगा, ये तो हमारा डेली की है, काम की चीज़ है भाई। इसके अलावा कतर डेवलपमेंट बैंक यानी QDB ने लॉन्च किया है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब मनारत के नाम से, और इसका मकसद है कि तेज़ी लाई जाए थोड़ी सी इन द अडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, मतलब दुनिया जहाँ में कोई ऐसी एडवांस चीज़ आए उसको इम्प्लीमेंट तेज़ी से किया जा सके और इंडस्ट्री फ्रंट पर रखा जा सके, ये इसका मकसद है, और नेक्स्ट जनरेशन फैक्ट्रीज को कंट्रीज़ में बढ़ावा दिया जाए। सो वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इंशाल्लाह इट विल वर्क आउट। एंड इसके बारे में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वेंसडे को जिसमें डॉक्टर हमद सालिम साहब ने बात करी थी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ़

0: सिमी डेवलपमेंट एट क्यूडीबी. उन्होंने एम्फेसाइज किया कि मनारत जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ऑफ इट्स ओन काइंड. ऐसा इससे पहले कभी कतर में हुआ नहीं है. सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. इसके अलावा जो अगली खबर है वो आई है ऑटो मोबाइल क्लब से. तो वर्ल्ड इंड्योरेंस चैंपियनशिप के बारे में बताया जा रहा है कि इस बात भी ग्रोथ को लेकर बात की जाएगी और किस तरीके से, क्योंकि अभी कतर में भी बहुत कुछ होने वाला है. F1 रेसेस आपको देखने को मिलेंगी. देयर आर मेनी थिंग्स आर अबाउट टू हैपन. सो सब के लिए तैयार हो जाइए. अब ठीक है गर्मी है थोड़ी सी, आई अंडरस्टैंड, बट देन धीरे धीरे अभी मौसम इवेंट्स की तरफ जाएगा. भर भर के इवेंट्स होने वाले हैं भाई, तो जस्ट बी रेडी. और बाकी मैं अभी वेदर का क्या है, कंडीशन क्या चल रही है, देखो मैं ज़्यादा टेक्निकल में जाऊंगा नहीं, सीधा बोलूंगा गर्मी है भाई. है तो है. अभी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, बट इट फील्स लाइक 38. और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं है, थैंकफुली इट इज़ अराउंड 41-42. ज़्यादा लगेगा आपको, 3 डिग्री ऑलरेडी ज़्यादा लग रहा है, उसके पीछे वजह है ह्यूमिडिटी की. अभी 8:30 हुए ही हैं पर अभी ह्यूमिडिटी का लेवल इज 57%, समझ रहे हैं, इतना नहीं था पर आज है. एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं जरा. अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, कैसे भाई?
1: ये क्या था भाई?
0: मैं भाई ऐसी भाई बस वीकेंड की खुशी है, अकेले यहाँ बैठा हूँ चार दीवारी में, तो आप लोगों के साथ खुशियाँ बांट लेता हूँ. कॉल आ जाती तो हंस देता हूँ. बताओ भाई क्या हाल है?
1: फिर भाई ये बात हो जाएगी ना, मतलब
0: क्या बात
1: हम तो है, हम तो है जले हुए, कुर्सी जल रहे, हमें भी जला रहे हो.
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बुरा, बहुत बुरा.
1: मतलब आज क्या क्या हुआ, क्या आज तुम्हारे को, मतलब क्या, मतलब आज समझ में नहीं आया मेरे. सुबह सुबह
0: क्या मतलब, मैं समझा नहीं.
1: भाई आज सुबह सुबह शायरी की लाइन लगवा दिया आप.
0: भाई आज पोएट्री डे थी ना, तो मैंने कहा चलो आज में जैसे होता है ना स्कूल में एनुअल फंक्शन तो सारे लोग ये करेंगे, तो हमने कहा आज हम यही थीम रखेंगे. आज सवाल जवाब छोड़ो, आज हम लोगों को बस चाहते हैं कि अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दें. जितनी बुरी बुरी शायरी लोगों ने भेजी है, जैसे आप मुझे भेजते हैं, तो मैंने कहा आज सबको सुनाई जाए, अकेले क्यों बर्दाश्त करूं मैं.
1: भाई तुम यकीन नहीं मानेंगे, चैट जीपीटी भी बोल रही है, बोले आज कबीर के शो पे हुआ क्या है, सब लोग आज सवाल जवाब छोड़ के शायरी ढूंढने लग गए मेरे पास आके.
0: इसमें पता है वो स्कोप नहीं है ना सीरियस होने का, तो मैंने कहा आज सीरियस कोई हो नहीं पाएगा, सबके सब जो हैं ये भेज दें बस काम हाल हो जाएगा. तो
1: अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, मैं तो इतना तक
0: नहीं, अभी अभी मुझे पता है हर रोज 8:30 बजे के करीब डर लगता है कोई ना कोई आएगा बोलेगा ये कैसे बोल दिया उन्होंने.
1: मैं तो यहाँ गया था, बहुत तकलीफ थी, यहाँ गया
0: तकलीफ थी तो मैं बताऊँ सच में
1: तो मेरे को लगता है ये FM वाले मेरा ही कुछ करेंगे.
0: मैं भाई लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जो अपना गम जो है ऑन एयर देने लगते हैं, आई अंडरस्टैंड, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानी लाए, लेकिन आप समझिए ज्यादा उदासी जो है आपको लोगों से डिस्कनेक्ट करेगी, हीरो नहीं बनाएगी. प्लीज
1: बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत लोग आते हैं.
0: हाँ तो वो
1: भाई कसम से मेरे को तो हंसी इस बात पे आती है, एकदम कारी साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब बन जाते.
0: एक मैसेज आया अरबाज भाई, कहते हैं आसिफ भाई को सर मेरी तरफ से सलाम कहना. और आगे उन्होंने लिखा है जिसे अपना समझा वही प्यार मैं प्यारा कर गया, मेरे हंसते हुए चेहरे को भी तना कर गया. रो रहे हैं तो
1: भाई सर के ऊपर से गए बाकी. वालेकुम सलाम.
0: वालेकुम सलाम भाई, बाकी सब ठीक है? अपना प्यार अपने तरफ देखो, ऐशे का अपना अपना देख, सीधी सीधी बात,
1: अपना अपना देख,
0: सीधी सीधी बात आसिफ भाई. और बताओ सब बढ़िया?
1: कबीर भाई क्या बोलते हैं उसका नाम, मतलब आज का मतलब क्या कहानी क्या थी भाई, सच्ची में मैं मिस कर गया. बाकी मैं मालूम कहानी तुम्हारी कब सुनूंगा, पार्किंग में लगाने के.
0: हाँ ये करो, ये बढ़िया है,
1: डाउनलोड करने के बाद.
0: यस, तो मैं आज की जो स्टोरी है ना वो बेसिकली शो के बाद भेजूंगा, क्योंकि बड़ी फाइल है तो मुझे लैपटॉप से भेजनी पड़ेगी, तो बस जरा सा सबर करें, सब 9:30 तक आ जाएगी कहानी होपफुली.
1: इंशाल्लाह. और कभी भाई चाय पीने आओ यार.
0: अरे भाई आज तो आपका भाई फैल के सबसे पहले नींद खींचेगा, फिर गेमिंग गेमिंग गेमिंग खिड़कियां बंद करे एकदम, ना कोई आवाज ना कुछ.
1: आज तो भाई भाई को कहानी ढूंढने की जरूरत नहीं है,
0: आज तो भागो आंधी आई.
1: आज तो कहानी ऐसी ही बनेगी भाई.
0: आज तो भाई भागो आंधी आई वाला सीन है ये.
1: भागो आंधी.
0: आज तो आज तो हाँ भाई भवंडर आएगा
1: पर भाई कैसा पैसा ही पैसा
0: यस एग्जैक्टली मेरे भाई एग्जैक्टली ये सरवर भाई ने कल तीर छोड़ा ना इसका कुछ करना पड़ेगा पर अभी मूड नहीं हो रहा है मेरा
1: तो नहीं भाई तुम सच्ची में सरवर भाई से पंगा ले जा रहे हो मैं एक दिन बताऊं इतना बुरा

0: फटेगा ना कबीर भाई तुम्हारे ऊपर, बोले आ तू बेटा कबीर, हाथ तू गया, हाथ तू लाल की जान तेरा तो काम बचा के घर में।
1: नहीं मैं देखता हूँ इनको, आज आज कुछ मैं निकालूंगा इनके लिए, कुछ ना कुछ करूंगा।
0: ये तो अच्छा है कि भाई मैं, ये तो अच्छा है कि मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ, मत कर आती।
1: नहीं मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं आज पार्टिसिपेट करूंगा 1:30 बजे वाले शो में।
0: अरे तुम लास्ट में आते हो, बवाल
1: है। नहीं आज पार्टिसिपेट करूंगा,
0: तुम सुनते एकदम लास्ट में आके।
1: नहीं मैं आज आज आज 1:30 बजे सुनूंगा, मैं डन है, मैं 1:30 बजे सुनूंगा आज। डन हो गया, ठीक है भाई।
0: और क्या बोलते भाई, सब ठीक है ना?
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार।
0: ओके
1: मेरा भाई, चलो अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बाय बाय। और आसिफ भाई की बात जो है, ये तला भाई कह रहे हैं क्योंकि बिजली विभाग में कह रहे हैं रोक, अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करवाता हूँ। भाई मेरी मत उड़वा देना, तुम पर भरोसा को नहीं मुझे। एक मजे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, एकदम शानदार। राणा जी माफ करना, फोन आ गया कमाल भाई का। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हुआ कमाल भाई, जहाज कैसा लगा हमारी सर्विसिंग?
2: भाई ये आपका ही कमाल है
1: जी।
2: कबीर कैप्टन साहब,
1: कैप्टन
2: गिरते हुए इंजन से भी आप लोगों ने जहाज को उड़ा दिया भाई, और लैंडिंग भी सेफ करवा दी।
1: बस ऐसे ही है हमारा जलवा, जानते कुछ नहीं करते वो लोग, कमाल करते कमाल भाई, आपको तो बताइए। कैसी लगी आपको कहानी
2: भाई? वाकई कहानी जबरदस्त थी, सबके सब पैसेंजर, 400 पैसेंजर बच गए।
1: हाँ तो
2: मुझे बस फ्यूल का नुकसान हुआ, बाकी तो सब कुछ बच गया भाई।
1: मैं तो सोच रहा हूँ 1978 के लिहाज से भी ये बहुत आगे की कहानी है। ये तो क्या हुआ होगा इस टाइम पे?
2: मेरे पास तो शायरी नहीं है, लेकिन आपके और सरवर भाई के बीच में एक कहानी मुझे याद आ रही है।
1: अच्छा
2: कहो तो सुना दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई।
2: हम लोग जब छोटे थे ना तो जेठानी और क्या बोलते उसको देवरानी, दो जन थे हमारे घर के पास ही, लेकिन बंटवारा हो चुका था।
1: अच्छा ओके।
2: लेकिन बंटवारे में दीवार खड़ी हुई बीच में, लेकिन खिड़की नहीं बंद हुई।
1: ओके
2: तो हम लोग छत पे थे, मां और मेरी बहन छोटे थे, तो देख रहे क्या कि जो जेठानी है वो ननद को जो है ना, दोनों जो है कान के पास हाथ रख के नहीं पाव पाव करते हैं, सुने हुए क्या? वैसा करके जो है वो चली जाती थी और वो कुछ नहीं बोलती थी, और ननद जो उसकी वो थी जेठा जो छोटी वाली उसकी वो थी, वो तो इतना गाली देती कि पूरा मोहल्ला सुनता था। जब आए तब जबान चिढ़ा के चली जाए और वो पूरा मोहल्ला, मतलब वो गाली ही खाली देते रहते पूरा दिन उसको।
1: अच्छा।
2: और वो कुछ भी नहीं करती थी भाई, खाली उसको चिढ़ा के चली जाती थी।
1: हाँ।
2: और गलत कौन हुआ? चिढ़ाने वाला नहीं हुआ, जो चिल्ला रहा था, जो गाली दे रहा था वो था।
1: हाँ।
2: वैसे आप कर रहे सरोवर भाई को चिढ़ा के चले जा रहे हैं। ऐसा मत करो भाई।
1: ये तो आपने मोटिवेट कर दिया मुझे, अब तो और करने का मन कर रहा है भाई। अरे यार कमाल भाई, क्या स्टोरी चिपकाई आपने हमारे ऊपर। लेकिन मेन बात ये कि आप कॉल जुड़े
2: भाई, जो चिढ़ाने वाला है ना चिढ़ा के भाग जाता है।
1: हाँ ये वही है, मैं घंटी बजा के भागने वाले में से ना भाई।
2: हाँ
1: बस यही,
2: दरवाजे पे देखो कोई नहीं। बच्चों वाली शरारत कर रहे हैं आप।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू इस मोटिवेशन के लिए, बहुत शुक्रिया कमाल भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच हमेशा जुड़े रहने के लिए भाई शो से, बहुत प्यार आपको। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
2: हाफिज़।
1: और इनके बाद साथी भाई लिखते हैं, हफ्ते भर लिसनर्स को बर्बाद करके थर्सडे को शायरी और मोहब्बत सुधारना चाह रहे हो, यही तो मेरा खेल है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कतर और तमाम लिसनर्स को सलाम अलैकुम। मुबीन बुखारी साहब का मैसेज है, फिर आया बॉस, कोर्ट में स्टोरी अटेंड कर नहीं पाया। अभी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, अभी आपको बताते हैं कहाँ जाना है आपको स्टोरी के लिए। आपको रास्ता दिखाया नहीं मैंने, आई शोन यू ना किधर आपको मिलेगी स्टोरी, बट नॉट टू वरी, आई विल डू दैट अगेन, राइट। मई थानू सेंड कर दा एलो जी लिंक। और क्या भेजा तला भाई ने? तला भाई ने कुछ भेजा, जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे फेमस जगह अगर कोई है तो पनवेल है। एवरीबडी नोज द डायलॉग, ये अच्छी बात है। ओके आपको बताइए, वीकेंड रिचुअल याद है आपको? डू यू नो द वीकेंड रिचुअल? हम हमेशा फॉलो करते हैं इसे, जो भूल गए उन्हें आज मैं याद दिला के रहूँगा। जो अपनी अपनी गाड़ियों में भाई, अभी देखो क्या होने वाला है, यू रेडी? तो आपको पता है ओहो हो करना है साथ में, ठीक है? ओहो हो याद है ना? ओके यू नो द ड्रिल भाई, बताने की जरूरत को नहीं भाई। 8:41 ये वीकेंड पे करे बिना चैन को नहीं आता भाई। हाँ तो सुखबीर बाजी का अभी वो पोर्शन आने वाला है, बाकी मैसेज 666-221-07। हाँ जी

मैं आ गया स्वाद ये भाई बड़ा जरूरी था, बड़ा जरूरी था, एक पंप चाहिए होता ना मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो ये वही था। आई होप मजा आया हो, वॉल्यूम गिरी तो नहीं ना बढ़िया

0: Wake up. एक कॉल आ रही है हमें, एक सेकेंड रुके। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मेरे कबीर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं?
0: हम तो बढ़िया रहते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं?
1: तबीयत अच्छा है, पिए गए? फ्री टाइम पे आया हूँ सैंडविच और चाय पीने के लिए।
0: भाई अभी तो मैं सीधा शो के बाद ऐसी नींद खींचूंगा भाई, उसके बाद सारे काम की जाएंगे भाई।
1: बिल्कुल कड़क चाय टी टाइम की और सैंडविच ठंडा पराठा में।
0: खाओ भाई, बढ़िया, बिस्मिल्लाह करो। और बताओ?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लेकिन यार कहानी

0: आप इतना मजे की सुनाते हैं ना, क्या करें, कुछ सुन पाते हैं, कुछ कस्टमर साथ में बैठे होते हैं, नहीं चलाते हैं, तो जहाज को आप गिराते गिराते गिराते उठा देते
1: यही तो
0: आप गिरा देंगे गिरा
1: नहीं नहीं मैं यही चाहता हूँ, सांस ऐसे लग जा रहे हैं ये जहाज के साथ
0: जो है ना एंड क्या हो रहा है क्या हो रहा है कभी हो ही नहीं पाता
1: यही तो
0: लेकिन बहुत मजा आता है, आप सही पूछ रहे हैं, बहुत मजा आता है, कहानी सुनाते हैं ना
1: जी,
0: दिल करता है कुछ जिंदा से लाइव बंदा देख रहा है ना, जैसे बिल्कुल
1: थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है, जजाकल्ला भाई। और बताइए
0: और ठीक है, खैरियत है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, जो भी मेरे भी इम्तियाज भाई और ताहिर भाई, यूनिस भाई सुन रहे हैं, मुजीर मेरे रूममेट भी हैं, तो उनको मेरी तरफ से सलाम।
1: अच्छा वालेकुम सलाम भाई,
0: और कड़क चाय पी है
1: बिल्कुल ठीक है भाई, सबको चाय का प्रमोशन कर दिया भाई ने, ख्याल रखिए भाई,
0: अल्लाह
1: हाफिज भाई। और भाई की बात जो है, तला भाई ने मैसेज किया है, ऑफिस में वॉल्यूम अप करवा दी भाई, मजा आ गया मेरा भाई, यही तो चाहिए था बस। और सबसे बताऊँ, सबसे क्रिएटिव अरसलान भाई ने मैसेज किया मुझे, उन्होंने ओहो हो ओहो हो जो हम कर रहे थे ना वो टाइप किया है कीबोर्ड पे कह रहे ओहो हो पूरा टाइप करके वीडियो बना के अरसलान भाई, ये दुनिया का सबसे क्रिएटिव ओहो होता भाई, मजा आ गया सच में। एक मैसेज स्टोरी भाई सेंड कर देना प्लीज, मैं भाई आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके आपको स्टोरी मिलेगी भाई, ठीक है? मैं भेज को नहीं दूँ, भेज देता हूँ शायद अंसारी भाई, ये लीजिए इस पे आ जाना भाई, ठीक है? और बाकी मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कुछ मूवीज के जो वीकेंड पर आप देख सकते हैं। तो भाई जिन्हें थोड़ा सा थ्रिलर पसंद है मामला, अगर आपने रिसेंट आई हुई कुछ मूवीज़ में देखा होगा, तो बहुत अटेम्प्ट किया गया कि उसमें बच्चे भी हों और मूवी थ्रिलर भी हो, है ना? तो ऐसी एक मूवी थी 2008 में आई थी, इसका नाम था द चिल्ड्रन। ये आप देखें, वीकेंड स्पेशल मूवी है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रिलर, थोड़ा सा हॉरर है इसमें, पिंच ऑफ हॉरर, बाकी सब बढ़िया। एक कॉल आ रही है हमें, रोकिए भाई कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहिए कबीर भाई, क्या हाल है?
1: मैं बढ़िया भाई, आप कैसे?
2: भाई आपने तो हार्ट अटैक होते होते बचा लिया हमें हमें तो लग रहा था कि शायद अब हम भी चले जाएंगे साथ में।
1: आपको जहाज में सर्विस बढ़िया मिली सर, खाना वाना
2: बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो लग रहा था कि शायद मैं ही उड़ा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा था सीमान लोड पे, हमें लग रहा था कि शायद मैं ही पायलट हूँ, और जैसे जैसे आप बढ़ रहे थे उसी हिसाब से हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, ज्यादा हो रही थी।
1: भाई मैं यही चाह रहा था, देखो अभी ना लोग सोच समझ गए हैं भाई कि जहाज के बटन कहाँ पे क्या होते हैं, मैं सिखा के छोड़ूंगा सबको जहाज गाड़ी में बैठे बैठे।
2: आज सर्वर भाई को क्या बोलना है ये बता दे।
1: ये मैं सोच रहा हूँ उनको क्या बोला जाए, क्योंकि कल जो उन्होंने किया है आज मेरे पास कहानी नहीं
2: थी। हमारी बात हुई तो वो बोले अरे शमशाद भाई वो तो बांग्लादेश से है, आपको मालूम ही नहीं।
1: उनको बोलना सरोवर भाई अगर आप जहाज से उतर जाते तो सब कुछ ठीक रहता, आपकी वजह से आपने जहाज का वजन क्यों बढ़ाया, ये बोल दें यार कोई आज, क्योंकि उनके से जहाज भारी हो गया था, धरती पे से उठ नहीं पा रहा।
2: आज मैं उनको बोलूंगा कि भाई सरोवर भाई आपकी वजह से पूरा पायलट का जो है मसला हो गया, अगर आप ना होते तो पायलट आराम से वो टेकअप कर पाता, लेकिन आपकी वजह से जब आप बैठे हो तो जहाज नीचे ही आ रहा था, ऊपर नहीं।
1: आप बताइए आपने मतलब आपकी से स्टोरी बन गई यार कि क्या किया आपने हमारे साथ तो यही है उनके लिए
2: जरूर।
1: पर और बताइए भाई क्या चला सीन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम, आप लोगों की दुआएं हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच।
2: दिल्ली में कहाँ पे आप?
1: भाई मैं दिल्ली में बटला हाउस से।
2: अच्छा मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, डी पाउंड से गली नंबर 3 पुल पहलादपुर बदरपुर के पास,
1: बदरपुर बॉर्डर के पास रहे आप?
2: जी जी जी जी, मैं कानपुर में जॉब करता था।
1: अच्छा अच्छा, कितने साल रहे दिल्ली में आप?
2: कानपुर बहुत रहा, 10-12 साल।
1: अरे माशाल्लाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फिर तो आप जानते हैं दिल्ली को, ठीक है। बदरपुर बॉर्डर तो खैर रहा, आना जान रहता था हमारी तरफ से पड़ता होगा।
2: मैं आपको बता दूं, दिल्ली से मैं फिर बस चलाता था वॉल्वो B9R B11R।
1: क्या बात कर रहा
2: हूँ, वॉल्वो बस का कोच कैप्टन हूँ जी।
1: अरे ये तो कमाल की, ये चीज नहीं बताती मुझे आपके बारे में। अच्छा वहाँ पे दिल्ली में चलाते थे आप?
2: जी।
1: अरे नाइस, तो काफी ट्रेन है माशाल्लाह। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर आप बताना चाहें तो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कतर में आप?
2: यहाँ पे सर मैं तो अब एक थोड़ा सा शुरू से बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम आया था बकरी चराने के लिए, यहाँ से आईडी लगा के हमें सऊदी ले गए थे, 1-3 महीना मैं सऊदी में रहा। और वो अरबी को जो हमारा टैलेंट पता चला, नहीं ये तो हैबिट ट्रोलर ड्राइवर है, फिर उसने मेरे को आने जाने का टिकट दिया, वीजा किया, मैं दिल्ली गया, फिर स्टैंड पर आके फिर आया, फिर ट्रोलर चलाया।
1: क्या बात है यार, टैलेंट तो है, आप हैं असली हैवी ड्राइवर भाई। आप क्यों?
2: मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर मेरी बात सुन रहे हैं और लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं,

0: ड्राइवर का पहला वर्ड ही होता है डी, और डी का मतलब ही होता है डिसिप्लिन।
1: है, खेल गए।
0: और मैं ड्राइविंग, मेरा प्रोफेशनली ड्राइवर है, मैं ड्राइविंग लाइन से TRI किया हुआ, ट्रांसपोर्ट रोड एजुकेशन।
1: बस करो भाई, इतनी पढ़ाई एक दिन में करा दो।
0: डिसिप्लिन वी वर्च्यू आई इंटेलिजेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइवर के अंदर ये गुण होना चाहिए।
1: अरे भैया जी भैया, सबको अपनी ड्राइविंग पे शक हो गया पता है आपके चक्कर में, उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई।
0: और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद की कंपनी है कतर में, 14 आदमी काम कर रहे हैं हमारे।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो ठीक है, अभी तो खैर मेरे भी इजाजत लेने का वक्त आ गया है, वरना पूरी बात करते हैं।
0: और मैं बता दूं, जब मैं वॉल्वो बस चला रहा था हाँ, तो बिहार में एक जगह है लवादा, कोटरमा का नाम होगा, तो वहाँ पे कुछ गुंडों ने बस को घेर लिया था।
1: अच्छा,
0: तो मैं, हमें जिस रोड में हम चलते थे वॉल्वो बस लेकर के, BSRTC में था उस टाइम में, बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तो जब घेर लिया तो हमें हर थाना का नंबर मिला था, करो। जब हमारा असिस्टेंट, उसने फोन किया तो नहीं उठाया, फिर मैंने बोला यार मेरे नंबर दो, मैं अपने मोबाइल से लगाता हूँ।
1: सुनो तो टाइम कम बचा मेरे भाई, रुक जाओ गाड़ी रोक लो, क्योंकि मुझे अभी साइन ऑफ करना पड़ेगा मेरे भाई 9 बजे, क्योंकि न्यूज होती है। तो ये कहानी वापस सुना देना कल संडे को, ठीक है?
0: कल मैं बताता हूँ आपको, आपको बहुत हंसी आएगी।
1: ठीक है, डन भाई, डन, ख्याल रखिए अपना।
0: इंशाल्लाह, ओके
1: मेरे भाई, वालेकुम सलाम। तो भाई के बाद इजाजत लेने का वक्त आ गया, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। इंशाल्लाह संडे को मुलाकात होगी, सवेरे फवेरे मिलेंगे 6 बजे, 9 बजे न्यूज बुलेटिन। दिस इज दुहा वाला कभी साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलामा।

0: टेक्नोलॉजी MCIT ने PwC मिडल ईस्ट के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और इल्म के तबादले में ताबुन को फरोग देना है। रियासत कतर की नॉन हाइड्रोकार्बन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2026 की दूसरी सहमाई के दौरान सालाना बुनियाद पर 2.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डैंडी लिमिटेड QPSC अंडर कन्वर्जन को कतर फिनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी QFMA की जानिब से अपने शेयर कैपिटल के 40% हिस्से को अवामी सब्सक्रिप्शन के लिए पेश करने की मंजूरी मिल गई है। अवामी सब्सक्रिप्शन की मुद्दत 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस IDOP के मौके पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कतर फाउंडेशन के जेर इंतजाम काम करने वाले सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड केयर ऑफ द एल्डरली एहसान ने मुश्तरका प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद बुजुर्गों को सफर के तरीकाकार, एयरपोर्ट पर दस्तयाब खिदमात और सहूलियाती इंतजाम के बारे में आगाही फराहम करना है। कतर डेवलपमेंट बैंक ने मनारत एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब का इफ्तिताह किया है, जो कतर में अपनी नौइयत का पहला सनती कॉम्प्लेक्स है। इसका मकसद मुल्क की नई नस्ल की फैक्ट्रीज में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन FIR टेक्नोलॉजीज को इख्तियार करने का अमल तेज करना है। इन्वेस्ट कतर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क और बोस्टन शहरों में हाई लेवल रोड शो मुकम्मल कर लिया है। इस दौरे के दौरान इदारे ने अमेरिकन सरमायाकारों, तिजारती इदारों और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित मजबूत बनाए और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर के शोबे में कतर में बढ़ती हुई सरमायाकारी के मौकों को उजागर किया। अदर गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड नकीलत ने अपनी फ्लीट में शामिल होने वाले नए LPG अमोनिया करियर की नेमिंग सेरेमनी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के यंगगैम में वाके HD हायुंडई समूह शिपयार्ड में मुनक्किद की। इस खास तकरीब के जरिए नए जहाज का रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 62.67% के साथ 9,244.53 पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 27,210 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 13 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 32 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस, स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में, जापान में जारी एशियन गेम्स में कतर ने मिक्स्ड ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। मोहम्मद अल रुमही और रे बासिल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कतर के लिए सिल्वर मेडल जीता। वहीं इंडिया के किरण चेनाय और नीरू ढांडा ने 34 टारगेट्स के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि चीन के की येनिंग और सुन योनोंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बीच वॉलीबॉल में कतर वन टीम ने ईरान को 22-20 और 21-13 सेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। कतर का मुकाबला आज थाईलैंड से होगा। एशियन गेम्स में कतर की नेशनल वॉलीबॉल टीम के लिए भी आज एक अहम चैलेंज है, जब वो एची नागोवा एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल्स में मेजबान मुल्क जापान का सामना करेगी। पैडल में कतर की जोड़ी राशिद नवाफ और मिशारी नवाफ राउंड ऑफ 16 में कुवैत को 2-0 से शिकस्त दी। कतर ने दोनों सेट्स 6-1 और 6-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। अब राशिद और मिश्री मेडल की रेस में अपनी कामयाबी जारी रखने की कोशिश

0: करेंगे। एशियन गेम्स में टीम कतर रेसलिंग में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। आज मेंस ग्रेको रोमन 77 किलोग्राम कंपटीशन में मोहम्मद शाहीन अपना कैंपेन शुरू करेंगे। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला ताजिकिस्तान के आलिशेर रुजीमादोव से होगा। शाहीन की कोशिश होगी कि वो अपना पहला बाउट जीतकर कंपटीशन में आगे बढ़े। दूसरी जानिब कतर के आरिफ मोहम्मदी ने ग्रेको रोमन 67 किलोग्राम इवेंट में हिस्सा लिया। आरिफ ने राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड के नुटापोंग हिनमे को 9-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनी, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में उन्हें किर्गिस्तान के रज़ाक बेसेकेव के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे मैच में ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं। और 3 मैचों की ओडीआई क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। मैच में शुभमन गिल ने तेज तरीन ओडीआई डबल सेंचुरी स्कोर करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब न्यूज हेडलाइंस समझ पाए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: नायब वज़ीर दाखिला ने कतर के दौरे पर आए हुए दोस्त मुल्क फिनलैंड के बैनुल अक़वामी तजारत के नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात के दौरान मुतालिका शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया। पानामा के सदर ने पानामा में वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुलअज़ीज़ बिन सालेह अल-खुलैफ़ी से मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। ममलकत बहरीन में चौथे खलीजी हाउसिंग वीक में शिरकत के दौरान कतर ने कौमी रिहाइश के मुस्तकबल, जदीद पॉलिसियों, पायदार हल और डिजिटल तब्दीली के ज़रिए रिहायशी खदमात के फ़रोग से मुतालिक अपने तजर्बे का जायज़ा पेश किया। और अमेरिकी सीनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करता कीत स्विंडरलिंग की वजीर मेहनत के तौर पर तकरीरी की 47 वोटों से मंजूरी दे दी है, जबकि 41 सरकार ने उनकी मुखालफत में वोट दिए थे। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन नूर और सोशल मीडिया से इंतखाब आलम, न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
3: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफ एम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफकत से पाला। रब्बी, ए मेरे रब, इरहमहुमा, मेरे वालिदैन पर अपनी खास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। सामिने किराम, ये दुआ हमें याद दिलाती है कि वालिदैन के एहसानात का बदला देना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम तर खिदमात के साथ साथ ये बड़ी खिदमत भी है कि उनके लिए रहमत व मगफरत की दुआ की जाए। इस दुआ में बचपन की याद दहानी है। कुरान ने इंसान को उसकी तफुलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था और वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की,

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर की, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी। अजीत वाडेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2000

2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, 237 मैचेस में 15,380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इंडिया ने पहली बार वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती और दोनों कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी में हासिल हुई। सबसे पहले इंडिया ने वेस्टइंडीज का दौरा किया 1970-71 में। वेस्टइंडीज के पास गैरी सोबर्स जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे, लेकिन वाडेकर की टीम ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर हिस्ट्री बना दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और इसी सीरीज में एक नौजवान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का शानदार आगाज किया और 774 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है और इंग्लैंड उस वक्त क्रिकेट की दुनिया की मजबूत टीमों में से एक थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैचेस ड्रॉ हुए, फिर आया द ओवल का फैसला कौन टेस्ट मैच। यहाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए जबकि इंडिया ने 284 रन का जवाब दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई, जहां लेजेंडरी स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट हासिल किए। इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर दी। यह इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी और इसके पीछे वाडेकर की कप्तानी, कैप्टनसी मटेरियल तो थे ही, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वॉज अ मेजर रीजन। वाडेकर ने इंग्लैंड सीरीज में खुद भी बैट से कंट्रीब्यूशन दिया और 204 रन के साथ इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर रहे। वाडेकर के अचीवमेंट सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं थे दोस्तों, वो उस इंडियन टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1967 और 1968 में न्यूजीलैंड को 3-1 से सीरीज में शिकस्त दी। ये इंडिया की पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी। वाडेकर ने इस सीरीज में अपनी पहली और करियर की वाहिद टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर डालूं तो पता चलता है कि वहां पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। मुंबई, जिसे उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, उनकी कप्तानी में 1968-1970, 1969-1970, 1971-1972 और 1972-1973 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेला जाता है, और 1971 की बैक टू बैक ओवरसीज सीरीज विक्ट्रीज और इंटरनेशनल लेवल पर वाडेकर को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक खास मकाम दिया। बाद में वो इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी। 2011 में उन्हें BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वाडेकर का नाम सिर्फ एक बैट्समैन या कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने इंडिया को ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में एक नई पहचान दी। 1971 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में सीरीज जीतकर इंडियन क्रिकेट को एक बुलंदी तक पहुंचाने में अजीत वाडेकर का एक अहम रोल रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
1: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
0: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
2: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM, आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: And
1: Hansi Desi. Tech update. Tech update.
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: गेम चेंजर Season 2।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में पता चलता है। और जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको इसी वक्त पे फेस्टिवल स्कैम के बारे में बताऊंगा, और वो वक्त आ गया, आपने इंतजार सही कर लिया है। वेल, ये स्कैम क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां फ्रॉड करने वाले लोग आवाम के लाइव एंटरटेनमेंट और मजा करने के शौक का गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैमर्स आने वाले म्यूजिक, फूड या कल्चरल फेस्टिवल का एक झूठा और फेक प्लान तैयार करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ये बिल्कुल असली और प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर एड कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें फेक आर्टिस्ट का लाइनअप दिखाते हैं, झूठे वेन्यू दिखाते हैं, पार्टनरशिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने स्पॉन्सर इनके पास हैं। जो फैंस फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं उन्हें सस्ते अर्ली बर्ड पासेस, ग्लैम्पिंग यानी कि लग्जरी कैंपिंग वगैरह, रिजर्वेशंस और एक्सक्लूसिव VIP एक्सपीरियंस का लालच दिया जाता है। टिकट्स बेची जाती है और ये टिकट्स आपको कई बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर कोई अनऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं। इस फ्रॉड की असली हकीकत तब सामने आती है जब लोग टिकट्स खरीद कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खाली मैदान या पब्लिक पार्क मिलता है जहां कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइजर सारी टिकट का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा अजीब और यूनिक तरीका है स्कैम करने का जिसमें आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐड चला और ये ऐड बड़े ही ब्लडली चल रहा है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने टिकट भी खरीद ली, आपने दिखाया कि बाकायदा आपके पास डिजिटल टिकट है, लेकिन जब आप उस लोकेशन पे पहुंचे, अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से आपके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, आप वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उसे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो कोई आपको कांटेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इन स्कैम से बचने का तरीका भी है। क्या तरीका है इन स्कैम से बचने का? सबसे पहला तरीका है ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई एड रन किया भी गया है सोशल मीडिया पे, तो आप प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। अगर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको किसी नंबर पे ले जा रहा है, आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है, वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो जब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक आए तो प्रॉपर चेक करना। वेल दोस्तों, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करने के बाद दूसरा स्टेप जो होना चाहिए आपका वो होता है वेन्यू को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई एड आया है तो हो सकता है उसमें वेन्यू भी आए आमतौर पे, लेकिन जिस होटल का नाम उसमें पड़ा है, उस फ्लायर पे पड़ा है, पार्क या स्टेडियम का नाम पड़ा है, फेस्टिवल होने का दावा किया जा रहा है, तो उस वेन्यू की मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल करें। मिसाल के तौर पे ABC कोई ग्राउंड है जहां पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उनके मैनेजमेंट को कॉल करके पूछें क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे फला इवेंट के या फला फेस्टिवल के इवेंट के लिए बहुत ज्यादा वाइब सेट है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस इवेंट के बारे में। तो आप जब पता करेंगे तो आपको डिटेल पता भी चल जाएगी कि वाकई में कोई इवेंट बुक्ड है या नहीं। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट का इस्तेमाल करें। टिकट्स हमेशा ट्रस्टेड टिकटिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदें और हमेशा क्रेडिट कार्ड से पे करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको फ्रॉड की सूरत में चार्ज बैक का ऑप्शन मिलता है। अनऑफिशियल लिंक्स पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश को सेंड करने से बचें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप फला लोकेशन पे पहुंचे, वहां पर हमारा वो शख्स मिलेगा, उसको आप पेमेंट कर दे, वो आपको एक फिजिकल टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो फिजिकल टिकट भी आजकल बनाने लग गए हैं। आप सही में

किसी के पास जाएंगे, वो आपको फिजिकल टिकट देगा, आप उसे कैश देंगे, आपको वो नंबर भी देगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट तो है ही नहीं, आप फिजिकल भी मिलकर आए, आपके पास फिजिकल कार्ड भी है, इवेंट का टिकट भी है, लेकिन जब आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तब तक आपके साथ हो चुका होता है फ्रॉड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस फ्रॉड के बारे में समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
2: स्मार्ट मनी.
1: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट called Smart Money, जहाँ हम बात करते हैं आपके पैसों की. I mean, पैसों को किस तरह से संभाला और मैनेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की और मनी सेफ्टी की. वेल, आज के सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोटेक्शन. आज की ये डिजिटल दुनिया में हम सब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल एप्स यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैसे ट्रांसफर भी सिर्फ सेकंड्स में हो जाते हैं. लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई है, वहां ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स ने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं लोगों को स्कैम करने के. अक्सर लोग समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ दूसरों के साथ होता है, लेकिन हकीकत ये है कि स्कैमर्स हर रोज नए तरीकों से आम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं. कभी फेक फोन कॉल्स, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस, कभी ईमेल, कभी सोशल मीडिया लिंक के जरिए लोगों के अकाउंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश. लेकिन सबसे कॉमन फ्रॉड फिशिंग स्कैम कहलाता है. इसमें आपको एक ईमेल या मैसेज मिलता है जो बिल्कुल किसी बैंक, कुरियर कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लगता है. मैसेज में लिखा होता है, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट. जैसे ही कोई शख्स उस लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स एंटर करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स के पास चली जाती है. याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ईमेल या मैसेज के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या फिर पिन कोड नहीं मांगता. एक और कॉमन फ्रॉड है ओटीपी स्कैम. आपके पास फोन आता है और कॉलर खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव बताता है. वो कहता है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है या आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, फिर आप और आपसे ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है. दोस्तों, ओटीपी आपके अकाउंट की चाबी होती है. अगर आपने ओटीपी किसी को बता दिया तो आप अपने पैसे खुद जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके हवाले कर रहे हैं. इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना. चलिए वापस से रिपीट करते हैं, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना फोन पर, ना मैसेज पर, ना सोशल मीडिया पर और ना किसी लिंक पर. सोशल मीडिया स्कैम्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं. कई दफा फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एडवर्टाइज की जाती हैं. आपको कहा जाता है कि सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ दिनों में डबल प्रॉफिट हासिल कीजिए. अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा हो सकता है कि वो स्कैम हो. और हो सकता है क्या, 100% स्कैम ही होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्विक मनी का कॉन्सेप्ट

रिस्क के साथ आता है और शायद बहुत ज्यादा रिस्क के साथ. ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं, अवेयरनेस है. जब हम अलर्ट रहते हैं, वेरीफाई करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, तब हम अपने पैसों को महफूज रख सकते हैं. जाते जाते यही कहूंगी कि याद रखिए, पैसे कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें बचाना आज के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है. छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसीलिए हमेशा सोचिए, वेरीफाई कीजिए और फिर क्लिक कीजिए. स्मार्ट मनी का सिंपल फॉर्मूला है, स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, स्टे स्मार्ट. ये तो आज का हमारा सेगमेंट. अब अगले सेगमेंट में एक और नए फाइनेंशियल टॉपिक पर हम बात करेंगे. अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो 103 FM 107.

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: ना देख रही हूँ.
1: भावेश देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि मैं अभी ऑन एयर आ गई, जरा तमीज से बात करती हूँ. आपसे मुखातिब हुई थी मैं अभी थोड़ी देर पहले और मैंने कहा था एवरी डॉन हैज इट्स टाइम.
0: यस यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो भाई देखें अब अभी मेरा टाइम चल रहा है तो कल को.
0: अच्छा रोज आना एक
1: मसला
0: अलग. हाँ एक मसला और रोजाना एक अलग तरह से जो ना एंट्री होती.
1: देखिए मैं अभी अगर 15 मिनट पहले की बात करें ना या 20 मिनट पहले की बात,
0: मतलब लोग मुझसे ना कोई बोल रहा था कि आप पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात नहीं करें. अब मैं क्या बताऊं, मैं एक ड्रामे को रोजाना देख रही हूँ, जी रही हूँ और मैं उसकी मतलब वो अलग अलग ड्रामे देख रही हूँ रोजाना.
1: देखिए यही तो सारी बातें हैं. अब देखिए कितनी टैलेंटेड हूँ मैं,
0: ये
1: आप देख रहे हैं.
0: नो डाउट नो डाउट,
1: मतलब बाइपोलर की इंतहा हो गई है.
0: कॉल करें या ना करें.
1: नहीं नहीं वो इतना तो चले आपके लिए हम दिल जरा थोड़ा सा
0: हाँ मूड स्विंग्स को कम कर लेते हैं. तो खैर जी
1: अच्छा ये मूड स्विंग्स का भी ना एक बड़ा कोरिलेशन है हमारे स्मार्टफोन से. आपने कभी नोट किया जब आप मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप
0: कर रही हो क्या? कर रही हो?
1: मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे सर में बेनते या बोर्डरूम या अपने आप को जो है ना कह लें कि कुछ थॉट्स से दूर करने के लिए, कुछ मसले मसाइल से अपने आप को परे करने के लिए ना, फिर वो इंसान एक गैप के अंदर चोर दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है ना इंसान. मैं वो चोर दरवाजा ढूंढने की जब कोशिश करती हूँ ना मोबाइल में, बस भाई मैं कैंसिल मटेरियल हो जाती हूँ. तो भाई आज मोबाइल से याद आया, आज की हमारा जो मुद्दा है वो भी कुछ ऐसा ही है. आर स्मार्टफोन्स मेकिंग अस मोर कनेक्टेड या मोर लोनली? या तो फिर हमें कनेक्टेड रख रहे हैं या तो फिर हमें और ज्यादा जो है ना अलग कर दे रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है अलग कर दे रहे हैं,
0: अलग कर रहे हैं.
1: मुझे ऐसा लग रहा है. हर किसी की अपनी एक थॉट होती है और ये शो है ही इसीलिए कि आपके लिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या
0: अलग कर रहे हैं. मुझे भी ऐसा लगता है. रीजंस जो है ना वो बहुत सारे हैं, मतलब ये इतना ना इतना फासला कम होना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से फासले मजीद बढ़ जाएं. पहले जैसे मैं सोचती हूँ कि अम्मी लोग रहते थे ना कुवैत में, तो उन लोगों का रابطہ होता था खतों के जरिए, कभी हाँ, टेलीफोन कॉल कर ली.
1: वो टेलीफोन कॉल भी महीने में दो महीने में कभी एमरजेंसी में जाती
0: होती
1: थी.
0: तो उसकी उसमें ना वो लोगों को कदर भी होती थी कि यार ये बाहर से कॉल आ रही है और खत मतलब लिख रहे हैं आ रहे हैं.
1: ये मामला हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, सीन करके छोड़ दिया. अरे भाई सीन करके छोड़ दिया
0: है ही नहीं मामला रहने
1: ये अभी कल परसों की बात है. मेरी एक बात मेरी कजन से हो रही थी तो उसने कहा तुमने सीन करके जवाब नहीं दिया. मैंने कहा ठीक है तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर है कि सीन करके जवाब नहीं दिया, लेकिन 5555 बहाने हो सकते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कहते हैं ना सफा बिजी है, सफा बीमार है, सफा पर लोग पधार गई, सफा का कोई और मसला होगा, क्या पता याददाश्त कमजोर हो गई है, क्या पता हॉस्पिटल में पड़ी हो, क्या पता कोई और मामला दरपेश हो, कुछ भी हो सकता है ना. 5555 आप रीजन निकाल सकते हो अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ. लेकिन इस मोबाइल ने ना कुछ हमारा दिमाग की डिजाइनिंग ऐसी कर दी है.
0: लोगों को मतलब ये अंदाजा नहीं होता इस बात का कि यार अगला बंदा बिजी हो सकता है, अगले बंदे की कुछ और मसाइल हो सकते हैं. अच्छा, कुछ और तरह की एंगेजमेंट्स हो सकती हैं.
1: मैं बिल्कुल फ्री हूँ मावेश, कोई मेरा फोन नहीं उठाता ना. मैं क्या करती हूँ,
0: मेरे साथ भी यही है.
1: मैं मैसेज छोड़ दूंगी, कॉल मी बैक वंस फ्री, अर्जेंट है तो लिख दूंगी अर्जेंट, और फिर मैं आराम से बैठ कर उसका इंतजार करूंगी.
0: ऐसे ही है
1: भाई, मुझे क्या पता कोई इस वक्त किस सिचुएशन से डील कर रहा है.
0: मतलब ठीक है कि आप कनेक्टेड रहो, लेकिन अब हर किसी से आप कनेक्टेड नहीं रह सकते.
1: वो उलझना होता है.
0: एग्जैक्टली, मतलब आप अपने करीबी उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हो जिनसे आपका दिल चाहता है, जो आपके बिल्कुल करीबी होते हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस ना बहुत लोगों की, दूर दूर के लोगों की, उन सबको लगता है कि सबको वक्त देना चाहिए. मतलब क्योंकि मोबाइल है, इजीली लोग दे सकते हैं.
1: मुझे ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज ये लगती है कि कोई आपको कॉल करके कापे काम खाए.
0: उन लोगों को जिन लोगों ने बुरा माना होता है उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, बहुत रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इस तरह के एटीट्यूड के बाद कम हो जाती है.
1: अच्छा मजे की बात है, आप सामने हो ना किसी से तो मैं कहती हूँ भाई इतनी गप्पे मारो, इतनी गप्पे मारो कि अगला कहता है ये रेडियो इसको बंद करो भाई, ये हमें बोलने का मौका नहीं देगा.
0: मेरे साथ यही होता है. जिससे फोन नहीं करती जिससे फोन पे बात करना शुरू कर देती हूँ तो फिर घंटे घंटे पर बात कर लेती हूँ, ये वाला सीन है. लेकिन वो ये ना टाइम नहीं होता भाई इतना. और मैं बहुत सारे लोगों को तो ये सोच के कॉल नहीं करती कि एक घंटा गया, अभी बहुत सारे काम
1: है. मैं एग्जैक्टली अभी की बात है, मेरी अम्मा शिकायत कर रही थी, कहती वैसे तो तुम मुझे जो है ना दिन में चार चार छह छह दफा कॉलिंग
0: कर. अम्मा शिकायत करेंगी, ये अजीब बात है.
1: मैंने कहा अम्मा वो आपने देखा होगा चार चार छह छह कॉलिंग ना दो दो मिनट एक एक मिनट की होती थी. अब मसला ये कि वो दो दो एक एक मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा. ये मामला चल
0: रहा. मेरी अम्मी जब तक थी जब तक मेरा तो और कोई काम ही नहीं होता था. हाँ, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक
1: मोबाइल का पैकेज इसलिए करवा. अच्छा मजे की एक बात बताऊं, मसले मसाले नहीं डिस्कस करते हम ना.
0: नहीं नहीं हम भी नहीं,
1: मसले मसाले का तो कोई हल ही नहीं निकलना.
0: जब तक ये सीन था कि मुझे खानों की रेसिपी, मुझे बाद में पता चला कि मुझे याद है, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था नहीं याद है, तो मैं खाने की रेसिपी पूछती थी, इधर उधर की बातें, ये वो सब कुछ, लेकिन पूरा दिन बात करती थी, पूरा दिन ऑन एंड ऑफ.
1: मैं सिर्फ
0: वो तंग आ जाती थी, नमाजों के वक्फे लेते थे बस.
1: मेरी अम्मा का ये है कि मेरी अम्मा सिर्फ अपने दुख दर्द बोलती रहती. मैं कहती हूँ मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ.
0: अच्छा कॉलर है हमारे साथ, वो भी अपने दुख दर्द रो ले क्योंकि हम उनके पास फोन है तो वो कर सकते हैं.
1: अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकात.
0: ओए होए होए, क्या बात है भाई, क्या खुशी टपक रही है. कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद आजम.
0: अच्छा ऐसे ना मुझे कॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो यूं आते हैं ना, यूं इस तनह वाले अंदाज में, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. हंसी खुशी मतलब चहक रहे हैं यार, खुश हैं माशाल्लाह से. ऐसे ही आना चाहिए सब कॉलर्स को.
2: मैंने कहा मेरी तरफ से भी दोनों बहनों को अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: कोरस में
2: ठीक है, सब
0: खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप बताएं भाई कैसे हैं?
2: शुक्र
1: अल्लाह आज क्या प्लान है?
0: घूमोगे? इनको इनको पता नहीं
2: था, लेकिन अल्लाह को मंजूर.
1: ये एक अलग बात है नहीं, इंसान का अपना भी कुछ होता है ना भाई, चार दोस्तों के साथ बैठूंगा, कढ़ाई खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा.
2: कढ़ाई तो हर रोज ही खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं,
1: माशाल्लाह. भाई थोड़ा सा हाथ हौले रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल ना हाई हो जाए, कोई दूसरी तीसरे मसले ना हो जाए.
2: ये तो चलता रहेगा ना जी, क्या करेंगे.
1: अरे आपने तो सरवर भाई याद दिला दिए मुझे. मुझे ना सरवर भाई इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं. वैसे तो मुझे उनकी हेल्थ का कंसर्न है क्योंकि भाई है, अपने जिगर है, लेकिन
2: आप छोड़ के आगे सरवर भाई
1: को. सरवर भाई से बात करें ना, सरवर भाई माशाल्लाह उनके ऊपर ना नाम सही बैठता है, डिंपू. क्यों? क्योंकि बड़े जॉली से इंसान. कहते हैं अरे सफा देखो ना, एक्सपायरी डेट जिसकी जितनी है उतनी है. अब या इंसान भरे हुए पेट से जाए या ऐसा लगे कि सूखा सड़ा जा रहा है.
0: अचानक से क्या हो गया इनकी फोन कॉल में?
1: मुझे लग रहा है कोई स्पीकर या ब्लूटूथ का मसला है.
0: आजम भाई थोड़ा सा जरा देखे. मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला सरवर भाई को बिल्कुल ठीक रखे, बाकी उन तमाम लोगों को. इसका ताल्लुक जैसे मैंने पहले भी कहा ना, बीमारियों का ताल्लुक मुझे जहाँ तक लगता है ना ज्यादा खाने से होता है ना किसी और चीज से होता है, अपने माइंड सेट से होता है. वो खुश रहते हैं माशाल्लाह, खुश रहते हैं. खुश रहने वाला बंदा बीमार कम ही होता है.
1: उनके साथ बैठकर भी मजा आता है.
0: हाँ, मजा मिलती है. बिल्कुल ऐसे ही
1: कुछ लोग होते हैं
2: वैसे
1: ऐसे.
2: तो आप जो है ना वैसे तो बहुत ज्यादा ही चुटकुले छोड़ते थे उनके लिए.
1: अरे वो तो आपको पता है, वो फिर मजा नहीं आता ना अगर ये बात ना की जाए तो.
0: लेकिन इस बात का अंदाजा लगाए ना कि हम उनके लिए इतने चुटकुले छोड़ सकते हैं. हम
1: कुछ लोग
0: सारे जितने आरजेज है ना सब उनके लिए बात कर सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो बुरा नहीं मानेंगे, वो हंसते रहेंगे उसके ऊपर भी.
2: बिल्कुल माशाल्लाह
1: जॉली माशाल्लाह माशाल्लाह कुवत अल्लाह बिल्लाह. अल्लाह ताला ने नजरे बच्चे बचाए, खाता पीता रखे.
2: बिल्कुल जी, खाता पीता रखे, अच्छा रखे जी उन्हें.
1: अच्छा भाई
2: सबको
1: मुद्दे पर आते हैं तो हमारा मुद्दा क्या चल रहा है?
2: अभी ज्वाइन किया है
0: भाई बता दें भाई क्या है?
1: भाई हमारा मुद्दा ये चल रहा है भाई कि आप जरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो स्मार्टफोन्स है ना, इसने इंसान को स्मार्ट बना दिया है या अकेला कर दिया, यानी कि इसने इंसान को कनेक्टेड बना दिया है दूसरों से या अकेला कर दिया?
2: अकेला भी कर दिया है और कनेक्टेड भी, दोनों बातें हैं जी.
1: अच्छा जी,
2: अगर इसका इस्तेमाल सही है तो आप जो है ना कनेक्टेड है, अगर इस्तेमाल सही नहीं है तो फिर अकेला ही है. ये इसके इस्तेमाल के ऊपर बात है सर.
1: अच्छा ये एक एक और बात ये है कि डिफरेंट सिचुएशंस में ना डिफरेंट तरीके से बैठता है. मैं कभी कभी सोचती हूँ जो हमारे परदेसी भाई हैं बेचारे, जो अपने घर वालों से दूर बैठे में उनके लिए तो भाई ये नेमत है, एक हकीकत बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कहूंगी कि ये जो है ना एक बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे जिनकी फैमिली यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर हैं, घर वाले यहाँ पर हैं, बैठते हैं और मोबाइल के अंदर लगे होते हैं। मतलब आप लिटरली उनके बारे में पूछे ना उनके घर वालों से, तो वो कहेंगे दीवार में और इस शख्स में कोई फर्क नहीं है, सब्जेक्ट पिछले पता नहीं कितने सालों से ऐसा ही है।

0: ना ये हिलता है ना ये झपकता है, बस ये हमें ये पता है ये सब्जेक्ट घर के अंदर रहता है, खाना खाता है, अपने कमरे में चलाता है, मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, बात नहीं करता, सब्जेक्ट ऐसा ही है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मेरा छोटा बेटा याद आ रहा है मुझे।
0: अरे ये अच्छा एक एक बात बताएं आजम भाई, एक बात बताएं कि ये माशाल्लाह से आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चों में ये
2: जी, दो बेटियां हैं जी।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: बेटा था फोत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दो बेटियां हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की अमानत है, हम सब ने जाना इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरह जी इसी तरह,
0: अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो मामला ये है कि अब देखिए बच्चों के अंदर खासतौर पर ये एक मसला आ रहा है, आपने कभी ये नोट किया है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत साइलेंट मोड पर होते चले जा रहे हैं।
2: हाँ जी,
0: कहीं ना उठेंगे ना बैठेंगे, माँ बाप के साथ भी फीलिंग्स नहीं। चले हमारे साथ तो ये था ना कि हम माँ बाप से डर के मारे फीलिंग्स शेयर नहीं करते थे कि छतरौल हो जाएगी, लेकिन आज
1: चले गए जी।
0: ओह चले गए,
1: चले गए,
0: मेरा सवाल अधूरा रह गया। मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे मैं और आप बात करें तो मेरे अपने घर में एक बड़ा मसला चल रहा है, और अब तो मैंने ये कर दिया कि कैलकुलेटिवली मैंने टाइम लगा दिया है, वीआर आ गया या मोबाइल फोन्स हो गए या आईपैड्स हो गए, इनके मैंने टाइमिंग टाइमर्स लगा दिए, भाई 3 घंटे ज्यादा आप ये यूज नहीं करोगे। उसके बड़ी चूचा होती है शुरू शुरू में, लेकिन फिर अच्छा मैंने एक और चीज एक और ट्रिक ढूंढी है भाई। बच्चे से बोलो जब तुम जो चीज यूज कर रहे हो ना उसका साइन इन टाइम लिखो और उसका साइन आउट टाइम लिखो। ओ भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसके लिए ना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी, जैसे हम ऑफिस में साइन इन साइन आउट करते हैं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बेटी का तो मुझे इतना नहीं होता, बेटियां माशाल्लाह से वैसी सांझी होती हैं, समझदार होती हैं। लड़कों का बड़ा मसला होता है भाई, आप यू वुड बी डीलिंग विद इट, लड़कों को समझाना बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी औलाद अल्लाह ताला ने ऐसी वाली दे दी समझदार कि वो भाई लिख लेता है अपना साइन इन ऑन साइन आउट। वो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल नॉट ऑलवेज बी देयर फॉर यू, सीधी सी एक बात है। मैं भी तो जाती हूँ ऑफिस, साइन इन साइन आउट करती हूँ ना, मैं भी कोई काम करती हूँ तो कुछ होता है ना, अपना टाइम नोट करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल हो गया भाई,
1: अच्छा मैं चलो करके देखती हूँ चीज, वरना छोटा
0: बुक दी
1: वो अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये हुआ है कि अब भाई बात करने लगा है दोबारा, वरना कुछ एक साल में तो इस जोन में आ गया था कि बिल्कुल ही खामोश,
0: बात खामोश तो चिढ़ जाते हैं।
1: हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा मतलब वो पुराना वाला बहाल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। वो मैं ये कहती भी हूँ घर पे कि करने दो, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि पहले जब हमारे पापा मम्मी बहुत रोक टोक करते थे ना, तो हमें कोई शौक होता था फिल्में देखने का, बॉलीवुड की हमें देखने को मिलती नहीं थी क्योंकि, लेकिन जब वो एक्सेस में आ गई तो हमने देखना छोड़ दिया। तो मैं ये देखने दो, करने दो, हाँ फिर खुद ही शौक खत्म होगा और ऐसा खत्म होगा पलट के नहीं देखेंगे किसी चीज को। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल रऊफ साहब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है,
1: जबरदस्त।
3: अच्छा टॉपिक पे मोबाइल, ये है कि उसने
1: अकेला कर दिया है या कनेक्ट कर दिया है?
3: हमें एक्सटर्नली तो कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इंटरनली डिसकनेक्ट कर दिया है।
0: अरे भाई ये बात सही है,
1: क्या बात है?
3: ये है कि बाहर तो हम कनेक्ट हो रहे हैं, और उमन आपस में भी जो ग्रुप्स होते हैं बहन भाइयों के माँ बाप के, उसमें तो बातचीत चलती है, लेकिन वो डिजिटल बात चल रही है ना, मैसेज आता है या आप ग्रुप है, लेकिन लहजे खत्म हो गए, आप मुखातब नहीं हो रहे भाई बहनों से माँ बाप से। जब आप बैठते हैं तो आप मोबाइल लेके बैठे होते हैं, हो सकता है आप उन्हें मैसेज कर रहे हो या उनका मैसेज पढ़ रहे हो, लेकिन है कि वो जो फैमिली बाउंड थी ना आपस में बातचीत खाने के ऊपर खाने के बाद, तो वो उससे डिस्टर्ब हुई है।
0: मैं
3: हो सकता है जरूरी हो, पॉजिटिव भी हो, लेकिन है कि इसका ज्यादती जो है उसका ये नुकसान हो रहा है।
1: बिल्कुल ऐसे ही,
3: जरूरी तो ये है, इसे इनकार तो नहीं है, इसके बगैर तो आजकल की जिंदगी या फंक्शंस जो है नहीं हो सकते। लेकिन ये कि इसे जितना बाहर कनेक्ट कर रहे हैं अंदर भी उतना ही कनेक्ट रखें, और आपस में जो गुफ्तगुशनीद है जो आपस में बातचीत है उसे भी करना चाहिए, इसको साइड में रखें। और अक्सर हमसे भी शिकायतें होती हैं कि पापा आप मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हमें ध्यान नहीं देते। तो ये हर घर में एक कहानी चल रही है। तो इसमें खैर हर चीज एक जैसी नहीं रहती, ये भी दौर बदलेगा, कोई और ऐसी चीज आ जाएगी। तो ये इन्वेंशन आती रहती हैं, और हर वक्त एक नया नया एक आगाज होता है। शायद ये

0: 10-15 साल में ये सिचुएशन ना हो, कोई और चीज़ इसकी जगह ले रहे, लेकिन है कि जो रिश्ते हैं या जो आपस में रिलेशंस हैं उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से.
1: जो कि बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा.
0: जी जी
1: सही.
0: ठीक है जी, बस
2: चले जी. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रूफ साहब. थैंक यू जी. थैंक यू.
0: अल्लाह हाफिज.
2: राइट जी, तो हमारे साथ है हमारे कॉलर.
1: कितनी
2: हाँ ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है. अच्छा फयाज सैयद, अस्सलाम वालेकुम. और फिर कह रहे हैं हा हा हा.
1: कौन है कौन है कौन है?
2: सैयद भाई. और वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग. असल में आजकल मोबाइल से दूर नहीं बल्कि दिल से दूरी बन गया है, मेरा ये मानना है. बाकी अपना अपना ख्याल है. हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करो, खूब मजे करो. और ये हैं कौन? ये हैं उमर फारूक.
1: दिल से दूरी बढ़ गई. दिल से दूरी भी तो इसलिए बढ़ी है ना कि वो कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाए ना किसी चीज की, उसकी कदर खो देती है वो चीज अपनी कदर.
2: बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, और मोहम्मद यूसुफ खान का भी मैसेज आ गया. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, गुड मॉर्निंग मावजी सफा जी, कैसे हैं आप दोनों? और यू मैटर में वेलकम का है. हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड.
1: मेरे वीकेंड की तरफ से जो आप बोल रहे हैं ना,
2: हाँ, मतलब अभी देखिए, मतलब क्या, संडे को ये बंदी कह रही थी संडे, मंडे को कह रही थी मंडे है, ट्यूसडे को कह रही थी ट्यूसडे, आप लोग गवाए ना. फिर वेंसडे को क्या कह रही थी कि वेंसडे. ठीक है, आज बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संडे और बीच के सारे दिन निकल गए. मतलब ये कौन से मसाइल हैं?
1: कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे ऐसा वो संडे वाली फील आ रही है, बहुत ही बुरी किस्म की
2: संडे वाली फील आ रही है. मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी को मारूं और ये बीच के दिन कहाँ चले गए मुझे पता नहीं चला.
1: मुझे ना फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बीच के दिन कहाँ गए. अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसी मुझे समझ भी नहीं.
2: कॉलर से पूछते हैं इस बात का कोई इलाज है, डॉक्टर क्या कहते हैं?
1: सबने हाथ उठा लिए.
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बात कर रहे?
1: लाइलाज. ये तो हमारी बातें.
2: कौन है भाई?
3: साहिल आजमी.
2: साहिल आजमी, क्या हाल है आपके?
3: सब ठीक है.
1: साहिल भाई मेरा वो वाला हाल है,
3: सुन रहा था आपका वाइल ड्राइविंग. मुझे ऐसा लगता है कि हम डिस्कनेक्ट तो हो गए हैं सारी चीजों से. बहुत सारे जैसे नहीं होता, बहुत कुछ पाने में
1: बहुत कुछ छूट जाता है,
3: बहुत कुछ खो गया है. जैसे वो होता है ना कि तुम्हारे जाने के बाद ये सोचेंगे कि हमने क्या क्या खोया है.
1: जाने से पहले क्यों नहीं सोचा?
3: वही तो नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे खोने के बाद हमको एहसास होता है. जैसे माँ बाप को हम टाइम नहीं दे पाते, या भाई बहनों को, या किसी जो जो भी हमको से कनेक्टेड लोग हैं. तो और ये शिकायत घर से भी आजकल सबसे ज्यादा, अगर घर से कोई शिकायत आती है जैसे हम लोग प्रदेश में है, तो यही होती है कि ये ज्यादा मोबाइल चला रहा है, वो ज्यादा मोबाइल चला रही है ना घर में. बच्चे कहते हैं भाई ये हमको क्या कंप्लेन करे, अम्मी तो खुद ही दिन भर पाकिस्तानी ड्रामे देखती है ना. तो
1: अरे भाई मेरे अब ये काम कर रहे होते हैं.
3: मैं बोलता हूँ फोन रख दो, तुम सब लोग मिलके मुझे पागल बना रहे हो, फोन रख देना तुम लोग.
1: तो मैं
3: ये चीज होती है. अच्छा अम्मी बोलती है कि इनको क्या बता रहे हो, ये तो खुद दिन भर मोबाइल में जो है वो स्ट्रीमिंग करते रहते हैं. तो बस सारे लोग जो है एक दूसरे के ऊपर उंगली पॉइंट आउट करते हैं ना. बट ये चीज है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम जब साइलेंट होते हैं, जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं तो हम साइलेंट होते हैं, राइट? बट हम साइलेंट नहीं होते, हम अंदर बहुत जोर जोर से उस चीज के लिए बात कर रहे होते हैं. हो सकता है आप झगड़ा कर रहे हो साइड पे किसी से, तो आप ये सब फील करोगे कि आप अंदर बहुत तेजी से आप बात कर रहे हो. और जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ये चलन हो गया है कि उन्होंने सारे रिश्तों से निकल के उन्होंने वर्चुअल फ्रेंड और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इस तरह की चीजें भी दुनिया में आ गई है. और वो आपसे आप उस इंसान से बात करो जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीजें बड़ी शॉकिंग है. ठीक है, तो बस ये है कि आप इस तरह का माहौल बन गया है कि अगर किसी का फोन है, तो आप कोई वीडियो देख रहे हो या मूवी देख रहे हो या कोई रिश्ता कर रहे हो आप स्वाइप कर रहे हो, तो कोई फोन आता तो आप जैसे इरिटेट होते हैं उनसे ना, क्या छोड़ो अभी नहीं उठाऊंगा इनको ना. इस तरह की चीजें हो रही है बहुत सारी चीजें, कि अगर आपको 10 कॉल आ रही है तो आप 2 उठा रहे हो, 8 को आप कर दे रहे हो, बाद में वो कंप्लेन करता है कि यार मैंने फोन कर, बोले कब फोन किया था, अरे हाँ मैं बिजी था, आप झूठ भी बोलते हो फिर उस पे. तो ये सब चीजें मैं अपनी अपनी बता रहा हूँ क्या किया था. बस हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, ये जो इंटरनेट का जो ट्रैप है इसमें फंस चुके हैं हम लोग.
1: सही बात तो आपने बिल्कुल सही की. आपने मुझे कल वाला जो है ना मेरा मामला याद दिला दिया. मुझे शाम को 5 बजे किसी ने मैसेज किया हुआ था और मैंने रात को 12 बजे सोने से पहले वो मैसेज देखा. मैंने कहा हाय, फिर मैं सबको ये कहती हूँ भाई मुझे अगर कांटेक्ट करना हो ना, मैं घर में होती ना, मेरे हाथ मोबाइल नहीं होता, मुझे कॉन्टैक्ट करना तो किसी घर वाले को फ़ोन कर लेना.

0: फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और ये रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पाते और जो फोकस नहीं कर पाते किसी की बातों पे बहुत ज्यादा, हम किसी से बात कर रहे हैं, पता चला नीचे चैट कर रहे हैं, दोनों चीजें चल रही हैं। तो अब क्या करेंगे, इंटरनेट की वजह से सारी चीजें एक साथ में जो है वो आ जाती है।
1: जो बंदा मैसेज करता है ना वो करता है कि वो उसको लगता है कि हमें उसको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ, जबकि उसी दौरान तीन लोग और बात करना चाह रहे होते हैं
0: और बात कर रहे होते हैं।
1: तो ये
0: कहीं देख लीजिए किसी ग्रुप में अगर तीन लोग सिर्फ बैठे हैं वहाँ पे एक बंदा मोबाइल चला रहा होगा, उसको आपको दो बार बोलना पड़ेगा। कोई बात
2: करें, मुझे ये बात इतनी जहर की हद तक बुरी लगती है कि ये वो चीज गुम हो गई है कि ये किसी की इज्जत पे आता है कि आप, वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। मेरे लिए अगर किसी की आपने बेइज्जती करनी हो ना तो आप कुछ नहीं करो, आप उसके सामने मोबाइल उठा लो, बस खत्म। वो इस इंसान की
1: मैसेज पढ़ने के लिए उठाऊं या ना उठाऊं, मैं ये सोच रहा
2: हूं। नहीं नहीं, वो तो एक है, हमारे मैसेजेस तो अलग है, लेकिन
0: अच्छा दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें हैं ना, जो सामने बैठा बंदा है वो सोच रहा है यार मुझे इग्नोर कर रहा है, जो मैसेज कर रहा है वो सोच रहा है मुझे इग्नोर कर रहा है।
1: यही तो यही तो मसाइल है सारे।
2: मसला पता है क्या है, मसला ये चल रहा है कि ये चीजें इंसान के पर्सनल रिलेशंस को खराब कर रही है, मियां बीवी के रिलेशन को खराब कर रही है, अम्मा अब्बा के रिलेशन को खराब कर रही है, बच्चों के रिलेशन को खराब कर रही है। बेगम कोई आपसे शिकायत करी, औरतों का पता है क्या मामला होता है, औरतों का ना दिमाग गिज-गिज होता है थोड़ा सा, तो वो कहती है सिर्फ सुन लो, उनको हल नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारनी होती, कोई सुना। मियां कहता है ना बहुत चिक-चिक करती है, अरे भाई सुन लो ना। वो सुनने के लिए मसला ये है कि मियां तो चुप करके सुन ले, लेकिन वो क्या करते हैं बीच में मोबाइल उठा लेते हैं। अरे भाई मुझे अटेंशन चाहिए आपकी, मुझे आपसे ये चाहिए। हाँ हाँ अच्छा बेगम होता है, अच्छा चलो छोड़ दो, ये हाँ हाँ करके आप बोल दो चल जाता है। भाई वो बोलने को भी कोई नहीं है तो फिर क्या होता है, बेगम है ना वो मौंजोलिका बन जाती है।
1: आजकल बहुत याद आ रही है तुम्हें,
2: मैं खुद बनी हुई ना तो मुझे पता है, मुझे अंदर के एहसास बता रहे हैं इस बात के, मौंजोलिका बेचारी कैसा फील करती होगी। तो जो है ना मुझे इस चीज़ का बहुत मोबाइल से मसला होता है, मुझे खुद भी बहुत होता है, मैं कहती हूँ इंसान को ना खाली कर, खोखला कर दिया, खोखला अंदर से फीलिंग नहीं। एक दूसरे से बात करने बैठो तो आपको समझ में नहीं आएगा आपने बात क्या करनी है, नहीं समझ आता लोगों को एक्सप्रेशन, अपने अपने अपना जो ना अपने आप अपनी जो फीलिंग्स रजिस्टर होती है ना हमारी, वो एक्सप्रेस नहीं करना आती लोगों को।
1: ऐसे ही
0: वो राज कपूर साहब का गाना उसी पे था ना, कहाँ गए वो दिन, जो सच में उस दिन को बहुत अच्छा। हाँ मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग उस जनरेशन से हैं जिन्होंने मोबाइल को इन्वेंट होते देखा है, हम लोगों ने वो घुमाने वाला फोन देखा है, गांव में एक ही फोन होता तो वहां से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो हम लोग पर बहुत टाइम होता था, हम लोग जहाँ बैठते थे 8-8 घंटे घर पे इसलिए मार खाते थे कि तू कहाँ इतने देर से बैठा था, तो दोस्तों उठा दे, तो इस तरह की चीजें होती है। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, कोई निकल ही नहीं पाता, दोस्त अगर खाली बहाना करते मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास बैठने के लिए, वहाँ चार लोग बैठे, चारों चार जगह कनेक्ट है, चार काम कर रहे हैं मोबाइल में, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कोई बात थोड़ी करता है दूसरे से।
2: हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो अरे मुझे तो वो टाइम भी याद है, हम लोग जब कुछ नहीं होता चिपकलियां मारते थे दीवार पे। किसने कितनी चिपकलियां मारी, ये भी था मोबाइल से पहले का टाइम।
0: चले गए वो सब दिन मैम,
2: चले गए। चलें जी,
0: ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए,
2: आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए। और इसके साथ ही हमारे पास है क्या, हाँ एक और कॉल है, मैसेज पढ़ दूँ पहले?
2: पहले मैसेज पढ़,
1: पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। अच्छा मैसेज है मेरे पास मुबीन बुखारी, मुबीन बुखारी ने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए, सलाम का है, सलाम मुझे तुम्हें, गुड मॉर्निंग, और फिर उसके बाद फिर
2: डांसिंग वाले मैसेज हैं कि नहीं है, भाई
1: अभी अभी तक डांस नहीं किया उन्होंने, अभी तक नहीं किया। और इसके साथ है भाई अस्सलाम वालेकुम, वाह वाह वाह वाह मोहम्मद शहजाद, और सफ़ा का इलाज यहाँ से नहीं, सफ़ा को लाहौर लेकर जाना पड़ेगा, जो दिनों को याद नहीं कर रहता।
2: समझ गई।
1: मोहम्मद हुसैन, और इसके साथ ही जी ये है मेरे पास, हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन कभी अपने पास बैठे इंसान से ये पूछने का वक्त ही नहीं होता कि आप कैसे हैं, हाय हाय हाय।
2: हाँ ये है, आप एक घर में बैठे हुए नहीं पूछते, आपको लगता है बस सब सेट चल रहा है।
1: चलें कॉल ले लें।
2: हाँ जी हाँ जी, मेरे दुख, हाय मेरे दुख।
1: अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कैसी हैं आप दोनों, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। भाई कैसे हैं आप?
3: जी
1: असमत आफरी।

0: राइट?
1: बहुत जबरदस्त। जी जी जी जी, मैं सब बोल रहा हूँ। कैसे आप दोनों? खैरियत से? हैप्पी वीकेंड आप सबको।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई
1: जी। तो आज थर्सडे है, मैंने सोचा चलो मैं भी कॉल कर लूँ। टॉपिक पे तो खैर मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, वैसे ही क्योंकि क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसे ऑलरेडी बात कर ली, आप लोगों ने भी कर ली। मैं सबके साथ इत्तेफाक करता हूँ, जितने भी बोले हैं सबके साथ इत्तेफाक है मेरा। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि वो इसका एक कॉल है अपना इश्फाक अहमद का, वो कहते हैं कि जिस खास के लिए आप आम हैं उसे आम कीजिए, किस्सा तमाम कीजिए। ठीक है,
0: अच्छा एक बात बताएं, मैं अभी अपने लास्ट टाइम भेजा था ना माफ करने पे अशफाक अहमद का कॉल, तो मैं सोच रही थी आप सही किताबों से तो ले रहे हैं ना, कहीं वो तो नहीं ले रहे जो इंटरनेट पे इधर उधर फॉरवर्ड।
1: मैं पढ़ता हूँ जी, मैं
0: क्योंकि मैं अभी पता पिछले दिनों देख रही थी कि जिस लड़की को भी ना अपने ससुराल वालों से अपने शौहर से बहुत मसाइल हों, तो वो जितने दिल की जो भड़ास है ना वो सब लिख के नीचे लिख दे बानो खुदसिया, तो ये भी हो रहा है।
1: नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। असल में वो टॉपिक जो था उस पे मेरा मौकफ थोड़ा सा, ये बहुत सारी बातों पे मुझे
0: नहीं, चले वो तो हो गया था। हाँ वो तो हो गया था,
1: वो उस पे, लेकिन उस पे फिर कभी बात करेंगे, वो कभी रख लें वो टॉपिक। अच्छा। मेरा वो जो मौकफ था वो थोड़ा मुख्तलिफ था, इंशाल्लाह उस पे फिर कभी बात करेंगे।
0: सही,
1: अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो आप लोगों की इजाजत से मैं ड्रामा पे बात करूंगा, प्लीज मुझे इजाजत दें।
0: ठीक है बिल्कुल,
1: मैं सिर्फ ड्रामा पे बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत जबरदस्त चल रहे हैं हमारे ड्रामे, खास तौर पे दरे निजात और आपकी इज्जत का तो इख्तिताम हो गया, लास्ट दो एपिसोड आई है। और उसके अलावा जो एक और ड्रामा स्टार्ट हुआ है मिट्टी दे बावे, वो भी बहुत मतलब एक पंजाबी कल्चर दिखाया गया है, बहुत रिच कल्चर दिखाया गया है उसमें। हमारे जो हीरो हैं अपने, क्या नाम है, वहाज अली, वो खास तौर पे मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स भी साथ पढ़ रहा होता हूँ इंस्टा पे और सारी चीजों पे, तो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इंडियन पंजाब का भी ताल्लुक है ये हमारे पाकिस्तान के पंजाब से, तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। और खास तौर पे जिस किस्म की प्रोडक्शन हाउस ने जिस तरह का काम किया है, जबरदस्त, बहुत आला। और इसकी जो एक्टिंग है और खास तौर पे सुहेल अहमद को जो है ना, मैं बहुत उनकी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि हमने सुहेल अहमद को हमेशा ना कॉमेडी में देखा है, वो हमेशा कॉमेडी करते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर एक्टिंग देखनी हो ना, और जो हमारी यंगस्टर्स हैं खासतौर पे जो ड्रामों में उन चीजों में आते हैं, अगर उन्होंने एक्टिंग सीखनी हो तो सुहेल अहमद की वो जो थोड़ी 2-4 मिनट की एक सीन है वो जरा देखे, उस बंदे ने किया क्या है, कमाल बंदा, मतलब कोई उसके मुकाबले में नहीं है। मतलब वो जो सामने खड़ा था वहाज, वो कुछ भी नहीं लग रहा था उसके सामने, सुहेल अहमद ने क्या कमाल किया यार, बहुत आला,
0: बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे अदाकार है
1: जी। और इसके अलावा मैं इस पे बात करना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि ये सफा जी आप शायद नहीं देखती पाकिस्तानी ड्रामे।
2: मैं टीवी नहीं देखती, मेरा मसला ये।
1: अच्छा, तो
0: ये टीवी देख ले तो मसले ना हो।
1: नहीं, ये असल में जो हमारे ड्रामे हैं बहुत पॉजिटिविटी ला रहे हैं माशाल्लाह, बहुत काम जिस तरह ये उमैर अहमद ने, ये साल तो बल्कि है ही उमैर अहमद का 2026, बहुत कमाल ड्रामे उन्होंने लिखे हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा महवी सिस्टर आपसे, ये जो जो कुछ अभी तक हुआ है इसके साथ, जरियात के साथ और जामेल का जो कैरेक्टर है और अबू बकर जिस स्टेज पे अब ये आ गए हैं, तो आपको लगता है कि अभी अबू बकर को शादी कर लेनी चाहिए उनसे?
0: अच्छा वैसे मतलब वो जो फैसला उनकी माँ के हिसाब से जो हुआ है ना, माँ ने किया ये फैसला, अबू बकर ने तो नहीं किया, तो मैं इख्तलाफ करती हूँ, मतलब एक माँ के तौर पे इख्तलाफ करती हूँ, जिसका अबू बकर जैसा बेटा हो तो वो ज्यादती है, जो मतलब जिस तरह से वो शादी करवा रही है। हाँ एग्जैक्टली, ज्यादती है मेरे हिसाब से, लेकिन खैर वो ड्रामा है, कहानी है, और फिर दूसरा ये दिखाना है कि डेफिनेटली मतलब कोई बहुत बड़े से बड़ा गुना भी हो, अगर तौबा हो, शर्मिंदगी हो, तो फिर अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है, और वो ये दिखाना है कि इंसानों को भी माफ कर देना चाहिए, तो ये वाली चीज है। लेकिन माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मुझे लगा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ज्यादती की है, खासतौर पे अबू बकर जैसे बेटे के साथ।
1: मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए था। चलो वो हो गया, उसके बाद अब जो जिस स्टेज पे अब आ गए हैं, मुझे लगता है अभी अबू बकर को पीछे हटना चाहिए,
0: नहीं हटेगा, जाहिर सी बात है नहीं हटेगा,
1: क्योंकि वो उसने शादी के लिए देखे हाँ कर दी है, मिला भी है उनसे, सारी कुछ बताई, अपनी शर्तें भी बताई कि ये मेरी शर्तें हैं, ठीक है। पास्ट में उसने उसने कहा तुम मुझे जज नहीं करोगे मैंने पास्ट में क्या क्या कुछ नहीं किया है। उसने कहा पास्ट ने तुम्हें जो भी कुछ किया है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे अभी प्रेजेंट में रहना है, अब तुम क्या हो।
0: मेरा ख्याल है वो करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टीजर दिखा रहे हैं ना उसमें वो एकदम से चीखता है इस बात के ऊपर कि चलो उसके माजी को तो मैं भुला भी दूं लेकिन मैं प्रेजेंट का क्या करूं, मैं हाल का क्या करूं इस वक्त वो जो कर रही है। तो उसके ऊपर अब खुशबख जो है ना वो अपनी कहानी सुनाएंगी, पास्ट सुनाएंगी, उसके बाद फिर ये शादी करेगा जो मुझे लगता है। अब जो अभी तक वो चल रहा था कि क्या हुआ इनके पास्ट में क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो वो अब हमें रिवील होगा इधर। मुझे
1: नहीं, मैं मतलब मैं इस पे हैरान हूँ कि ये जो लड़की है ये इतनी बेवकूफ है, लड़कियां इतनी बेवकूफ होती नहीं है, ये कितनी
0: लड़कियां तो बहुत मतलब बेवकूफ होती हैं,
2: मोहब्बत हर किसी को अंधा बना देती है,
0: लड़कियां तो शदीद किस्म की बेवकूफ होती हैं।
2: आपने कभी सुना है कि औरत जब वो इमोशनल बीइंग है,
0: हाँ हाँ हाँ, इधर इधर इधर आप सफा की राय लें, ड्रामे नहीं देखती है, लेकिन देखती आप,
2: लेकिन मैंने मैंने मैंने एक एक बात एक जगह सुनी थी और पढ़ी नहीं पढ़ी थी और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आदमी हमेशा आंखों से मोहब्बत में पड़ता है, औरत हमेशा कानों से। अभी समझने वाली बात
1: लेकिन
2: है।
1: बहुत बड़ी, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो उन्होंने किया है जरियाब ने, ठीक है आपका सब कुछ हो गया, उसने बेवफाई की आपके साथ, बल्कि आपकी बेइज्जती की है सबके सामने, और आपको तानी भी दे रहा है जामिल कि तुम अगर अबू बकर से भी शादी करना चाहो तो कर सकती हो, मैं देखता हूँ तुम कैसे करती हो, ठीक है। उसके बावजूद वो बंदा फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गया है और ये उसको कह रही है कि तुम आ जाओ, 4:30 बजे मेरा निकाह है और उससे पहले तुम पहुंचो, अगर तुम आ गए तो मैं अबू बकर को छोड़ दूंगी। मतलब ये क्या, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया यार,
2: ड्रामा है ना। तब अब आपको चल रहा है मैं ड्रामे क्यों नहीं देखती, अब आपको पता चल रहा है।
0: लेकिन ये हकीकत में भी होता है इस तरह से, मतलब अगर कहीं पे हो ना, मतलब मोहब्बत हो, जिससे मोहब्बत हो तो उसके लिए फिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, वो अभी तक उसकी मोहब्बत में है,
2: इश्क हो जिससे,
0: तो वो बेसिकली उससे उसको मोहब्बत है, वो शादी तो कर रही है लेकिन मोहब्बत उसको उसी से है, तो बस फिर तो कुछ भी हो सकता है।
1: कह सकते हैं लेकिन बहरहाल मुझे नहीं, वो
0: डिजर्व भी वो उसी को करती थी, उन्हीं ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये कि खैर चलें जी, तो ये सीन।
1: लेकिन जामिल और खास तौर पे मैं मेंशन करूंगा नमीर, नमीर ने जो एक्टिंग की है यार, मतलब अनबिलीवेबल, इस तरह उसके वो इमोशन, वो आंखों से जिस तरह वो कहते हैं ना आंखों से एक्टिंग करना, वो उस बंदे ने जब वो वापस आया है अपने कमरे में और वो बिस्तर में सर दे के, वो तकिए में सर दे के जैसे वो चीखा है, मतलब मैं हैरान था, मैंने कहा यार अबू बकर बहुत बड़ा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है उसका, लेकिन एक्टिंग में वो भी उसके सामने कुछ नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल, नमीर बहुत जबरदस्त एक्टर है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे
1: कमाल एक्टिंग है और बहुत बेहतरीन ड्रामे। बस सजेस्ट करने के लिए मैं ये थर्सडे को कॉल करता हूँ,
0: बिल्कुल ठीक है,
1: आप लोग जरा देखें, आप लोग बात करें इस पे थोड़ी बहुत, तो बाकी क्योंकि पहले तो बहुत कॉल आती थी इसलिए मैं कॉल करता नहीं था ड्रामे पे, अमजद इकबाल साहब थे और उसके अलावा वसीम साहब कॉल करते थे और अनिका जी करती थी, ये सारे लोग करते थे ड्रामों पे बात, अब कोई करता ही नहीं है इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूँ थोड़ी बहुत बात मैं कर लेता हूँ।
0: चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेसिकली एक जमाने तक लोगों को आदत रही है मैं हर थर्सडे को लाजमी ड्रामों के हवाले से बात करती थी, लेकिन अब हम मेरे साथ ही ड्रामे में कह रही हूँ ना, तो फिर मैं क्या ड्रामे के ऊपर बात करूं, तो ये तो नहीं हो पाएगा।
2: थैंक यू। एक जमाना था जब लोग जो है ना इंस्पायर होते थे बड़ी स्क्रीन से, गोल्डन स्क्रीन से, अब लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ते हैं शो में।
0: या अल्लाह। अच्छा वो नसीम का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि आप छुट्टी कर लो, दादी अम्मा को 1 घंटा 4 दिन के बराबर हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं, सफा मुझे बहुत मिस करती है और सफा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं छुट्टी करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना वो नहीं बने बीच में लड़ाई करवाने वाले,
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, खाला अम्मा ना बने ना,
0: मौला
2: खैर
0: अम्मा, हाँ वो बनने की कोशिश ना करें हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब नहीं होंगे ना, तो फिर अगर मैं नहीं आई तो वाकई सफा को 4 दिन के बराबर इसलिए लगेंगे मुझे मिस करेगी।
2: यस
0: ऐसे ही ना,
2: और ये बात मैं पहले बोल चुकी हूँ, एक दिन छुट्टी की थी तो मैंने कहा था भाई देखो नौकरी लग रही है अब, ये नौकरी लग रहा है अब।
0: हमारे साथ कॉलर है, बस ये कॉल लेते हैं फिर सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, खैरियत
2: जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हैं, मुझे हिसाब करने दें, ये कल भी इनकी कॉल आई थी, मैं कैसे नाम भूल गई,
0: मुझे भी नाम भूल जा रहा है, आ रहा है नाम जा रहा है। आजम, आजम खान नहीं, आजम खान की तो आ नहीं गई शुरू में,
2: हाँ
0: फिर कौन,
2: मोहम्मद आजम की कॉल आ गई थी। अरे कल हमने
0: आरिफ, आरिफ नहीं अंसारी हैं,
2: आसिफ अंसारी,
0: आसिफ अंसारी।
2: आसिफ भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: तो भाई आप मौजू ये चल रहा है, मौजू ये चल रहा है कि आप जरा बताएं आपको क्या लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है जिसको हम स्मार्ट कहते हैं और 24 घंटे अपनी उंगलियों के बीच में हमने इसे रखा हुआ है, तो बताएं जरा इसकी वजह से हम लोगों से ज्यादा कनेक्टेड हो गए या हम दूर हो गए, अकेले हो गए? अकेले
1: अखलाकी तौर पे लोगों से दूर हो गए, ठीक है। ये वो बीमारी है जिसको हमने अपनी जिंदगी का,
2: आई लाइक इट,
1: अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, एक आदत बना ली है, ठीक है,
2: सही।
1: एक उर्दू में बोलते इल्लत और एक होती आदत। इल्लत तो खत्म हो सकती है लेकिन आदत बहुत मुश्किल से जाती है, ठीक है। लोगों से दूर हो रहे हैं, चार लोगों में बैठे हुए हैं, हर पांच मिनट के अंदर हमें मोबाइल की स्क्रीन देखनी देखनी है, अपनी दुनिया में। आज हमें एक टाइम था जब मैं फर्स्ट टाइम गल्फ में आया था 2004 में, उस टाइम पे हम सारे दोस्त जो है सऊदी अरब में गया हुआ था, तो हम सारे दोस्त काम करने के बाद, तो उसके बाद हम लोग सारे दोस्त बैठ के एक दूसरे से बात करते थे। आज एक टाइम है कि अकेला ही बंदा काफी है, उसको फोन होना चाहिए, वो अपने रूम में पड़ा हुआ टाइम पास हो जाता है, सुबह कब होती है शाम कब होती है, 12 एक एक बजे तक मोबाइल देखते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के ड्यूटी, ठीक है। ये एक बहुत बीमारी लग गई है हमें।
2: अच्छा,
1: और हमें नहीं मतलब बच्चों को भी।
2: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जो है ना वो कभी डाउन फील कर रहे हो? कुछ होता है ना, इंसान फाइनेंशियली भी डाउन फील कर रहा है या कुछ जो है ना इमोशनली डाउन फील कर रहा है, जैसे आप सोशल मीडिया खोलो ना तो आपको ऐसी ऐसी रील्स आना शुरू होती हैं जो आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में डाल देती हैं। आप कहते हो भाई ये कैसे जिंदगी चमक चाल वाली जी रहा है, मैं ये बैठा हूँ उजाड़।
1: बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप कुछ भी, एक चीज आपने देखी, स्मार्टफोन जब से आया हमारे पास, हम किसी से भी बात कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे,
2: हम स्मार्ट है,
1: ठीक है। लेकिन किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हो, दो चार लोगों से बात करी, ठीक है, उसके बाद देखो फोन में वही चीज आने लगती है।
2: हाँ, वो आपका माइक्रोफोन डिटेक्शन ऑन होता है। हाँ जी, वो है, वो हाँ, वो हम खुद देते हैं परमिशन।
1: अभी हमें, मुझे एक फ्लैट लेना था इंडिया के अंदर, ले रहा था, तो मैं ऐसे ही लोगों से फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने फेसबुक ओपन किया और इंस्टा ओपन किया, देखा उस पे ज्यादातर रील जो है
2: वेकेशन की, सॉरी ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे अभी पिछले हफ्ते ना दोस्त आए थे, तो वो उनको जाना था थाईलैंड, कहते थाईलैंड चलते हैं सस्ता है, घूमेंगे फिरेंगे। मैंने कहा देखो ऐसी बातें नहीं किया करो, जेब आजकल सबकी हल्की चल रही है, हमने बात करके खत्म कर दी, ठीक है। अब 15 मिनट बाद हमने फोन उठाया तो दे वेकेशन यहाँ जाओ, ये वेकेशन यहाँ जाओ, यहाँ सस्ता है, यहाँ ये है।
1: ये एक तरह से सही बात है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, और मेरी समझ से इसको हम लोगों को, अब तो खैर दूर नहीं हो सकती, लेकिन
2: नहीं नहीं हो सकती भाई, हो सकती है, हो सकती है, इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए काबू, हो सकती है।
1: एक चीज आप, एक चीज मैं आपको एक बात बता दूं, आप नमाज पढ़ रहे हो एग्जांपल, लेकिन नमाज के जस्ट बाद बंदा जो है मस्जिद से निकलते ही मोबाइल पहले हाथ में निकालता है, ठीक है। ये एक तरह से शैतान हमारी जिंदगी में बुरी तरह से
2: मैक्सिमम लोग यही काम कर रहे हैं। मैक्सिमम
0: लोग कहते हैं ना कि वो मोबाइल उठा के ऐसे देखते हैं जैसे नोटिफिकेशन आएगा कि नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है।
1: बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि मस्जिद के अंदर ही जब तक वो खुतबा हो रहा है वो अपने मोबाइल में देखा करते हैं।
2: सही,
1: तो ये सारी बहुत
2: कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है,
1: लग गई है, और अखलाकन घर वालों से दूर हो गए, अपने दोस्तों से दूर हो गया बंदा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। आप किसी के पास भी फोन करके देख लो 10 मिनट से ज्यादा, यार ठीक है वो मैं बिजी हूँ थोड़ा, उसके पास वेला बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, लेकिन उसे जो है 5 मिनट बात नहीं करनी है।
0: बिल्कुल। चले जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें एक गाने की तरफ जाने, तो बस हम ब्रेक लेंगे, ठीक है, चले नहीं, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सफ़ा ने कंफर्म किया, समद अफरीदी भाई आपके लिए मैं खास तौर पे बता रही हूँ कि जो मैंने कही थी ना बात, वो सही है कि लोग अपने दिल की भड़ास निकाल के बानो कुदसी और अशफाक अहमद का नाम लगा देते हैं, ऐसे ही है। वो नहीं बोला अशफाक अहमद ने, क्योंकि वो कोड सफ़ा ने गूगल किया तो पता चला कि नहीं भाई ये जो है ना एमी उनके
2: नाम पे लगा
0: नाम पे लगा दिया
2: हमारे नाम पे था ना अहमद फराज ने कहा
0: अहमद फराज अहमद हर हां ये शायरी अहमद फराज पे चल रही थी तो आजकल ये जो है ना अशफाक अहमद का और बानो कुदसिया का चल रहा है ऐसे ऐसे दुख होते हैं उसके नीचे जो है ना बानो कुदसिया लिखा होता है लोग कहते हैं ओके वेरीफाइड
2: कुदसिया का जो असली में पढ़े ना तो वो हमारे लिटरेचर में हमारे उर्दू के लिटरेचर में पढ़ाया नहीं गया अगर कोई असल में पढ़े ना मुझे उर्दू लिटरेचर से खार आती थी जब तक मैंने पढ़ा नहीं था और जब मैंने शोज बनाना शुरू किया और जब मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ना शुरू किया मैंने कहा भाई ये कहाँ थे इनकी तो इनकी चीजों की मोहब्बत ही अलग है ये तो अलग ही उर्दू की दुनिया है तब जाके मुझे और
0: अशफाक अहमद खास तौर पे मतलब वो उनकी बड़ी अलग पर्सनालिटी है मुझे वो माफी वाली बात पे इसलिए शक हुआ था क्योंकि अशफाक अहमद ने एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है बहुत मतलब ये दोनों मियां बीवी इनका एक अलग ही लेवल है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ये बात अशफाक अहमद ने नहीं कही होगी तो अशफाक ये असमत अफरीदी आप ना कहीं गलत जगह से ले रहे हैं
2: रॉन्ग नंबर लग रहा है रॉन्ग नंबर
0: चलो नहीं हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: जी राइट वेलकम बैक। हम एक दफ़ा फिर से आ गए यहाँ पे और हमने आपसे पूछा था कि मोबाइल फ़ोन ने आपको अकेला कर दिया है या फिर कनेक्टेड, तो इसका आपने जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम सफा जी, कि इस बात पर मैं 100% सहमत हूँ, बॉयज आर फॉलिंग लव इनटू आईज एंड गर्ल्स आर फॉलिंग लव इनटू ईयर्स।
3: हाँ वो मैंने एक बात बोल दिया कि
2: जी बिल्कुल, एक गर्ल को फेस टू फेस अप्रोच करें तो
3: यहाँ बात कुछ और ही निकल रही है भाई।
2: हाँ
3: नहीं नहीं, मैंने एक बात बोली थी,
2: क्या आगे क्या लिखा है,
3: ये एक मुहावरतन बात बोली जाती है कि माइंडसेट कुछ ऐसा होता है।
2: शेख इरफान का मैसेज था वैसे,
3: ये जो है ना माइंडसेट ऐसा होता है, वो माइंडसेट के बारे में बात बोली थी कि ये मैंने जगह बात पढ़ी थी असल में, बहुत बहुत खूबसूरत बात लिखी थी और मैंने जब इसको इवैल्यूएट किया ना, मैंने कहा ये हकीकत बात है, औरत जो है ना वो वादों से बातों से बहल पुसल जाती है और मर्द जो होते हैं ना वो ब्यूटी से फॉल इन करते हैं, तो वो एक है बात,
2: फैक्ट
3: है वो, एक
2: ऐसे ही है।
3: तो वो मैं एक बात पढ़ी थी, मैंने कहा उस वक्त जो मौजू चल रहा था ना हमारा, तो मैंने कहा उस वक्त मुझे बात याद है कि ये ड्रामों के बारे में जो बात कर रहे थे तो उससे पता चला। खैर हम मुद्दे पर आते हैं भाई, मुद्दा हमारा ये चल रहा है कि जरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा स्मार्टफोन है इसने हमारी स्मार्टनेस खींच ली है और ये जो ना अपने में अपने आप को स्मार्ट बना लिया है इसने हमें छोड़कर, तो आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन के आने के बाद से हम लोग ज्यादा लोनली हो गए या ज्यादा कनेक्टेड हो गए?
2: हेलो
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
4: कैसे हैं? खैरियत से हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
4: ये डिवाइसेस, ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान के इस्तेमाल की मोहताज होती है,
3: टूल हैं, टूल
4: टूल्स हैं।
3: हाँ
4: ये तो सिंपल मिसाल जिंदगी में लें, बड़ी तो छुरी की आती है कि उसके बिना गुजारा नहीं, किचन में हर काम इस तरह है, तो दूसरी तरफ हम अपने हाथ को भी कटने से बचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान ना दें। तो अभी जैसे मेरी तबीयत खराब थी ना, मैंने एक मेरी अपनी फीलिंग है, इवन बचपन से भी, बचपन में मैं ऐसा था अम्मा का बाजू पकड़ के
3: सही हो जाएगा सब कुछ
4: लेना
3: सब कुछ सही हो जाएगा।
4: अभी भी मेरी ऐसी तबीयत हो तो मेरा होता है कि सारे बस मेरे आसपास रहो, कोई
3: सही
4: तो ऐसी कैफियत फिर वो चीजों के नहीं, इंसान इंसान ही है, इंसान चीजों का नेमुल बदल नहीं हो सकते। हाँ एक वक्त है, ये जो यंग एज है, टीन एज है, ये एक महविश को याद हो हमारे आमिर साहब आते थे, वो बताते थे, बोलते थे इस एज का एक वो तकाजा है, अल्लाह ने एक रखा है, क्योंकि उस एज में उन्होंने कुछ करना होता है, अगर वो उस वक्त जुड़ जाएं तो वो कुछ कर नहीं सकते, यानी अल्लाह ताला ने रखा है। माँ बाप से ना बच्चे इस एज में इतनी अटैचमेंट उनको नहीं होती, 30 या 35 के बाद उनको फीलिंग डेवलप होनी शुरू होती है, वो रीथिंक करना शुरू करते हैं। यस, इस वक्त उनकी फीलिंग यानी बड़े एक तरह से आपको ना वो लगते हैं खुदगर्ज टाइप हो जाते हैं इन चीज़ों में, और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इसका भी तकाजा है। हाँ इसको रेगुलराइज किया जाए, मॉनिटर किया जाए सही गलत और लिमिटेशंस में, तो नेचुरली अट्रैक्शन फील होती है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं उनको देखें, गाने, प्यार मोहब्बत, अफसाने, किस्से, ड्रामे, तो वरना एक जमाना था वो अपने कार्टून देखने, दूसरी गेमें देखने नहीं है, तो आप
3: मैं तो देखें भी कार्टून देखकर खुश होती हूँ अल्लाह माफ करे
4: नहीं कोई कार्टून वाकई बड़े मजे के होते हैं रियली।
3: हाँ हाँ मजा क्या ये होता है अक्सर औकात, जैसे मैंने बड़ों को भी देखा है कि अक्सर औकात बच्चों के लिए कार्टून लगाए हुए होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉडलर्स होते हैं उनके कार्टून हम देख रहे होते हैं बैठे,
2: बच्चे नहीं देख रहे,
3: बच्चे नहीं देख रहे होते।
4: तो बाकी आप वो जो बातचीत चल रही थी, वाकई फराज ने हमें बड़ा इंटरटेन भी किया है
3: मीम्स, हमारे पास जो मीम्स का दौर शुरू हुआ था ना वो फराज से हुआ था, अहमद फराज से।
2: एग्जैक्टली
4: वो कहते हैं ना, हम किसी की दोस्ती के मुंतजर नहीं है, फराज जो हमें छोड़कर जाएगा वो इंशाल्लाह रिक्शा ही चलाएगा
3: ये सही था।
4: बड़ी एक बड़ी लोगों को ना क्रिएटिविटी और जरा है, चलो इस बहाने कुछ बंदा
2: पता नहीं, दूसरी बात समझ में नहीं आई थी कि अहमद फराज ने से किया क्या था, ये सब उनके पीछे पड़ गए थे अचानक से कुछ हुआ था
3: वो मैंने मुझे ऐसे ही वाला ना एक और याद आ गया कि वो बड़ा मशहूर हुआ था कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाऊंगा मैं तो ड्राइवर हूँ कट मार के निकल जाऊंगा ये क्या कर दिया शेर का
4: हाँ जैसे वो कहते हैं ना जो लोग पानी में एल्फी डालकर नहाते हैं फराज वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते
3: अरे भाई थर्सडे बना दिया इन्होंने थर्सडे
2: क्या बात है
4: एंटरटेनमेंट ये इस तरह एंजॉयमेंट हो अच्छा
3: हमारे टाइम का जोक्स अपार्ट हमारे टाइम के जो मीम्स थे बड़े मजे के थे भाई बहुत मजे के भाई मतलब उनके अंदर कोई ऐसी वल्गैरिटी भी नहीं थी लेकिन मजा जो था ना उसका हम कहते ना अन्नी बात हो अन्नी
4: वो कहते ना यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज अब लो जोंग और सब कह दो
2: या अल्लाह सब याद किए हुए
4: ये छोटे मुझे वो मैसेज ना याद आ रहे थे एक जमाने में जिस तरह चल रहे थे मैंने आपकी बात सुनी मैं अगर रिव्यू करूं जरा क्या मजे की चीजें कुछ पकड़ो
2: क्या बात है जबरदस्त
3: नहीं
2: वो टॉपिक ना दोबारा रखे अगले हफ्ते मसला ये है कि हमारे अगले हफ्ते की उसके अगले हफ्ते के टॉपिक हो चुके हैं आज मुझे सुबह ईमेल मिली सफा की उससे अंदाजा हो गया कि 11 से 15 तक के भी हो चुके हैं तो अब माफी आगे ही कभी आएगी कभी बाद में आएगी
3: हमें माफ कर दें 15 तारीख के बाद माफी मांगे
2: बिल्कुल और बात असल बात ये नहीं है कि माफी वाला टॉपिक असल बात ये है कि अशफाक अहमद के साथ प्लीज ज्यादती ना करें उनकी जो बातें हैं ना वो जो उनकी हैं उन्हीं को कोट करें वरना ये अहमद फराज वाला हाल ना करें उनका
3: वो कहते हैं ना इंफॉर्मेशन जब हर तरफ से दस्तियाब होने लगे ना तो खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको ये रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल ऑथेंटिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: एग्जैक्टली
3: अक्सर औकात अगर आप सर्च इंजन में जाकर कोई चीज़ होता है ख़ास तौर पे क्योंकि होता है सोशल मीडिया का दौर है ना ख़ास तौर पर मेरी एक हैबिट बन गई जब भी कोई मुझे कोई बात बोलता है ना और वो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए या बुरी भी लगे तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा तफ़सरा करने से पहले एक दफ़ा उसको
2: देख लेना चाहिए
3: आप जो ना एक दफ़ा देख लो और मल्टीपल सोर्सेज से देखो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट का पता चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है मल्टीपल सोर्सेज से पता चलता है
2: नहीं वो जो डाउट हुआ था क्योंकि अशफाक अहमद का वही बात वही है भाई लेवल एक अलग है तो उनसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है मेरी तो खैर जी तो इसी के साथ यहाँ पे हो जाता है हमारा वक्त तमाम आप लोगों को एक दफा फिर से हैप्पी वीकेंड मतलब हमारे शो का वक्त तमाम एक दफा फिर से आप लोगों को हैप्पी वीकेंड ये बीच में बोलती रहेगी इसलिए मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी मैं तो मैं बिल्कुल बस यही कहना था और कुछ नहीं कहना था
3: देखो जब मैंने मौका दिया तो फिर इनको मौका चाहिए नहीं चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें वीकेंड एंजॉय करें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी
2: अल्लाह हाफिज़ बाय बाय

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

पर असर पड़ेगा या नहीं? असर तो भी पड़ेगा, आप हजारों लेक्चर सुनेंगे और वाह वाह कहेंगे काफी सारे, यानी आपको वक्ती तौर पर आपको ऐसे असरात आप में दिखेंगे, ठीक है। तो वही की अजीम नेमत जो हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला इंसान की कमजोरी जानता है, वो जानता है कि इंसानी जहन बाहर से आने वाले ख्यालात से मुतासर होगा, इसीलिए उसने इंसान को महज उसके अपने महदूद जहन के हवाले नहीं कर दिया, आसमानों के ऊपर से वही उतारी ताकि इंसान के जहन में दाखिल होने वाली बुनियादी गिजा ये हो, ताकि कुरान उसकी सोच को तरतीब दे, उसके पैमाने दुरुस्त करे, उसे बताए कि हकीकत को किस जाविये से देखना है, उसे सिखाए कि किस चीज को बड़ा समझना है और किसको छोटा, किससे मोहब्बत करनी है और किससे बचना, किसके लिए जीना है और किसके सामने एक दिन खड़ा होना है। और इसी हकीकत को कुरान एक इंतहाई खूबसूरत ताबीर में बयान करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहू आबिदून। अल्लाह का रंग और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है? सामिन किराम, यहीं से आज की गुफ्तगू का एक मरकजी तसव्वुर सामने आता है। सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, जैसे रंग किसी कपड़े में उतर जाए तो उसकी जाहिरी सूरत बदल जाती है, उसी तरह वही जब इंसान की फिक्र में गहराई से उतरती है तो उसके सोचने का अंदाज बदलने लगता है, फिर कुरान फैसलों में नजर आने लगता है, रद्द अमल में दिखाई देता है, जिंदगी के इंतखाब में बोलने लगता है। ये है कुरान का रंग, ठीक है। अब एक फैसला आपको करना है। अगर आप अपने जहन को वही के सामने पेश करेंगे, कुरान को वक्त देंगे, उसके मानी को समझेंगे और उसे अपनी फिक्र की तश्कील का हक देंगे, तो रफ्ता रफ्ता आपकी सोच पर सबगतुल्लाह नुमाया होगी। लेकिन अगर ये जगह खाली छोड़ दी तो जहन खाली नहीं रहेगा, कोई दूसरा रंग वहां आ जाएगा जरूर। सोशल मीडिया अपने ख्यालात देगा, गालिब ट्रेंड अपने पैमाने बता देगा, किताबें, यूनिवर्सिटी, मीडिया, माशरा, दोस्त, मशहूर शख्सियत और एल्गोरिदम, हर तरफ से ख्यालात आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ ये कहना मकसूद नहीं कि तमाम जराए की हर बात लाजमन गलत है, मसला यह है कि आपका बुनियादी मीज़ान कौन है, कौन तय करेगा कि आने वाले ख्याल में क्या कबूल करना है और क्या रद्द करना है। अगर कुरान मीज़ान है तो दूसरी मालूमात को भी उसी रोशनी में परखा जा सकता है, लेकिन अगर मीज़ान ही बाहर से बन रहा हो तो फिर रफ्ता रफ्ता कुरान को भी उसी बाहर से बने हुए जहन के सामने पेश किया जाने लगता है और ये तरतीब उलट जाती है। कुरान को हमारी फिक्र के मुताबिक नहीं ढलना, हमारी फिक्र को कुरान के नूर में संवरना है। एक रिवायत में कुरान को अल्लाह की तरफ से जमीन पर पेश की गई मदुबा यानी जियाफत से ताबीर किया गया है। वो जरा इस मंजर को तसव्वुर कीजिए, दस्तरखान बिछा हुआ है, गिजा मौजूद है, लेकिन दस्तरखान के सामने बैठना आपको है। अब सवाल यह है, आप अपने जहन को किस दस्तरखान पर बिठाते हैं? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले किसकी आवाज जहन में दाखिल होती है? दिन में सबसे ज्यादा अल्फाज किसके सुनते हैं? हफ्ते भर में कितने घंटे दूसरों के ख्यालात को देते हैं और कुरान को कितना वक्त देते हैं? तो ये दरअसल जहन की तश्कील का हिसाब है, क्योंकि जिस जरिए को आप बार बार अपने जहन तक रसाई देंगे वो रफ्ता रफ्ता आपके अंदर जुबान, तरजीहात, तसव्वुरात और फैसलों का एक सांचा बनाएगा। फिर एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि ये मेरी अपनी सोच है, हालांकि कभी वो सोच बरसों से मुसलसल आने वाले मवाद का नतीजा होती है। इसलिए सवाल बहुत संजीदा है कि आपने अपने जहन की चाबी किसके हाथ में दी है। अब जरा एक और सवाल अपने आप से कीजिए कि हर कलाम हमें नहीं बदलता। हम रोजाना सैकड़ों जुमले सुनते हैं ना, खबरें, वीडियोस, पोस्ट, गुफ्तगू, किताबें, मगर हर जुमला तो हमारी जिंदगी का रुख नहीं बदलता। अगर हर बात हमें बदल देती तो सुबह हमारा एक नजरिया होता, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा और रात को चौथा। ऐसा नहीं होता है, कुछ खास किस्म का कलाम होता है जो हमारे अंदर उतरता है, जो अकल को कायल करे, दिल को छोए, बार बार सामने आए, हमारे सवालात का जवाब दे दे, हकीकत की नई तस्वीर दिखा दे। तो ये बातें जो है ना रफ्ता रफ्ता हमें बदलने लगती हैं। तो सवाल ये कि आखिर वो कौन सा कलाम है जो मुझे वाकई बदल सकता है? और इसीलिए सामने करना आप देखेंगे कि अहले इल्म में बहुत से लोग यानी बाज़ अहले इल्म ऐसे काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हर शख्स हर मुकर्रर से यकसां मुतासर नहीं होता। किसी आलिम की गुफ्तगू आपको बहुत बदलती है, जबकि दूसरा शख्स इल्म व फजल अपनी जगह पर है, आपके कल पर वही असर नहीं डालता।

सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला। रब्बी, ए मेरे रब, इरहमहुमा, मेरे वालिदैन पर अपनी खास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। सामिने किराम, ये दुआ हमें याद दिलाती है कि वालिदैन के एहसानात का बदला देना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम तर खिदमात के साथ साथ ये बड़ी खिदमत भी है कि उनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ की जाए। इस दुआ में बचपन की याद दहानी है। कुरान ने इंसान को उसकी तफुलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था और वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। इसी तरह इस दुआ में इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए और उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है। तो इस तरह सामिन, वालिदैन की खिदमत नेकी का काम है और उनकी नाफरमानी गुनाह कबीरा है। औलाद का फ़र्ज ये बनता है कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दीं, वैसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। तो आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि वालिदैन

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Your health matters.
2: Assalamu alaikum listeners. Aaj ka mauzu aisa hai jis par log aksar khulkar baat nahi karte, lekin ye masala bahut aam hai aur wo hai constipation yani kabz. कॉन्स्टिपेशन को अक्सर अफराद सिर्फ ये समझते हैं कि कई दिन तक टॉयलेट ना जाने को ही हम कब्ज कहते हैं, लेकिन हकीकत में बॉयल हैबिट्स जो हैं वो हर शख्स की मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसमें पाखाना सख्त हो जाना, टॉयलेट जाने में मुश्किल होना, कुछ जोर लगाना या महसूस होना कि जो आपकी बाउल है वो मुकम्मल तौर पर एम्प्टी नहीं हुई, खाली नहीं हुई, ये तमाम जो मसले हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मसलन हमारी खुराक में फाइबर का कम होना, पानी कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, टॉयलेट की हाजत को बार बार रोक देना, रूटीन में तब्दीली होना जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या स्ट्रेस है, और बाज़ मेडिसिन्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब सवाल ये है कि कब्ज़ से या कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी खुराक को देखना है। हमारी ग़िज़ा में फाइबर की मुनासिब मकदार ज़रूरी है। उसमें फल, सब्ज़ियाँ, दालें, होल ग्रेन्स, बीन्स और दूसरे हाई फाइबर फूड्स हैं वो इस सिलसिले में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर खाना शुरू कर दे और उसके साथ वो जो पानी है कम पिए या जो फ्लूड्स हैं वो मुनासिब ना ले, तो बाज़ औक़ात ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकती है। इसलिए फाइबर को आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा कीजिए। दूसरी अहम चीज़ है पानी, और जो मुनासिब जो लिक्विड्स हैं या फ्लूड्स हैं वो हम दिन में कितनी बार लेते हैं। अगर आप कम पानी ले रहे हैं तो फिर अपनी जो हाइड्रेशन हैबिट्स हैं यानी पानी पीने की जो आदत हैं उन पर तवज्जो दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप जो है वो ज़्यादा मुतहरक हैं, आपकी मूवमेंट ज़्यादा है, और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई घंटे मुसलसल बैठे रहना बहुत आम है, तो रोज़ाना फिज़िकल एक्टिविटी, वॉकिंग और एक्टिव रहना जो हमारी बाउल हैबिट्स हैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। एक और अहम बात है कि टॉयलेट की हाजत को बार बार ना रोकना। अगर जिस्म हमें सिग्नल दे रहा है कि टॉयलेट जाना है तो मुसलसल डिले करना कोई अच्छी आदत नहीं है। बस अफराद सुबह के वक्त एक रेगुलर टॉयलेट रूटीन होती है अफराद की और वो मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है, कभी कभी टॉयलेट ट्रेनिंग, कम पानी पीना, कम फाइबर या रूटीन की तब्दीली से भी हो सकती है। अगर बच्चा मुसलसल दर्द की शिकायत करे, टॉयलेट से डरे या बार बार कब्ज हो, तो वालिदैन को पेडियाट्रिशियन से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। बुज़ुर्ग अफराद में भी जो कब्ज है वो आम हो सकती है, खासतौर पर अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम हो या वो कुछ मखसूस मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों। अगर जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, अचानक शुरू हुई हो और शदीद पेट का दर्द हो, वॉमिटिंग हो और इसी तरह से बहुत ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हों, तो फिर आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब ज़रा हमें अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक है उस पर नज़र डालनी है कि क्या हम अपनी प्लेट में सब्जियां शामिल करते हैं, क्या आप और हम रोज़ाना फ्रूट खाते हैं, क्या होल ग्रेन या दालें अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, क्या दिन का ज़्यादा हिस्सा बैठकर गुजारते हैं। अगर इन सवालों में कई का जो जवाब नहीं है तो फिर छोटी सी तब्दीली से हम अपनी बेहतर हेल्थ जो है उसे शुरू कर सकते हैं। खुराक में फाइबर वाली चीज़ें शामिल कीजिए, पानी मुनासिब मकदार में पीजिए, रोज़मर्रा वॉक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन बना लीजिए और टॉयलेट की जो हाजत है उसे मत रोकिए। तो आज का जो बहुत ही एक आसान सा हेल्थ मैसेज है वो ये है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वही अटेंशन दीजिए जो हम जिस्म के दूसरे हिस्सों को देते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन कभी कभार हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस मददगार हो सकती हैं, लेकिन अगर मसला बार बार हो या वार्निंग साइंस जो हैं वो मौजूद हों, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और याद रखिए, योर हेल्थ मैटर्स।
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. Kaash main aise announce kar pata aise kuch, but anyway, you get the point. Jab bhi main aunga to kuch na kuch aapko aise bata ke jaunga jo aap ya to sochne mein majboor ho jayenge ya phir abhi type karke dekh lenge ye kya keh raha hai. To aaj bhi main aapko kuch websites bataunga, kuch AI ki websites hongi, kuch normal hongi, magar ye aapke kaam zarur aayenge aur aapke kaam ko cheez aa rahi hai to knowledge to bhai sahab baantne se badhti hai. Aap bhejiye mare dhure. ये जो सोशल मीडिया हमने किस लिए बनाया है, आप आइए बात कीजिए FM 107 Qatar. अब जब ये बढ़ते हैं पहली वेबसाइट की तरफ. ये जो वेबसाइट है ये बहुतों के काम आने वाली है. इसका नाम है scholarships.com. scholarships SCHO scholar हाँ COLO नहीं LAR SHIPS scholarships.com. इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम नजर आएंगे. आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. तो दुनिया जहां के इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पढ़ाई के लिए आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन सबके नाम आपको नजर आ जाएंगे. तो आप लिटरली डिग्री वाइज जगह वाइज हर तरीके से ढूंढ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं. लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो तलाश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है मेरे को पता लग जाए कि भाई ये स्कॉलरशिप किधर चल रही है. तो ये जो फायदा है आप इससे उठा सकते हैं. और आपके घर में अगर कोई टीनेजर है और आप सोच रहे हैं भाई स्कॉलरशिप की तरह देखा जाए, कहीं बाहर विदेश में पढ़ाई कराई जाए, तो इसका भी एक तरीका है. ये वेबसाइट बहुतों के काम आएगी. स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन. scholarships.com. इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस की. सो यू कैन जस्ट गिव देम अ कॉल एंड आस्क मी सर आपका ये वेबसाइट पे देखा ये सही है, तो आपको बता देंगे वो, बिकॉज ये बहुत ही लेजिट वेबसाइट है. ठीक है, आगे बढ़े. ऑलराइट, अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है swishy.ai. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, swishy.ai. swishy.ai. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली नाम के आगे AI लगा हुआ है, तो इसमें AI मोशन डिजाइंस आपको मिलेंगे. इसमें 100 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं या यू जस्ट वांट टू यूज इट. एवी खामगा यूज करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो आप इन तमाम चीजों को ऐसे का ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अगर अपने जुगाड़ से अपने दिमाग से कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये AI बहुत बढ़िया काम करता है. एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोशन डिजाइन है ये सस्ते वाले डिजाइन नहीं लगते, लिटरली लगते हैं कि भाई इसमें मेहनत की गई है. एंड ये आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है. जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे यूज करें, आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू प्रेजेंट विद, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो फिजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं देखो जी स्क्रीन की तरफ, या फिर आप किसी को भेज रहे हैं, सब तरीके के लिए ये काम करेगा, बहुत क्रिएटिव भी लगता है. ओके, तो ये जरूर देखिएगा swishy.ai. अब जरा आगे बढ़ जाते हैं. अगली वेबसाइट भाई साहब टाइम पास के लिए, बिल्कुल टाइम पास के लिए, तो आपका टाइम पास हो जाएगा. जवान भी स्लिप हो गई मेरी एक्साइटमेंट में. तो अगली वेबसाइट का नाम है eve.io. eve.io बहुत ही छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है. ये वेबसाइट उनके लिए जो कि दोस्त आपस में कुछ गेम खेलना चाहते, तो आप इसमें 8-player शूटर गेम खेल सकते हैं. बहुत मजेदार है भाई, इसके लिए कोई डाउनलोड कुछ नहीं चाहिए, मजे से खेलो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छी भी लगेगी वेबसाइट एंड काम की भी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मस्ती मजाक करने जाते हैं. ये भी तो बड़ा जरूरी है ना. चलिए जरा खबर की तरफ बढ़ते हैं. तो जल्दी से खबर बता दूं, एक जो खबर आई है इंटेक न्यूज वो है मार्क जकरबर्ग साहब की. मेटा के सीईओ हैं आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी हैं. इन्होंने मेटावर्स में बहुत सारी चीजें चेंज करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन रिसेंटली एक वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही शोकेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम अपने AI एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं. और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरा चश्मा देख रहे हो भाई साहब, $1,299 मजाक है क्या, इतना महंगा मेटा VR ग्लासेस पहन के ये घूम रहे थे. और साथ में इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसका नाम था म्यूज चार्म, जो काम करती है कंपनी की रिसेंटली जितने भी नए नए AI पर्सनल एजेंट है उन्हें लॉन्च करने के लिए. ये आदमी कुछ आगे का कर रहा है, बता रहा हूँ, खिचड़ी पक रही है. अगले 2-3 सालों में वो खिचड़ी जो है दिख जाएगी या तो जल जाएगी. ये थी टेक अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ.

0: से देसी टेक अपडेट। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: FM 107 पर हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: गैंग अलर्ट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में पता चलता है। और जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको इसी वक्त पे फेस्टिवल स्कैम के बारे में बताऊंगा और

0: वो वक्त आ गया, आपने इंतजार सही कर लिया है। वेल, ये स्कैम क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां फ्रॉड करने वाले लोग आवाम के लाइव एंटरटेनमेंट और मजा करने के शौक का गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैमर्स आने वाले म्यूजिक, फूड या कल्चरल फेस्टिवल का एक झूठा और फेक प्लान तैयार करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ये बिल्कुल असली और प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर एड कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें फेक आर्टिस्ट का लाइनअप दिखाते हैं, झूठे वेन्यू दिखाते हैं, पार्टनरशिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने स्पॉन्सर इनके पास हैं। जो फैंस फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन्हें सस्ते अर्ली बर्ड पासेस, ग्लैम्पिंग यानी कि लग्जरी कैंपिंग वगैरह, रिजर्वेशंस और एक्सक्लूसिव वीआईपी एक्सपीरियंस का लालच दिया जाता है। टिकट्स बेची जाती है और ये टिकट्स आपको कई बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर कोई अनऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं। इस फ्रॉड की असली हकीकत तब सामने आती है जब लोग टिकट्स खरीद कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खाली मैदान या पब्लिक पार्क मिलता है जहां कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइजर सारी टिकट का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा अजीब और यूनिक तरीका है स्कैम करने का जिसमें आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐड चला और ये ऐड बड़े ही ब्लडली चल रहा है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने टिकट भी खरीद ली, आपने दिखाया कि बाकायदा आपके पास डिजिटल टिकट है, लेकिन जब आप उस लोकेशन पे पहुंचे, अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से आपके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, अब वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उसे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो कोई आपको कांटेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इन स्कैम से बचने का तरीका भी है। क्या तरीका है इन स्कैम से बचने का? सबसे पहला तरीका है ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई एड रन किया भी गया है सोशल मीडिया पे, तो आप प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। अगर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको किसी नंबर पे ले जा रहा है, आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है, वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो जब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक आए तो प्रॉपर चेक करना। वेल, दोस्तों, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करने के बाद दूसरा स्टेप जो होना चाहिए आपका, वो होता है वेन्यू को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई एड आया है तो हो सकता है उसमें वेन्यू भी आए आमतौर पे, लेकिन जिस होटल का नाम उसमें पड़ा है, उस फ्लायर पे पड़ा है, पार्क या स्टेडियम का नाम पड़ा है, फेस्टिवल होने का दावा किया जा रहा है, तो उस वेन्यू की मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल करें। मिसाल के तौर पे एबीसी कोई ग्राउंड है जहां पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उनके मैनेजमेंट को कॉल करके पूछें क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे फला इवेंट के या फला फेस्टिवल के इवेंट के लिए बहुत ज्यादा वाइब सेट है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस इवेंट के बारे में। तो आप जब पता करेंगे तो आपको डिटेल पता भी चल जाएगी कि वाकई में कोई इवेंट बुक्ड है या नहीं। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट का इस्तेमाल करें। टिकट्स हमेशा ट्रस्टेड टिकटिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदें और हमेशा क्रेडिट कार्ड से पे करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको फ्रॉड की सूरत में चार्ज बैक का ऑप्शन मिलता है। अनऑफिशियल लिंक्स पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश को सेंड करने से बचें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप फला लोकेशन पे पहुंचें, वहां पर हमारा वो शख्स मिलेगा, उसको आप पेमेंट कर दें, वो आपको एक फिजिकल टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो फिजिकल टिकट भी आजकल बनाने लग गए हैं। आप सही में किसी के पास जाएंगे, वो आपको फिजिकल टिकट देगा, आप उसे कैश देंगे, आपको वो नंबर भी देगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट तो है ही नहीं, आप फिजिकल भी मिलकर आए, आपके पास फिजिकल कार्ड भी है, इवेंट का टिकट भी है, लेकिन जब आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तब तक आपके साथ हो चुका होता है फ्रॉड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस फ्रॉड के बारे में समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107 दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर की, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी। अजीत वाडेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इंप्रेसिव था, 237 मैचेस में 15380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी। 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती और दोनों कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। नाश्ता सिर्फ पहले दिन का खाना नहीं होता, ये घर वालों को एक साथ लाने, मेहमान का इस्तकबाल करने और सुबह के लम्हात को पुरकश बनाने का जरिया भी होता है। कतर में पुराने जमाने का नाश्ता अक्सर सादा मगर गजाइत से भरपूर होता था। घर में मौजूद चीजों जैसे रोटी, अंडे, खजूर, दूध और मक्खन को इस्तेमाल करके ऐसे खाने बनाए जाते थे जो दिन भर काम करने के लिए ताकत देते थे। कतरी घरों में नाश्ता कभी एक ही चीज तक महदूद नहीं रहा, खास तौर पर जब मेहमान हो या वीकेंड का दिन हो तो दस्तरखान पर मुख्तलिफ जायके एक साथ नजर आते हैं। कहीं मीठा, कहीं नमकीन, कहीं गरम ताजा रोटी और साथ में कहवा या चाय। नाश्ते की सबसे मशहूर रिवायती चीजों में से एक बलालीत है। ये बारीक सेवइयों से तैयार की जाती है। इसमें जाफरान, इलायची, गुलाब के पानी की खुशबू शामिल होती है। इसके ऊपर आमतौर पर अंडे की पतली तह या ऑमलेट रखा जाता है। मीठी सेवइयां और नमकीन अंडे का ये इम्तिजाज कतरी और खलीजी खानों की दिलचस्प खसूसियात को नुमाया करता है। सोचिए, एक ही निवाले में हल्की मिठास, जाफरान की खुशबू और अंडे का सादा जायका, ये बलालीद को पहचान देता है। हर घर में इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसकी रूह वो ही रहती है, रिवायत, मोहब्बत और घर का जायका। कतरी नाश्ते में मुख्तलिफ किस्म की रोटियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। रकाक बहुत पतली और कुरकुरी रोटी होती है, जबकि चबाब एक किस्म की मीठी, नरम या फिर पैनकेक की तरह तैयार की जाती है। इन्हें अक्सर शहद, खजूर के शरबत, अंडे या फिर पनीर के साथ खाया जाता है। रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, पुराने घरों में रोटी बनाना एक हुनर और घर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। तवे की गर्मी, आटे की खुशबू और गर्म रोटी को दस्तरखान पर रखने का मंजर सुबह को यादगार बना देता था। खजूर भी कतरी नाश्ते की एक अहम साथी है। ये मजेदार होने के साथ साथ मेहमान नवाजी की अलामत भी है। दूध के साथ खजूर या कहवे के साथ खजूर सादगी में भी खसूसी गर्म जोशी पेश करती है। अरबी

कॉफी जिसे आमतौर पे कहवा कहा जाता है नाश्ते के तजुर्बे का एक अहम हिस्सा हो सकती है। इलायची की खुशबू वाली ये कॉफी छोटे फंजान में पेश की जाती है। कतर में खाना और मशरूब अक्सर गुफ्तगू के साथ जुड़े होते हैं। एक फंजान के बाद दूसरा फंजान पेश करना मेहमान के लिए इज्जत और तवज्जो का इजहार समझा जाता है। आज के कतर में जिंदगी बहुत तेज हो गई है। लोग काम या फिर तालीम के लिए जल्दी निकलते हैं, इसलिए उनका नाश्ता मुख्तसर भी हो सकता है। होटलों और कैफे में बलाली, चबाब, रकाक और कड़क चाय जैसे रिवायती जायके नए अंदाज में मिलते हैं। फिर भी घर का नाश्ता अपनी जगह खास है।

0: खूबसूरत सबक देती है। खाने की कीमत सिर्फ उसके जायके से नहीं होती बल्कि इससे भी होती है जो लोगों को करीब लाए। दस्तरखान पर बैठना, एक दूसरे का हाल पूछना, सुबह का वक्त साथ गुजारना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो जब कभी आप कतर में रिवायती नाश्ता करें, बलालीद का एक निवाला, गरम रकाक का एक टुकड़ा या कहवे का छोटा सा फंजान सिर्फ खाने के तौर पे ना देखें, इसमें कतर की सुबह, इसकी मेहमान नवाजी और इसकी तारीख की एक छोटी सी झलक मौजूद होती है। आज के कल्चर मोमेंट से हम यही सीख सकते हैं कि नाश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता बल्कि ये भी अपने अंदर पूरा का पूरा कल्चर समेटे हुए होता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: क्या मैच था दोस्तों, क्या मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी गेम और एशियन गेम्स का ये सेमीफाइनल मैच, जिन्होंने भी नहीं देखा शायद मिस किया होगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। हर जुमेरात को इसी वक्त में मैं रहता हूँ स्टूडियो की घड़ी पर 1:02। और शुरू करने से पहले एक सवाल हो जाए दोस्तों, क्रिकेट से हवाले, क्रिकेट के हवाले से एक सवाल आज पूछ लेते हैं। और आपको सिर्फ बताना है कि दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हकदार कौन है। आई वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं कि तेज तरीन डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट, आपको सिर्फ बताना है बैट्समैन का नाम और बस कुछ नहीं करना, आपका नाम भी साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बताना है द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट, किस बल्लेबाज ने स्कोर किया है। और आप हमारे 666-22107 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो एफ एम 107 के व्हाट्सअप नंबर है। तो हो जाए शुरू, फ़ोन ऑन कर लीजिए और रेडियो प्रोग्राम में जुड़े रहिए। और इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए एक ही उपाय है, आप इस क्विज को जो थोड़ा सा सीधा, आई मीन आई वुड से नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फास्टेस्ट ओडीआई में आई मीन डबल सेंचुरी किसका है, किस बल्लेबाज का है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब हुआ था, कब हो, कितने पुरानी बात है, आपको बताना है, दैट्स इट। एंड 666-22107 पर जुड़ जाइए, स्पोर्ट्स को सुनिए और स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या समझते हैं वो बताइए। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि क्या मैच था, क्या मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हॉकी। हॉकी तो बिल्कुल एक तरह से हम समझ रहे थे कि ख़त्म हो गया है, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं हॉकी को, लेकिन दोस्तों क्या मैच था, ज़बरदस्त मैच। इंडिया 3-0 लीड, इंडिया 3-0 लीड, पाकिस्तान जो है फाइट बैक करने के बाद इसको 3-3 3-3 इस मैच में। और ये इंपॉर्टेंट मैच इसलिए कि ये सेमीफाइनल था, आज ही खेला गया, कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है एशियन गेम्स के हॉकी। और एशियन गेम्स जापान आईची नागोवा शहर में जारी है और इसमें काफी टक्कर वाली मैच, बहुत समय ये कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान हॉकी एंड इट्स इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, दोनों में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, सनसनीखेज कह लें, कुछ भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कह लें, रिकॉर्ड कह लें, एनीथिंग दैट रीचेस दैट अल्टीमेटम कैन बी फाउंड इन इंडिया पाकिस्तान हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी को मैं इंक्लूड हमेशा करूंगा, हॉकी ही बेसिकली एक यार्डस्टिक रहा है इन द खेल में, अगर इंडिया पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट की बात करें। 3-3 गोल पर ये मैच चली रहा था, लेकिन अभिषेक ने वो कर दिया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। नहीं वे पर इंडियन फैंस के लिए एक खुशखबरी, इंडिया हैज रीच द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स एंड इंडिया बीट इन पाकिस्तान 4-3 टू रीच द फाइनल। और ये फाइनल मिनट में गोल हुआ था और इसमें देखिए कोई भी पेनल्टी शूट आउट नहीं रहा, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, सिर्फ एक स्ट्राइक पर अभिषेक ने स्कोर करके ये मैच को इंडिया के लिए जीत कर इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। और फॉर द फर्स्ट टाइम और बैंकॉक 1998 के बाद इंडिया की जो मेन टीम और वुमेन टीम जो है वो दोनों ही एशियन गेम्स के फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और आई वुड से हार्ड लक टू पाकिस्तान टीम, बट पाकिस्तान के लिए एक मेडल यू नो ऑलवेज इज देयर, एंड इफ दे कैन फिनिश थर्ड तो पाकिस्तान कैन, ये थर्ड प्लेस ऑफ मैच जो है होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान

पाकिस्तान की अगर जीत है तो पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मिलना लाजमी है। एक और न्यूज़ आपको बता दूं दोस्तों, आज एक रिकॉर्ड सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इंडिया की जानिब से। अगर मैं बताऊं इंडियन टीम, इंडियन कंटिजेंट की जो है वहां पे मौजूद है, एक बंदा है जो पहले दूध डिलीवर करता था, यू नो, घर घर जाके दूध डिलीवर करता था, सुबह सुबह के सबके घरों पे दूध डिलीवर करता था। आज वो बंदा एक रिकॉर्ड कर चुका है दोस्तों, एक रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड उसके आने वाले जनरेशन भी याद रखेगा। ये रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक पहलवान की कहानी है दोस्तों, और ये पहलवान का नाम है नितेश सिवाच। नितेश सिवाच जो है हरियाणा के हैं, और ये पहले हर घर पर जाके सुबह उठ के, यू नो, हरियाणा में दूध बहुत फेमस है और गाय भैंसे जो है वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर, हर घर पे यू नो कैटल्स तो होती हैं। तो नितेश सिवाच जो है उनका काम ही ये था कि घर घर जाके दूध पहुँचाना, और ये नितेश सिवाच आज एशियन गेम्स में एक रिकॉर्ड कर लिया है, इंडियन रिकॉर्ड। 64 साल के बाद किसी इंडियन, किसी भारतीय ने एशियन गेम्स के फाइनल तक पहुँचाया ग्रेको रोमन इन रेसलिंग कॉम्पिटिशन में। तो ये 64 ईयर्स यानी 64 साल लगे किसी इंडियन रेसलर को फाइनल तक पहुंचने के लिए, और ये 23 साल का ये नौजवान, हरियाणा का ये नौजवान 97 किलोग्राम के इस फाइनल तक पहुंचने में काफ़ी कुछ उन्होंने मेहनत की दोस्तों। दूध पहुंचाना ये स्पोर्ट्स से कहीं तक, मतलब स्पोर्ट्स से कोई लिंक नहीं है, घर घर तक दूध पहुंचाना सुबह उठ के ही हर घरों पे, यू नो, जाके दूध, आई मीन ही वाज अ डिलीवरी मैन, तो दूध पहुंचाना। लेकिन हरियाणा में रेसलिंग और बॉक्सिंग काफ़ी फेमस है, और वहीं से नितेश सिवाच जो है आज का हीरो जो है इंडिया के लिए, नितेश सिवाच है। 1962 आखिरी बार एशियन गेम्स में अगर देखा जाए, गणपत अंदलकार ने एक गोल्ड जीता था इंडिया के लिए इन द ग्रेको रोमन कॉम्पिटिशन में। तो दोस्तों ये बहुत आज इंडिया के लिए, यू नो, आज देखें तो आज पता चल रहा है कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा है, एंड इंडिया हैज़ रियली डन वेल इन दिस कॉम्पिटिशन सो फार। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्रिकेट पर, क्रिकेट में क्या हुआ है आज। आपको बता दूं कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गई है, पाकिस्तान हैज़ डिफीटेड बांग्लादेश, और वहीं इंडिया ने भी श्रीलंका को हरा कर फाइनल तक जगह बना लिया। तो क्रिकेट फाइनल इन द एशियन गेम्स में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, सो ये मैच ज़रूर देखिएगा। मैन अभी आउट से कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, और एंटरटेनमेंट इंडियन पाकिस्तान के टीमें ही दे सकते हैं। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की हॉकी ज़रूर देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट ज़रूर देखिएगा, T20 क्रिकेट या ODI क्रिकेट कह लें, टेस्ट क्रिकेट कह लें, टेस्ट क्रिकेट तो आजकल होता ही नहीं है। और अगर क्रिकेट में हो इंडिया पाकिस्तान, तो हर कोई काम अपना छोड़ के बैठ जाएगा टीवी सेट्स के सामने। तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर मेकिंग इट टू द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स, और वहीं हार्ड लक टू द पाकिस्तान हॉकी टीम फॉर नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स हॉकी कॉम्पिटिशंस। एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन हॉकी टीम एज वेल, जिन्होंने दमदार खेल का मुजाहरा करते हुए दे हैव रीच द फाइनल। एंड जैसे कि मैंने बताया, 1998 एशियन गेम्स के बाद पहली मर्तबा इंडिया की भारतीय वुमेन्स टीम और भारतीय जो मेंस टीम है वो दोनों ही फाइनल तक जगह बना लिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि क्रिकेट से ये एक सवाल था कि फास्टेस्ट 200 रन्स इन ODI क्रिकेट किस बल्लेबाज ने किया था। दोस्तों आप अपना फ़ोन उठाइए और टेक्स्ट करिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन को, और FM 107 में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इट्स अ गोल। और जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आप लोगों के मैसेजेस मुझे देखने चाहिए, और सुनते रहिए FM 107। लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जी हाँ दोस्तों, दिल से देसी। एंड आप लोगों से सवाल पूछा था ब्रेक से पहले कि फास्टेस्ट 200 रन इन ओडीआई क्रिकेट किस बल्लेबाज के नाम पर है। आपको बताना है 666-2107 पर, और ये प्रोग्राम जारी है जिसका नाम है इट्स अ गोल्ड शो। और ब्रेक से पहले काफ़ी कुछ अपडेट्स मैं दे चुका हूँ, ताज़ा तरीन अपडेट्स थे ये सब एशियन गेम्स से। और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का हॉकी मैच, ज़बरदस्त हॉकी मैच हुआ था दोस्तों, 4-3 विन बाई इंडियन हॉकी टीम एंड दे आर मार्च इन टू द फाइनल। वेल पाकिस्तान हैज़ टू विल हैव टू सेटल फॉर अ ब्रॉन्ज एट लीस्ट। और वहीं इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का फाइनल अगर देखा जाए तो क्रिकेट में होने जा रहा है, इंडिया डिफीटेड श्रीलंका। और वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया इन द क्रिकेट सेमीफाइनल्स ऑफ एशियन गेम्स। सो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का एक गेम अभी भी मौजूद है दोस्तों, एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बता दूं कि और भी क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, इंडियन क्रिकेट में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। एंड देखिए 400 रन चेस करना एक काफ़ी अगर देखा जाए दिमाग को खुजलने वाली बात हो जाती है कि यार 400 रन चेस करके जीतना, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इन मॉडर्न क्रिकेट, नोबडी हैज क्लू। आई मीन T20 क्रिकेट का एक इफेक्ट तो ज़बरदस्त एक असर है, और T20 क्रिकेट के इस इम्पैक्ट के बाद हमें ODI क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ 400 रन कोई टीम स्कोर करे और उसी को चेस करते हुए एक दूसरी टीम जो है वो भी इस रन को क्रॉस करता है, इस हदफ को क्रॉस करने के बाद दे विंस द गेम एंड दैट टू बाय कन्विंसिंगली 8 विकेट्स। एंड इंडियन डिफीटेड वेस्ट इंडीज बाय 8 विकेट्स। और ये मैच जो है कल खेला गया था, और इससे पहले भी जो मैच हुआ था जहां पे विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करके 15,000 रन का एक रिकॉर्ड किया था, सचिन का इक्वल किया था, लेकिन फास्टेस्ट मैन फास्ट जिसको कहते हैं कि 15,000 रन बनाने वाला सबसे तेज तरीन बल्लेबाज विराट कोहली बने थे। और उस मैच को भी अगर हम देखें, उस मैच में भी इसी तरह ऑलमोस्ट जो जो एवरेज है, जो स्ट्राइकिंग रेट है, उसको देखने से तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं हो क्या गया है क्रिकेटर्स को। आई मीन T20 क्रिकेट में खेलते खेलते ODI में भी धूम धड़क का, आई मीन जिस तरह से 405 रन फॉर 7 विकेट्स इन 50 ओवर्स बाय वेस्ट इंडीज एंड दैट वाज चेस्ड बाय इंडिया 43.3 ओवर में, यानी जो ये 7 ओवर्स बाकी रहते हुए ही इंडियन टीम को विक्ट्री हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट अमेजिंग, आई मीन 800 से ज्यादा रन एक दिन में। दिस इज ODI क्रिकेट बॉस। ODI क्रिकेट भी T20 का फॉर्मेट ही ले चुका है। आई मीन यहाँ पे कोई देखता नहीं है कि किस तरह के शॉट्स किस तरह की है। एनीवे, एक बल्लेबाज ने रिकॉर्ड किया एंड ये रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। एंड इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताना है, इस बल्लेबाज का नाम क्या है, और आपको टेक्स्ट करना है 666-2107 पर। अच्छा, आप कतर के परफॉर्मेंस पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। कतर, व्हाट कतर हैज डन इज रियली एस्टाउंडिंग एंड एस्टोनिशिंग इन द एशियन गेम्स 2026 दैट इज बीइंग हेल्ड एट आईची नागोवा। जापान में जारी इस इवेंट में कतर ने मिक्स ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया दोस्तों, और मोहम्मद अल रुमेई और रे बैसल ने ने शानदार कारकर्दगी करते हुए कतर के लिए सिल्वर मेडल जीता। और इसी इवेंट में इंडिया के कीरन चेनाय और नीरू डांडा ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन ने सिल्वर मेडल हासिल की। बीच वॉलीबॉल में कतर वन टीम ने ईरान को 22-20 और 21-13 सेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। और कतर इज वन नंबर वन टीम एंड फेवरेट टू विन द गोल्ड इन बीच वॉलीबॉल, ये बता दूं आपको। और वहीं नेशनल वॉलीबॉल टीम के लिए भी एक आज अहम चैलेंज है, जब क्वार्टर फाइनल्स में उनका सामना होगा जापान से। और पैडल, जो कि कतर में काफ़ी पॉपुलर है पैडल, एक आप आज से नहीं, आई मीन 3-4 साल से अगर हमने नोट किया होगा आप लोगों ने कि पैडल स्पोर्ट हैज़ बिकम सडनली अ फिटनेस स्पोर्ट। टेनिस और स्क्वाश और बैडमिंटन का एक मिश्रण यानी मिक्सचर है। और इस पैडल स्पोर्ट में कतर की जोड़ी राशिद नवाफ और मिश्र नवाफ राउंड ऑफ 16 में कुवैत को हरा दिया है, और कतर ने दोनों सेट जो है 6-1 और 6-0 से जीतकर अब क्वार्टर फाइनल में है। और क्वार्टर फाइनल्स में अब देखना है कि मेडल की रेस में अपनी कामयाबी जारी रखने की ये लोग कितना कोशिश करेंगे। और रेसलिंग में एक बात बता दूँ कि कैंपेन जारी रखते हुए आज कतर की टीम, जो टीम कतर के रेसलर्स हैं, ग्रेको रोमन 77 किलो कंपटीशन में मोहम्मद शाहीन अपना कैंपेन शुरू करेंगे, और राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला होगा ताजिकिस्तान के आलिशेर रूजी मदोव से। और शाहीन की ये कोशिश होगी कि वो अपना पहला बाउट जीतकर कंपटीशन में आगे बढ़ें। और एक की और नई न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कतर के आरिफ मोहम्मदी ने ग्रेको रोमन के 67 किलोग्राम इवेंट में हिस्सा लिया। आरिफ ने राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड के नोटापोंग हिनमे को 9-0 पॉइंट से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सो ओवरऑल कतर के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूं तो कतर हैज डन दिस इन दिस यू नो जो ऑनगोइंग एशियन गेम्स हैं इसमें कतर हैज रियली अप देयर परफॉर्मेंसेस एंड इसमें कोई शक नहीं है कि कतर की जो जितने भी एथलीट्स हैं कतर की एथलीट्स मौजूद है जापान में वो एक तरह से अगर मैं देखूं कि 2030 के लिए माफ कीजिएगा 2030 में जो एशियन गेम्स होने जा रहा है इन कतर में उसके लिए पूरी तरह से तैयार है एंड एकदम जिसको कहते हैं ना कि यू नो यू आर फिट टू जस्ट आपको मैदान में उतरना है ग्राउंड पर उतरना है और आपको इस जीत के लिए रेडी होना है एंड कतर इज़ रेडी। और मजमूई तौर पर देखा जाए कि 12 मेडल्स कतरी कंटिंजेंट हैज़ वन इन दिस कॉम्पिटिशन, 3 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और इसमें मजीद बहुत सारे अभी भी हो सकते हैं, अभी भी चांसेस हैं, बहुत सारे अभी इवेंट्स बाकी हैं जिसमें जैसे मैंने बताया बीच वॉलीबॉल उसमें कतर टीम कैन रियली आई मीन आई वुड से मेरा तो ये जाता है कि इंशाल्लाह एक मेडल गोल्ड मेडल तो कतर का जो है कतर के खाते में बनता है। सो ये एक अपडेट आप लोगों को मैंने दिया। और फुटबॉल एक तरफ से अगर मैं एशियन गेम से हट जाऊं और फुटबॉल के बारे में बात करूं दोस्तों, सऊदी में इन दिनों वो कंपटीशन है जिसके पीछे हम लोग दीवाने हैं, लेकिन आज एशियन गेम्स चल रहा है तो एशियन गेम्स को थोड़ा सा हम तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं बिकॉज एशियन गेम्स ऑब्वियसली इज़ एन एशियन कंपटीशन जहाँ पे पूरे एशियाई जितने भी ममालिक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक मेजर इवेंट है। तो इसको अगर देखा जाए एशियन गेम्स ने जो गल्फ में जो फुटबॉल टूर्नामेंट जिसको खलीज कहते हैं खलीज कप, वो थोड़ा सा शैडो में यानी छुप गया कहीं पर, लेकिन फॉलो कर ही रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड कतर का मैच हुआ था कल, कतर यूएई का मैच था और 1-1 ड्रॉ रहा एंड कतर इज वन ऑफ द यू नो टॉप टीम राइट नाउ अगर मैं बात करूं अबाउट द खलीज कप के लिए, जो कि इसमें चांसेस हैं कतर के लिए चांसेस हैं टू विन द टाइटल। सो दिस टाइटल कैन एक्चुअली हेल्प कतर, जो 2014 के बाद कतर ने यू नो कतर की टीम नहीं जीती है, हो सकता है कि इस बार कुछ कर दिखाए बिकॉज यही सऊदी में यानी उस टाइम हुआ था रियाद में 2014 में रियाद में खेला गया था ये टूर्नामेंट और इस बार है जद्दा में हो रहा है। जद्दोजहद में ये टूर्नामेंट में कतर अगर ये मैच ये टूर्नामेंट अगर जीत ले सो आउट से कि एक तरह से वो यू नो 2014 के बाद जो टूर्नामेंट में एक ड्रॉट है या एक खालीपन है जो कतर को नहीं मिला है, सो दैट विल एंड एंड उम्मीद करता हूँ। अलवेज अली कल गोल करके बताया कि हाँ ये फॉर्म में है, लेकिन 33 मिनट में वो गोल जो किया था इट वाज अ ग्रेट गोल, लेकिन अली साले जो है यूएई के उन्होंने इक्वलाइज कर दिया था फर्स्ट हाफ के स्टॉपेज टाइम में और इसी के चलते ये मैच ड्रॉ रहा। और दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में 7-7 पॉइंट्स लेकर टॉप पोजिशन, लेकिन यूएई को टॉप पोजिशन इसलिए मिला क्योंकि गोल डिफरेंस जो है वो यूएई का बेहतर है। दोनों नॉकआउट फेज में क्वालिफाई कर चुके हैं एंड सेमीफाइनल मैचेस होंगे और यूएई का सामना होगा ओमान से और कतर का सामना होगा मेजबान टीम सऊदी अरब से। सो बेस्ट ऑफ लक टू दी कतर नेशनल टीम अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। और दैट देखना है ये कि कभी कभार होता है कि होस्ट कंट्री बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और उम्मीद इसी बात पे हम करते हैं कि कतर के लिए कुछ लूज करने का या कुछ हारने का कुछ नहीं है, दे हैव टू जस्ट प्ले और प्ले इन अ ग्राउंड जहाँ पे सऊदी के ऊपर मुझे लगता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज अपने फैंस के सामने खेलना किसी भी टीम के लिए थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी सी परेशानी होती है एंड यहाँ पर हाउ सऊदी टीम दे कैन अब्सॉर्ब दैट प्रेशर वो हमें देखना है। और अगर कतर मेंटेन दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस, सऊदी एंड कतर दोनों के पास वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस है एंड दैट मेक्स देम सुपर आउट के हैवी वेट्स इन दिस सेमीफाइनल। और वहीं ओमान और अगर यूएई की बात करूँ, यूएई ओमान हाँ ठीक है, यूएई इज ऑल्सो गुड टीम, ओमान इज ऑल्सो अ गुड टीम एंड कतर जो है रैंकिंग में अगर बात करूँ तो इस रैंकिंग में 59th इन द फीफा रैंकिंग पर हैं। सो कतर सऊदी का मैच आई बिलीव इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच, मिस मत करिएगा, इस मैच को देखते रहिएगा। अच्छा दोस्तों, जो मैंने सवाल पूछा था, अब सवाल के जवाब पर आ जाता हूं मैं। सवाल के जवाब पर यह था कि किस बल्लेबाज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज तरीन डबल सेंचुरी स्कोर करके। तो जवाब है, जवाब इस जवाब का मैं आपको बता दूंगा, एंड अफरीदी साहब, सदात अफरीदी साहब ने जवाब दिया है, शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत 10 साल पुरानी बात नहीं है, मैच कल ही हुआ था और इस मैच में शुभमन गिल ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंडिया को इसमें जीत जितवाने में बहुत बहुत अहम रोल अदा किया है। एंड डबल सेंचुरी एंड दैट टू इज़ द फास्टेस्ट। एंड अफरीदी साहब का कहना यह है कि 117 गेंदों पर 200 रन इन्होंने स्कोर किए। तो शुभमन गिल, आज से एक साल पहले शुभमन गिल टेस्ट टीम के बल्लेबाज हैं एंड T20 टीम में इनको रखा गया था पिछले साल, लेकिन T20 में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस का जो उनसे उम्मीद थी वो कभी हो नहीं पाया, सो T20 स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन ODI में उनको जगह मिली एंड ODI में ही हैज़ डन रियली रियली वेल, खतरनाक साबित हुए कल। एंड शुभमन गिल कि इस धुआंधार बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज़ को मौका ही नहीं मिला कि 405 रन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि यू विल विन दिस गेम। सो 133 गेंदों पर 223 रन बनाकर शुभमन गिल फाइनली आउट हो जाते हैं। और उनको बहुत ही यू नो जिसको कहते हैं कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक पार्टनरशिप जो पार्टनर मिला था वो है रोहित शर्मा, 75 गेंदों पर 101 रन की पारी। एंड रोहित शर्मा और शुभमन गिल के इस नॉक से, इस ज़बरदस्त बैटिंग से इंडिया को जीत मिली। और वेस्ट इंडीज़ को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ कहीं यू नो हल्का या फीका इस तरह का परफॉर्मेंस रहा हो। वेस्ट इंडीज़ आमिर जांगो ने 77 गेंदों पर 114 रन बनाए, शाई होप ने 94 गेंदों पर 104 रन, जॉन कैम्बल 68 गेंदों पर 101 रन। सो तीनों बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर करके 405 रन के इस पहाड़ जैसे रन जो टारगेट है वो इंडिया के सामने खड़ा तो कर दिया था, लेकिन कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को, और वहीं पर अगर

एक्साइटेड आई मीन सब लोग होंगे एंड द मैच में काफी कुछ होगा, फायरवर्क्स भी है, सब कुछ है, जैसे कि आज हॉकी मैच में देखने को मिला 4-3 विन बाय द इंडियन हॉकी टीम अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे और स्पोर्ट्स यानी एशियन गेम्स को भी फॉलो कर रहे हैं, कतर टीम को फॉलो कर रहे होंगे, और अगली बार जब मिलूंगा मोर अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने पेश करूंगा इट्स अ गोल्ड शो। एंड इसी दुआ से आप लोग थोड़ा सेहतमंद रहिए एंड बी फिट, रिमेन फिट एंड बी स्पोर्टी एंड कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सूर्य की घड़ी में 1:32
3: आप सुन रहे हैं
2: अरे भाई अभी तक सुन ही रहे हैं अमीन भाई को चलिए हम दूसरी तरफ पढ़ जाते हैं यामल खमीस हैप्पी वाली थर्सडे और भाई नाजिया जी कैसी हैं खैरियत से हैं मेरी आवाज मुझे नहीं आ पा रही नाजिया क्या करना चाहिए मुझे
3: दिल की आवाज सुनिए सलाम आदाब अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल है और आज है वीकेंड और पूरे एक घंटे आपके साथ रहेंगे और आज हमारा जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल हल्का फुल्का और हाँ गेम वाला होता है तो आज कोई टॉपिक नहीं है कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है जिस पर आपको सोचना है बताना है बस हमारे साथ जुड़ना है सिंपली हमारे नंबर्स हैं जिन पर आपको कॉल करना है या फिर मैसेज करना है कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 4434377 और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं दैट वी हैव अ नंबर 6221 07 तो आज हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो गेम से मुताल्लिक होगी सर भाई
2: गेम तो होगा ही होगा बात आपसे मुताल्लिक होगी और थर्सडे है आज खासम खास दिन भी है और आप लोग जो प्रोग्राम है हमारा उसका हिस्सा भी बन सकते हैं मैं अपनी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ हेडफोन में इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ अब इसको ज़रा सही करने के बाद मेरे समझ में आएगा नादिया जी आपका इशारा हुआ है मेरे ख्याल में कोई जुड़ गया
3: कोई हमारे साथ जुड़ गया था एक और चलिए कॉलर जुड़ रहे हैं एंड यस हेलो हेलो
2: नहीं जुड़ पा रहे
3: हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही है व्हाट्स रॉन्ग
2: कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है
3: बहुत बड़ा ब्लंडर है उसको उस पे कीजिए डीजी सही बात है जो बिखरना था वो बिखर गया
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह कैसे हैं और कौन है हमारे साथ
3: अयूब जी
4: जुड़ गया
3: सर भाई तो जुड़ गया जुड़ा अभी थोड़ी देर के लिए
2: बस
3: बीच में थोड़ा सा
2: जब आप कहेंगे जब टूट जाऊंगा
4: नहीं नहीं
3: कह रहे सर भाई अगर आप टूटे तो हम लोग कितने फूटे हो जाएंगे रूठे आप आसानी से नहीं टूट पाएंगे मुश्किल तो है ही अच्छा आपका नाम
4: जी मेरा नाम मुदस्सर है
3: मुदस्सर जी आपके नेबर सरवर भाई आपके नेबर नहीं
4: जब तक बिरयानी नहीं खिलाऊंगा तब नहीं पहचानेंगे सरवर
3: अरे सरवर भाई पहचान लीजिए
2: यार मुझे आज आपकी आवाज मुख्तलिफ लग रही है मुदस्सर भाई ऐसा क्यों
4: पता नहीं सर भाई मैं तो वही हूँ जो

0: नहीं बात कर रहा हूँ, जो पहले था वही जुबान है, वही मैं हूँ। आई डोंट नो आपको कैसे मैं आज मुख्तलिफ मेरी आवाज़ लग रही है।
1: नहीं नहीं आवाज़ आपकी मतलब मुख्तलिफ ऐसा नहीं है कि दूसरी तरीके से लग रही है, लग अच्छी रही है, प्यारी रही है, बट ये है कि थोड़ी मुख्तलिफ लग रही थी। बहरहाल कैसा गुजरा अभी तक का दिन और कैसे हैं आप?
0: हमारा दिन तो सरल भाई अभी शुरू हुआ, तकरीबन 12 बजे के बाद हम उठ गए और अभी
1: तक सो रहे थे आप?
0: जी जी बिल्कुल सो रहा था सरल भाई, क्योंकि हमारा ड्यूटी रात तकरीबन 1:30 बजे तक है, रात की मतलब 12 के बाद 1:30 बजे तक। तो
1: अच्छा।
0: फिर नमाज सुबह नमाज के बाद हम सोते, तो दोपहर की 11 बजे उठते और 12 बजे फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है।
1: ओके, और अब रात तक ड्यूटी चलती रहेगी?
2: That means आपकी tough duty है।
1: अल्लाह ताला
0: भाई वो तो है ना, ये सब भाई वही तोहफे तहाए भाई जो लोगों को बस बेचते रहे हैं, लेके जाते हैं, हमारा काम वही है ना,
1: मोहब्बतें बांटते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मुदस्सिर भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई और आपको खूब ताकत भी दे, यही हमारी दुआ है।
2: बिल्कुल, तो क्या आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे मुदस्सिर जी?
0: आज कोई सवाल वगैरह नहीं है।
2: जैसे हम रखते ना एक टॉपिक रखते हैं, तो आज वो कुछ नहीं है, बट गेम
0: भाई। चलो भाई थोड़ा सा हमारे साथ गेम हो गया, नाज़िबैन ने पहले बोला कि आज कोई टॉपिक कोई गेम वगैरह नहीं है।
2: भाई आप आधी बात सुन रहे थे, मैंने कहा आज हमारे साथ कोई टॉपिक नहीं है।
1: नहीं उन्होंने इतने ही सुना और जल्दी से कॉल मिला दी, पूरी बात
2: पूरी बात नहीं सुनी।
0: ये बात भी ठीक है सरो भाई, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। हम जल्दी पे कॉल इसलिए मिलाते हैं कि कॉल लगता नहीं है, हजारों मतलब बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं, लगता नहीं है, तो हम आधी बात सुनते सीधा कॉल करते हैं। बीच में हम वो नहीं सुन पाए कि आपने क्या बोला, कि आप चाहते कि नहीं चाहते, परियानी चाहते हो वगैरह। सर भाई
1: अच्छा अच्छा, तो हमारी बात ही नहीं सुनते, प्रोग्राम सुन ही नहीं रहे,
2: सिर्फ कॉल कर रहे हैं।
1: चलिए साहब, तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही मजे का
2: एक खाने के
1: गेम है, वो हम खेलेंगे और नाज़िया बताएंगी कि क्या करना है उसके।
2: अच्छा, तो हम आपको जो है ना वो 30 सेकंड्स का टाइम देंगे, यहाँ पर आप सर्वर भाई निकाल लीजिए, 30 सेकंड्स है
1: निकाल लिए मैंने जी,
2: और आपसे हम हो सकता है एक्टर पूछे, एक्ट्रेस पूछे, खानों के नाम या डिशेस के नाम पूछ सकते हैं, फ्लावर्स पूछ सकते हैं, फ्रूट्स पूछ सकते हैं, या सिटीज या कंट्रीज या कुछ भी इस तरह के। तो हमें लगता है क्योंकि आप बिरयानी और खाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आपसे पूछा जाए डिशेस के नाम। ठीक है
0: लेकिन इतना भी वो फूड लवर नहीं हो कि मतलब मैं ज्यादा खाने वाला हूँ जैसे सरोवर भाई, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा
2: नहीं खाने जैसे कुछ तो पता होगा, चिकन बिरयानी जो पूरी डिशेस बन जाती हैं, जैसे उसके बाद आप जैसे चिकन बिरयानी कह सकते हैं, कोरमा कह सकते हैं, उसके अलावा कबाब आप कह सकते हैं, या मटर पनीर।
1: अरे आपने जिता दिया इनको इतनी देर में ना,
2: मैं बता रही हूँ क्या क्या कह सकते
1: हैं, कुछ और दिया जाए बताने के बाद, एग्जाम्पल तो दे दिया
2: क्योंकि फर्स्ट कॉलर है इसलिए तो ये एडवांटेज तो मिलेगा।
1: ठीक है, बात सही है। तो
2: स्टार्ट करें आपके साथ
1: मुदस्सिर भाई, रेडी?
0: जी रेडी।
1: नदी आप रेडी हैं?
2: बिल्कुल, आपके पास है 30 सेकंड।
1: मैं बिल्कुल जैसी
2: यहां पे है टाइमर हमारे पास,
1: मैं जैसी बोलूंगा बस शुरू हो जाइएगा मुदस्सिर भाई। वैसे खाने के नाम बताने हैं,
2: डिशेस
1: यार तो बहुत आसान कर दिया आपने, एक खुसूसी डिश बता दीजिए ताकि उसके अंदर ये फिर
0: आप
1: ये पूछ रहे
0: हैं, मैं जवाब दूंगा या मैंने कुछ बोलना है?
1: आपने 10 सेकंड में बोलने हैं, जितनी भी बिरयानियां जानते हैं आप,
0: मतलब डिशेस के नाम मैंने बोलना है।
2: हाँ हाँ हाँ, बिरयानी इनके लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी, 10 बता पाए तो फिर फंस जाए।
1: चलिए ठीक ठीक है, ओके।
2: तो क्योंकि पहले कॉलर है इसलिए
1: जैसा आप कहें भाई नाज़िया जी,
2: चलिए
1: ठीक है।
0: काम करते सरो भाई, काम करते, आज का जो गेम है मैं दूसरों को मौका देता हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं
2: नहीं नहीं, खेल के जाना ऐसे
1: नहीं, ऐसे नहीं देंगे,
0: डरने की बात नहीं है सरो भाई, डरने की बात नहीं है।
2: अरे डर की बात नहीं, ट्राई करने की बात है, ट्राई कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए।
0: नहीं असल में मेरी मैं समझता नहीं कि मतलब करना क्या है, मैं अभी तक नहीं समझो, बिलीव मी।
2: समझ नहीं पाए, आप समझा दीजिए एक बार।
1: अच्छा 10 सेकंड आपको मिलेंगे, मैं जब शुरू करूंगा मैं कहूंगा कि शुरू हो जाइए, जब आप बोलना शुरू करेंगे और जब मैं रुकूंगा आप रुक जाएंगे, पहली बात तो ये हो गई। और इसके बीच आपको 10 अलग अलग बिरयानियों के नाम बताने हैं। चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है,
2: मुश्किल पड़ रहा है डिश नहीं,
0: मतलब सिर्फ बिरयानियों के नाम सर और भाई।
1: हाँ सिर्फ बिरयानी,
2: आजिए हमने आपके लिए आसान किया था कि कुछ भी बता दीजिए, बट आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो बिरयानी ही सही है, ये समझ में आ रही है।
1: ठीक है
0: रेडी ठीक है हार गया पहले
2: अरे अरे नहीं नहीं ट्राई कीजिए
1: हार गया
2: मुदस्सर जी ये क्या बात हुई ट्राई तो कीजिए कम से कम
1: ओके ओके
2: मुदस्सर कोशिश कीजिए एक बार ट्राई
1: ठीक है आपका टाइम

0: रो गया अब।
1: चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए।
2: हाँ जी सर भाई, बिरयानी और पुलाव और काबुली पुलाव, कराची बिरयानी, हैदरी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और बाकी
0: बस बाकी पर पहुंच गए। इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, सिर्फ डर क्यों रहे
1: इतना? हाँ, इतना डर क्यों जाते हैं लोग गेम जैसे सुनते हैं?
2: नहीं हतल में डर बात नहीं सर भाई, लेकिन मैं मतलब आज जो आप लोगों का पूछ रहा था या जो गेम है ये बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं। अच्छा, मैंने बोलना
0: है ठीक है ठीक है, अब अभी आपने स्कोर कर दिया, अब इतना समझ लीजिए बस, छह का स्कोर है आपका,
1: ये समझे आप?
0: ठीक है,
1: चलिए खैर, थैंक यू।
2: ठीक है,
0: तो भाई देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये है कि 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और उसमें हम आपको कॉल पे ही बताएंगे कि आपने किन 10 चीजों के नाम बताने हैं।
1: बस
0: जगह हो सकती है, खाने हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकती हैं, गाने हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, एकदम से आपको हम बताएंगे और आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अच्छा साथ में ये बता देंगे कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 443,
1: एक कॉलर जुड़ भी गया
0: 443 77, और वही मैसेज आप कर सकते हैं 666-22-107।
1: हेलो
3: हेलो
1: सलाम, कौन हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त?
3: मोहम्मद हुसैन।
1: मोहम्मद हुसैन जी, कैसे हैं आप मोहम्मद जी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा आपके साथ हम गेम खेलेंगे, आप तैयार हैं खेलने के लिए?
3: ये कोशिश करूंगा।
1: नाइस, चलिए वेरी गुड। आई होप आपको पता है कि आज का हमारा गेम क्या है।
3: ये कुछ चीजों का नाम बताना है।
1: वेरी गुड, देखो ये बंदा है, इनको समझ में आ गया। अच्छा अब हम इन्हें जो है वो फलों के नाम इनसे पूछ लेते हैं, ठीक है? फल खाते हैं आप?
3: खाते हैं।
1: चलो ठीक है, तो फिर जितने भी 10 सेकंड आप रख रहे हैं ना, 10 सेकंड में जितने भी फलों के नाम आपके जहन में आ रहे हैं वो आपको बोलने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि 6 से ज्यादा आप स्कोर करें, ठीक है? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
3: एक आम हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, अनानास हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, कीवी हो गया।
0: कीवी हो गया भाई, क्या बात है। अगर आप
1: ये
0: भी हो गया कि अगर आप हो गया नहीं लगाते और खाली आप नाम बताते रहते तो शायद आप और भी ज्यादा।
1: अभी आपने बताया कितने किए? 8
0: नाम बताए आपने।
1: हाँ, अगर आप 10 तक जा सकते
0: हो गया हटा देते इसके अंदर से और खाली फल ही होते रहते तो ये आगे बढ़ सकता था,
1: 10 तक जाता। बट हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा आपने खेला और आपने अटेम्प्ट किया, ये हमें बहुत खुशी हुई।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से?
1: मुंह से कर रहे हैं। अच्छा
0: दोहेल में है, इतनी आवाजें आ रही हैं पीछे, कहाँ किसी साइट पे हैं आप अभी?
1: साइट पे है।
0: अच्छा अच्छा,
1: चलिए थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं तो इनकी फैन हो गई, देखो डरे वरे बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने कहा हम खेलते हैं, चलिए ट्राई करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो करीम शाही की आवाज लग रही है
4: जी, सही पहचाना,
1: सही पहचाना
4: है मेरा अंजलि।
1: इनको ही आप सुनील शेट्टी कहते हैं, कहाँ थे आप शेट्टी भाई?
4: मैं तो यहाँ हूँ मेरे बहन, बस दिल्ली कभी कभी मौका मिलता है थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, फोन करता हूँ।
0: दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली गए
4: थे जी, आपकी वीडियोस तो मैं देखता हूँ सरवर भाई, स्मार्ट हो चुके हो भाई।
0: अच्छा
4: आपने मेहनत शुरू की है, मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपके वेबसाइट पे आ रहा हूँ, जब कोई कोई वीडियो छोड़ते हैं आप
0: छोड़ते हैं
4: के हवाले से, हाँ सेफ्टी के हवाले से, हमें बड़ी खुशी होती है आपको देखकर, थोड़े स्मार्ट हो चुके हो मेरे भाई,
0: थोड़ा सा ही हुआ हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा
4: एक इंच, आपने काम शुरू किया है अपने आप पर।
1: नहीं इन्होंने काम तमाम किया है अपना।
4: माशाल्लाह, मैंने कहा देख ये सरवर भाई में चेंजिंग आ चुकी है, व्हाट
1: हैपेंड,
4: आई अप्रिशिएट यू, आई एम रियली, आई रियली रियली अप्रिशिएट यू, जो आपने मेहनत किया है, इट्स लाइक अमेजिंग।
0: अरे
1: सर आधा एक ग्राम और गिरा लो,
0: शाम के लिए रखिए, थोड़ी सी शाम के लिए रखिए, थोड़ी सी
1: चाय के

0: काम आएगी,
1: काम आएगी। करीम भाई कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ गायब थे यार आप?
2: सर हकीकत तो ये है कि मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूँ, आप लोग मेरे दिल में हो इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह गवाह है।
1: भारी भारी सा लग रहा होगा दिल इसी मारे
0: सर भाई, इतने भारी भारी कम दिल
2: कभी कभी कभी कभी मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनता हूँ तो बस मुझे हंसने में मजा आता है, बस हंसता हूँ।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
0: हंसता हूँ मुस्कुराता रखे, बस
2: खुशी मिल रही है। यकीनन जरूरी नहीं है कि हम लाजिम कॉल करें, लाजिम
1: नहीं, जरूरी है, जरूरी है।
2: अच्छा
1: हाँ, लाजिम कॉल करना जरूरी है, लाजिम करना जरूरी है भाई, आप लोगों के लिए तो आते ही हैं हम लोग और बात करने के लिए इस वक्त में।
2: हम पुराने हैं ना सर, हम पुराने हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि चलो
0: तो आपकी तो और भी ज्यादा अहमियत है, आप पुराने हैं करीम शाह जी, तो आपका आना तो बनता ही बनता है एक रिवायत के तहत।
2: आप लोगों के जरिए ये हम लोगों को अंदाजा है ना, जो सुनने वाले है ना वही सही बता सकते हैं अगलों के बारे में, जो सुनाने वाले हैं, जो जिनके लिए प्रोग्राम लाते हैं, जिनके लिए अच्छे अच्छे बातें और ऐसे एंटरटेनमेंट लाते हैं, तो वो हमें इसका अंदाजा है कि काफी लोग इस टाइम मुझे भी सुन रहा होगा, आप लोगों को भी यकीनन, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि लोग कितने प्यार करते हैं आप लोगों से, इसका अंदाजा मुझे है। तो
0: सर्वर भाई को बहुत ही ज्यादा आइडिया है, अंदाजा है, नंबर ऑफ इनके इन्विटेशंस बढ़ते जा रहे हैं, दावतें बढ़ते जा रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ प्यार जो है इनविटेशन के या पैसों की शक्ल में ही एक्सेप्ट करता हूँ।
2: ये देखना कहते हैं ना फारसी में एक मिसाल है ना, कहते हैं ना कि खुदा दादारा सियाली ना को, यानी जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी सियाली मत करो। ये हकीकत में कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होते हैं ना, एक बंदे के अंदर एक चीज होती है।
1: आज मैं सिर्फ सुनने आया हूँ आप लोगों को, आज नादिया और लिसनर्स को मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूंगा।
0: नहीं नहीं अब हम गेम खेलते हैं
1: और कम से कम बोलूंगा।
0: नहीं नहीं आप ज्यादा से ज्यादा बोलिए और टाइमर की तरफ भी आ जाइए।
1: हाँ, बिल्कुल आ गया।
0: करीम शाह जी हम आपके साथ गेम जरूर खेलेंगे क्योंकि आप जुड़े हैं इतने टाइम के बाद, तो गेम तो आपको खेलने हैं।
1: चलिए
0: आप खेलते भी,
1: और आपको अमिताभ बच्चन की नहीं सुनील शेट्टी की फिल्में बतानी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते हैं।
0: पूछ तो लीजिए उन्हें, पता
2: है हमें नहीं मालूम, देखे थे लेकिन कितने बता सकूंगा नाम मुझे, यही तो प्रॉब्लम है मेरे को, नाम याद
0: अच्छा,
2: किया था।
0: अच्छा अमिताभ बच्चन कोई आपका फेवरेट है एक्टर एक्ट्रेस?
1: सुनील शेट्टी है।
2: नहीं है कोई फेवरेट,
0: तो
2: कोई नहीं
0: कुछ
2: है।
0: और पूछ लेना चाहिए तो फिर इनसे सब्जियों के नाम पूछ लो।
2: ये सही रहेगा क्या? आपने सही बात की,
0: सब्जियों के तो बता पाएंगे ना,
2: तो फिर इंशाल्लाह बता पाऊंगा, गोभी से शुरू करूंगा।
0: नहीं कद्दू से शुरू कीजिए आप स्ट्रेट, फिर भिंडी तक जाइएगा
2: जैसे आप बोलेंगे।
0: नहीं कद्दू फिर बैगन फिर धीरे धीरे भिंडी तक पहुंचिएगा, धनिया पुदीना फिर तो चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें आपके साथ,
2: शुरू करता हूँ जैसे आप बोले तो मैं
0: सर्व भाई शुरू कर दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, ये आपका टाइम शुरू हो गया अब।
2: कद्दू बैंगन आलू और टमाटर प्याज तोरी कोसा हाँ और पालक धनिया और
1: पूरा
0: कोसा पे और पालक पे किस पे हुआ सर भाई?
2: आलू पालक क्या मजा आता है आलू पालक में, वो छोटे जो आम होते हैं ना, बिल्कुल छोटे आम के बच्चे जो होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे नींबू की तरह जायका होता है उसका। हाँ छोटे जो होते हैं ना आम, अम्बड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल छोटे आम, वो नमकीन होते हैं इस तरह, जिस तरह नींबू की तरह
0: वो नमकीन होती है, वो तो खट्टी होती थी,
2: वो कच्चे जो है कच्चे आम होते हैं,
1: लगा के खिलाई गई थी उनका, अच्छा ये तो नमकीन होती है
2: वो खाया होगा ना वो कच्चे आम जो है।
0: हाँ कच्चे तो खाए हैं पर वो खट्टे होते हैं, आपने कहा नमकीन होते हैं,
1: मसाला लगा हुआ था उस दिन जिस दिन
2: के बारे में बता रहा हूँ।
0: अच्छा
2: वो कच्चे आम जब आलू पालक के साथ पका दिया जाए ना, यकीनन आम
1: पका दिया
2: भाई। हाँ जब भी आलू पालक पकाओगे दो तीन चार पीस डालो, वो कच्चे आम छोटे वाले पीसेस होते हैं।
0: एक अच्छी रेसिपी बताई, और आपको पता है करीम शाह जी आपने 8 वेजिटेबल्स के नाम बताया, 8
1: बताइए कितना बड़ा काम किया आपने करीम भाई, आज 8 सब्जियों के नाम बताए आपने, वाह वाह वाह वाह।
2: बता सकता था लेकिन बस खैर है, मुझे अगर पहले तैयारी होती तो शायद 20 बताता।
1: वाह
0: ये तो है,
1: चलिए
0: फिर भी आपने बहुत अच्छा बताया,
2: वही चीजें बताएं जो मेरे खाने में होते हैं, ये चीजें अच्छी चीजें।
0: सही है। और आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आपने एक अच्छी रेसिपी भी हमें बता दी कि आलू पालक
2: खाना चाहिए। देखो पहले हम दुआ जब करते हैं ना, जब हम बात को खाते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि या अल्लाह हमें बख्श दो, हमारे माँ बाप को बख्श दो।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: ہلا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 2:02
0: آپ سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
3: Right guys, welcome back. آپ سن رہے ہیں شو انرجی آر سرور و نازیہ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں 2:03 اور اس وقت ہمارے ساتھ ہم تین لوگ ہیں آئی مین ایک کالر بھی جڑ چکے ہیں چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو
4: السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کون ہے ہمارے ساتھ
4: فضل بھائی
2: فضل بھائی کیسے ہیں فضل بھائی خیریت سے ہیں
4: الحمدللہ آپ نازیہ جی اور سرور جی اور پورے لسنرز کو ہمارا دل سے سلام
3: فضل جی ہمارا بھی دل سے وعلیکم السلام تو آج ٹاپک تو نہیں ہے
4: کوئی خاص ٹاپک ہے
3: نہیں وہی میں کہنے جا رہی تھی کہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہوتا ہے آج ہم جو ہے وہ بس انٹرٹینمنٹ رکھتے ہیں اور وہ بھی گیم کے تھرو
4: اوکے
2: کیسے ہیں آپ اور کہاں ہیں ابھی پہلے یہ بتائیے مجھے
4: الحمدللہ صاحب میں ابھی ایک کلائنٹ کو ملنے سنیا کی طرف ہوں ہائی وے
2: کیا حال چال ہے اس وقت ٹریفک وغیرہ کا
4: بالکل آرام ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ابھی سمجھ لیجیے جو انصار گیلری والی جو روڈ ہوتی ہے سنیا جانے وہ روڈ پہ ہوں بالکل خالی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں
2: اوکے تو چلیے گیم کھیلنے کے لیے ریڈی ہیں
4: جی بتائیے
2: کس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ کو بالی ووڈ میں بتائیے گانوں میں فلمیں زیادہ دیکھنے میں کون سے پسندیدہ ہیرو ہیں آپ کے
3: آئی تھنک موٹیویشن میں اور کریئر آپشنز میں رائٹ
4: میرے فیورٹ ہیرو تو بھائی جان
3: سلمان خان نہیں ہم آپ سے نا فضل جی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کریئر آپشنز پوچھتے ہیں
4: ضرور ہے
3: نا وہ تو ہمارا وہی میں نے کہا آپ کا انٹرسٹ بھی ہے اور آپ بہت سارے ہو سکتا ہے فیوچر سے ریلیٹڈ جو نئے کریئر آپشنز جو ہماری لسنرز کے لیے یوزفل بھی ہو سکتے ہیں وہ بتا دیں
4: میں بتاتا ہوں دیکھیے آپ جو اسٹارٹ اپ ہیں یا پھر ایگزسٹنگ بزنس ہیں ان کو ایک کمپلین ہے کہ جو پہلے کسٹمر آتے تھے اب نہیں آتے تو ان کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ اب کسٹمر آن لائن نہیں کسٹمر اب ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں گوگل چچا پہ چلا گیا ہر کوئی دیکھ لیجیے ہر کوئی پہلا کام کرتا اپنا موبائل اٹھائے گا گوگل پہ جائے گا سرچ کرے گا اور جو اس کو سمجھ میں آیا یعنی اوپر جو بھی اس کو کسٹمر مل گیا اس کے حساب کا ادھر چلا جائے گا تو میں اپنے کلائنٹس کو یہی بول رہا ہوں بھیا اب آپ کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ پرانی تھنکنگ سے نکل کے آپ ٹیکنالوجی میں
2: واہ کیا گیم کھیلا آپ نے 10 سیکنڈ کے بجائے آپ کو میں نے دیے 20 سیکنڈ اور آپ کا ٹائم پورا ہوا اور اسکور 0 ہوا یہ ٹاپک نہیں تھا یہاں پہ گیم کھیلنا تھا فضل بھائی
3: نہیں چلیے سلمان خان پہ ہی آ جاتے ہیں
2: چلیے ٹھیک ہے تو آپ کو سلمان خان کی 10 فلموں کے نام بتانے ہیں اور 10 سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے مطلب 10 نہیں چلیے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں آپ مگر 10 سیکنڈ
3: جتنا بھی آپ 10 سیکنڈ میں بتائیں
4: کتنے فلموں کا نام بتانا ہے
3: جتنا بھی بتا سکیں 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں
4: چلیے شروع کرتا ہوں میں ہم دل دے چکے سنم ہم ساتھ ساتھ ہیں اور کک پھر اس کے بعد ابھی اور یاد نہیں آ رہی
2: ہو گیا ٹائم بھی پورا ہو گیا بھائی کا
3: 5 آپ نے بتایا جی
2: چلیے صحیح پھر بھی آدھا تو سکور کر دیا ہم تو 10 ہی مان رہے تھے چلیے
4: سر ایک لائن کہہ کے میں کلوز کرنا چاہوں گا
3: جی
4: میں اپنے جو لسنرز ہیں ان کو یہ بولتا ہوں دیکھیے بھائی آپ کو گوگل پہ آنے کے لیے 2 چیزوں کی لازم ضرورت ہے ایک اپنا گوگل پروفائل بنا لیجیے اور ایک اپنی ویب سائٹ بنا لیجیے دیٹس اٹ انشاءاللہ آپ کے کسٹمر آپ کے پاس واپس آنے شروع ہو جائیں گے
2: بہت بہت شکریہ
3: تھینک یو بہت شکریہ بہت ہی اچھی ایڈوائس آپ نے دی
4: اور अगर आपके लिसनर्स में से किसी को हेल्प चाहिए तो फजल भाई हमेशा खिदमत के लिए हाजिर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।
3: जरूर जी। ओके, अलाफिस।
2: ओके,
3: एंड नाउ वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर। हेलो,
2: वो क्या कहते हैं उसको, क्या पढ़ता हूँ मैं, चरण भाई को प्यार, नादिया जी को सलाम,
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: और मेरी तरफ से भी भाई, लाइकवाइज मोहम्मद अशफाक साहब यहाँ हमारे साथ, मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, नादिया मैम, गुड आफ्टरनून, नाइस शो। सरूर भाई, आप कबीर भाई का पैसा वापस क्यों नहीं दे रहे हो, सुबह 6 से 9 तक आपको ही याद करते हैं, कभी आप जंगल में भेज देते हैं, कभी आपके वजह से फ्लाइट ऊपर ही नहीं जा रही। मैं कहानियों में वो मेरी दादा कहानी सुनाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है,
3: उनकी कहानी जो है वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, रियलिस्टिक एंड ऑल।
2: कौन था हमारे साथ?
3: हेलो,
5: हाँ जी जनाब, सानू भी गेम खिला दियो।
3: गेम खिला दो,
2: आइए साहब गेम खेल लीजिए। गाबा भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
5: सरवर भाई, एक्चुअली मैंने ट्यून इन किया उस टाइम जब यूसुफ भाई की कॉल चल रही थी।
2: अच्छा।
5: तो उसके बाद आपने गाना लगाया सेनोरिटा।
2: हाँ।
5: तो सरवर भाई यार कुछ दिमाग में आ रहा था उस टाइम,
2: बता दीजिए।
5: मैं भी यही सोच रहा था सरवर भाई कि इस सॉन्ग पे मैं कब सरवर भाई को सालसा करते हुए देखूंगा।
2: आहा, खाते हुए देख सकते हैं आप, करते हुए नहीं,
3: सालसा।
2: और कैसे
5: नहीं यार, सर
3: अच्छा लास्ट वीकेंड भी आई थिंक आपने यही ख्वाहिश, यही सिमिलर ख्वाहिश जो थी वो
2: हो गया क्या?
3: हाँ, लास्ट वीकेंड भी
2: आना ना,
3: इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ फ्लोर पे डांस करूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट?
2: एक हफ्ता हो गया ना दिया, वाह क्या बात है यार।
3: भाई आप एक हफ्ते से कहाँ डांस कर पाए,
2: मतलब एक हफ्ता काम कर चुका हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है भाई, वाह वाह।
5: सर्वर भाई चलो यार, किसी दिन आपने उस दिन भी सर्वर भाई बात पूरी नहीं होने दी।
2: अच्छा,
3: आज भी नहीं होने देंगे।
5: मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ आप सोच लीजिए। अब
2: ये बात पूरी कहाँ हो रही है, ये तो सोच पे जा रही है।
5: हाँ थोड़ा सोचिए ना, आपकी सोच 5G से भी आगे है जी।
2: अब ये सोचते रहेंगे तो अभी 20 मिनट भी नहीं रह गए प्रोग्राम में, उसी में खत्म हो जाएंगे।
3: अब समझ लीजिए
5: सर्वर भाई, यार सर्वर भाई मौका जरूर दीजिएगा यार आपके साथ डांस करने का।
3: मैं कहती हूँ सर्वर भाई, ये बहुत डिफरेंट से इनविटेशन है, खाना तो सभी कह रहे हैं, बिरयानी तो सभी कह रहे हैं, इन्होंने कुछ डिफरेंट कहा।
2: फायदा देखता हूँ हर चीज में मैं, यहाँ फायदा क्या हो रहा है मेरा, मेरे ये समझ में।
3: वजन कम हो जाएगा आपका?
2: वो चाहिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके तो अल्लाह का शुक्र है खेल ही रहे हैं, पूरा गेम इसी में ही हो रहा। अब फायदा हो क्या रहा है, फायदे के ऊपर है भाई, देखिए सारा दारो मदार।
3: हो सकता है कि डांस के बाद आपको खाना मिल जाए।
2: हाँ ये
3: फायदा हुआ नहीं हुआ
5: जी। सर्वर भाई आप शेप वाले व्यापारी नहीं है जो फायदा देखोगे यार। ए, ए, ए, आप दिल के व्यापारी हो सर्वर भाई।
3: अरे आप यही दें तो गलत ताड़े इन्हें।
2: चलिए साहब अब गेम खेल लेते हैं भाई, जल्दी से खेलेंगे गेम।
5: सर्वर भाई गेम का तो कुछ नहीं है, बस आप वैसे ही कोई सवाल सोल्व कर लो, वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए कॉल किया मैंने तो आपको।
2: आई नो
3: तो फिर
2: जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हम भाई, बहुत शरीफ लोग हैं, बदनाम है मार्केट में, मगर ठीक है शरीफ तो है ही है।
5: नहीं भाई, सर्वर भाई बदनाम कौन सी मार्केट में है उसका नाम मत लेना।
2: गेम खेल ले तो चब
3: आप सब्जी मंडी जाइए सर सब्जी।
2: भाई गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अगर आप गेम खेलना नहीं चाहते आप आए तशरीफ लाए बात करिए, ये भी हमारे लिए बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: तो आपने अभी इनविटेशन
2: कब एक्सेप्ट करना है सर्वर
5: भाई? वो तो
2: क्या करूं मैं।
3: अरे इनसे अंगूठा लगवाइए।
5: हाँ पर्दे के पीछे भी नाजिया जी, इनको बोलो वैसे ही रहो जैसे आप आओ निकल।
3: अरे पर्दे के पीछे बिल्कुल ही अलग है वो, तो ना रहे तो फिर
2: ना रहे क्या मतलब है?
3: मेरा मतलब पर्दे के आगे
2: जाएं। क्या चाहती हैं आप?
3: मैं कह रही पर्दे के आगे ना आए जो पीछे रहते हैं।
2: अच्छा
3: वो पीछे ही सही था आपका।
2: चलिए भाई गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर।
3: हाँ जी ओके जी, अल्लाह
5: हाफिज़।
2: हैप्पी वीकेंड। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और उसके बाद कॉलर की तरफ भी बढ़ते हैं। और रिजवान भाई कह रहे हैं हैप्पी वीकेंड, यहाँ पर क्या कहते हैं, आज तो स्पेनिश सॉन्ग लगाया है नाजिया आपने, शुएब है हमारे साथ फ्रॉम पाकिस्तान, कहते हैं सर्वर भैया क्या हाल है आपके, कौन है ये, नाम तो लिख देते भाई, बढ़ते हैं आगे। सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून कहते हैं नाजिया आपको।
3: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून।
2: ये है अननोन पर्सन हमारे साथ, इन्होंने लिखा हुआ भी यही है, कह रहे हैं भाई फजल को फजल मिले मुझे, मैं को आज बात करनी है भाई से। आसिफ भाई हमारे साथ,
3: आसिफ भाई को फजल भाई से बात करनी है। अच्छा चलिए, हमारे साथ कोई जुड़ भी रहा है।
6: अस्सलाम
3: वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाई आपके?
6: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन आप कैसी हो? और हमारे
3: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से। पहले तो ये बताइए, आपको बाहर तो नहीं आना पड़ रहा है धूप में?
6: नहीं नहीं माशाल्लाह, मौसम तो बहुत अच्छा बन रहा है अभी।
2: चांदनी रात हो रही है, मैं बाहर बहुत इन्होंने पूछ लिया तो मौसम बहुत अच्छा बन रहा है अभी। मैं यही कह देता सर भाई 15 मिनट से वेट करवा रहे हो धूप में।
3: सर्वर भाई आदि हो गए, पता है आदि किस चीज के हो गए? सिर्फ कहते हैं मैं सिर्फ तारीफ सुनता हूँ, सुनूंगा कुछ नहीं और कुछ भी नहीं कोई सुनाना, यही इनकी आदत पड़ गई है। ऑन एयर ऑफ एयर दोनों अजीब हालत है।
6: मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा अभी, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा।
2: देखिए ये होता है भाई से भाई लग के को लड़ाने का जो काम चल रहा है,
3: आपने खुद ही अपनी सच्चाई
2: ये यहाँ भी कामयाब देखिए, एग्जांपल है सामने।
3: सर्वर
2: एक ऐसा शख्स जो मेरे नाम की तस्बीह पढ़ रहा है,
3: अल्लाह ना करे वो क्यों पढ़ी है तस्बीह भाई,
2: वो मुझसे इस वक्त लड़ रहा है।
3: आप ही ने शुरुआत की भाई, इन्होंने शुरुआत की नहीं की इन्होंने कि अभी जो है वो अगर मैं कहता तो आप कह देते ऐसे कि बुरा अगला आदमी
2: खैर खैर ये
6: मैं अगर दिल पे हाथ रखूं, मैं अगर दिल पे हाथ रखूं और बोलूं भी तो मुझे मुझे मुझे मालूम है कि मेरा दिल मुझे इजाजत नहीं देगा कि भाई सरवर भाई के बारे में कुछ गलत बात करूं।
2: क्या बात है,
3: ये होता है सरवर भाई सीखिए।
6: हाँ
3: देखा आपको
2: ये मैं अगर जो कहना
6: मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ, बस एक बस हाथ ऊपर है कि भाई
3: सरवर हार नहीं मानते हैं। आप जो है हर रिश्ते को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं,
2: ये बड़प्पन है आपका,
3: आप अहमियत देते हैं हर रिश्ते को।
2: और इतनी बातें हम करने के बाद थोड़े पैसे ज्यादा भी लेते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
6: अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
3: कह रहे देंगे हम आपको।
6: मैंने प्रोग्राम सुना है, जस्ट मैंने कॉल मिलाई, टाइम देखा तो मैं बोला अरे आज तो मैं भूल गया था कॉल करना।
2: एलन बस एलन,
3: आज हमारे पास टॉपिक नहीं है,
2: आज हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, जरा हल्का फुल्का सा दिन रखते हैं, गेम भी खेलते हैं, जिनको गेम खेलना होता है अब अपने दिल की बात रख सकते हैं, खैर खैरियत पूछ सकते हैं, आज नॉर्मल डे होता है बिल्कुल। कब तक टॉपिक टॉपिक पूछते रहेंगे, सारे टॉपिक ही खत्म हो गए हमारे पास से।
3: टॉपिक के बाद सर अगर आप टिपी टिपी टॉप खेलने लगे,
2: आप जरा इसीलिए तो गेम खेलते टिपी टिपी टॉप इसलिए खेलते हम लोग। हाँ खादिम भाई,
6: मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि माशाल्लाह मौसम अभी बहुत अच्छा होने जा रहा है इंशाल्लाह, और कतर जो है कतर की वो खूबसूरती जो है माशाल्लाह वो अभी दोबारा से इंशाल्लाह बहाल हो रही है इंशाल्लाह। वो जो साइड रोड के किनारे फूल लगे लगाते हैं और जो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जगह जगह माशाल्लाह वो काम अभी शुरू है, वैसे भी खूबसूरत है लेकिन ये गर्मियों की वजह से वो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो अभी इंशाल्लाह जो पार्क है वो इंशाल्लाह फिर से आबाद हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और मैं हमेशा हर फ्राइडे को कोशिश ये होती है कि मैं इंशाल्लाह पार्क में जो ऐसे ऐसा होता है ना कि अपने मुल्क से भी ज्यादा प्यार मिलता है यहाँ और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह।
2: आपकी पश्तो ज़बान है ना खादिम भाई?
6: जी जी जी जी पश्तो ज़बान है हमारी।
2: चलिए अभी आपके लिए एक गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ,
6: लेकिन एक गाना मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो जो बार बार आप लोग लगाते हैं और वो एक गाना वो उसमें वो गाने का अंदाज ही कुछ ऐसा नहीं है, वो जो लाल शपे खबर था ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो नहीं है।
3: अच्छा हम लोग को बताया किसी ने कि बहुत हिट गाना है तो हम वही चलाते हैं।
6: नहीं नहीं नहीं अगर
3: सरवर भाई ने फिर वही गाना निकाल लिया।
2: नहीं नहीं यहाँ पे दूसरा
6: असल में ये रिमिक्स किया हुआ है और रिमिक्स उन लोगों ने गलत किया हुआ है, असल में ये पश्तो स्पीकिंग वालों ने नहीं गाया, वो गलत गाया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे ही बस वो लाल शा ऐसे कुछ बोलते हैं, मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद वो। अगर दूसरा कोई गाना है अच्छा वाला तो आप लगा दे, मुश्किल नहीं कोई भी,
3: वरना कह रहे मत लगाइए सरवर भाई।
2: चलिए ठीक है,
3: अच्छा तो लगाइए मत लगाइए।
6: उसके बोल जो है वो उसके बोल उन लोगों ने जो रिमिक्स किए हुए ना और कुछ शामिल किए हुए वो ऐसे नहीं है।
2: अच्छा।
6: मैं सर्वर भाई आपको आपके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक भेजूंगा।
2: अच्छा,
6: जो असल में जो चीज है वो मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह।
2: अच्छा,
6: वो आप सुनो, बहुत
2: अच्छा जरूर भेजिएगा और जरूर इंशाल्लाह ताला सुनेंगे कादिम भाई।
6: बहुत अच्छा है,
3: बिल्कुल
2: बहुत
6: बहुत शुक्रिया। अगर मेरा बस चले तो मैं एफएम 107 के ये जो लाइब्रेरी है इससे ये बिल्कुल हटाऊंगा, इसलिए ये पश्तो है नहीं।
3: अच्छा, ये आज पता चला है।
6: इसमें बहुत मिक्स किया हुआ है और वो ऐसे ही बस।
3: चलिए हम ये बात जरूर। अच्छा, ओरिजिनल अलग है,
2: पता नहीं क्या है खादिम भाई, तो सही होगा, ऐसे ही होगा, अभी तो कम समझ में आती है। चलिए भारल भाई, खादिम भाई,
6: कोई भी पश्तो लगा दो, कोई बात नहीं,
2: चलिए ढूंढेंगे अभी इंशाल्लाह।
3: अभी जितने लोग आ रहे हैं वो गेम नहीं खेल रहे हैं।
2: हाँ, अभी मूड में नहीं है।
6: चलो ठीक है, मैं भाग रहा हूँ बस इधर से।
2: ओके
6: ओके
3: ओके, अल्लाह हाफिज़। एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
2: हमारे साथ हैं, कौन है हमारे साथ? कौसर जहाँ है हमारे साथ, तो बताती है की यही गेम के लिए आप शरीफ तो लाइए। आप देखिए क्या क्या है हमारे पास, गेमर आ कहाँ रहे हैं जो हम गेम खेले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरवर भाई,
2: कौन है हमारे साथ?
7: बहुत देर से फोन पे ये आंखें लगी थी, फोन उठाते उठाते बहुत देर कर दी।
2: अरे सर, अहलन व सहलन, चलिए कनेक्ट हो तो गए। कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
7: मैं शमशाद बोल रहा हूँ, जो रॉयल नाम से आता है।
2: अच्छा, तो अच्छा अच्छा मैं समझ गया। ओके, हाँ तो यार वहाँ पे आप नाम तो लिख दिया करिए कम से कम।
7: वो हमारी कंपनी का लोगो है।
2: मैं समझ गया, मैं कई बार रुक गया, मैंने कहा कि ये तो मैं जबरदस्ती में इसको एडवर्टाइज कर दूंगा अभी।
7: जी, आप मैंने कल आज कबीर भाई से हमने पूछा, पर कबीर भाई आप तो बांग्लादेश से, आप बोलते हो मैं इंडिया के हूँ।
2: हाँ, क्या बोले?
7: उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले आप वो बोले कि आज जो ये फ्लाइट जो ऊपर टेकअप नहीं हो पा रही थी, उनकी वजह से नहीं हो रही थी, वो बैठे हुए थे, फिर लास्ट में फ्यूल भरना पड़ा, फिर वो जहाज ऊपर गया।
2: देखिए ये मतलब उन्होंने जवाब सही नहीं दिया, वो दूसरी तरफ चले गए, मगर जवाब सही नहीं दिया। ये जवाब उनसे पूछिएगा जरूर शमशाद भाई, है ना, कि क्यों भाई बता, क्या इसमें हरज है बताने में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो क्या कहते हैं, कहाँ पे है अभी शमशाद साहब आप?
7: मैं तो अभी सनैया पहुँच गया हूँ।
2: सनैया पहुंच गया हूँ, चलिए तो गेम खेलेंगे हमारे साथ।
7: गेम
2: बहुत आसान
7: है, थोड़ा पूछेंगे तो खेल सकते।
2: अरे बहुत ही आसान है, आपको 10 सेकंड के अंदर, चलिए जैसे कि हमें कौन थी हमारे साथ मैम,
3: कौसर
2: ने भी बताया था, तो कौसर के हवाले से ही जो कौसर ने आइडिया दिया, एटलीस्ट उनका आइडिया आगे बढ़ाते हैं। और आप 10 जगहों के या एरियाज के नाम बताइए 10 सेकंड के अंदर, 10 नहीं मतलब बताइए, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड है आपके पास, ठीक है?
7: क्या इंडिया के या कतर के?
2: अपने कतर के यार,
7: कतर के।
2: हाँ ठीक है, शुरू करूं?
7: अगर वैसे मैं तो खुद ड्राइवर हूँ, लेकिन इतना जल्दी तो कोई जबान पे नहीं आ पाता है मेरे पास, नहीं
2: जब भी तो गेम कर रहे हैं हम। चलिए जितने भी याद है बताइएगा, ठीक है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
7: जी वकरा है, सनैया है, न्यू सनैया, मदीना मुर्रा, हिलाल, उसके बाद में
2: 10 सेकंड हुए पूरे भाई, बहुत दूरी दूर के नाम बता रहे यार, दोहा के तरफ भी थोड़ा सा घूम लेते, ऐसी क्या बात थी?
7: जी जी जी
2: है? शमशाद भाई दोहा की तरफ भी घूम लेते थोड़ा बहुत।
7: भाई जस्ट अभी दोहा से आया ही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आया नज़मा वगैरह।
2: चलिए साहब, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखे और आपका वीकेंड और भी अच्छा गुजरवाए, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
7: कल कभी वैसे मैं पूछूंगा कि भाई आप
2: कल जरूर पूछिएगा, कल ही पूछिएगा और
7: बताइए एकदम बिल्कुल।
2: सुनिए तो सही, कल ही पूछिएगा, मैं बताऊंगा कि कल आप कैसे पूछेंगे ये भी बताऊंगा, अभी व्हाट्सएप पे बताता हूं।
3: पूछिएगा
2: हाँ, तकरीबन फजर के बाद ही,
7: फजर
2: के बाद नहीं नहीं तो घर चले जाइए, मैं पूरा एड्रेस वगैरह व्हाट्सएप पे बताता हूँ आपको अभी,
3: और फजर के बाद मिल
7: जाएंगे। मैं उनसे पूछूंगा कि आप कौन से वाले बंगाली हैं, बांग्लादेश वाले हैं या वेस्ट बंगाल वाले, कलकत्ता वाले बंगाली।
2: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: पहले लगाते हैं।
2: शमशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अपना ख्याल रखिए।
3: चलिए, अल्लाह हाफिज।
2: थैंक यू सो मच।
7: ओके, आप भी अपना ख्याल रखिए,
2: अल्लाह हाफिज।
3: एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो,
8: अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम जी। हां,
8: कैसे भाई सरवर भाई, नाजिया बहन, क्या हाल चाल?
2: अरे भाई आज बड़ी हल्के आवाज निकल रही है यार, क्यों ऐसा?
3: अभी लंच नहीं किया
8: है भाई, भूख लग रही है, सोच रहा सरवर भाई के साथ में खाऊंगा आज।
2: अरे यार और लेट हो जाएंगे।
3: कोई बात नहीं, अब 10 ही मिनट तो रह गए आपके।
2: जाने और पहुंचने में टाइम लगेगा ना, करीब आ जाइए कहीं यहीं अपना बिन उमरान में, तो यहीं खा लेते हैं कुछ साथ में आसिफ भाई,
3: कसम खा लीजिए यहाँ पे साथ।
9: कल उधर आया था भाई मैं मिठाई चॉकलेट की दुकान पे, कल तुम मेरे को दिखे नहीं भाई।
2: अच्छा
3: ये खा के निकले थे
2: यहाँ आसपास आए थे कहीं? ओ क्या बात
3: नहीं, ये चॉकलेट खा के नहीं, कसम खा के निकले थे कि मैं नहीं खरीदूंगा, आप ही लोग लेंगे मेरे लिए।
9: भाई मैं तुमको कितना कॉल लगाने के बाद हमारा नंबर लगता है, क्यों ऐसा करते भाई जुलम हमारे ऊपर?
3: अरे क्या सरवर भाई, आसिफ भाई को आप नहीं,
9: सरवर भाई कोई
3: आपका नुकसान होगा
2: आसिफ भाई। हम तो आपको कॉल लगाते बट लाइन इतनी बिजी हो रही थी कि कल की बात कर रहा हूँ मैं, आपने कहा भी था मुझे याद आ गया, मगर लाइन इतनी बिजी थी कि हम नहीं लगा पाए। बहरहाल तो अभी गेम खेलेंगे आसिफ भाई?
9: भाई नहीं, गेम नहीं खेल पाऊंगा भाई मैं,
2: बहुत आसान सा गेम।
9: तुम्हारी आवाज सुनने का था भाई इसलिए फोन लगाया। मोहब्बत भाईचारा ऑन टॉप।
2: नहीं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह आप तशरीफ लाइए और हमसे बात करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
9: हैप्पी वीकेंड भाई, हैप्पी
2: वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। खाना खा लेना जल्दी से, अभी ऐसा ना हो कि और
9: अभी तो खाना आराम से होता है भाई से बात हो रही
2: है। मेरा भाई कैसा, चलिए ठीक
3: है, बिस्मिल्लाह करके खाइएगा, हजम हो जाए इंशाल्लाह।
2: अल्लाह
3: हाफिज।
2: कुछ मैसेजेस ले लेते हैं नाजिया और उसके बाद।
3: अच्छा हमारे से जितने भी कॉलर्स जुड़ रहे हैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा,
2: आज गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, गोभी के फूलों कैसे हो कहते हैं, ये सफा की रूह इनके अंदर कैसे आ गई मोहम्मद हुसैन के अंदर?
3: क्या हो क्या?
2: हम एक ही फूल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आप लोग और बांटना शुरू कर दिए। सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिलबर दिलबर दिलबर हमारे साथ भाई, कॉल आसिफ भाई से तो बात हो गई, कॉल के लिए कह रहे थे। एमबीबी कुछ वॉइस नोट भेज रहे हैं, बात करने का तो दिल है तो तशरीफ ले आइए ना। कहते हैं जो लोग 107 को सुनते हैं वो दोहा के रेसिडेंट हैं, उन्हें दोहा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं पता है तो उनके साथ ये सारे नेम्स शेयर करें। हमारे साथ कौसर हैं, कौसर अगर आप तशरीफ लाएंगी और हम आपके साथ ऐसा कुछ गेम खेलेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंगली जो है वो समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
3: कॉलर
2: जुड़ गया, हो साथ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
10: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
3: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
10: जी मेरा नाम रियाज है।
3: रियाज, ओहो
2: बहुत रियाज कर रहे हैं आजकल आप, बहुत रियाज कर रहे हैं।
10: मैं आजकल इसलिए रियाज कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे दावत दी है और आप बोल रहे हैं, तो मैं तो अभी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा ना।
3: ये आप पहले आए तो बहुत ही अच्छे आए, और कहाँ थे आप?
2: नहीं नहीं ऐसे बहुत लोगों को ये कुछ फहमी है
3: जब दावत मिलेगी,
2: हाँ मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता।
3: बहुत
2: ये भी उनमें से एक है रियाज भाई भी,
3: लेकिन वो कह रहे मैं पीछा नहीं छोड़ू, पूछता रहूंगा मैं, ये अच्छा है कम से कम आप पे प्रेशर तो रहेगा, कभी ना कभी आप शायद दे ही दें दावत।
2: है रियाज भाई ऐसी कुछ है क्या मामला?
10: मैं क्यों एमसीए के गेट से बाहर बैठ जाऊंगा या आपकी गाड़ी का पीछा कर लूंगा?
2: मैं हूँ थोड़ा जालिम हूँ, इतना नहीं हूँ, आपको भगाऊंगा नहीं गाड़ी के पीछे। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपकी नजरों से गायब हो जाऊं एकदम से,

0: उसके लिए तो फिर जरूरी है कि मेरी नजर कमजोर हो जाए ताकि
1: नहीं यार नहीं अल्लाह ताला
2: सर्वर भाई तो छुपे हुए भी होते फिर भी नजर आ रहे
1: अल्लाह ताला
2: तो छुपाऊं ना करे
1: अल्लाह ताला आपकी नजरें जो है

0: हाजिरी लगाए इतना तो हम कर सकते हैं आपकी मोहब्बत में। सरवर भाई टेंशन ना लो,
1: अहलन व सहलन,
2: इंशाल्लाह देर से भी दावत ही कबूल कर लेंगे।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें आप, यही हमारी दुआ है भाई।
2: वाकई आमीन।
0: बस इतना एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दावत पे बुलाए तो उससे पहले मेरे को मतलब लोकेशन और इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि
1: जरूर
0: बीच का एक टाइम का गाना स्किप कर दूं।
1: जरूर जरूर जब तक आप काम करिए कि पाकिस्तान होके आइए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, छुट्टी वेकेशन वगैरह एक हो जाए इस बीच।
0: मसला ये है कि पाकिस्तान वाले मेरे को नहीं छोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम बोल सटी को आराम से बैठो।
1: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।
1: हाँ टाइम पूरा हो गया, हैप्पी वीकेंड इंशाल्लाह,
0: संडे
1: संडे
2: इंशाल्लाह जी। शुक्रिया
1: और कुछ मैसेजेस यहाँ पर उनका नाम जरूर ले लेते हैं।
2: हाँ,
1: इनका नाम तो नहीं दिख रहा, यार नाम लिख दिया करें तो जरा सा मैं नाम भी ले लूं जल्दी क्योंकि वक्त कम है यहाँ पर। और ये कौन है हमारे साथ, अरमान मलिक हैं। तो भाई फिलहाल के लिए इजाजत ले लेते हैं नाजिया, बातों में वक्त पता ही नहीं चला कहाँ और कब गुजर गया।
2: गुजरी कुछ लोगों पे तो गुजरी।
1: अच्छा चलिए, मुझ पे सबसे ज्यादा गुजर रही है ये, कब समझ में आएगी कि
2: जिसने कहा उस पे ज्यादा।
1: चलिए
2: भाई
1: तो फिलहाल आज आपसे इजाजत ले लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह ताला संडे हमारे साथ जरूर कनेक्ट हुईगा। 1:30 बजे मैं और नाजिया आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे।
2: बिल्कुल।
1: और अपनों को माफ कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। सुनते और देखते रहिए
2: FM 107 दिल से देसी।
3: Vous les sirez sur ma vie malheur.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।

0: कभी कभार हम सोचते हैं कि जब ज्यादा वक्त मिलेगा तब इबादत बढ़ाऊंगा, जब मसरूफियात कम होंगी तब नवाफिल शुरू करूंगा, जब जिंदगी कुछ पुरसकून होगी तब अपने मामलात दुरुस्त करूंगा। और यूं हम एक बड़े मौके के इंतजार में छोटी छोटी नेकियों के बहुत से मौके खो देते हैं। हालांकि अल्लाह के रास्ते में हमेशा बड़े कदम ही जरूरी नहीं होते, कभी चंद छोटे इकदामात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महबूब सहाबी हमें तीन ऐसी ही इबादतों के बारे में बताते हैं, तीन आसान मामूल, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिथलाथ بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد। मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसीयत फरमाई, हर महीने तीन दिन रोजे रखना, चाश्त की दो रकातें पढ़ना और सोने से पहले वितर अदा करना। सबने कराम, जरा इन तीन इबादतों की तरतीब देखिए। हर महीने तीन रोजे, दिन में दो रकात चाश्त और रात को सोने से पहले वितर। तो पहली वसीयत है हर महीने तीन दिन रोजा रखना। गौर कीजिए, यहाँ पूरा महीना नहीं, हर हफ्ते भी नहीं, सिर्फ तीन दिन। यानी सुन्नत हमें एक ऐसा मामूल दे रही है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में मुस्तकिल जगह दे सकता है। रोजा इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करता है जो उसे याद दिलाती है कि मैं अपनी हर ख्वाहिश का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने नफ्स को रोक सकता हूँ, मैं अल्लाह के लिए किसी जायज चीज को भी कुछ वक्त के लिए छोड़ सकता हूँ, तो फिर हराम चीज को छोड़ने की मश्क क्यों ना करूं। फिर दूसरी वसीयत है चाश्त की दो रकातें। दिन शुरू हो गया, लोग अपने कामों में निकल गए, दफ्तर, कारोबार, तालीम, घर की जिम्मेदारियां, और इसी मसरूफ दिन के अंदर आप चंद मिनट निकालते हैं, वजू करते हैं, क़िबले की तरफ खड़े होते हैं और सिर्फ दो रकात। बज़ाहिर चंद मिनट हैं, मगर इन चंद मिनटों में आप अपने दिन को एक पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरी मसरूफियात बहुत हो सकती हैं लेकिन मेरा रब उन सबसे बढ़कर है। सबने कराम, हम कभी इबादत को फारिग वक्त के साथ जोड़ देते हैं। अगर वक्त मिला तो पढ़ लेंगे, अगर काम कम हुआ तो कुरान पढ़ेंगे, अगर मसरूफियत ना हुई तो जिक्र करेंगे। अब मसला यह है कि जिंदगी कब मुकम्मल तौर पर फारिग होती है। एक काम खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, एक जिम्मेदारी पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी होती है। इसलिए इबादत के लिए हमेशा वक्त नहीं मिलता, कभी वक्त निकालना पड़ता है। चाश्त की दो रकातें हमें यही बताती हैं कि दिन की मसरूफियात की भीड़ में गोया दिन का आखिरी अहम अमल भी अल्लाह के साथ ताल्लुक का अमल हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सोने से पहले वितर की वसीयत की गई और ये वसीयत हमें इबादत में अपनी कैफियत और मामूल को पहचानने का सबक भी देती है। जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार होने का मामूल रखता हो, उसके लिए वितर को आखिर शब तक मौखर करने की फजीलत अपनी जगह है। लेकिन जिसे अंदेशा हो कि नहीं उठ सकेगा, वो सोने से पहले वितर अदा कर ले। यानी मकसद ये नहीं कि बेहतरीन वक्त के इंतजार में अमल ही छूट जाए। अब एक बार फिर तीनों वसीयतों को एक साथ देखिए। हर महीने तीन रोजे, या आपके महीने में इबादत का निशान है। चाश्त की दो रकअतें, या आपके दिन में इबादत का निशान। सोने से पहले वितर, या आपकी रात में इबादत की अलामत है। अल्लाह ताला हमें फराइज की हिफाजत के साथ साथ नवाफिल की मोहब्बत अता फरमाए, नेकी पर साबित कदम रखे, हमारे थोड़े अमल में इखलास और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर की, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी।

वादेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और नंबर थ्री पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, 237 मैचेस में 15,380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी। 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती और दोनों कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी में हासिल हुई। सबसे पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया 1970-71 में। वेस्ट इंडीज के पास गैरी सोबर्स जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे, लेकिन वाडेकर की टीम ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर हिस्ट्री बना दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और इसी सीरीज में एक नौजवान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का शानदार आगाज किया और 774 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है और इंग्लैंड उस वक्त क्रिकेट की दुनिया की मजबूत टीमों में से एक थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैचेस ड्रॉ हुए। फिर आया द ओवल का फैसलाकुन टेस्ट मैच। यहां दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए जबकि इंडिया ने 284 रन का जवाब दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई, जहां लेजेंडरी स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट हासिल किए। इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर दी। यह इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी और इसके पीछे वाडेकर की कप्तानी, कैप्टनसी मटेरियल तो थी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वॉज अ मेजर रीजन। वाडेकर ने इंग्लैंड सीरीज में खुद भी बैट से कंट्रीब्यूशन दिया और 204 रन के साथ इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर रहे। वाडेकर के अचीवमेंट सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं थे दोस्तों, वो उस इंडियन टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1967 और 1968 में न्यूजीलैंड को 3-1 से सीरीज में शिकस्त दी। ये इंडिया की पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी। वाडेकर ने इस सीरीज में अपनी पहली और करियर की वाहिद टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर डालूं तो पता चलता है कि वहां पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। मुंबई, जिसे उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, उनकी कप्तानी में 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972 और 1972-1973 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेला जाता है, और 1971 की बैक टू बैक ओवरसीज सीरीज विक्ट्रीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर वाडेकर को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक खास मकाम दिया। बाद में वो इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे और नेशनल सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन भी। 2011 में उन्हें BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वाडेकर का नाम सिर्फ एक बैट्समैन या कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने इंडिया को ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में एक नई पहचान दी। 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में सीरीज जीतकर इंडियन क्रिकेट को एक बुलंदी तक पहुंचाने में अजीत वाडेकर का एक अहम रोल रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। काश मैं ऐसे अनाउंस कर पाता ऐसे कुछ, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट। जब भी मैं आऊंगा तो

0: कुछ ना कुछ आपको ऐसा बता के जाऊंगा जो आप या तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे या फिर अभी अभी टाइप करके देख लेंगे ये क्या कह रहा है। तो आज भी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, कुछ AI की वेबसाइट्स होंगी, कुछ नॉर्मल होंगी, मगर ये आपके काम जरूर आएंगे। और आपके काम को चीज आ रही है तो नॉलेज तो भाई साहब बांटने से बढ़ती है, आप भेजिए मारे धुरे। ये जो सोशल मीडिया हमने किस लिए बनाया है आप आइए बात कीजिए FM 107 Qatar FM 107 Qatar। अब चलिए बढ़ते हैं पहली वेबसाइट की तरफ। ये जो वेबसाइट है ये बहुतों के काम आने वाली है, इसका नाम है scholarships.com scholarships scholar हाँ scholarships scholarships.com। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम नजर आएंगे, आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। तो दुनिया जहां के इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पढ़ाई के लिए आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन सबके नाम आपको नजर आ जाएंगे। तो आप लिटरली डिग्री वाइज जगह वाइज हर तरीके से ढूंढ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं। लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो तलाश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है मेरे को पता लग जाए कि भाई ये स्कॉलरशिप किधर चल रही है। तो ये जो फायदा है आप इससे उठा सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई टीनेजर है और आप सोच रहे हैं भाई स्कॉलरशिप की तरह देखा जाए, कहीं बाहर विदेश में पढ़ाई कराई जाए, तो इसका भी एक तरीका है। ये वेबसाइट बहुतों के काम आएगी, स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन scholarships.com। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस की, सो यू कैन जस्ट गिव देम अ कॉल एंड आस्क मी सर आपका ये वेबसाइट पे देखा है ये सही है, तो आपको बता दे क्यों, बिकॉज ये बहुत ही लेजिट वेबसाइट है। ठीक है आगे बढ़े। ऑलराइट अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है swishy.ai, मैं स्पेल आउट कर देता हूं swishy.ai swishy.ai। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली नाम के आगे AI लगा हुआ है, तो इसमें AI मोशन डिजाइंस आपको मिलेंगे। इसमें 100 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं या यू जस्ट वांट टू यूज इट, एवं खामखा यूज करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इन तमाम चीजों को ऐसे का ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अगर अपने जुगाड़ से अपने दिमाग से कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये AI बहुत बढ़िया काम करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोशन डिजाइन है ये सस्ते वाले डिजाइन नहीं लगते, लिटरली लगते हैं कि भाई इसमें मेहनत की गई है, एंड ये आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे यूज करें, आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू प्रेजेंट विद, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो फिजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं देखो जी स्क्रीन की तरफ, या फिर आप किसी को भेज रहे हैं, सब तरीके के लिए ये काम करेगा, बहुत क्रिएटिव भी लगता है। ओके तो ये जरूर देखिएगा swishy.ai। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अगली वेबसाइट भाई साहब टाइम पास के लिए, बिल्कुल टाइम पास के लिए, तो आपका टाइम पास हो जाएगा, जबान भी स्लिप हो गई मेरी एक्साइटमेंट में। तो अगली वेबसाइट का नाम है eve.io eve.io। बहुत ही छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये वेबसाइट उनके लिए जो कि दोस्त आपस में कुछ गेम खेलना चाहते, तो आप इसमें 8-player शूटर गेम खेल सकते हैं, बहुत मजेदार है भाई। इसके लिए कोई डाउनलोड कुछ नहीं चाहिए, मजे से खेलो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छी भी लगेगी वेबसाइट, एंड काम की भी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मस्ती मजाक करने जाते हैं, ये भी तो बड़ा जरूरी है ना। चलिए जरा खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से खबर बता दूं, एक जो खबर आई है इंटेक न्यूज वो है मार्क जकरबर्ग साहब की। मेटा के सीईओ हैं आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी हैं। इन्होंने मेटावर्स में बहुत सारी चीजें चेंज करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन रिसेंटली एक वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही शोकेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम अपने AI एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरा चश्मा देख रहे हो भाई साहब $1,299 मजाक है क्या, इतना महंगा मेटा VR ग्लासेस पहन के ये घूम रहे थे। और साथ में इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसका नाम था म्यूज चार्म, जो काम करती है कंपनी की रिसेंटली जितने भी नए नए AI पर्सनल एजेंट है उन्हें लॉन्च करने के लिए। ये आदमी कुछ आगे का कर रहा है, बता रहा हूँ, खिचड़ी पक रही है, अगले 2-3 सालों में वो खिचड़ी जो है दिख जाएगी या तो जल जाएगी। ये थी टेक अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ एंड हमसे देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

लोगों को फंसाने के लिए ये बिल्कुल असली और प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर एड कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें फेक आर्टिस्ट का लाइनअप दिखाते हैं, झूठे वेन्यू दिखाते हैं, पार्टनरशिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने स्पॉन्सर इनके पास हैं। जो फैंस फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं उन्हें सस्ते अर्ली बर्ड पासेस, ग्लैम्पिंग यानी कि लग्जरी कैंपिंग वगैरह, रिजर्वेशंस और एक्सक्लूसिव वीआईपी एक्सपीरियंस का लालच दिया जाता है, टिकट्स बेची जाती हैं और ये टिकट्स आपको कई बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर कोई अनऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं। इस फ्रॉड की असली हकीकत तब सामने आती है जब लोग टिकट्स खरीद कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खाली मैदान या पब्लिक पार्क मिलता है जहां कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइजर सारी टिकट का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा अजीब और यूनिक तरीका है स्कैम करने का जिसमें आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐड चला और ये ऐड बड़े ही ब्लडली चल रहा है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने टिकट भी खरीद ली, आपने दिखाया कि बाकायदा आपके पास डिजिटल टिकट है, लेकिन जब आप उस लोकेशन पे पहुंचे अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से आपके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, अब वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं क्योंकि जब आप उसे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो कोई आपको कांटेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इन स्कैम से बचने का तरीका भी है। क्या तरीका है इन स्कैम से बचने का? सबसे पहला तरीका है ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई एड रन किया भी गया है सोशल मीडिया पे तो आप प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। अगर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको किसी नंबर पे ले जा रहा है, आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है, वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो जब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक आए तो प्रॉपर चेक करना। वेल दोस्तों, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करने के बाद दूसरा स्टेप जो होना चाहिए आपका वो होता है वेन्यू को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई एड आया है तो हो सकता है उसमें वेन्यू भी आए आमतौर पे, लेकिन जिस होटल का नाम उसमें पड़ा है, उस फ्लायर पे पड़ा है, पार्क या स्टेडियम का नाम पड़ा है, फेस्टिवल होने का दावा किया जा रहा है, तो उस वेन्यू की मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल करें। मिसाल के तौर पे एबीसी कोई ग्राउंड है जहां पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उनके मैनेजमेंट को कॉल करके पूछें क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे फला इवेंट के या फला फेस्टिवल के इवेंट के लिए बहुत ज्यादा वाइब सेट है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस इवेंट के बारे में। तो आप जब पता करेंगे तो आपको डिटेल पता भी चल जाएगी कि वाकई में कोई इवेंट बुक्ड है या नहीं। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट का इस्तेमाल करें। टिकट्स हमेशा ट्रस्टेड टिकटिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदें और हमेशा क्रेडिट कार्ड से पे करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको फ्रॉड की सूरत में चार्ज बैक का ऑप्शन मिलता है। अनऑफिशियल लिंक्स पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश को सेंड करने से बचें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप फला लोकेशन पे पहुंचे, वहां पर हमारा वो शख्स मिलेगा, उसको आप पेमेंट कर दे, वो आपको एक फिजिकल टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो फिजिकल टिकट भी आजकल बनाने लग गए हैं। आप सही में किसी के पास जाएंगे, वो आपको फिजिकल टिकट देगा, आप उसे कैश देंगे, आपको वो नंबर भी देगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट तो है ही नहीं, आप फिजिकल भी मिलकर आए, आपके पास फिजिकल कार्ड भी है, इवेंट का टिकट भी है, लेकिन जब आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तब तक आपके साथ हो चुका होता है फ्रॉड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस फ्रॉड के बारे में समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया, द डिबेटेबल टेबल, एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। द डिबेटेबल टेबल, आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। इस्तकबाल आप सभी का इस शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है द डिबेटेबल शो। तो आए एक बार फिर से हमारे साथ कटघरे में दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हम सवाल करेंगे, उस सवाल पे दोनों की अपने मुख्तलिफ जवाब होंगे। जज आप हैं और मैं हूं, जहां पर हम इन दोनों को जज करेंगे कि क्या इनके जवाब सही हैं या नहीं। जो मुद्दा है, तो ये मुद्दा जब शुरू होगा, कटघरे में दोनों को खड़े किए जाएंगे, दोनों अपने अपने पॉइंट्स लेंगे और देखेंगे कि क्या इनके पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इन दोनों के साथ हो सकते हैं या नहीं। ये शो जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर हम एक ऐसे थॉट प्रोवोकिंग बात को या टॉपिक को लेकर आते हैं जिस पर दो स्टूडेंट्स बात करते हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हैं और बड़े ही कमाल के स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है जुनैरा और एक का नाम है मरियम। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा और मरियम, कैसी हैं आप?
5: वालेकुम अस्सलाम।
4: वाह, दोनों ने रिदम में बोला, ये जुड़वा नहीं है दोस्तों, अलग अलग कॉलेज से हैं, अलग अलग स्कूल से हैं। मरियम आप किस स्कूल से हैं?
5: हम ऑरिक्स इंटरनेशनल स्कूल से हैं।
4: बहुत ही जबरदस्त। और आप?
6: मैं बिरला पब्लिक स्कूल से हूँ।
4: ओके, आगे बढ़ते हुए मैं आज का सवाल आप दोनों के सामने रखता हूँ, ठीक है? और इस सवाल पे जो आपने अपना टॉपिक चुना है उस पे सबसे पहले आपको एक एक मिनट तक बोलना है, ठीक है? तो आज का सवाल है, विच इज स्केरियर, फॉरगेटिंग योर फोन एट होम और फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट। तो मरियम आपने कौन सा टॉपिक लिया है?
5: हमने फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट लिया है।
4: ओके, तो अगर एक मिनट तक अगर आपको बोलना हो तो आप क्या कहेंगे इस पे?
5: हम कहेंगे कि सरप्राइज टेस्ट फेल करना और डरावना है, क्योंकि वो एक ऐसा रिग्रेट और गिल्ट आता है जैसे तुम है ना, ऐसे वो बोलते हैं ना कि अगर मैंने थोड़ा लेक्चर में ध्यान दी होती या घर पे आके पढ़ाई की होती तो ये होता ही नहीं।
4: हाँ।
5: फिर हम लोग के पेरेंट्स और टीचर्स के डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करना पड़ता है कि अब टीचर बोले कि उसने सही से पढ़ाई नहीं की, पेरेंट्स बोले टीचर ने पढ़ाई नहीं की।
4: हाँ।
5: लेकिन हम लोग भी ब्लेम कर रहे हैं ओके कि हम लोगों ने ज्यादा एफर्ट नहीं डाले,
4: नहीं डाला।
5: हाँ, और लाइक अपना एकेडमिक और परफॉर्मेंस तो अफेक्ट करेगा, और लाइक वो कॉन्फिडेंस लेवल जब डाउन हो जाता है तो हम सोचा हम अपने बड़े एग्जाम्स कैसे लेंगे वो टॉपिक पे।
4: अगर एक ऐसा छोटा एग्जाम अगर नहीं ले पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बड़े एग्जाम कैसे लेंगे।
5: फिर अगर एक इजी टॉपिक है, जैसे मेरे लिए एक इजी टॉपिक साइंस है।
4: हाँ।
5: ओके, और उसके अंदर मैंने केमिस्ट्री में फेल कर दी।
4: हाँ।
5: वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 5 to 15 ऐसा कुछ ले ली।
4: हाँ।
5: तो हमें भी कितना डिसअपॉइंटमेंट होएगा कि हमें आता था ये।
4: हाँ।
5: लेकिन हुआ ही नहीं।
4: हाँ, ओके, तो सुनहरा अब ये आपका पार्ट है, आपने जो यानी कि आप अगर मरियम ने एक पार्ट लिया तो दूसरा पार्ट यानी कि आपको लेना पड़ेगा, विच इज फॉरगेटिंग योर फोन एट होम। तो एक मिनट के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, एक मिनट से कम भी हो सकता है, क्या होगा वो?
6: Forgetting your phone at home ज़्यादा डरावना होता है failing a surprise test से।
4: okay.
6: क्योंकि अगर surprise test हम लोग ने देखे fail कर दिया तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हम लोग like
4: हाँ.

0: डिस्टर्ब होंगे
1: करेक्ट
0: लेकिन अगर मोबाइल घर पे भूल गए तो पूरा दिन हम लोग को टेंशन रहेगी कि अरे यार मेरा मोबाइल घर पे मैं छोड़ गई अब क्या होगा मैं ना तो मुझे डायरेक्शंस भी नहीं आते अगर मुझे अगर मुझे भूख लगी तो खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकती अरे क्या हुआ अगर मेरे लाइक फैमिली को कुछ इम्पोर्टेंट कॉल करनी हुई या इमरजेंसी कुछ हो गई अब मेरे हाथ में मोबाइल ही नहीं है मैं क्या करूं अब पता नहीं मैंने घर पे छोड़ा कहां मोबाइल क्या अनलॉक है अनलॉक नहीं है पता नहीं कौन खोल के मेरे लाइक इंफॉर्मेशन देख सकता है
1: करेक्ट
0: तो मतलब पूरा दिन ऐसे दिमाग हम लोग का चलता रहता है हम लोग सीधा नहीं सोच पाते हैं
1: तो मतलब ये कि वो एक दिन हमेशा के लिए याद रहेगा अगर फोन भूल गए लेकिन अगर एग्जाम्स भूल गया तो चलेगा एग्जाम्स छूट गया तो चलेगा ये मेरा पॉइंट तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे तो आज भी सपने आते हैं कि मैंने अपना कोई यू नो एग्जाम जो है वो छोड़ दिया है छूट गया है मुझसे और मैं पहुंच नहीं पाया मैं कहीं बहुत दूर और मैं फेल हो गया हूं और फिर मैं अपने फादर साहब से सुताई हो रही है मेरी कुटाई हो रही है ओके तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम एक दूसरे के बारे में जरा जान लेते हैं तो मरियम आप कहां से
2: हम इंडिया मुंबई में से
1: अरे वाह मुंबई में किस जगह से
2: जोगेश्वरी वेस्ट
1: ओके तो वैसे आप साल में कितने बार जाते हैं वहां पर
2: दो तीन बार अराउंड
1: दो तीन बार
2: हाँ.
1: तो कौन सा बेस्ट वक्त होता है आपको जब इंडिया जाना पसंद है मुंबई जाना पसंद है
2: ईद अल अधा
1: ईद अल अधा ओके तो आपको कतर की ईद अच्छी लगती है या फिर अपने मुल्क की
2: इंडिया की ऑफ कोर्स
1: क्यों
2: बिकॉज उधर जो है ना मेरे फ्रेंड्स रहते हैं अगर फ्रेंड्स नहीं भी होते तो भी ऐसे मजा आते नानी और सब लोग के घर पे जाने और
1: दोस्त यार वहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं ओके जुनैरा आप जाते हो आप लखनऊ से वैसे आपको बता दूं दोस्तों जुनैरा लखनऊ से मैंने पहले ही पता कर लिया तो आपको कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है कतर या लखनऊ
0: मुझे कतर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कतर साफ़ सुथरा और ज़्यादा शांत ऐसा होता है इंडिया भी बहुत अच्छा होता है बहुत ग्रीनरी मेरी सारी फैमिली इंडिया में है
1: हाँ.
0: लेकिन कतर की अब आदत पड़ गई है कतर इतना सुंदर है हर तरफ जाओ हर तरफ सिक्योरिटी हर तरफ सेफ्टी है
1: हाँ.
0: इंडिया में अकेले जाने में भी कहीं में तो डर लगता है लेकिन कतर में जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते
1: वहाँ जा सकते अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको क्या लगता है कि एक तो कानपुर से हूँ मैं और जुनैरा लखनऊ से हैं एक फाइट होती है बिरयानी की तो आपको बिरयानी पसंद है जनरल इन जनरल
0: ज्यादा पसंद नहीं है ठीक ठाक है
1: आपने कभी ट्राई की है लखनऊ की बिरयानी
0: मैं जानती नहीं लखनऊ की कैसी होती है खाई है बहुत सारी बिरयानी
1: अच्छा तो लेकिन चलिए इस पर्सपेक्टिव पे डालते हैं कि कतर का खाना अच्छा है या लखनऊ का क्या एक अगर आपको जवाब देना हो क्योंकि इससे पहले अभी मैंने पूछा कि लखनऊ अच्छा है या कतर अच्छा है इन्होंने बहुत घुमा के जवाब दिया है
0: मुझे दोनों के खाने बहुत अच्छे लगते हैं चूज करने में डिफिकल्ट है
1: एक किसी मुल्क का खाना आपको चूज करना हो टाउंगरा
0: वैसे तो मैं लखनऊ का चूज करूंगी क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के खाने होते हैं
1: हाँ।
0: बहुत सारे मीठे के खाने होते हैं बहुत नमकीन तो लखनऊ का मुझे प्रेफर करूंगी ज्यादा
1: ओके तो वैसे हम सब भी इसीलिए पसंद करते हैं ना लखनऊ और अपने मुल्क का खाना थोड़ा सा चटकारे वाला जरा होता है मिर्च मसाला होता है और मिर्च मसाला हमारे जबान पे है तो दोस्तों इसी पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में एक छोटा सा ब्रेक एफ एम 107 पे जुनैरा और मरियम हमारे साथ बने रहेंगे इस खास शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल सुनते हैं एफ एम 107 दिल से दही से

0: एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे, और ये शो है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं मरियम और जुनैरा से। और आज का जो टॉपिक है वो है विच इज स्केरियर, फॉरगेटिंग योर फोन एट होम और फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट। तो अब हम अलग पर्सपेक्टिव पे बात करने वाले हैं, एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे। तो अगर ऐसा हो मरियम के आप सरप्राइज टेस्ट जो है वो फेल हो जाएं, तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे आपका क्या कहना है?
1: एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम नहीं कर पाते तो अपना ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो अपने स्कोर्स भी कम हो जाते हैं। अब स्कोर्स कम हो जाते हैं तो ऑफकोर्स पेरेंट्स और टीचर्स काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम लोग पर ध्यान देना कम कर देते हैं, और फिर आगे जाके और थोड़े ऐसा एक एनजाइटी रहता है, एक स्ट्रेस रहता है कि अगर एक और सरप्राइज टेस्ट हो गया और हम रेडी नहीं है तो। और फिर वो अपने अगर रिपोर्ट कार्ड में भी अगर आएगा उसको तो फिर वो काफी गंदा रहेगा।
0: हाँ, रिजल्ट्स भी क्या कहते हैं खराब नहीं होने चाहिए, ये बड़ा दुख हो जाता है। पापा की उम्मीदें, पेरेंट्स की उम्मीदें, और जो फ्यूचर है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है।
1: हाँ, फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है।
0: ओके, तो हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से पूछे तो फोन अगर हम कहीं भूल जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उस बात पे क्या असर पड़ेगा? सुनहरा क्या कहती हैं आप?
2: फ़ोन में हम लोग बहुत सारा AI का यूज़ करते हैं। AI हम लोग की बहुत मदद करता है, जैसे स्टडीज़ में, टेस्ट की प्रिपरेशन करने में, कोई लेक्चर समझ ना आए तो AI हम लोग को लेक्चर को ब्रेक डाउन कर देता है टॉपिक्स में और हम लोग को समझा देता है।
0: करेक्ट।
2: तो बहुत सारे लोग आजकल AI के बिना अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग घर पर फोन भूल गए और हम लोग को कुछ अगर टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी और हम लोग का लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है तो हम लोग पैनिक करने लगेंगे, अरे मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं करी, अब मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है कि मैं AI या गूगल से कुछ सर्च कर लूं। तो हम लोग को समझ नहीं आएगा उससे, और भी हम लोग का टेस्ट खराब हो सकता है, उससे हम लोग की पढ़ाई में इफेक्ट हो सकता है क्योंकि आजकल AI बहुत सारे काम करवाता है हम लोग का।
0: अच्छा, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ जुनैरा, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पा रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने AI की हेल्प ली है?
2: हाँ, मैंने हिस्ट्री में ज्यादा लाइक स्मार्ट नहीं हूँ।
0: मरियम, आपने कभी हेल्प ली है?
1: हम ज्यादा तो नहीं रहते हैं, मोस्टली बुक्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं। As a person who doesn't have a phone or any link to AI.
0: Okay, तो ये यानी कि दोनों ने टॉपिक अपने अपने मतलब का चुना है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के

0: बारे में बात करना चाहते हैं एंड लेट्स सी कि क्या दोनों के जवाब होते हैं. दोस्तों एक एक करके इन दोनों से पूछते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जब हम फोन अगर अपना कहीं पर भूल जाएं तो. सबसे पहले मैं सुनैरा से पूछना चाहूंगा क्या असर पड़ता है इस पर.
1: हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन से इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं.
0: हाँ मेरे साथ भी वैसे सुनैरा ही है. मैं अगर फोन ना लूं दिन में मुझे 10 बार तो फोन इसलिए चाहिए कि सिर्फ देखना है कोई मैसेज है या नहीं है.
1: हम लोग अपने फोन बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं और एक पर्पस होता है हम लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो. और अगर हम लोग कहीं फोन भूल गए तो हम लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं हो पाते और एज अ वे ऐसा फील होता है हम लोग को कि हम लोग से दुनिया छीन गई, हम लोग को कहीं पकड़ के लॉकअप कर दिया क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. तो हम लोग को ऐसा ट्रैप्ड फील होता है उससे और हम लोग का दिमाग सही नहीं चलता है तो उससे हम लोग और परेशान हो जाते हैं.
0: ओके अच्छा वैसे आप मरियम मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं या ज्यादा करते हैं?
2: हमारे पास तो मोबाइल है ही नहीं. हम एक आईपैड किड है.
0: आईपैड किड है. ओके तो यानी कि आपने जो अपना टॉपिक चुना है बिल्कुल करेक्ट है. तो अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो क्या थॉट है आपका, साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ता है?
2: तो उसके अंदर एक गिल्ट फील होता है कि हम लोग पढ़ाई की है तो हम लोग पास हो जाते हैं. फिर एक ऐसा स्ट्रेस आता है कि हम लोग आगे बेटर कर पाएंगे कि नहीं. फिर ऐसे एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि अगर ये इजी टॉपिक था और उसके ऊपर फेल हो गए तो काफी ऐसा स्ट्रेस आता है और डिसअपॉइंटमेंट आता है. और पीयर प्रेशर भी आता है. इमेजिन यू आर अ टॉपर और तुम्हारे को एक सरप्राइज टेस्ट नया का मार्क आ जाए तो वो पीयर प्रेशर जो सब लोग तुम्हारे को देखते कि अच्छी अच्छी लड़की पढ़ाई के अंदर ऐसे सरप्राइज टेस्ट फेल कर रही है तो बहुत अजीब लगता है.
0: और फिर उसके बाद जो यू नो रिश्तेदार भी आपको ऐसे देखते हैं क्या पढ़ाई कर रही तेरी लड़की
2: और क्या.
0: ओके तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे FM 107 पे और फिर हम वापस आएंगे और भी जो थॉट हैं उस थॉट पर हम बात करेंगे क्या पर्सपेक्टिव है, अलग अलग एंगल पे बात करेंगे इस खास टॉपिक पे इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल. और हम आज इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि क्या ज्यादा डरावना है कि सरप्राइज टेस्ट भूल जाए या फिर मोबाइल कहीं पर भूल जाए, सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाए ये ज्यादा डरावना है या फिर अपना मोबाइल कहीं पर भूल जाए ये ज्यादा डरावना है. जुनैरा और मरियम अपने अपने नजरिए से बात करते हुए FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे कुछ ही देर में. सुनते रहे FM 107, दिल से नई सी.

0: तो जज साहब क्या सोचा है आपने, क्या ज्यादा डरावना है, सरप्राइज टेस्ट फेल हो जाना या फिर मोबाइल भूल जाना कहीं पर? अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूं फजील, इस्तकबाल आप सभी का, और जज साहब इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662217, जहां पर आप जवाब दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ द डिबेटेबल टेबल में बैठे हुए हैं दो महान कलाकार। ये आर्टिस्ट है भाई साहब, आपको मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा, एक सवाल करूंगा जिसमें मरियम जवाब देंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम और जुनैरा मिले कैसे और कैसे ये एक आर्ट है ना। तो मेरा ये सवाल होने वाला है कि आप दोनों मिले कैसे, मरियम और जुनैरा?
1: तो हम जो है ना,
0: हाँ,
1: हम पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन स्पेलिंग में इतने अच्छे नहीं थे।
0: okay.
1: तो एक बार एक ऐसा सरप्राइज टेस्ट हुए, हमारे को याद नहीं इतने अच्छे से कि क्या वर्ड्स है उसके अंदर, उसमें से हमने आधे से ज्यादा हमने गलत कर दिए थे।
0: okay.
1: तो इसको 10 out of 10 मिला था जुनैरा को।
0: हाँ.
1: तो टीचर ने मुझे उसके पास भेज दी, बोली वो डिसिप्लिन लड़की है तो वो सिखाएंगी तुम्हें।
0: वाह भाई वाह।
1: तो मैं गई और फिर उसने सिखाई, लेकिन मुझे एक स्पेलिंग तो आ रहा ही नहीं था जिसका नाम था पम्पकिन।
0: पम्पकिन ओके,
1: मेरे लिए काफी डिफिकल्ट वर्ड था।
0: मैं अभी पूछना चाहता हूँ आपको, अब पता है वो?
1: हाँ, अब पता
0: क्या स्पेलिंग बताइए।
1: ऑफ कोर्स हमने 5 बार कर चुके हैं वो टेस्ट।
0: ओके वेल डन। आपको स्पेलिंग पता है अभी पम्पकिन की?
1: पता है। उसने तो मुझे सिखाई है।
0: ओके, तो जुनैरा आप जब पहली बार आपने जब सरप्राइज टेस्ट दिया, आपको पता था कि उस दिन होने वाला, या आपको कभी होता नहीं टीचर की कोई फेवरेट स्टूडेंट होती है और टीचर उसे बता देती है कि कल मैं टेस्ट लूंगी?
1: टीचर मुझे बहुत मारती थी।
0: क्या बात कर रही हैं, क्यों?
1: वो सब बच्चों को मारती थी, हम लोग की जो क्लास टीचर थी।
0: सरप्राइज टेस्ट की बात हो रही है लेकिन मरियम सरप्राइज हो गई, क्यों आपको नहीं लगता थी?
1: मुझे नहीं लगता टीचर ने मुझे कभी मारी है। वो
0: सुनहरा आपके साथ पढ़ती थी, कभी पढ़ी है?
1: मुझे जो है ना KG 2 में पढ़ी, लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड का इतना अच्छे से याद नहीं है।
0: अच्छा, क्या रीजन है, आप लोगों को क्या लगता है आप दोनों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है और क्यों मार पड़ी?
1: मुझे जो है ना,
0: हाँ, शर्म आ रही बताते हो?
1: नहीं, वो जो है ना, कभी मैं कुछ मैं एक स्कूल के टाइम पे या ऐसे फॉर्मल टाइम पे एक बहुत सीधी सादी बच्ची हूँ, बहुत शरीफ बच्ची हूँ।
0: अच्छा।
1: कभी, लेकिन अगर मेरे अच्छे दोस्त जो मेरे जैसे हैं और हम लोग जो है ना स्कूल में जाते तो एकदम शरीफ लोग रहते, बस में आते तो फिर पूरा बस हिल जाता है।
0: सारी हरकतें बस में होती है।
1: हाँ।
0: तो जुनैरा सीधी है या नहीं?
1: बहुत सीधी है।
0: बहुत सीधी है,
1: कुछ ज्यादा ही सीधी है।
0: जुनैरा तुम्हें लगता तुम सीधी हो?
1: ठीक ठाक
0: ठीक है।

ठीक ठाक है ओके. वैसे जब जुनैरा यहाँ पर बैठी है ना तो मुझे जुनैरा लग भी रही है एकदम, इस उसकी कुर्सी जरा भी नहीं हिल रही, लेकिन मरियम की लगातार कुर्सी दाएं से बाएं बाएं से दाएं घूम रही है लगातार. ओके अपने सवाल पे आते हैं दोस्तों, और आज का सवाल है कि क्या ज्यादा डरावना है सरप्राइज टेस्ट भूल जाना या फेल कर जाना. सही तरीका ये है कि सरप्राइज टेस्ट फेल कर जाना ये ज्यादा डरावना है या फिर अपना मोबाइल भूल जाना ये ज्यादा डरावना है. तो अब हम जरा सवाल पे

0: सरप्राइज वाला फेल कर गए, नाइटमेयर क्या है इन दोनों में से?
1: मुझे लगता है सरप्राइज स्ट्रेस फेल करना और बुरा है, मेरे पास तो फोन है भी नहीं एनी विच वेज।
0: अच्छा आपके लिए तो नॉर्मल है फिर कि सरप्राइज टेस्ट, हां तो वो सरप्राइज टेस्ट फेल करके ये मेरे लिए डरावना है, आपके लिए क्या डरावना है सुनहरा?
1: मेरे लिए ज्यादा डरावना तो कहीं मोबाइल भूल जाना, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट लाइक मुझे मालूम है उसके ग्रेड्स मुझे कुछ लाइक रिपोर्ट कार्ड में तो इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सरप्राइज टेस्ट है।
0: हाँ ये भी तो एक पॉइंट है बाबा।
1: तो अगर सरप्राइज टेस्ट फेल कर दिया तो हम लोग को मालूम है हाँ ये सरप्राइज था, कुछ कुछ नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे। बट अगर हम लोग ने फोन घर पे भूल गए तो बस टेंशन हो गई कि अरे कहीं वो खराब तो नहीं हो गया टूट नहीं गया होगा।
0: और इस पे आपका क्या कहना है?
2: फोन भूलना इतना भी बुरा नहीं है, बिकॉज तुम जो है ना ऐसे जब फोन भूलते तो वो एकदम अटैचमेंट ऐसा आ जाता है कि जैसे हम फोन के बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन इतना बड़ा दुनिया है फोन के बिना, ऐसे मजे लो अपना। लेकिन सरप्राइज स्ट्रेस फील करने ग्रेस ड्रॉप हो जाते और डिसअप्रूवल आता है, गिल्ट आता है, स्ट्रेस होता है, तो वो जो है ना माइंड के बीच में ऐसे लिंगर होता है बाद में कि मैंने ऐसे क्यों किया, अगर थोड़ा सा भी कुछ करी होती तो अगर थोड़े से और आराम आते तो फिर क्या होता था।
0: सही, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब आप फोन में रहते हैं ना तो आपको लगता है फोन ही दुनिया है, लेकिन जब फोन छूट जाता है तब आपको एहसास होता है कि यार बाकी लोग भी तो हैं, मेरे माँ बाप भी अच्छे, भाई भी अच्छा एंटरटेनर है, टीवी भी देखा जा सकता है या बाकी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्वाइवल पर्सपेक्टिव क्या है इसका। जुनैरा आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ कि फोन भूल गए तो सर्वाइवल पे कुछ इफेक्ट आता है क्या असल में?
1: हाँ आता तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीपीएस पे डिपेंड करते हैं।
0: आई वाह, अरे हाँ यार, ये जितने भी बाहर सुनने वाले हैं कई ऐसे जो कार चला रहे हैं और बगैर आप मैप के तो चल ही नहीं सकते, बिल्कुल सही कहा।
1: तो जीपीएस नहीं होगा तो हम लोग अपने रास्ते को समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग कहाँ आ गए।
0: हाँ।
1: और हम लोग इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ।
1: कि अगर हम लोग कोई ऐसी सुनसान सी जगह पे पहुंच गए और हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक बंदा भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक बस खाली रोड है या पेड़ है या कुछ भी हो।
0: हाँ।
1: तो फोन तो चाहिए रहता है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए कि हम लोग मम्मी पापा को कॉल कर लें कि समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पहुँच गई, या पुलिस को कॉल करने के लिए कि यहाँ पर कुछ कार एक्सीडेंट हो गया। तो अगर हाँ एक्सीडेंट भी हो गया तब भी हम लोग अकेले अगर हुए तो फोन के बिना कैसे समझ आएगा हम लोग को कुछ करना, अगर हम लोग को कार के फिक्सिंग के बारे में कुछ नहीं आता।
0: हाँ हाँ ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर आपको ये साथ देना हो मरियम, ये लेकिन आपके लिए अगेंस्ट का यू नो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो गई, सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गई, एग्जाम नहीं सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गई, तो आपको क्या लगता है कि इसके जो नुकसान है वो तो है लेकिन फिर भी फायदे क्या है?
2: उसके फायदे है कि लाइक वी गेट मोर मोटिवेटेड टू स्टडी हार्डर ऑन दैट सब्जेक्ट, और सो कॉन्फिडेंस आने का, जैसे मैं एस कर सकती हूँ उसको बाद में अगर मैंने सही स्टडी की तो,
0: ट्राई कर सकते हैं और अच्छा पढ़ने का।
2: हाँ, और जुनैरा के पॉइंट्स तो एकदम सही है कि पीपल कांट लिव विदाउट अ फोन, स्पेशली एडल्ट्स।
0: हाँ, देखो दोनों कितने भी मुख्तलिफ हो, दोनों ने टॉपिक कितना भी अलग चुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देते हुए लेकिन ये होना भी चाहिए ऑब्वियसली, और बगैर मोबाइल के भी लाइफ जो है अधूरी सी लगती है, लेकिन अगर टेस्ट आपके सामने हो, आप फेल कर जाएं, तो चार लोगों के सामने, दुनिया के सामने, फ्रेंड्स के सामने क्या ही यू नो बुरा फील होता है, जैसे कि मरियम को फील हुआ था सेकंड क्लास में, राइट?
1: हाँ।
0: सेकंड क्लास में मरियम मिली ही ऐसी थी सुनहरा से कि मरियम ने सरप्राइज टेस्ट फेल किया एक्चुअल में, और उसके बाद जुनैरा 10 on 10 था इनका।
1: हाँ।
0: जो स्कोर था, और उसके अलावा जुनैरा को सिखाने के लिए मैम ने कहा मरियम सीखेंगे जुनैरा से, ये भी एक पॉइंट जो आपको बताया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, और वापस आएंगे हम मजीद बातचीत करेंगे और अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे कि क्या ये फोन भूल जाना ज्यादा डरावना है या फिर सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाना ज्यादा डरावना है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, दिल से

0: ओके तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे और ये शो है द डिबेटेबल टेबल लगातार चल रहा है और आज का जो सवाल है वो एक्चुअली में हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस कर चुका है, जैसे मोबाइल भूल जाना। कई बार तो मैं भी ऑफिस कतर में मोबाइल भूल कर ऑफिस आ गया हूँ और बड़ा ही अजीब लगता है, ऐसा लगता है तन्हाई जो है मेरे को एकदम से घेर लिया है चारों तरफ से। मेरे आसपास लोग होते हैं लेकिन गले जो है तन्हाई ही लगा होता है मेरे। खैर अगले सवाल पे आते हैं और सवाल वैसे हम करेंगे इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जैसे खाने पीने की बात करी मरियम और सुनहरा, आपके अपने शहर की बात करी, कतर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कतर की सबसे स्पेशल चीज क्या है जो सुनहरा को बहुत ज्यादा पसंद है?
1: कतर की स्पेशल चीज मुझे ये पसंद है कि कतर कितना डेवलप हुआ है सालों में।
0: हाँ
1: पहले तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था लेकिन अब देखेंगे तो हर जहाँ जाओ हर तरफ लोग खुशी से जा रहे हैं, हर तरफ लाइटें लगी हुई हैं, हर तरफ सिक्योरिटी है। तो कतर ऐसा एक छोटी सी कंट्री है लेकिन इतना सुंदर उसको बना दिया गया है कि मुझे बहुत पसंद है कतर अब।
0: ओके मरियम आपके लिए लेकिन डिफरेंट सवाल है, कोई एक ऐसी चीज जब आपको कतर छोड़ना पड़े कहीं और मुल्क में जाकर बसना हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हो या फिर आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो एक ऐसी चीज जो कतर से ले जाना आपको बड़ा पसंद है या आपने साथ ले जाना चाहोगे आप, कोई भी चीज कुछ भी वट एवर, मतलब कतर की रोड भी हो सकती है, कतर की खूबसूरती में आप कुछ कह सकती है, कतर का स्टेडियम है, एनीथिंग।
2: तो मुझे लगता है कि सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस और जो खूबसूरती है के सब जगह एकदम सेफ एंड सिक्योर है और वो मुझे बहुत पसंद आता है। कोई भी अगर कंट्री में जाऊंगी ना मुझे वो सब चीजें चाहिए, एक ऐसे लेवल ऑफ कंफर्ट आती है वो सब चीजें कि जो क्राइम रेट है ना इधर एकदम ट्रेमेंडसली कम है।
0: करेक्ट ओके
2: सो ऐसे पीस ऑफ माइंड भी आता है कि जैसे कोई तुम्हारा कुछ चोरी नहीं करने वाला है, कोई तुम्हारा किडनेप नहीं करने वाला है और वो ऐसे एक बहुत अच्छा फील करता है,
0: सेफ फील होता है। बिल्कुल जुनैरा सेम क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको कहीं कभी जाना हो और ऐसा लगे कि नहीं मैं कभी कतर से इस चीज को भूलना नहीं चाहूंगी, उसको साथ ले जाना चाहूंगी, तो वो क्या होगा जुनैरा?
1: ये मेरा खुद का आंसर है, कतर के जो मुझे लाइक स्ट्रे कैट्स दिखती हैं वो बहुत फ्रेंडली होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। इंडिया में या कोई भी मुल्क में मुझे कतर की कैट्स ले जाना लाइक मैं चाहूंगी कि
0: कतर की कैट्स, यहाँ की जो कैट्स आपको दिखती है।

0: ट्रीट कैट्स.
1: हाँ और कतर के जो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं, कतर एक म्यूजियम बहुत ही सुंदर जगह है, उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी, तो वो भी मैं चाहूंगी कि वो मैं अपने साथ ले जाऊं.
0: हाँ ओके. तो दोस्तों देखिए ये कतर की तो खूबसूरती है ही ऐसी कि आप कतर की सेफ्टी और खूबसूरती को अपने साथ हमेशा ताउम्र रखना चाहते हैं. मेरे साथ एक चीज है जो हाल ही में मैंने नोटिस करी है, हालांकि ये बहुत पहले नोटिस करी लेकिन मैंने अपने अंदर नोटिस करी है, वो ये है कि जब बारिश होती है ना तो कतर बहुत खूबसूरत लगता है. बारिश के बाद जो रोड गीली होती है और रेड लाइट पे आप जब रुकते हैं, वो ज़मीन पे जब उसकी रोशनी पड़ती है वो खूबसूरत लगती है. भारी बारिश होती है तो जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं वो खूबसूरत लगती हैं. जो बादल हैं आसमान देखने में मज़ा आता है. जो साफ बिल्डिंगें हो जाती हैं वो और ज़्यादा देखने में मज़ा आता है. और कॉर्निश का जो नज़ारा होता है वो होता है कतर का लाजवाब. हम सब इंतज़ार कर रहे हैं खूबसूरत बारिश का, और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के बाद या कहें इस डिबेटेबल टेबल के साथ बारिश जो है वो होगी या इसके बाद होगी. लेकिन अब ये शो हमारा इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले हम दोनों को 30-30 सेकंड देंगे, मरियम और जुनैरा, जहां पर आप अपने पॉइंट्स पर लेकर या कहें अपने टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें कहेंगी, और ये फाइनल 30 सेकंड होंगे. कटघरे में ये सवाल होंगे और आप दोनों लॉयर होंगी इस टॉपिक की, है ना, जहां पर आप अपने अपने टॉपिक पे कुछ थोड़ा 30 सेकंड के लिए बोलेंगे. क्लोजिंग स्टेटमेंट है ये, और जज जो हमारे बाहर बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या ज्यादा स्केरी है, सरप्राइज टेस्ट फेल कर जाना या फिर फोन घर पे भूल जाना. FM 107 पे सबसे पहले जो मैं मौका दे रहा हूं वो दे रहा हूं जुनैरा को, 30 सेकंड है आपके लिए. अगर आप घर पे फोन भूल जाएं तो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आपका क्या है?
1: घर पे फोन भूल जाएंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी रास्ते में. अगर हम लोग कहीं खो गए तो GPS हम लोग को चाहिए रहेगा, बट GPS नहीं मिलेगा. हाँ. और आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं उनको ट्रेडिशनल मैप यूज करना नहीं आता है, तो हम लोग GPS पे बहुत रिलाई करते हैं. या अगर हम लोग कहीं हो, हम लोग लाइक हम लोग के पास कुछ खाना ना हो तो हम लोग ऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे अगर भूख लगी तो. और बहुत सारे लोग खाना पैक करके भी नहीं ले जाते हैं, बस छोटे मोटे स्नैक्स ले जाते हैं कि ट्रिप पर एंजॉय कर पाए. और अगर फोन भूल गए, हम लोग को टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी हो तो अगर हम कुछ लोग AI के बिना नहीं पढ़ाई कर सकते हैं.
0: हाँ.
1: क्योंकि उनको AI से ऐसे दोस्ती का लाइक फील होता है, कनेक्शन हो जाता है कि वो AI उनको समझा देता है इतने आराम से और बहुत प्यार से. और बहुत सारे फोन आजकल, बहुत सारे लोग आजकल अपने फोन के बिना नहीं रह पाते हैं.
0: करेक्ट.
1: तो उनको परेशानी होगी, वो पूरा दिन टेंस रहेंगे, वो पूरा दिन उनका वेस्ट में चला जाएगा कि उनको एंजाइटी हो रही है कि अरे मैं फोन के बिना अब कैसे रहूं, अब कुछ क्या करूं.
0: हाँ.
1: वैसे भी दुनिया इतनी अच्छी तो है फोन के बिना, लेकिन जो लोग अपने फोन से इतना अटैच है वो नहीं समझ पाएंगे, वो बस टेंशन में रहेंगे.
0: यार जब जुनैरा ने कहा ना कि कुछ लोग नहीं रह पाएंगे, उसमें कुछ लोग में फजील भी अपने बगैर फोन के रह नहीं सकता, ऐसा लगता है कि जरूरत है वो आज की. लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए हम मरियम की तरफ बढ़ेंगे. अगर क्या लगता है, आप सरप्राइज टेस्ट फेल हो गई तो क्या होगा, ज्यादा स्केरी है? क्लोजिंग स्टेटमेंट.
2: हां, वो जो है ना, वो ऐसे माइंड के पीछे ऐसे रहता है कि जैसे हमने फेल किया, रिमेंबर टू योर होल लाइफ. फोन भूलना इतनी बड़ी बात नहीं है कि घर पे आके तो मिल जाती है ना. इवन दो पेमेंट, GPS और वो सब का प्रॉब्लम है, बट पहले भी तो अगर तुम कैश भी लेके जाएंगे तो भी काम चल सकता है, जैसे तो डायरेक्शन से पूछ सकते हैं.
0: करेक्ट.
2: पर सरप्राइज टेस्ट जो है ना एक ही बार हो सकता है. हाँ. वही टॉपिक पे.
0: हाँ.
2: तो वो फेल करना मतलब वो पूरा टॉपिक फेल करना, एंड टॉपिक फेल करना इज लाइक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, कि यू कांट लाइक मास्टर इट इवन दो यू लिसन टू इट इन लेक्चर्स. एंड वो ऐसे एक स्ट्रेस, गिल्ट और वैसे सब अजीब अजीब सब फील करता है. हाँ. कि यू डोंट फील कंफर्टेबल आफ्टर फेलिंग. तो जो पीयर प्रेशर है ना वो भी आ जाता है, टॉपर है और तुमने फेल कर दिया तो सब लोग तुम्हारे वो घूर के देखते रहते हैं.
0: हाँ.
2: फिर क्लास में ऐसे वो ऐसे फील होता है कि हम दूसरे लोगों से नीचे है और ऐसा प्रेशर फील करता है एकदम.
0: आई वाह. ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का जो शो है द डिबेटेबल टेबल का टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा पार्ट लेना चाहेंगे, कौन से टॉपिक पर आप साथ देना चाहेंगे, जुनैरा का साथ देना चाहेंगे या मरियम का साथ, आप हमें बता सकते हैं, नंबर है 6662217. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एक सही जवाब भी मुझे मिल पाए, क्योंकि मुझे एक तरफ लगता है कि बिल्कुल सही बात है मरियम की कि आपकी इमेज जो है क्लास में, आपके पेरेंट्स की जो थॉट्स हैं आपको लेकर कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा, एक्सपेक्टेशन

0: इंजन जो है वो उन पर हम खरे नहीं उतरते हैं। उसके अलावा सरप्राइज टेस्ट फेल करने का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, टीचर की नज़र में हमारी जो इज्जत है वो कम हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब जुनैरा ने ये कहा कि GPS, खाना ऑर्डर ना कर पाना, बगैर ट्रेडिशनल मैप इस्तेमाल करना नहीं आता, विच इज़ ट्रू, उसके अलावा हम कहीं जाते हैं हमें इमरजेंसी कॉल की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जायज़ हैं। और ये इसी के साथ मुझे लगता है कि इस शो को इख्तिताम देना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल करूंगा और फिर ये आपके ऊपर भी मैं छोड़ दूंगा दोस्तों जो हमें बाहर सुन रहे हैं, और मरियम और जुनैरा के जो जवाब होंगे इस पे मैं कोई भी अपना पॉइंट नहीं बोलने वाला। वो ये है कि वुड यू रेदर स्पेंड वन फुल डे विदाउट योर फोन और फेस अ फेल्ड टेस्ट रिपोर्ट कार्ड?
1: आईड रेदर फॉरगेट माय फोन एट होम।
0: ओके, एंड यू?
1: मी टू।
0: सेम?
1: Yeah.
0: Okay. हाँ नहीं, पास तो होना सबको अच्छा लगता है, और फोन भूल जाओ वो ठीक है, वो बर्दाश्त है, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए। चार के सामने बेइज्जती नहीं चाहिए अपने को। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, ये शो लाता हूँ मैं अपने इख्तिताम को। अगले शो में आपसे करेंगे मुलाकात जिसका टॉपिक होगा मुख्तलिफ, और कटघरे में होंगे दो स्टूडेंट्स। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: स्मार्ट मनी।
5: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी, जहां हम बात करते हैं आपके पैसों की। आई मीन पैसों को किस तरह से संभाला और मैनेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की और मनी सेफ्टी की। वेल, आज के सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोटेक्शन। आज की ये डिजिटल दुनिया में हम सब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल एप्स यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और पैसे ट्रांसफर भी सिर्फ सेकेंड्स में हो जाते हैं। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई है, वहाँ ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स ने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं लोगों को स्कैम करने के। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ दूसरों के साथ होता है, लेकिन हकीकत ये है कि स्कैमर्स हर रोज नई तरीकों से आम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। कभी फेक फोन कॉल्स, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस, कभी ईमेल, कभी सोशल मीडिया लिंक के जरिए लोगों के अकाउंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन सबसे कॉमन फ्रॉड फिशिंग स्कैम कहलाता है। इसमें आपको एक ईमेल या मैसेज मिलता है जो बिल्कुल किसी बैंक, कुरियर कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लगता है। मैसेज में लिखा होता है, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। जैसे ही कोई शख्स उस लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स एंटर करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन स्कैमर्स के पास चली जाती है। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ईमेल या मैसेज के जरिए पासवर्ड, OTP या फिर पिन कोड नहीं मांगता। एक और कॉमन फ्रॉड है OTP स्कैम। आपके पास फोन आता है और कॉलर खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है या आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, फिर आप और आपसे OTP शेयर करने को कहा जाता है। दोस्तों, OTP आपके अकाउंट की चाबी होती है। अगर आपने OTP किसी को बता दिया, तो आप अपने पैसे खुद जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, OTP, पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। चलिए वापस से रिपीट करते हैं, OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना फोन पर, ना मैसेज पर, ना सोशल मीडिया पर, और ना किसी लिंक पर। सोशल मीडिया स्कैम्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। कई दफा फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एडवर्टाइज की जाती हैं। आपको कहा जाता है कि सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ दिनों में डबल प्रॉफिट हासिल कीजिए। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा हो, तो हो सकता है कि वो स्कैम हो, और हो सकता है क्या 100% स्कैम ही होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्विक मनी का कॉन्सेप्ट रिस्क के साथ आता है, और शायद बहुत ज्यादा रिस्क के।

0: जब हम अलर्ट रहते हैं, वेरीफाई करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, तब हम अपने पैसों को महफूज रख सकते हैं। जाते जाते यही कहूंगी कि याद रखिए, पैसे कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें बचाना आज के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसीलिए हमेशा सोचिए, वेरीफाई कीजिए और फिर क्लिक कीजिए। स्मार्ट मनी का सिंपल फॉर्मूला है, स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, स्टे स्मार्ट। ये तो आज का हमारा सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट में एक और नए फाइनेंशियल टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देख रहे हो सन 3 FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01, यानी ये वक्त हो चला है।
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी माय देसी ऑडियंस, हैप्पी वाला वीकेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का ऑन FM 107 द रिक्वेस्ट शो पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज एक घंटे हम करेंगे नॉन स्टॉप मस्ती, पुरानी यादें को ताज़ा करेंगे, यादों को ताज़ा करेंगे और ढेर सारे हिट सॉन्ग्स आपकी रिक्वेस्ट पर प्ले करेंगे। पर आज का जो हमारा थीम है ना, दैट्स 90s पार्टी हिट स्पेशल। हाँ जी, याद है वो जमाना जब कैसेट में ना पेंसिल घुमा के हम बार बार कैसेट्स को रिवाइंड करते थे एक पर्टिकुलर गाने के लिए, जब टीवी पर कलरफुल म्यूजिक वीडियोज देखने के लिए पूरा परिवार साथ में इकट्ठा होकर बैठ जाता था और वो मोमेंट बड़ा प्यारा होता था। और जब हर शादी में गोविंदा के स्टेप्स जरूर होते थे या फिर शाहरुख खान के गाने के बिना कोई पार्टी मुकम्मल ही नहीं होती थी, तो बस आज वही गाने, 90s की ब्यूटी, यस 90s के हिट पार्टी सॉन्ग्स आज हम प्ले करने वाले हैं जिस पर आप डेफिनेटली थिरकते हैं। तो आपकी लिस्ट का वो कौन सा गाना है जो आपको थिरकने पे मजबूर करता है, शेयर करो, शेयर करो 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, अपने नाम के साथ अपनी वन लाइन स्टोरी या फिर अपने डेडिकेशंस। इनफैक्ट हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं, आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और यू हमारे साथ बने रहिए। अभी शो की शुरुआत करते हैं इस कमाल के गाने के साथ जहां पर गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी है एंड द सॉन्ग इज सोना कितना सोना है। कहीं ना जाए, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हां जी माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और द रिक्वेस्ट शो पर ऐसा लग रहा है जैसे मैसेजेस की ना तो बारिश हो रही है। लगता है आज सबने वीकेंड को बड़े धूमधाम से मनाने का प्लान कर लिया और हर किसी ने डांस फ्लोर को पकड़ लिया है। क्योंकि 90s के हिट पार्टी सॉन्ग्स की इतनी खूबसूरत लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है आपके रिक्वेस्ट के रूप में, जो कि मैं आगे प्ले करने वाली हूँ। वैसे भी मुझे आकाश की रिक्वेस्ट है एंड ही सेइंग कि अमिता ये गाना तो मोहरा का बजना ही चाहिए।
2: मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त,
1: क्या बात है। इस गाने में अगर देखा जाए तो रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार, इनका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा है। सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसपे तो हर कोई आज भी थिरक रहा है। और दूसरे गाने की रिक्वेस्ट करी है फरहीन ने और कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहती है बिकॉज इस गाने में उन्होंने काफी परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं। यस, बीवी नंबर वन का ये गाना आपकी राहों में आएगा और आप बताएं कि आपकी प्लेलिस्ट का वो कौन सा 90s का गाना है जिस पर आप थिरकते हैं या जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देता है। शेयर करें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। अभी इंजॉय करें मोहरा के इस बेहतरीन से गाने को। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
0: गेम चेंजर सीजन 2.
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
4: चले तो कट ही जाएगा सफर,
3: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ.
6: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
7: हाँ जनाब, वेलकम. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी एफरमीता द रिक्वेस्ट शो पर. और अगली जो रिक्वेस्ट है बड़ी कमाल की है. मतलब पहली चीज़ तो शाहरुख खान और काजोल की ये जोड़ी, उफ, मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है. रिजवान और आमिर की रिक्वेस्ट पर बाजीगर फिल्म के हम इस गाने को आपके लिए प्ले करेंगे.
8: ये गोरे गोरे का.
7: और कहते हैं ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो रैपिंग वाला फेस था, अनु मलिक ने इस गाने से शुरू किया.
8: जैसी चाल.
7: हाँ, तो डेफिनेटली गाना पूरा पूरा आपकी राहों में हम लेकर आएंगे. उसके बाद रमेश एंड रफी की रिक्वेस्ट है गुप्त फिल्म का ये गाना.
8: दुनिया हसीनों का मेला.
7: सच में बॉबी देओल और उसके वो कर्ली हेयर एंड देन उनका वो स्टाइल जिसमें वो परफॉर्म करते हैं. इस गाने का वीडियो भी बड़ा यूनिक था. तो चलिए, ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आ रहे हैं. और आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा गाना है 90s का जो कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देता है, सोचिए और जल्दी से लिखिए 6666221107 पर अपने मैसेज के जरिए. हमें अपने डेडिकेशंस भेजिए और गाने के पीछे की कहानी बता सकते हैं. ठीक है, तो चलिए इंजॉय करते हैं. वॉल्यूम बढ़ाइए, स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या एआई सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। आरजे ए फॉर अमिता के साथ AI लॉक्ड पर, एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड, आरजे ए फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: हाँ जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता, द रिक्वेस्ट शो पर वापस से हाजिर हो चुकी हूं। और आज वीकेंड स्पेशल वाइब है, और हमारा थीम है कि 90s के वो हिट गाने, वो गाने जो आप अक्सर डांस फ्लोर पर यू नो सुनना चाहते हैं, हमेशा उन पर थिरकना चाहते हैं, आपकी वाइब बना देते हैं, वो गाने कौन से हैं। हाँ जी, तो ज़रूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर, और क्यों आपको वो गाना पसंद है ये भी बता सकते हैं। किसी खास को डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी मकसूद जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की, एंड आई शुड से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग दीवाना फिल्म का, जो कि

शाहरुख खान की स्मैशिंग सिनेमैटिक डेब्यू की कमाल की एंट्री है। बहुत ही शानदार गाना है, सो डेफिनेटली पूरा हम आपको आगे सुनाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे लिसनर आमिर, एक और आमिर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है एंड द सॉन्ग इज, मतलब मुझे लगता है कि ये फिल्मी दुनिया का 90s का आइकॉनिक सॉन्ग है जिसके बिना तो कोई भी डांस फ्लोर पर उतरता ही नहीं है। हाँ, वैसे कहना चाहूँगी कि ये वो गाना है जिसने नेशन वाइड दिव्या भारती को बिल्कुल स्टार्डम दिला दी थी, बिकॉज दिस वॉज द सॉन्ग जिसमें वाइब भी है और दिव्या का चेहरा उफ इस गाने के साथ बड़ा सूट करता है। सो डेफिनेटली ये दोनों ही गाने कोई ना कोई चाहिए एंड साथ समुंदर पार आपकी राहों में आ रहा है, तो कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ और अपनी रिक्वेस्ट हमसे शेयर करें 666-221-07 पर। बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। क्या कहना, क्या कमाल की चॉइसेस है भाई। मतलब ये वीकेंड तो ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइब ही बदल गई है। और 90s के ये हिट गाने जिस पर मतलब आप थिरकना रुक ही नहीं सकते, आप डेफिनेटली परफॉर्म करते रहोगे, है कि नहीं। तो अभी हमें जो अगली रिक्वेस्ट आई है हुसैन साहब की है, जो कि गाना हल्का सा स्लो है, लेकिन इस गाने की जो हल्की हल्की म्यूजिक है ना, उसमें यूं कंधे पैर धीरे धीरे हिलते ही रहते हैं।
2: कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है,
1: गोविंदा और करिश्मा कपूर, आय हाय।
2: क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम।
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज का ग्रेट कॉम्बिनेशन। ये गाना पूरा पूरा हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद शफी की रिक्वेस्ट है और वो कहते हैं कि भाई ये गाना अमिता जरूर प्ले कर देना, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग और जब भी मैं ड्राइव करता हूँ मुझे ये गाना ड्राइव करते हुए सुनना बहुत पसंद है। डेफिनेटली सोनू निगम की आवाज़ और परदेस फिल्म का ये गाना जब रिलीज हुआ था ना, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, कि जब भी हम किसी ड्राइव पे जाते थे तो ये गाना जरूर सुनते थे। सो डेफिनेटली दोनों गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आने वाले हैं। और कुछ ही देर में उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी क्विज टाइम, जहाँ पर आपका फिल्मी नॉलेज भी चेक होगा। लेकिन जनाब सोचें वो कौन सा 90s का हिट गाना है, द पार्टी एंथम, जिसे सुनकर आपके पैर थिरकते हैं। जरूर शेयर करें 666-22-107 पर अपनी स्टोरीज के साथ या फिर अपने डेडिकेशंस के साथ। और अभी लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, जो कि मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हां जी, वेलकम वंस अगेन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो। तो कैसे लग रहे हैं ये हिट हिट गाने आपकी रिक्वेस्ट के? आई एम श्योर कि अभी आपने फुल ऑन एंजॉय किया होगा। वैसे देखो, अभी शो एकदम आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है, तो सबसे पहले हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक कर लेते हैं और एक आखिरी रिक्वेस्ट भी हम जरूर प्ले करेंगे। तो अभी के लिए
0: क्विज टाइम
1: पर एक बड़ा ही शानदार सा गाना है अभिजीत की आवाज का, जिसे मैं बीच से सुनाने वाली हूँ और आपको ये गाना पहचानना है।
2: माने या न माने, मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत ने मारा।
1: बताइए कौन सा गाना है। आई एम वेरी सर्टन कि आप जरूर पहचान लेंगे, और नहीं पहचान पाए तो भी जब मैं प्ले करूंगी तब समझ जाएंगे ना। फिलहाल बताएं ये गाना कौन सा है 6622107 पर 6622107, एंड लेट मी सी कि आप 90s के कितने बड़े फैन है। ठीक है, और अभी एक आखिरी रिक्वेस्ट की तरफ हम रुख करते हैं, और ये रिक्वेस्ट आई है फयाज की तरफ से और कहते हैं कि अमिता ये गाना ज़रूर प्ले कर दो। और मुझे लगता है कि ये गाना जो त्रिदेव फिल्म का है, हम सब का

फेवरेट है, हम सब का फेवरेट है. और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी देन आई शुड से कि ये इंस्टेंट मेगा हिट हुआ था. और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस सोनम है, उनके अवतार को देखकर, उनके परफॉर्मेंस को देखकर वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी. सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, तिरछी टोपी वाले. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। देखो अब वक्त है आपसे टाटा बाय बाय कह के जाने का, लेकिन जाने से पहले क्विज टाइम पर हमने एक गाना आपको सुनाया, कहा गाना पहचानो, तो देखते हैं कितने लोगों ने पहचाना है।
2: माने या ना माने, मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको
1: बताओ बताओ बताओ कौन सा गाना है। Well, the song is ओले ओले, अभिजीत की आवाज में ये दिल लगी फिल्म का। और हमारे लिसनर्स जिन्होंने सही गैस किया है उनके नाम है आसिफ, हिशाम, दीपक, प्रिंसन, और कौन है जिन्होंने सही पहचाना है, अनवर एंड रूहान, क्या बात है। सो डेफिनेटली ये गाना आपकी राहों में आएगा, और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर गाने ने सैफ अली खान को बहुत ज़्यादा हिट किया था, और स्पेशली वो जो हील वाला उनका परफॉर्मेंस था, है कि नहीं। वैसे कहा जाता है ना कि जो 90s का सफ़र रहा आज का बड़ा कमाल का रहा, जहाँ पर हमने डांस फ्लोर, शादी के जश्न और बॉलीवुड के उन लेजेंडरी पार्टी एंथम्स को इन्जॉय किया जो हमारे दिल में हमेशा राज करते हैं। तो इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज के हमारे द रिक्वेस्ट शो का बिल्कुल वो कहते हैं ना एंड हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात फिर से होगी शाम 4 बजे, तो बिल्कुल मिस ना करें। तब तक के लिए FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, अपनी आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढें, और अभी के लिए ये कह दूं कि अब वक्त हो गया मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा। ठीक है, हाँ मेरे आई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: diversifying our tourism products, ranging from cultural and heritage tourism to eco-tourism, culinary tourism, and community-based tourism. Vietnam is also developing a smart tourism ecosystem using digital technologies and data to improve tourism promotion and provide more personalized experiences for visitors. These concerted efforts have contributed to strong growth in international arrivals. In the first 8 months of 2026, Vietnam welcomed nearly 15.9 million international visitors, an increase of 14.4% year-on-year, providing a solid foundation for our targets of attracting 25 million international visitors. Our message is very simple. Vietnam is a safe, welcoming and diverse destination, and we warmly welcome visitors and friends from all around the world.
1: Nice. Your Excellency, how do you view Vietnam's role in promoting peace, stability and cooperation within the Asia-Pacific region?
0: Vietnam is committed to playing a responsible, constructive and active role in the Asia-Pacific and beyond. We believe that peace, stability, dialogues and respect for international law are essential foundations for sustainable development. Vietnam supports multilateral cooperation and peaceful dialogue to address differences. We also believe that countries regardless of size can contribute to regional stability by building trust, respecting international rules, and working together on common challenges. For us, peace and stability are not only our interests, but also our responsibility.
1: That's a beautiful, beautiful thought. Your Excellency, now coming to the closing question, what's the message you would like to share to young generation or the young people who are interested in diplomacy, international relations and global cooperation?
0: Thank you very much for excellent question regarding the young people. The world is changing rapidly and the changing with it is no longer confined to just a meeting room. Digital diplomacy, cultural diplomacy, climate change, and many new global issues are becoming increasingly important. To young people who are interested in diplomacy and international relations, I would share three messages. First, know your roots. Understand your country history, culture, and values. Your identity is your passport to the world. It gives you confidence and helps other people understand who you are. Second, respect diversity. Listen to different cultures, religions, and perspectives with an open mind. Diplomacy, understanding others, is as important as expressing yourself. Third, embrace technology and never stop learning. The world is changing quickly, so young people need to be adaptable, curious, and willing to learn throughout their life. My message is, be confident, stay open-minded, and never lose your identity. Share our story, build genuine friendships, and contribute your ideas. Diplomacy is ultimately about building understanding, friendships, and mutual respect. And young people have an important role to play in building a more peaceful and cooperative world. Thank you.
1: Wow, thank you. That's a beautiful message from you coming and saying that one has to be confident in life. And while being confident, don't forget your roots. Know your country, know the history, and that's how you represent, you are representative outside the world. Listening to my curiosity, what actually inspired you to pursue diplomacy?
0: As you know, see, the world has changing very fast. When I was young, I paid great attention to the world. I follow every day the newsreel every day. So at that time, I think the world is changing very much. So the people living in that world should follow the situation. And I like to be connected with the world.
1: Wow. Thank you so much, Your Excellency, for taking this time and sharing amazing insights with us. Thank you once again.
0: Yeah. Thank you very much for very interesting comment, excellent comment. Thank you very much.
1: Thank you. Pleasure is all ours. आप सुन रहे शो अम्बेसडर ऑफ द मंथ.
2: अम्बेसडर ऑफ द मंथ.
1: मैं हूँ नाजिया आपके साथ और इनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. आज हमने अम्बेसडर ऑफ वियतनाम टू कतर आपसे बातचीत की और सबसे पहले हमने इस इंटरव्यू में अम्बेसडर से जानने की कोशिश की कि वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं. इस इंटरव्यू में अम्बेसडर ने वियतनाम के नेशनल विजन और उनके डेवलपमेंट मॉडल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली. उन्होंने बताया कि वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी मकसद एक पीसफुल और सस्टेनेबल एनवायरमेंट को बरकरार रखना है ताकि मुल्क इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को जारी रख सके. जी हाँ, वियतनाम अपने फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स पर अमल करता है. इसका मकसद ये है कि वियतनाम दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस कायम रखना चाहता है. जी हाँ, कतर में अम्बेसडर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी वियतनाम और कतर के दरमियान पॉलिटिकल ट्रस्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पब्लिक डिप्लोमेसी को मजबूत बनाना है. फिर हमने कतर और वियतनाम के रिलेशनशिप के हवाले से अम्बेसडर से जानने की कोशिश की, जहां अम्बेसडर ने बताया और अम्बेसडर ने इस बात पर खुशी का इजहार भी किया कि वियतनाम और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1993 से मजबूत दोस्ती पर मबनी है. जी हाँ, कुछ सालों में दोनों कंट्रीज के दरमियान हाई लेवल विजिट्स और डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस में भी इजाफा हुआ है. अम्बेसडर ने बताया कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की स्ट्रेंथ से फायदा उठा सकती हैं. कतर एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मजबूत है, जबकि वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्किल्ड वर्कफोर्स के हवाले से बहुत पोटेंशियल रखता है. आने वाले सालों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टूरिज्म, लेबर और एजुकेशन के सेक्टर्स में कोऑपरेशन को और एक्सपैंड किया जा सकता है. अम्बेसडर ने कहा कि दोनों लीडरशिप्स के पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मौजूद है जो इस पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जा सकती है. फिर हमने अम्बेसडर से वियतनाम की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी के हवाले से सवाल किया. अम्बेसडर ने बताया कि वियतनाम की इकोनॉमिक सक्सेस दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है. अम्बेसडर ने बताया कि 1986 में शुरू की गई दोई मोई रिफॉर्म्स ने वियतनाम की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया. सिर्फ चंद साल पहले ही वियतनाम एक डेवलपिंग नेशन था और आज उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है. आज ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. इस सक्सेस के पीछे तीन बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जिसे अम्बेसडर ने हाईलाइट किया. पहला, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी. यह स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को मुमकिन बनाती है. वहीं दूसरा, इकोनॉमिक ओपननेस और रिफॉर्म्स. वियतनाम

आसियान, WTO और मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का हिस्सा भी बने हैं। वहीं तीसरा प्रिंसिपल है पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, जहां गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी दी ताकि डेवलपमेंट के फ्रूट्स आम लोगों तक पहुंच सके। फिर हमारा सवाल था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर। यहाँ अम्बेसडर ने कहा कि तनाम आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। कंट्री का फोकस हाई टेक इनोवेशन और ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स पर है। सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज। उन्होंने खास तौर पर हलाल इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस का जिक्र किया। वियतनाम फूड प्रोसेसिंग और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के जरिए कतर और वाइडर मुस्लिम मार्केट्स के साथ कोऑपरेशन को मजबूत बनाता चाहता है और बना रहा है। वियतनाम 100 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, यंग वर्क फोर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़े अट्रैक्शन है। फिर हमारा सवाल था क्लाइमेट चेंज और ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ अम्बेसडर ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से अम्बेसडर ने कहा कि वियतनाम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अहमियत देता है। वियतनाम ने COP26 में कमिटमेंट दी थी कि वो 2050 तक नेट जीरो इमर्शन अचीव करेगा। इस टारगेट को हासिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमिक सोल्यूशन को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, अम्बेसडर ने वाजे किया कि वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक दूसरे के मुखालिफ नहीं समझते। उनका मुस्तकबिल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को साथ साथ लेकर चलना है। जी हाँ, फिर हमने बात की इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, जहाँ अम्बेसडर ने बताया कि वियतनाम का फ्यूचर विजन इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमता है। गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नमेंट और डिजिटल सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही हैं और बिजनेसेस को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। जी, अम्बेसडर के मुताबिक वियतनाम का गोल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है बल्कि एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर मबनी हो। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रस्ट और डेटा प्रोटेक्शन को भी प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि लोग डिजिटल सर्विसेज को कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सके। फिर हमारा सवाल कल्चर को लेकर था। अम्बेसडर ने कहा कि कल्चर डिप्लोमेसी एक पावरफुल टूल है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस जरूरी होते हैं लेकिन कल्चरल एक्सचेंजेस लोगों के दरमियान जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। वियतनाम अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल आर्ट और फेमस कुजीन के जरिए दुनिया के साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता है। इसी तरह वियतनाम कतर के कल्चर और ट्रेडिशंस को भी अप्रिशिएट करता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप को मजबूत करती है। फिर हमारा सवाल टूरिज्म को लेकर था, जहाँ पर अम्बेसडर ने कहा कि वियतनाम टूरिज्म सेक्टर को रैपिडली डेवलप कर रहा है। गवर्नमेंट ने ई वीजा सिस्टम को एक्सपैंड किया है और वीजा पॉलिसीज को सिंपल बनाया है। जी हाँ, कंट्री कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, फूड टूरिज्म और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। स्मार्ट टूरिज्म टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस की जा रही है ताकि विजिटर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। अम्बेसडर ने कहा कि वियतनाम एक सेफ, वेलकमिंग और डाइवर्स डेस्टिनेशन है जो हर तरीके से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। फिर हमारा सवाल था अम्बेसडर से कि आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस पर अम्बेसडर ने यंग जनरेशन को बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अपने रूट्स को समझो और अपनी आइडेंटिटी पर फख्र करो, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो और मुख्तलिफ कल्चर से सीखने की कोशिश करो। फिर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। उनके मुताबिक मॉडर्न डिप्लोमेसी सिर्फ ट्रेडिशनल मीटिंग्स तक महदूद नहीं है। आज डिजिटल डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। दोस्तों, आज की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन से हमें वियतनाम के रिमार्केबल डेवलपमेंट जर्नी, उसके फ्यूचर एम्बिशंस और कतर के साथ उसके मजबूत होते हुए ताल्लुकात के बारे में कीमती इनसाइट्स हमें हिज एक्सीलेंसी की कन्वर्सेशन से मिले। हम दिल से शुक्रिया कहते हैं हिज एक्सीलेंसी नवानवी हेयप, अम्बेसडर ऑफ वियतनाम टू द स्टेट ऑफ कतर।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: दो किलो आटा है चावल है दाल तेल घी नमक एक किलो चीनी है मसाला ले आना प्याज और आलू साबुन शैम्पू और पेस्ट भी है गार्बेज बैग और फ्लोर क्लीनर खत्म हो गया है ना उसके साथ स्क्रबर भी ले आना झाड़ू भी खराब हो गया झाड़ू भी नया ही आएगा
3: भाई आज एक तारीख है और ये मेरे पास मैसेज आया था कि ये सारी चीजें लेकर आना क्योंकि सैलरी आ गई है तुम्हारी बताओ यार 6:02 हो रहा है वीकेंड पे ये मैसेज आना चाहिए मेरे पास
4: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: भाई साहब एक जमाना था यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी ये दावत वो दावत फलाना वीकेंड यहाँ बीच वहाँ बीच जब से हुई है ये सब मैसेज आ रहे हैं भाई क्या जिंदगी हो गई है कहां से कहां आ गए क्या से क्या हो गया देखते देखते बता 2 किलो आटा चावल दाल तेल घी चाय पत्ती नमक ये सब आ रहा है मेरे पास भाई वीकेंड में क्या माहौल हुआ करता था भाई एक जमाने में ये बीच जा रहे हैं ये बारबेक्यू चल रहा ये रेस्टोरेंट दर रेस्टोरेंट और अब क्या जिंदगी जिएगा रे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एफएम 107 वाले दोस्तों आप सभी का 6:03 और सैलरी तो चलो आ गई कम से कम एक खुशी तो है कि ये सामान आना है लेकिन लेकिन जो है सैलरी आ गई है कहीं ना कहीं तो रेस्टोरेंट में जाके मुंह माहिर ही आऊंगा यार मैं है ना घर का खाना अब पता नहीं क्या हो गया है यार ये कौन सी एज में मैं पहुंच गया हूं घर का खाना पसंद नहीं आ रहा भाई मुझे किसी के हाथ में टेस्ट नहीं लग रहा है वो आदमी जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ उसके हाथ का खाना मुझे पसंद आ रहा है ये कैसे हो रहा है भाई अनजान आदमी का खाना पसंद आ रहा है उसको देख भी नहीं सकता भाई मैं कि खाना कैसा बना रहा कैसा नहीं बना रहा लेकिन पसंद आ रहा है बाहर का खाना ये कैसे चल रहा भाई ठीक है जी लेंगे ये भी कर लेंगे क्या करना है लेकिन इन सबके बीच कहूंगा फिर से खुशी तो एक ही है हालांकि आज दो है एक तो सैलरी आ गई दूसरा ये कि चलो भाई थर्सडे आ गया मतलब गिरते पड़ते ही सही थर्सडे आ गया जिसका इंतजार पूरा ग्लोब कर रहा होता है एक्चुअली लेकिन गल्फ कंट्री तो इसी इंतजार करती है ना आज थर्सडे है गल्फ कंट्री अलग तरह से इंतजार करती है उनका थर्सडे वाला वीकेंड होता है बाकी अभी जो है 6:04 हो गया दोस्तों साथ हमारा और रहेगा लेकिन इस बीच सवाल भी होगा और आज का सवाल जो है पहले दिन के सवाल से मेल खाता था जब पहले दिन आपसे सवाल किया था ना कि ड्राइविंग टेस्ट जब लोग देखते हैं तो क्या गलतियां करते हैं लेकिन आज आज आज भी ड्राइविंग से है बट है के रूल के ऊपर ठीक है तो चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं जरा
5: मेरे सवाल का जवाब दो
3: हाँ जी तो सवाल ये है कि जो सबसे आम रूल है जो 80-90% आम है लोगों के लिए गाड़ी चलाते हुए वो रूल कौन से हैं ऐसे जो आम तौर पे ड्राइवर भूल जाते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है वाइल्ड ड्राइविंग है ना ड्राइव करते हुए कुछ ऐसे रूल हैं भाई जो ये ड्राइवर लोग भूल जा रहे हैं उनको पता नहीं अच्छा ये गलती उनको लगता है कि ये तो मैंने सही किया पीछे वाला गलत था या दाएं और बाएं वाला गलत था तो ऐसे कौन से रूल हैं आम रूल बहुत ही कॉमन है जो पता ही होने चाहिए भाई साहब आप पैदल भी चल रहे हैं आपके पास कार नहीं है लेकिन ये वाला रूल तो आपको पता होना चाहिए कैसे नहीं पता था आपको लेकिन फिर भी लोग ड्राइविंग करते हुए ऐसे रूल को याद नहीं रखते वो भूल जाते हैं वो पता नहीं कौन से गफलत में रहते हैं और इस तरह की गलतियां कर देते हैं जो कॉमन रूल याद रखना चाहिए वो एक्चुअली रूल फॉलो नहीं करते हैं उसके अलावा हो जाता है उनसे नुकसान या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे वार्तालाप करेंगे बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नंबर है 666

0: 1-800-227-107, एक कॉमन रूल जो ड्राइवर अक्सर भूल जाते हैं ड्राइविंग करते हुए।
1: मेरे सवाल का जवाब दो,
0: तो इसी के साथ FM 107 के व्हाट्सएप नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सलाम सलाम सलाम हुसैन साहब का सलाम आया। सलाम वालेकुम, अस्सलाम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड। फजल भाई मुझे क्यों रुलाते हो? सैयद हुसैन साहब, सैलरी आपकी भी आ गई है, ये सब छोड़ो, घर में आटा खत्म हो गया है, क्या खत्म हुआ, लेकर आना है भाई, आज ही लेकर आना है, ठीक है, वरना कल खाना नहीं बन पाएगा। हमारे घर में दो चीज बहुत जरूरी है, वो दो है चाय पत्ती और चीनी। भाई इसको हम एडवांस में रखते हैं, खुदा ना खास्ता एक जो एक किलो वाला पैकेट है अगर वो ख़त्म हो रहा है तो दूसरा तैयार स्टोर में, कहीं अगर ख़त्म हो गया तो जिस दिन अगर चाय नहीं बनी ना घर में तो उस दिन एक आदमी नहीं दो लोग बोराते हैं। यही होता है ना कि घर में कोई बोरा गया, आज घर बर्तनों की आवारी लग रहा है, बेगम साहिबा नाराज हैं। नहीं नहीं नहीं, घर में दो आवाजें आएंगी, एक बर्तन जो है फेंकता है और दूसरा उठा के दोबारा फेंकता है कि अरे चाय क्यों नहीं बनी अभी तक। देखो दिन में एक ही बार चाय पीता हूं, लेकिन चाय अपने को लाजमी चाहिए, चाय पत्ती और चीनी घर में रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा रख देता हूं लाकर में, लाजमी है भाई, खाएगी दिमाग पता नहीं क्या है चाय के साथ भाई, सुबह ना पियो शाम तक मूड खराब होने लगता है, ये कौन सी बात है भाई, पियो शाम को मूड अप और किसी चीज मन नहीं लग रहा है, तो चाय पत्ती और ये सब भी लेकर रख ही लेना खादिम साहब। आगे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज अकरम, आई ऑफन फॉरगेट टू पुट ऑन माय बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। अरे मेरा भाई इमरान साहब, क्या सीट बेल्ट ही नहीं पहनते हैं आप? पाजी ठीक तो हैं आप, ये कौन से काम में आ गए आप? ये तो गलत, अच्छा हुआ आप असली में वो वाले जैसे होता है ना जो रेगुलर बेसिस पे रहे हैं, आप वो वाले नहीं बने भाई, नहीं सोचो आपका काम ही अगर यही होता तो कि भैया कमाई कितनी है, माशाल्लाह है 4,000-5,000 रियाल कमा लेते, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा, और खर्चा भी 2,000 में चल जाता, नहीं नहीं खर्चा तो 7,000 है क्या? कि अरे भैया 7,000 खर्चा, आमदनी 98, खर्चा रुपया, इमरान साहब कैसे? अरे वो इतने ज्यादा चालान फाइन। ओह इमरान साहब हले हले, सबसे पहला मैं तो कहता हूँ अपने सामने स्टीयरिंग पे लगा लो, सीट बेल्ट पहन लो इमरान, ये करवा लो भाई, या फिर अपने कार के अंदर बैठो एक ऑटोमेटिक आवाज आनी चाहिए, सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट, ऐसा ऐसा इमो बाबू सीट बेल्ट ऐसी होना चाहिए। उसके अलावा अतीक भाई हैं या एंटीक लिखा है इन्होंने प्रोफाइल पर, आई डोंट नो भाई, लेकिन हाँ अतीक नाम लिखा है। गिविंग इंडिकेटर फॉर टर्निंग, अच्छा ये लोग जो है वो भूल जा रहे हैं, और इंडिकेटर यार ये इंडिकेटर तो देखो बहुत लोग भूल रहे हैं, बात तो सही है, मुझे इंडिकेटर से याद आया कुछ लोग ऐसे हैं जो दो लेन एक साथ चेंज कर लेते हैं और उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती, पीछे वाला जो ड्राइवर है भाई साहब उसके ऐसी ऐसी जगह से पसीने निकलते कि उसके हाथ भी नहीं पहुंच सकते, गर्दन पे हाथ नहीं रख सकता ना अगला आदमी पसीना पोंछने के लिए। सॉरी कोड़े वाले भैया। आप सोचे भाई दो लाइन एक साथ चेंज कर ली, मैं तीसरे लाइन पे था वो पहले लाइन पे था, उनने चेंज करके तीसरे लाइन पे ले आया और उसको लग भी नहीं, उसको पता भी नहीं कि कोई गलती करी, इंडिकेटर तो छोड़ दो भाई, इनने तीन लाइन चेंज कर ली, दो लाइन चेंज कर ली, कमाल है। और मुझे पता है ये एक स्पेसिफिक ही लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कोड़े वाले भैया इस पर भी मारते हैं पता है। आगे लेकिन ये बहुत सही बात कही अतीक भाई, ऐसे ऐसे लोगों का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि गाड़ी मोड़ो अपने आप इंडिकेटर भाई, ये भी होना चाहिए, जैसे होता है ना कि आपने लिया इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है, वैसे ही होना चाहिए कि एक लेन से दूसरे लेन ऑटोमेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ये होना चाहिए यार, अपने आप चल जाए। ओके एक और मैसेज है उमर फारूक साहब का, भाई भाई क्या बात किए हो, लेफ्ट राइट सिग्नल देना यानी इंडिकेटर लाइट देना, लेफ्ट राइट सिग्नल, अच्छा ये वाला, अच्छा आप भी सेम ही बात कर रहे हो, अब समझा मैं, मेरा थोड़ा फ्री सिस्टम है ना, मेरा इंटरनेट अभी भी नहीं हुआ भाई, 3G पे चले आए।

खैर क्या बात किए हो, लेफ्ट राइट सिग्नल देना जो लोग भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक ऐसी कार डिजाइन होनी चाहिए, जो भी मैकेनिक सुन रहे हैं भाई, एक सिस्टम डालो यार कार में, नई कार में डालो, पुरानी कार में डालो, तुम डालो, जानता नहीं हूं, हल्की सी स्टीयरिंग घुमा रहा है अगर लाइन से, लेन से कोई भी अगर लेफ्ट राइट हो रहा है, या तो यहां से हो जाएगी दिमाग से कुछ भाई। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मतलब दो ही जेंडर बाकी तो पता ही है कौन, बगैर इंडिकेटर दिखा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट उनको ऐसा लगता है भाई नीड फॉर स्पीड चल रहा है ना, भगाए रहो गाड़ी, हाँ ना ना ना ना, वो भाई भगाते भी हैं यार। इंडिकेटर प्लीज दिया करें जितने भी लोग सुन रहे हैं। बाकी खादिम साहब ने कहा फजील भाई कैसे हैं आप, मैं बहुत, अरे बहुत देर बाद आपने पूछा कैसे, मैं अभी ठीक हूँ, मैं भी चाय लवर हूँ, हम सब चाय, तो यार एक वक्त की चाय लाजमी है, वरना फिर उस दिन दो चीज़ ख़राब होती है, एक तो मूड और एक घर की शक्ल मेरी भी शक्ल खराब हो जाती, तीन। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। ड्राइविंग करते वक्त जो रूल सबसे ज़्यादा लोग भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, वो है इंडिकेटर टर्न सिग्नल का इस्तेमाल। अक्सर ड्राइवर टर्न लेते वक्त, लेन चेंज करते वक्त या गाड़ी साइड करते वक्त इंडिकेटर देना भूल जाते हैं, या फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड पर इंडिकेटर देते हैं। फहद जमाल ये कह रहे हैं, और भाई देखो मैं सभी से कहना चाहूँगा, ये तो तीन मैसेज लगातार आ गया इसी बात का कि इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं लोग। अच्छा कुछ लोगों को इंडिकेटर का नहीं पता होगा कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, या फिर हो सकता है जिनको जिनको तो पता ही नहीं, कभी दिया ही नहीं इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर की आवाज़ ऐसे होती है, ठीक है, अगर ये आवाज़ आ रही है कार से तो समझ लो तुम्हारा इंडिकेटर काम कर रहा है। कैसे ये वाला काकी ने सिखाया था मुझे एक बार आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज है, आसिफ साहब क्या कहते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ रोज होता है और ये टैक्सी वाले से बहुत परेशान हूँ। टैक्सी वाले भाई जितने भी सुन रहे हैं, आसिफ भाई जहां पर भी दिखे इंडिकेटर देखे मोड़ देना ये लोग ना भाई क्या करते हैं पता है क्या, इन लोगों को लोकेशन तो मालूम होता है, मालूम होता नहीं है, अच्छा, और भाई डालते हैं राइट का, घुसते हैं लेफ्ट में। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो आसिफ भाई आपकी हजार बातों से मैं मान लूंगा सही बात है, अगर कोई इस कतर के शहर में इंडिकेटर दे रहा है, कायदे से इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ड्राइवर वाले, लिमोजिन वाले भैया लोग ही हैं, कैब ड्राइवर ही हैं जो सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आम जनता है उसने अपने ठेंगे का ऐसा किया इंडिकेटर के मामले, भाई साहब मैं बता नहीं सकता भाई क्या बात कर रहे हो। बाकी हम लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल वही है, और सवाल यह है कि आम जो रूल है ड्राइविंग करते वक्त, वो रूल कौन सा है जो लोग आसानी से भूल जाते हैं और उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं वाइल्ड ड्राइविंग, इसका जवाब बताइए। नंबर है 666-22-107। आपके मैसेज की तरफ कुछ देर में बढ़ेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों अभी अभी मैसेज आया, ताज़ एकदम मैसेज है कि आलू भी ख़त्म हो गया है और मटन जो है वो ले आना, मटन भी खाने का दिल है, आलू मटन खाएंगे, बहुत दिन से नहीं खाया है। और अगर इंडियन मिले तो इंडियन वाला लाना।

0: हो, और अगर ये दोनों हम ना मिले तो मत लाना। जो बड़े का गोश्त है वो तंजानिया चलेगा और कतर का भी चलेगा। बताओ क्या जिंदगी है भाई ये।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
3: अरे मैं क्या आलू और मटन लेके आऊंगा यार, क्या बात है जिंदगी में यार, क्या जिंदगी।
0: फिलहाल 6:23, मैं आलू मटन जो है वो सब लेकर जाऊंगा। दोस्तों घर का माहौल अच्छा नहीं था, नबड़ता है मेरे को थोड़ा देर में रियलाइज हुआ है। रखोगे तो खुश रहोगे बाबू। आइए हल्के हाथ से बाकी लोगों के मैसेज लेते हैं। आज का सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आम जो रूल है लोग भूल जाते हैं ड्राइविंग करते वक्त, जो रोड के रूल है वो क्या है। सबसे पहले मैसेज है हैव फेथ वाले भैया का। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मान अली, क्रॉसिंग ओवर सॉलिड लाइन नियर जंक्शन और अप्रोच नो वन केयर अबाउट। एक मिनट दे मुझको, रोड पे होना बताया आपको। उस्मान भाई का कहना है क्रॉसिंग ओवर सॉलिड लाइन नियर जंक्शन, यानी कि वो जो इंटरसेक्शन होता है वहां पर सॉलिड लाइन और नो वन केयर अबाउट है जी। मेरा मुंह बन गया इसको, मैं पढ़ता हूं, समझ नहीं आया भाई। थोड़ा और क्लियर अगर हो जाता तो भाई आसान हो जाता। आप ऑडियो भेज दे भाई। फिर शफी भाई का मैसेज है लेफ्ट सिग्नल हैजर्ड सिग्नल। हाँ तो डायरेक्ट हैजर्ड क्यों नहीं बोला भाई, लेफ्ट राइट बोलोगे तो मैं तो इंडिकेटर ही समझूंगा यार उसको, क्या क्या यार। लेफ्ट सिग्नल राइट सिग्नल इंडिकेटर भी तो समझा जाता है। चाय पायलट्स मस्त जियो भाई, ये क्या था शफी भाई आखिर का मैसेज। फिर फैयाज साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, मुझे लगता है सभी गाड़ी वाले आपका एफएम सुने हैं। इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूं और सबका सब बेचारे सिग्नल इंडिकेटर। अरे ये भी बड़ी मस्त चीज है, लेकिन मैं अब कहूंगा नहीं करने को यहाँ पे। तो एक जगह थी जहां पर किसी ने कहा था एक साथ सब हॉर्न बजाओ, तो भाई वो पूरा ऐसा कोई तो जगह पे थे वो जाम लगा था, तो वो रेडियो पे बोल रहे थे सब एक साथ हॉर्न बजाएंगे, तो पूरे जगह पे हॉर्न बजने लगा था वो ट्रैफिक जैम में। यहाँ की बात नहीं है, वो कहीं और की, यहाँ तो करना भी नहीं, जबरदस्ती बजाओ तो सुत जाओ। लेकिन चलो अच्छी बात है, सभी अगर एफएम 107 सुन रहे हैं और इस वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है भाई। आज भाई बहुत ही उम्दा बात बताई आपने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, गुड इवनिंग टू ऑल। भाई इंडिकेटर कोई जानता है या नहीं, लेकिन आपने जो वॉइस किया है उस पर सब समझ गए। जो अभी ट्यूनिंग किया उनको बता दे इंडिकेटर की वॉइस ऐसे होती है ना। इमरान भाई बाकी लोगों को भी आप बता देना। फिर एक और मैसेज है भाई, डोंट फॉरगेट टू धनिया, धनिया भी, हाँ धनिया तो गार्निशिंग के लिए धनिया बड़ी जरूरी चीज है भाई। कई बार चीजें लिखी नहीं होती है लेकिन उसको लेकर आना ही आना है, जैसे कि अशफाक साहब ने बताया धनिया। धनिया लेके जाना मेरा भाई। फिर उसके बाद लगता है भाई को ऑर्डर आया है भाभी की तरफ से। हाँ भाई मैं घर का डिलीवरी ड्राइवर हूँ, पता है। करना ही करना है काम, ना तो कर ही नहीं सकते हैं। लिखा है आगे, आपके चक्कर में मैं लोगों को देखना शुरू कर दिया, गलती कर रहा है। हाँ वाला गलती करके बताओ, सामने अगर देख रहे हो आप और कोई गलती कर रहा है बता दो, इधर वीडियो बनाकर भी भेज, नहीं वीडियो मत बनाना, गाड़ी आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो चुपचाप ड्राइविंग करो। पता चला वीडियो बनाया, उधर से कैमरा आ गया, फिर पता चला उसकी तो पकड़ में आई, आपकी जरूर आ गई गलती पकड़ में। मुरूर वाले आपको देखेंगे, सलाम अलैकुम, पैसा डेबिटेड अकाउंट से, सैलरी अभी आई है सिर्फ। फिर उसके बाद ये मैसेज है ऑडियो के साथ, ऑडियो तो मैं कुछ देर में सुन लूंगा अरबाज आपका, लेकर मैसेज है अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी सर 22 साल उम्र है, मैं 22 साल में अभी तक चाय नहीं पी। क्या बात कर रहे हैं, चाय नहीं पी भाई? कौन से रीजन से आते हैं यार, वहां चाय पत्ती नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई चाय पत्ती ना हो वहां पे, कि भाई लद्दाख में तो चाय पत्ती नहीं होती है, वहां से आया हूं मैं। मैं सर अली मोहसिन वालों से बहुत है, बहुत परेशान हूं, ये जगह जगह नहीं देखते, बस ब्रेक मार देते हैं, लाइसेंस किसने दिया होगा? अच्छा लिमोजिन कहने की कोशिश कर रहे होंगे, ऑटो करेक्ट ने अली मोहसिन कर दिया। अरे मेरा क्या क्या जबरदस्त चीज हो गई ये तो। लेकिन ठीक है, मैं इस बात पे बिल्कुल आपकी मैं मान भी लेऊंगा, लेकिन यार कभी कभार ना मुझे लगता है कि आम जनता गलत गाड़ी चला रही है, ये लिमोजिन वाले ज्यादा सही चला रहे हैं, क्योंकि मैं तो इनके

साथ कभी कभार बैठ के सफर भी करता हूँ ना, कभी गाड़ी खराब हो गई बनने को दी तो भाई लोगों के साथ टेलना घूमना हो जाता है। सबसे परफेक्ट यही बताते हैं भाई, इनको गाड़ी चला, इनसे सीख लो, ये सही चला रहे हैं। ये तीन चीजों का सबसे खास ख्याल रखते हैं, ये

0: ग्रीन लाइट, फिर उसके बाद येलो लाइट, चार सेकंड के लिए, तीन सेकंड के लिए रुकती है। तो ग्रीन लाइट जैसे ही ब्लिंक करती है, मेरे दोस्त स्पीड बढ़ा लेते हैं। यही एक लौती प्रजाति है भाई लिमोजिन वाले, ये धीमे कर लेते हैं, ये रोक ले रहा है भाई, येलो पे भी रोक ले रहा है, ये फालतू नहीं बढ़ा रहे, इनको पता है जितनी इनकम नहीं होनी उससे ज्यादा नुकसान हो जाना है। फिर सबसे सही मेरे को यही लिमोजिन वाले लगते हैं भाई। अब बाकी तो कुछ ना कुछ गलतियां किसी ना किसी से हो रही हैं, बट इसीलिए तो शो है कि जो सुन रहा है वो सीख जाएगा क्या गलतियां कर रहे हैं। इंडिकेटर सब दोगे आज से, मैं बता रही हूं। बाकी लाइट भी जला लेना, एक रूल जो काफ़ी लंबे वक्त से चल भी रहा है, इस रूल पर भी हमने बात कुछ वक्त पहले की, और इवन सर्वर भाई भी अपने वो अपडेट करते हैं ना, MOI AI कह रहा हूँ MOI अपडेट करते हैं, उसमें वो बताते रहते हैं अलग अलग जो रूल इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एक रूल ये भी है कि अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हैं और आपने अपनी हेडलाइट ऑन नहीं करी तो अच्छा खासा फाइन है उस पर, तो फाइन ना पड़े इसलिए हेडलाइट ऑन जरूर करें। फिर सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे गाड़ी का इंडिकेटर खराब है। ले ओ भाई, जिस तरह आपने इंडिकेटर की आवाज निकाली है, आज आपको आपकी जरूरत है मुझे ये कौन सी बात है? बताओ, मैं एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये कह रहे हैं मेरी जरूरत पड़ेगी। ओ भाई, मैं यहाँ पर लोगों की मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये मजाक हो रहा है कि मेरी जरूरत पड़ेगी। क्या मैं आपकी गाड़ी के आगे बैठ के इंडिकेटर की आवाज निकालूंगा? ये करने के लिए मुझे यहाँ पर रखे तुम लोगों ने? मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा मुदस्सिर साहब, क्या बात कर रहे हो यार, आपकी बात आ रहा हो। दो ऑडियो है, कुछ देर में सुनूंगे भाई। और फिर भाई, ये जो टैक्सी वाले पैसेंजर देखकर रोड पर ही एकदम ब्रेक मारते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके ना ख्याल नहीं है, उसके बारे में तो मुरूर ही है भाई, ख्याल के बारे में मुरूर, मोहब्बत से इनको होता ना कंधे पे हाथ डल गया, आओ दोस्त फाइन भर के यार। मुझे लगता है इनके लिए उधर ही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और जब तक इनके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा इनकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। एक बार डेबिट हो जाने दो, फिर उसके बाद देखो एकदम अप टू डेट हो जाते हैं भाई। आपने वो छोटा बच्चा देखा है जिसकी सर्विसिंग होती है कायदे से, ऊपर से लेकर नीचे तक, डंडू से, हाथ से, रबड़ से, अब्बा सर्विसिंग करते हैं, फिर वो 4-6 महीने जो है वो सही रहता है, फिर बिगड़ता है। तो ऐसे लोग जो एकदम से ब्रेक मार देते हैं पैसेंजर देख के, पहले तो ये आपको काम करना नहीं है, आप अपने मुल्क में नहीं रह रहे कि किसी ने हाथ दिया आपने ऑटो रोक लिया। अरे भाई आप ऑटो नहीं चला रहे हैं, ये काम तो करिए मत। ऊपर से अगर किसी ने या फिर किसी कैमरे ने फोटो खींच ली तो लंबा चप जाओगे भाई, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर भी रहें। फिर उसके बाद ये मैसेज है, इज़ लाइक योर अटेंशन मेंशन सेज इन अलबिदा पार्क व्हेन आई केड, क्या भाई ये वाली क्या कैसी कैसी बात कह देते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आती है यार। अली मोहसिन, इज़ लाइक योर अटेंड मेंशन सेज इन अलबिदा, भाई घर जाने के बाद मुझे गंगा जल पीना पड़ेगा दिमाग मेरा दुरुस्त नहीं हो पाएगा फिर। लव यू भाई, मजाक कर रहे थे और ये मजाक आपसे सीख ही लिया भाई। कोई बात नहीं है मेरा भाई, आपके लिए इंडिकेटर की आवाज भी निकाल देंगे, क्या बात है। फिलहाल 6:32 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अब हम आ जाते हैं खत की तरफ, क्योंकि वक्त इतनी तेजी से गुजरता है हमें पता भी नहीं चलता है। गाने का भी हिसाब किताब होना चाहिए, और गाने के हिसाब किताब की तरफ बढ़े उससे पहले उन लोगों के लिए आज एक खत लिखना है जो रूल आसानी से भूल जाते हैं। एक खत लिखिए कि एक रूल तो भाई तुम लोग याद रखो, इंडिकेटर वाला नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, इंडिकेटर वाला तो हो गया, अब तो लोग याद रखेंगे। एक और रूल जो आपको लगता है कि यार बहुत आम है लेकिन लोग भूल जाते हैं, उसको प्लीज याद रखो, ऐसा करके आपको लिखना है, या ऑडियो में बोलना है तो जरूर बोले। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107। डियर ड्राइवर, फिर उसके बाद एक वो आम रूल जो आप चाहते हैं कि उनको लाजिम याद रहना चाहिए, वो क्या है? इंडिकेटर, ठीक है, और कोई भी बात आप, या और कोई भी रूल आप उन ड्राइवर्स को लिख सकते हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गानों की पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका पसंद।

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में और कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीग से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये गाना तस्वीर अबराल और लहक भी इस गाने में मुझे माटी में उतारो, क्या लाइन है खूबसूरत। और अगर मैं 10वीं क्लास में होता, फेल हुआ होता, तो सच में आज मैं रस्सी ले आता और पंखे को देख रहा होता भाई इस गाने को सुनने के बाद। मैं सोच रहा होता कि कौन सा नोट लगाऊं मैं। 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और कभी कभार ऐसे गाने होते हैं, और आज के दिन तो मेरे को मुझे लगा दूसरा वाला तस्वीर है। लेकिन ठीक है, इस्तकबाल है आप सभी का। 6:46 जल्दी से मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आपको खत लिखना था और एक मैसेज आया है, सिर्फ लिखा है डबल पार्किंग। अब मैं डबल पार्किंग क्या समझो, एक तो पार्किंग वो होती है और जो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है कई पेजेस पे आज आप देखेंगे भी, वो ये कि दो पार्किंग खाली रहती है। पार्किंग करने वाले भैया ऐसा पार्क करते हैं कि एकदम बीचों बीच, ना दाएं में जगह ना बाएं में जगह, लियो जो करना है कर लियो। जहां दो पार्किंग होनी चाहिए वहां एक बंदा एक पार्किंग करता और दोनों पार्किंग ऐसी खाली छोड़ देता है कि वहां पर पार्किंग हो ही नहीं सकती। अगर यही है डबल पार्किंग तो सिद्दीकी साहब ने एकदम सही लिखा है। बाकी एक और मैसेज है और बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। पहले लिमो वाला पढ़ देता हूं। अरबाज कहते हैं, डियर लिमो ड्राइवर, प्लीज स्टॉप डूइंग रॉन्ग पार्किंग एंड सडन अननेसेसरी ब्रेकिंग। यार बगैर किसी वजह के तो ब्रेकिंग नहीं लगाते हैं ये लोग, मेरे को तो सबसे सही यही वाले लग रहे हैं, मैं तो इन्हीं की तरफ खड़ा हूं भाई साहब। हो सकता बाहर निकल के पीट दिया जाऊं आम इंसान से। लेकिन मुझे यह भी पता है लिमोजीन वाले भैया बचा लेंगे। द रोड इज नॉट योर पर्सनल पार्किंग एरिया एंड द ब्रेक पेडल इज नॉट अ डीजे बटन। अरे ये तो इन्होंने AI से लिख लिया है, बहुत सही। बाकी एक और मैसेज है और शायद ये वाला इनका खुद का है। डियर -- ब्रदर्स, आप लोगों ने सारी उम्र पर सफर किया है, आप जब आपको गाड़ी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक लॉज को फॉलो ही नहीं करोगे और रोड पर गलत ड्राइविंग करोगे। एयर बास भाई, काहे चाहते हैं कोई कूट दिया जाए। ये जो हमारे सामने बैठे हुए कूड़े वाले भैया है ना, ये जगह जगह पहुंच जाते हैं, आपके घर भी पहुंच सकते, ये नंबर से पहुंच जाते हैं यार, इनको सब पता है। अच्छा वो मैंने पूरी लाइन तुम्हारी नहीं पढ़ी। शफी साहब कहते हैं, दिस रूल वी फॉरगेट समटाइम वी फॉरगेट दैट वी आर इन फास्ट लेन एंड सडनली अ फ्लैश कम्स बिहाइंड फ्रॉम अ लैंड क्रूजर। अरे यार ऐसे मैं तो सोच रहा हूँ पीछे भी एक चमकीली लाइट लगा लूँ भाई, जो मुझे पीछे से लाइट मारे मैं भी उसको पीछे से लाइट मार पाऊँ। कि भाई क्यों मार रहे हो जबरदस्ती, मैं हट रहा हूँ ना भाई, एक बार हल्की हॉर्न दे दो मैं किनारे कर लूँ। मुझे पता है तुम वैसे भी जब तेज आ रहे हो तो मुझे पता है पीछे से कोई आ रहा है, जिसको बहुत जल्दी है भाई, जिसको घर पहुंचना है बहुत तेजी में, उसने आज दबा के सुबह सुबह खाया है, अब उसको घर पहुंचना है भाई, मैं किनारे कर लेता हूं, लेकिन थोड़ा तो वक्त दियो मेरा भाई, एकदम फ्लैश मारते रहते हो। फिर एक और मैसेज है रियाज साहब का, डियर ड्राइवर, एकदम लाइन चेंज करते वक्त ये मत भूलना कि पीछे अगर मेरी स्पीड कंट्रोल ना हुई तो ऐसी जगह पड़ेगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि डेंट कहाँ है, डेंट कहाँ करूँ और पेंट कहाँ करूँ।
1: सलमान खान की गाड़ी है क्या?
0: फिर आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम डियर हाई बीम लाइट वाले, भाई प्लीज हाई बीम ऑन मत किया करें, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, एक तो फ्लैश लाइट लगाते हैं आप लोग और ऊपर से हाई बीम पर चलते हैं, प्लीज ऐसा ना करें, लाइट्स लो पे रखें। फहद जमाल और जो भी डियर वियर है भाई, ये जो काम करते हैं, एक तो ये होता है कि आप अगर हाईवे से आ रहे हैं तो ये गलती कर बैठते हैं, इट्स ओके, ठीक है, उनको तो फिर भी माफ़ है। एक वो लोग हैं भाई जो नॉर्मल लाइट चलाते हैं, हाई बीम कर लेते हैं और फिर ये फॉग लाइट भी ऑन कर लेते हैं। फॉग लाइट होती है सबसे नीचे की तरफ, भाई लिटरल अंधा होना इसी को कहते हैं, पता है। आपने एक तो लाइट ऑन करी, नॉर्मल है वो, ऑब्वियसली ऐसी लाइटिंग होती है जो कभी भी आंखों पे लगती नहीं है, नॉर्मल लाइटिंग, ठीक है, ऊपर से आपने हाई बीम कर दी, ये बहुत ही गलत हो गया, ठीक है। और फिर होता है कि आपने फॉग लाइट भी ऑन कर दी भाई, फिर इससे ना मैं बता रहा हूँ, आज के दिन सैलरी आए रस्सियाँ खरीदूंगा मैं, बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और पंखे का करीब लेकर जाऊँगा ऐसे लोगों को। प्लीज़ दूर रहो यार ऐसे लोग, भाई फॉग लाइट नहीं चलानी होती तुमको, ये कौन सा कीला तुम लोग को लग गया भाई। ऐसे जो लोग भी सुन रहे हैं यार, फॉग लाइट नहीं चलानी होती, फॉग लाइट फॉग में चलाओ, वो बहुत चमकदार होती है मेरा भाई, कमाल करते हैं। फात भाई ने बहुत सही बात बताई, याद आ गया हाई बीम पे। मुदस्सिर मंगाश कहते हैं, हेलो डियर डैश ड्राइवर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, सामने जो बैठे हुए हैं मेरे को सूद देंगे, सॉरी भैया मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं ये मैसेज पढ़ने के बाद डिलीट कर दूंगा, आप वहीं पर बैठे रहे हैं कूड़े वाले भैया। आगे लिखा है, प्लीज व्हेन यू ड्राइव इन नाइट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डोंट टर्न ऑन हेडलाइट फुली मीन हाई बीम ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग हाई बीम लाइट से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कोई भी हो जाता है, बाइक वाला हो कार वाला हो, इतनी तेज रोशनी पड़ती है कि इंसान नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता कि आगे आपके पीछे कौन सी गाड़ी है, वो हम नहीं समझ पाते, और क्लियरली वहां पर एक्सीडेंट होने के भी डर होते हैं। ताज़ा भिंडी लाल टमाटर, ये आया खादिर अब्दुल हादी का मैसेज, ठीक है करवा लेना भाई। साहब क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, दिस इज काशिफ, प्लीज मेक श्योर योर कार हैज ऑल द एसेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वार्निंग ट्रायंगल। हाँ ये बड़ा लाजमी होता है, और आमतौर पे ये कारों में होता ही होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप खरीद दीजिए। कई बार अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो ये चीजें नहीं मिलती हैं, एक ट्रायंगल सा होता है और वो रिफ्लेक्टर है, ऐसे चमकता है, कहीं पर भी उसको लगा दो जब भी आपकी गाड़ी खराब, तो थोड़ा सा पीछे आते कि लोगों को पता चल जाए कि कहीं आगे किसी की गाड़ी खराब है ना, तो वो एकदम डिटेल में बता ही देगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, तो लोग जो पीछे से आ रहे होते हैं वो धीमे कर लेते हैं। ऑलवेज फॉलो द रोड स्पीड लिमिट टू इंश्योर योर सेफ्टी, नेवर थ्रो एनी गार्बेज ऑन द रोड व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव एंड रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पर कोई रास्ते में तो सामान बेस्ट है, देखिए भाई बंदा मेरे साथ है, अच्छा फोटो भेजिए भाई, आपको लगता है आपको लगता है अच्छे मिले हैं टैक्सी वाले, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं, जैसे भी रूल्स ब्रेक करने वाले भाई आप कभी देख लेना। आसिफ का ये कहना, नहीं यार मेरे को तो हो सकता है ऐसा, लेकिन मुझे जो भी मिले एकदम परफेक्ट मिले हैं। एक और भाई हैं, उन्होंने ऑडियो बाकायदा भेजी था, और उन्होंने कहा था कि यार वो जो लोग हैं ना जो एकदम बीच रहते हैं, एकदम से गाड़ी को ब्रेक मारना पड़ता है, उनको भी तो कहो यार पैसेंजर सही जगह खड़े हों, तो पैसेंजर कहीं भी खड़े हों, आप गाड़ी रुकिए जहां पर आपको डेजिग्नेटेड एरिया है, जहां पर वहां पर। ओके जाने से पहले एक आखिरी मैसेज, साहिल भाई कहते हैं, भाई जो खाली रास्ते पर भी चलते हैं ब्रेक क्यों मारते हैं, साहिल हेयर। भाई अब ऐसे इन्हीं से पूछो यार, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्या बोलोगे ऐसे वालों को, मैं इन लोगों को क्या समझाओगे, आपके पास तो इसके लिए कोई जवाब भी नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, फिलहाल आज है थर्सडे, एंजॉय करो मजे करो। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:53, अजान का वक्त हो रहा है, कुछ ही देर में आप न्यूज बुलेटिन सुनेंगे एफएम 107 पे। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी संडे शाम 6 बजे, दिल से देसी, इंडिकेटर का याद रखना।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलब ही और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु ताला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।

एक नौजवान विकेटकीपर और सामने इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से कुछ नाम सुन लीजिए, बिशन सिंह बेदी, एड़ापल्ली प्रसन्ना, बी एस चंद्रशेखर। और इन गेंदबाजों को कीप करना यानी विकेट कीपिंग करना कोई मामूली बात नहीं था। स्पिन बॉलिंग के सामने विकेटकीपर को बैट्समैन से भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। गेंद कब टर्न करेगी, कितनी टर्न करेगी, कब नीचे रहेगी, कब बाउंस करेगी, बल्लेबाज के बैट का एज कहां जाएगा, और अगर कीपर स्टंप्स के करीब खड़ा है तो रिएक्शन के लिए वक्त कितना है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। किरमानी ने इसी एनवायरनमेंट में अपनी क्राफ्ट डेवलप की। इसी जय के साथ एक इंटरव्यू में किरमानी ने खुद बताया था कि उनकी विकेट कीपिंग की एजुकेशन लेजेंडरी स्पिनर्स के सामने हुई। उनके मुताबिक विकेट कीपर की असली एबिलिटी का इम्तिहान तब होता है जब वो स्पिनर्स के सामने खड़ा हो, और यहाँ से समझ आता है कि किरमानी सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो ट्रेंड थ्रू एडवर्सिटी थे। फारूक इंजीनियर के बाद बड़ी जगह और बड़ी जिम्मेदारी। अब जरा उस वक्त का इंडियन क्रिकेट इमेजिन कीजिए। इंडिया के पास विकेट कीपिंग में पहले ही एक बड़ा नाम था, फारूक इंजीनियर। इंजीनियर स्टाइलिश थे, एग्रेसिव थे, कैरिस्मेटिक थे, और उनकी विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों ने इंडियन क्रिकेट पर गहरा असर छोड़ा। ऐसे खिलाड़ी के बाद विकेट कीपर बनना आसान काम नहीं था, और किरमानी को पता था कि कंपैरिजन होगा, लोग कहेंगे इंजीनियर के बाद कौन, और फिर उन्होंने जवाब दिया अपने ग्लव्स से, यानी विकेट कीपिंग ग्लव्स से। सैयद किरमानी ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में टेस्ट डेब्यू किया, और सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने एक इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स के उस वक्त के वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल किया था, यानी डेब्यू के बाद ही एक सिग्नल मिल गया था। ये विकेट कीपर सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी बनाने आया है। लेकिन क्रिकेट में कोई करियर सीधा नहीं होता, किरमानी के साथ भी अप्स एंड डाउन्स आए, कभी फॉर्म गई, कभी सिलेक्शन का मसला हुआ, कभी उनकी कीपर पर सवाल उठे, और 1979 यानी 1979 वर्ल्ड कप ओडीआई क्रिकेट के वक्त वो इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बाहर कर दिया गया था, यानी वाज ड्रॉप्ड। लेकिन यहाँ किरमानी की पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू सामने आता है। उन्होंने हार को फाइनल रिजल्ट नहीं समझा, वो वापस आए, और जब वापस आए तो और मजबूत विकेटकीपर के तौर पर आए। अक्सर विकेटकीपर के बारे में एक स्टीरियोटाइप होता है, अगर कीपर अच्छी कीपिंग करता है तो कहा जाता है बैटिंग एवरेज थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, चल लेगा, और अगर बैटिंग अच्छी हो तो कहा जाता है कीपिंग एवरेज है लेकिन बैटिंग स्ट्रांग है। किरमानी ने दोनों डिपार्टमेंट्स में अपनी वैल्यू दिखाई। उनकी बैटिंग स्टाइलिश टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं थी, वो फ्लैशी बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जब टीम मुश्किल में होती किरमानी का टेम्परमेंट सामने आता। इसी वजह से उन्हें एक वक्त पर क्राइसिस मैन भी कहा गया, और ये नेम सिर्फ तारीफ के लिए नहीं था, उन्हें वाकई मुश्किल वक्त में इंडिया को बचाया। नासी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉम्बे यानी आज वानखेड़े जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उस वेन्यू में किरमानी ने 101 नॉट आउट रन्स बनाए। वो इनिंग्स तकरीबन 5 घंटों तक चली। सोचिए, विकेट कीपर, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, और फिर एक टेस्ट सेंचुरी, वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं था, ये एक मैसेज था, किरमानी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए दोस्तों। उनके पास पेशेंस है, उनके पास टेक्निक है, और प्रेशर में, दबाव में टिकने की एबिलिटी है। इसी तरह बाद में उन्होंने 2 टेस्ट सेंचुरीज स्कोर की, दोनों वानखेड़े स्टेडियम में आई। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका 102 रन्स भी एक रिमार्केबल लोअर ऑर्डर इनिंग्स थी। यानी सैयद किरमानी का फॉर्मूला सिंपल था, पहले ग्लव से टीम को वैल्यू दो, और अगर जरूरत हो तो बैट से भी टीम को बचा लो। अब एक सवाल, विकेट कीपर की ग्रेटनेस मेजर कैसे करेंगे, सिर्फ कैचेस से, सिर्फ स्टंपिंग से, सिर्फ डिसमिसल्स के नंबर से, या फिर उनकी एबिलिटी से कि वो बॉलर्स को कितना सपोर्ट करता है। किरमानी की ग्रेटनेस को समझने के लिए हमें उस क्रिकेट को समझना होगा जो वो खेल रहे थे। इंडिया का स्पिन क्वार्टेट, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये नाम सिर्फ बॉलर्स के नाम नहीं थे।

दोस्तों ये बैट्समैन के लिए नाइटमेयर थे और विकेट कीपर के लिए भी चैलेंज थे। स्पीकर सामने विकेट कीपर को अक्सर स्टंप्स के करीब आना पड़ता है और अगर बॉल टर्न करे तो कीपर के पास रिएक्शन का वक्त बहुत कम होता है। किरमानी ने इस आर्ट को मास्टर किया। बीसीसीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 160 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स किए, यानी कुल मिलाकर 198 डिसमिसल्स। उनके 38 स्टंपिंग्स उस वक्त के इंडियन रिकॉर्ड के तौर पर भी बहुत सिग्निफिकेंट थे। और एक और रिमार्केबल फैक्ट, इंग्लैंड के खिलाफ 1981-1982 टेस्ट सीरीज के दौरान इंडिया के बॉलर्स ने 1964 रन कंसीड किए ओवरऑल कुल मिलाकर, लेकिन किरमानी ने 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट में एक भी बाई कंसीड नहीं किया। यह स्टैटिस्टिक आम फैन को शायद बोरिंग लगे, लेकिन विकेट कीपिंग समझने वाले के लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि बाई का मतलब है गेंद बॉलर से निकली, बल्लेबाज ने मिस की और कीपर भी मिस कर गया। किरमानी के ग्लव्स ने गेंद को इतनी कंसिस्टेंसी से कंट्रोल किया कि 3 टेस्ट में एक भी बाई नहीं। दोस्तों बता दो कि ये ग्लैमर नहीं, ये हाईलाइट रील भी नहीं, लेकिन यही एक्सेलेंस होती है और गेम चेंजर्स अक्सर इसी इनविंसिबल एक्सेलेंस से बनते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इंडियन क्रिकेट की उस ग्लोरियस टाइम तक, 1983-1983, वो तारीख का वो साल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इंडिया इंग्लैंड पहुंचा वर्ल्ड कप खेलने, ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन फेवरेट्स इंडिया नहीं था, वेस्ट इंडीज चैंपियंस थे, दिफाई चैंपियन। और वेस्ट इंडीज सिर्फ चैंपियंस नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे डोमिनेंट फोर्स टीम थी। फाइव लॉकी टीम, विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनी, स्टेसमन हेन्स, मालकम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, ऐसी टीम जिसके सामने इंडिया को कोई सीरियस कंटेंडर नहीं समझ रहा था। खुद गिरमानी ने याद किया कि

अब ट्रॉफी सामने थी, इंडिया ने बैटिंग की, स्कोरबोर्ड पर 183। आज के T20 जमाने में 183 कुछ नहीं लगता दोस्तों, लेकिन उस वक्त 60 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनल में वेस्टइंडीज के बॉलिंग अटैक के सामने 183 डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझा जा रहा था। इंडिया को परफेक्ट होना था और विकेट कीपर को बिल्कुल फ्लॉलेस। किरमानी के सामने वेस्ट इंडीज के डेंजरस बैट्समैन थे क्विनेज, हैंस, रिचर्ड्स, लॉयड, दुजों, और फिर वो मोमेंट आया विव रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज का सुपरस्टार, इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। कपिल देव की तरफ से एक शॉट हवा में गया, कपिल ने पीछे भाग कर कैच लिया, लेकिन उस इनिंग्स में विकेट कीपिंग का एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट भी था। किरमानी ने फाउल बकास का कैच लिया और वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की फील्डिंग और विकेट कीपिंग का प्रेशर बढ़ता गया। आखिरकार वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन बनाकर और उड़ी और इंडिया बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस और किरमानी टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट कीपर। बीसीसीआई के मुताबिक 1983 वर्ल्ड कप में किरमानी को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला। यह अवार्ड एक सिल्वर ग्लव और सिल्वर बॉल से एसोसिएटेड था। सोचिए, वर्ल्ड कप जीता और टूर्नामेंट का बेस्ट विकेट कीपर भी। ये सिर्फ मेडल नहीं था, ये रिकॉग्निशन था कि इंडिया के पास दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से एक था। लेकिन किरमानी सिर्फ 1983 नहीं थे। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हम किरमानी को सिर्फ 1983 वर्ल्ड कप से डिफाइन करेंगे तो हम उनकी लेगेसी को बहुत छोटा कर देंगे। 1983 उनकी कहानी का सबसे फेमस चैप्टर है, लेकिन पूरी किताब नहीं। उन्होंने इंडिया के लिए 88 टेस्ट मैचेस खेले और 49 ओडीआई मैचेस। टेस्ट में उनके नाम 2,759 रन्स, 2 सेंचुरीज, 160 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स हैं। ओडीआईज में उन्होंने 27 कैचेस और 9 स्टंपिंग्स किए। लेकिन नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका एरा। वो एक ट्रांजिशन के दौर में इंडियन क्रिकेट का हिस्सा थे। पहले इंडिया की स्ट्रेंथ स्पिन थी, फिर कपिल देव की वजह से पेस बॉलिंग का ये नया चैप्टर शुरू हुआ और किरमानी ने दोनों एरर्स में कीपिंग की। ये कोई छोटी बात नहीं, आप स्पिन के सामने टेक्निक चेंज कर रहे हैं, फिर पेस के सामने स्टांस और पोजीशनिंग एडजस्ट कर रहे हैं, बॉल की स्पीड मुख्तलिफ, बाउंस मुख्तलिफ, रिएक्शन टाइम मुख्तलिफ, लेकिन स्टैंडर्ड सेम हाई। बीसीसीआई ने भी हाईलाइट किया कि जब इंडिया की फेमस स्पिन क्वार्टेट की जगह कपिल देव की लीडरशिप में सीम अटैक उभरने लगा, सैयद किरमानी ने अपने गेम को नए बॉलिंग अटैक के मुताबिक अडाप्ट किया। यही होता है दोस्तों गेम चेंजर, जो वक्त के साथ खुद को चेंज करे। किरमानी की एक और इनिंग्स या पार्टनरशिप अक्सर 1983 की वजह से ओवरशैड हो जाती है। 1983 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। सुनील गावस्कर, वेस्ट इंडीज, चेन्नई, गावस्कर ने 236 रन बनाए, वो भी अनबीटन यानी नॉट आउट रहे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट सेंचुरी था, 30th सेंचुरी, और उनके साथ 9th विकेट पर सैयद किरमानी, दोनों ने 143 रन की अनबीटन पार्टनरशिप बनाई। अब जरा इमेजिन कीजिए, गावस्कर ऑलरेडी ग्रेट, वेस्ट इंडीज अटैक ऑलरेडी लेजेंडरी, और दूसरी तरफ लोअर बैटर और दूसरी तरफ लोअर ऑर्डर विकेट कीपर, लेकिन किरमानी क्रीज पर खड़े हैं, बॉल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और गावस्कर को सपोर्ट दे रहे हैं। ये फिर वही फिलॉसफी है, टीम को जो चाहिए वो करो, आपको कभी स्टार बनना पड़ेगा, कभी सपोर्ट एक्ट, कभी क्राइसिस मैनेजर, कभी साइलेंट कंट्रीब्यूटर। किरमानी सब कुछ बन सकते थे। 1980 में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का प्रेशर आज से कम नहीं था। राइवलरी इंटेंस थी, हर रन इम्पोर्टेंट, हर विकेट इम्पोर्टेंट, हर विकेट कीपर हर बॉल का हिस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज में किरमानी ने 17 कैचेस और 2 स्टंपिंग्स किए। उस वक्त इंडिया के एक सीरीज में डिसमिसल्स के रिकॉर्ड को इक्वल करता था। ये नंबर्स बताते हैं कि वो कितने कंसिस्टेंट थे। लेकिन एक और चीज इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किरमानी दबाव से घबराते नहीं थे, उनका स्टाइल फ्लैम्बॉयंट नहीं था। वो ग्लव्स हवा में उठाकर शो नहीं करते थे, वो हर सक्सेसफुल डिसमिसल के बाद थिएट्रिक्स नहीं करते थे, उनका काम था गेंद को पकड़ना और वो करते थे, बाखूबी किया, दिखाया। और यहाँ पे एक चीज बताऊं कि क्राइसिस मैन का मतलब क्या होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी क्रिकेटर को गेम चेंजर कहना चाहेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए?

चाहिए। क्या वो सिर्फ 100 बनाए या 5 विकेट्स ले या 5 कैचेस या मैच विनिंग 6। मेरे ख्याल में गेम चेंजर वो होता है जो मैच की डायरेक्शन बदल दे। किरमानी ने ये काम बार बार किया, कभी ग्लव से, कभी बैट से, कभी पार्टनरशिप से, कभी कम्युनिकेशन से, कभी प्रेशर एब्जॉर्ब करके और कभी दूसरे खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस देकर। 1983 जिम्बाब्वे मैच इसी का परफेक्ट एग्जांपल है। कपिल देव की इनिंग्स दुनिया याद रखती है, लेकिन किरमानी का रोल साइलेंट, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल। इसीलिए उनकी कहानी हमें क्रिकेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। हर गेम चेंजर स्कोरबोर्ड पर सबसे ऊपर नहीं होता। कभी गेम चेंजर स्कोरबोर्ड के पीछे होता है, कभी ग्लव्स पहनने होता है, कभी 24 नॉट आउट होता है और कभी सिर्फ एक कैच लेता है, लेकिन वो कैच मैच का रुख बदल देता है। तो फिर सैयद किरमानी ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया? सबसे पहली चीज विकेट कीपिंग की क्रेडिबिलिटी। उन्होंने प्रूव किया कि विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होता है। उनकी अपनी क्राफ्ट होती है, उनका अपना सेंस होता है, उनकी अपनी फिट और टेक्निक होती है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। एक टेस्ट या एक वर्ल्ड कप मैच में अच्छा परफॉर्म करना एक बात है, लेकिन एक डिकेड तक इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट के पीछे खड़े रहना वो बिल्कुल अलग लेवल है। तीसरी चीज एडेप्टेबिलिटी। स्पिन से पेस, सब कॉन्टिनेंट से ओवरसीज, टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई क्रिकेट, किरमानी ने अपने गेम को एडजस्ट किया। चीज टेम्परमेंट, प्रेशर में उनका काम रहना। और पांचवी जो चीज है वो है टीम फर्स्ट, यानी एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए कि टीम पहले बाद में इंडिविजुअल, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। किरमानी की कंट्रीब्यूशन को इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया, उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया और 1982 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। फिर 1983 वर्ल्ड कप बेस्ट विकेट कीपर, और कई साल बाद BCCI ने उनके विजन को फिर से सैल्यूट किया। असला में उन्हें कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया। यानी एक करियर जो 1970s में शुरू हुआ उसके रिकॉग्निशन डिकेड्स बाद भी जारी रही, और यही लेगेसी की निशानी है। करियर खत्म हो जाता है लेकिन इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता। किरमानी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन से जुड़े सिलेक्शन रोल्स में आए, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे। यानी उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से उनके ग्लव्स तक लिमिटेड नहीं था। उनको दूसरे से भी समझ रहे, प्लेयर के तौर, विकेट कीपर के तौर पर, टीम मेंबर के तौर पर और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर और सेलेक्टर के तौर पर। ये एक और रीजन है कि उन्हें गेम चेंजर कहना बिल्कुल मुनासिब है। उन्होंने सिर्फ इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने उसको समझा भी। आज जब हम इंडियन विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो नेचुरली नाम आता है MS धोनी, उनके बाद ऋषभ पंत, फिर KL राहुल ने भी विकेट कीपिंग की। लेकिन इन सबसे पहले इंडिया में स्पेशलिस्ट विकेट कीपिंग के स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने वालों में सैयद किरमानी का नाम बहुत ऊपर आता है। धोनी का स्टाइल डिफरेंट था, पंत का स्टाइल डिफरेंट है, किरमानी का स्टाइल अपनी जगह यूनिक था, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है, इंडिया को विकेट कीपर पर ट्रस्ट करना। किरमानी ने ये ट्रस्ट बिल्ड किया, उन्होंने दिखाया कि विकेट कीपर टीम का पैसेंजर नहीं होता है, वो टीम के इंजन का हिस्सा होता है। बॉलर को कॉन्फिडेंस चाहिए, कीपर दो। कैप्टन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कीपर दो। बैट्समैन का एज, कीपर पर को स्टंपिंग चाहिए, कीपर करे। लोअर ऑर्डर को पार्टनरशिप चाहिए, कीपर बैटिंग करे। यानी विकेट कीपर टीम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, और किरमानी इस रोल के मास्टर थे। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, वेस्ट इंडीज बैटिंग, इंडिया के लिए हर विकेट प्राइसलेस और विकेट कीपर के ग्लव्स में हर चांस की कीमत ट्रॉफी के बराबर। किरमानी ने फाइनल में बकास का कैच पकड़ा और पूरे टूर्नामेंट में उनकी विकेट कीपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि उन्हें बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला। लेकिन मेरी नजर में किरमानी का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि उनकी ग्रेटनेस एक कैच में नहीं थी, वो हंड्रेड्स ऑफ ओवर्स में थी, हर डिलीवरी के पीछे, हर प्रैक्टिस सेशन में, हर स्पिनर के सामने, हर एज पर, हर स्टंप के करीब, हर प्रेशर सिचुएशन में। ग्रेटनेस रेपुटेशन से बनती है दोस्तों, और किरमानी ने रेपुटेशन को

0: हॉट बना दिया। क्रिकेट दुनिया में कुछ प्लेयर्स स्पॉटलाइट को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ प्लेयर्स स्पॉटलाइट को दूसरों पर शाइन करने देते हैं। किरमानी दूसरी कैटेगरी के थे। 1983 में कपिल देव का 175 सबसे बड़ा हेडलाइन बना। गावस्कर का नाम हमेशा हेडलाइंस में रहा। इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री में मोहिंदर अमरनाथ को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले, लेकिन किरमानी वो ग्लव्स के पीछे रहते थे और अपना काम करते थे। शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी आज के फैंस के लिए उतनी फेमस नहीं, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री में उनका फुटप्रिंट बहुत गहरा है। कुछ हीरो स्पॉटलाइट्स के पीछे खड़े होते हैं, कभी स्टंप्स के स्कोर कार्ड के नीचे और कभी हिस्ट्री के उन पेजेस पर जिन्हें हम अक्सर जल्द से पलट देते हैं। लेकिन जब हम इंडियन क्रिकेट की असली फाउंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो सैयद किरमानी का नाम वहां जरूर मिलता है। और शायद इसीलिए सैयद किरमानी सिर्फ एक फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर नहीं, वो इंडियन क्रिकेट के गेम चेंजर हैं। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: गेम चेंजर सीजन 2।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, DC.

का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी, जहां हम बात करते हैं आपके पैसों की। आई मीन, पैसों को किस तरह से संभाला और मैनेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की और मनी से भी। वेल, आज के सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोटेक्शन। आज की ये डिजिटल दुनिया में हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल एप्स यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैसे ट्रांसफर भी सिर्फ सेकंड्स में हो जाते हैं। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई है, वहां ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स ने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं लोगों को स्कैम करने के। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ दूसरों के साथ होता है, लेकिन हकीकत ये है कि स्कैमर्स हर रोज नई तरीकों से आम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। कभी फेक फोन कॉल्स, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस, कभी ईमेल, कभी सोशल मीडिया लिंक के जरिए लोगों के अकाउंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन सबसे कॉमन फ्रॉड फिशिंग है। इसमें आपको एक ईमेल या मैसेज मिलता है जो बिल्कुल किसी बैंक, कुरियर कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लगता है। मैसेज में लिखा होता है, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। जैसे ही कोई शख्स उस लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स एंटर करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन स्कैमर्स के पास चली जाती है। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ईमेल या मैसेज के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या फिर पिन कोड नहीं मांगता। एक और कॉमन फ्रॉड है ओटीपी स्कैम। आपके पास फोन आता है और कॉलर खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है या आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, फिर आप और आपसे ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। दोस्तों, ओटीपी आपके अकाउंट की चाबी होती है। अगर आपने ओटीपी किसी को बता दिया, तो आप अपने पैसे खुद जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ

नहीं करना। चलिए वापस से रिपीट करते हैं, OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना फोन पर, ना मैसेज पर, ना सोशल मीडिया पर और ना किसी लिंक पर। सोशल मीडिया स्कैम्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। कई दफा फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एडवर्टाइज की जाती हैं। आपको कहा जाता है कि सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ दिनों में डबल प्रॉफिट हासिल कीजिए। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो हो सकता है कि वो स्कैम हो, और हो सकता है क्या 100% स्कैम ही हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्विक मनी का कॉन्सेप्ट रिस्क के साथ आता है, और शायद बहुत ज्यादा रिस्क के साथ। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं, अवेयरनेस है। जब हम अलर्ट रहते हैं, वेरीफाई करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, तब हम अपने पैसों को महफूज रख सकते हैं। जाते जाते यही कहूंगी कि याद रखिए, पैसे कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें आज के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसे हमेशा सोचिए, वेरीफाई कीजिए और फिर क्लिक कीजिए। स्मार्ट मनी का सिंपल फॉर्मूला है, स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, स्टे स्मार्ट। ये तो आज का हमारा सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट में एक और नए फाइनेंशियल टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी ना और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो 103 FM 107।

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 Bay and welcome to another Tech Update. Kaash main aise announce kar pata aise kuch, but anyway, you get the point. Jab bhi main aunga to kuch na kuch aapko aise bata ke jaunga jo aap ya to sochne mein majboor ho jayenge ya phir abhi type karke dekh lenge ye kya keh raha hai. To aaj bhi main aapko kuch websites bataunga, kuch AI ki websites hongi, kuch normal hongi, magar ye aapke kaam zarur aayenge aur aapke kaam ko cheez aa rahi hai to knowledge to bhai sahab baantne se badhti hai. Aap bhejiye mare dhure. ये जो सोशल मीडिया है हमने किस लिए बनाया है, आप आइए बात कीजिए FM 107 Qatar. अब जब ये बढ़ते हैं पहली वेबसाइट की तरफ. ये जो वेबसाइट है ये बहुतों के काम आने वाली है. इसका नाम है scholarships.com. scholarships S-C-H-O scholar हाँ C-O-L-O नहीं L-A-R S-H-I-P-S scholarships.com. इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम नजर आएंगे. आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. तो दुनिया दाग इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स गलत के लिए आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन सबके नाम आपको नजर आ जाएंगे. तो आप लिटरली डिग्री वाइज जगह वाइज हर तरीके से ढूंढ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं. लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो तलाश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है मेरे को पता लग जाए कि भाई ये स्कॉलरशिप किधर चल रही है. तो ये जो फायदा है आप इससे उठ सकते हैं. और आपके घर में अगर कोई टीनेजर है और आप सोच रहे हैं भाई स्कॉलरशिप की तरह देखा जाए, कहीं विदेश में पढ़ाई कराई जाए, तो इसका भी एक तरीका है. ये वेबसाइट बहुतों के काम आएगी. स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन. scholarships.com. इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस की. सो यू कैन जस्ट गिव देम अ कॉल एंड आस्क मी सर आपका ये वेबसाइट भी देखा है, ये सही है, तो आपको बता देंगे वो, बिकॉज ये बहुत ही लेजिट वेबसाइट है. ठीक है, आगे बढ़े. ऑलराइट, अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है swishy.ai. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, swishy.ai. swishy.ai. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली नाम क्या है, AI लगा हुआ है, तो इसमें AI मोशन डिजाइन्स आपको मिलेंगे. इसमें 100 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं या यू जस्ट वांट टू यूज इट, एवी खामखा यूज करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. तो आप इन तमाम चीजों को ऐसे का ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अगर अपने जुगाड़ से अपने दिमाग से कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये AI बहुत बढ़िया काम करता है. एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोशन डिजाइन है ये सस्ते वाले डिजाइन नहीं लगते, लिटरली लगते हैं कि भाई इसमें मेहनत की गई है. एंड ये आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है. जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे यूज करें, आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू प्रेजेंट विद, या कोई भी प्रेजेंटेशन हो फिजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं देखो जी स्क्रीन की तरफ, या फिर आप किसी को भेज रहे हैं, सब तरीके के लिए ये काम करेगा, बहुत क्रिएटिव भी लगता है. ओके, तो ये जरूर देखिएगा swishy.ai. अब जरा आगे बढ़ जाते हैं. अगली वेबसाइट भाई सब टाइम पास के लिए, बिल्कुल टाइम पास के लिए.

0: तो आपका टाइम पास हो जाएगा। देखो ये मेरी एक सेकंड में, तो अगली वेबसाइट का नाम है eve.io, eve.io, बहुत ही छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये वेबसाइट उनके लिए जो कि दोस्त आपस में कुछ गेम खेलना चाहते, तो आप इसमें 8-player शूटर गेम खेल सकते हैं, बहुत मजेदार है भाई। इसके लिए कोई डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं चाहिए, मजे से खेलो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छी भी लगेगी वेबसाइट, एंड काम की भी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मस्ती मजाक करने जाते हैं, ये भी तो बड़ा जरूरी है ना। चलिए जरा खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से खबर बता दूं, एक जो खबर आई है इनटेक न्यूज, वो है मार्क जकरबर्ग साहब की। मेटा के सीईओ हैं आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी हैं। इन्होंने मेटावर्स में बहुत सारी चीजें चेंज करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन रिसेंटली एक वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही शोकेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम अपने एआई एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरा चश्मा देख रहे हो भाई साहब, $1,299 मजाक है क्या, इतना महंगा मेटा वीआर ग्लासेस पहन के ये घूम रहे थे। और साथ में इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसका नाम था म्यूज चार्म, जो काम करती है कंपनी की रिसेंटली जितने भी नए नए एआई पर्सनल एजेंट है उन्हें लॉन्च करने के लिए। ये आदमी कुछ आगे का कर रहा है, बता रहा हूँ, खिचड़ी पक रही है, अगले 2-3 सालों में वो खिचड़ी जो है दिख जाएगी या तो जल जाएगी। ये थी टेक अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ एंड से देसी।
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website radio.qa or download the app QMC now.
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत

0: भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताब अल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, कभी कभार हम सोचते हैं कि जब ज्यादा वक्त मिलेगा तब इबादत बढ़ाऊंगा, जब मसरूफियात कम होंगी तब नवाफिल शुरू करूंगा, जब जिंदगी कुछ पुरसकून होगी तब अपने मामलात दुरुस्त करूंगा। और यूं हम एक बड़े मौके के इंतजार में छोटी छोटी नेकियों के बहुत से मौके खो देते हैं। हालांकि अल्लाह के रास्ते में हमेशा बड़े कदम ही जरूरी नहीं होते, कभी चंद छोटे इकदामात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महबूब सहाबी हमें तीन ऐसी ही इबादतों के बारे में बताते हैं, तीन आसान मामूल, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, औसानी लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिथलाथिन, बिस्सियामि थलाथति अय्यामिन मिन कुल्लि शहर व रकअतै दुहा व अन उतिरा क़ब्ल अन अरक़ुद। मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसीयत फरमाई, हर महीने तीन दिन रोज़े रखना, चाश्त की दो रकतें पढ़ना और सोने से पहले वितर अदा करना। इन तीन इबादतों की तरतीब देखिए, हर महीने तीन रोज़े, दिन में दो रकात चाश्त और रात को सोने से पहले वितर। तो पहली वसीयत है हर महीने तीन दिन रोज़ा रखना। गौर कीजिए, यहाँ पूरा महीना नहीं, हर हफ्ते भी नहीं, सिर्फ तीन दिन। यानी सुन्नत हमें एक ऐसा मामूल दे रही है जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल जगह दे सकता है। रोज़ा इंसान के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा करता है जो उसे याद दिलाती है कि मैं अपनी हर ख्वाहिश का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं अपने नफ्स को रोक सकता हूँ, मैं अल्लाह के लिए किसी जायज़ चीज़ को भी कुछ वक्त के लिए छोड़ सकता हूँ, तो फिर हराम चीज़ को छोड़ने की मश्क क्यों ना करूँ। फिर दूसरी वसीयत है चाश्त की दो रकतें। दिन शुरू हो गया, लोग अपने कामों में निकल गए, दफ्तर, कारोबार, तालीम, घर की जिम्मेदारियाँ, और इसी मसरूफ दिन के अंदर आप चंद मिनट निकालते हैं, वजू करते हैं, क़िबले की तरफ खड़े होते हैं और सिर्फ दो रकात। ज़ाहिर चक, मगर इन चंद मिनटों में आप अपने दिन को एक पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरी मसरूफियात बहुत हो सकती हैं लेकिन मेरा रब उन सबसे बढ़कर है। सामने कराम, हम कभी इबादत को फारिग वक्त के साथ जोड़ देते हैं, अगर वक्त मिला तो पढ़ लेंगे, अगर काम कम हुआ तो कुरान पढ़ेंगे, अगर मसरूफियत ना हुई तो जिक्र करेंगे। अब मसला ये है कि जिंदगी कब मुकम्मल तौर पर फारिग होती है। एक काम खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, एक जिम्मेदारी पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी होती है, इसलिए इबादत के लिए हमेशा वक्त नहीं मिलता, कभी वक्त निकालना पड़ता है। चाश्त की दो रकतें हमें यही बताती हैं कि दिन की मसरूफियात की भीड़ में गोया दिन का आखिरी अहम अमल भी अल्लाह के साथ ताल्लुक का अमल हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सोने से पहले वितर की वसीयत की गई और ये वसीयत हमें इबादत में अपनी कैफियत और मामूल को पहचानने का सबक भी देती है। जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार होने का मामूल रखता हो, उसके लिए वितर को आखिरी शब तक मौखर करने की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन जिसे अंदेशा हो कि नहीं उठ सकेगा वो सोने से पहले वितर अदा कर ले। यानी मकसद ये नहीं कि बेहतरीन वक्त के इंतजार में अमल ही छूट जाए। अब एक बार फिर तीनों वसीयतों को एक साथ देखिए, हर महीने तीन रोज़े या आपके महीने में इबादत का निशान है, चाश्त की दो रकअतें या आपके दिन में इबादत का निशान, सोने से पहले वितर या कि रात में इबादत की अलामत है। अल्लाह ताला हमें फराइज की हिफाजत के साथ साथ नवाफिल की मोहब्बत अता फरमाए, नेकी पर साबित कदम रखे, हमारे थोड़े अमल में इखलास और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: Earth's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी। अजीत वाडेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैटर थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इंप्रेसिव था, 237 मैचेस में 15,380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी। 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती। वो कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी में हासिल हुई। सब पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया 1970-71 में। वेस्ट इंडीज के पास गैरी सोबर्स जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे, लेकिन वाडेकर की टीम ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर हिस्ट्री बना दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीती और इसी सीरीज में एक नौजवान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का शानदार आगाज किया और 774 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है और इंग्लैंड उस वक्त क्रिकेट की दुनिया की मजबूत टीमों में से एक थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैचेस ड्रॉ हुए। फिर आया द ओवल का फैसला कौन टेस्ट मैच। यहाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए जबकि इंडिया ने 284 रन का जवाब दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई, जहां लेजेंडरी स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट्स हासिल किए। इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। यह इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी और इसके पीछे वाडेकर की कप्तानी, कैप्टनसी मटेरियल तो थी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वॉज अ मेजर रीजन। वाडेकर ने इंग्लैंड सीरीज में खुद भी बैट से कंट्रीब्यूशन दिया और 204 रन के साथ इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर रहे। वाडेकर के अचीवमेंट सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं थे दोस्तों, वो उस इंडियन टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1967 और 1968 में न्यूजीलैंड को 3-1 से सीरीज में शिकस्त दी। ये इंडिया की पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी। वाडेकर ने इस सीरीज में अपनी पहली और करियर की वाहिद टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर डालूं तो पता चलता है कि वहां पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। मुंबई, जिसे उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, उनकी कप्तानी में 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972 और 1972-1973 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेला जाता है, और 1971 की बैक टू बैक ओवरसीज सीरीज विक्ट्रीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर वाडेकर को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक खास मकाम दिया। बाद में वो इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी। 2011 में उन्हें BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वाडेकर का नाम सिर्फ एक बैट्समैन या कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने इंडिया को ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में एक नई पहचान दी। 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में सीरीज जीतकर इंडियन क्रिकेट को एक बुलंदी तक पहुंचाने में अजीत वाडेकर का एक अहम रोल रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में पता चलता है। और जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको इसी वक्त पे फेस्टिवल स्कैम के बारे में बताऊंगा, और वो वक्त आ गया, आपने इंतजार सही कर लिया है। वेल, ये स्कैम क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां फ्रॉड करने वाले लोग आवाम के लाइव एंटरटेनमेंट और मजा करने के शौक का गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैमर्स आने वाले म्यूजिक, फूड या कल्चरल फेस्टिवल का एक झूठा और फेक प्लान तैयार करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ये बिल्कुल असली और प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर एड कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें फेक आर्टिस्ट का लाइनअप दिखाते हैं, झूठे वेन्यू दिखाते हैं, पार्टनरशिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने स्पॉन्सर इनके पास हैं। जो फैंस फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं उन्हें सस्ते अर्ली बर्ड

पासेस, ग्लैम्पिंग यानी कि लग्जरी कैंपिंग वगैरह, रिजर्वेशंस और एक्सक्लूसिव वीआईपी एक्सपीरियंस का लालच दिया जाता है, टिकट्स बेची जाती है और ये टिकट्स आप कई बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर कोई ऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं। इस फ्रॉड की असली हकीकत तब सामने आती है जब लोग टिकट्स खरीद कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खाली मैदान या पब्लिक पार्क मिलता है जहां कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइजर सारी टिकट का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा अजीब और यूनिक तरीका है स्कैम करने का जिसमें आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐड चला और ये ऐड बड़े ही ब्लडली चल रहा है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने टिकट भी खरीद ली, आपने दिखाया कि बाकायदा आपके पास डिजिटल टिकट है, लेकिन जब आप उस लोकेशन पे पहुंचे, अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से आपके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, अब वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं क्योंकि जब आप उसे कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे तो कोई आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इन स्कैम से बचने का तरीका भी है। क्या तरीका है इन स्कैम से बचने का? सबसे पहला तरीका है ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई एड रन किया भी गया है सोशल मीडिया पे तो आप प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। अगर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको किसी नंबर पे ले जा रहा है, आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है, वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो जब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक आए तो चेक करना। दोस्तों ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करने के बाद दूसरा स्टेप जो होना चाहिए आपका वो होता है वेन्यू को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई एड आया है तो हो सकता है उसमें वेन्यू भी आए आमतौर पे, लेकिन जिस होटल का नाम उसमें पड़ा है, उस फ्लायर पे पड़ा है, पार्क या स्टेडियम का नाम पड़ा है, फेस्टिवल होने का दावा किया जा रहा है, तो उस वेन्यू की मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल करें। मिसाल के तौर पे एबीसी कोई ग्राउंड है जहां पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उनके मैनेजमेंट को कॉल करके पूछें क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे फला इवेंट के या फला फेस्टिवल के इवेंट के लिए बहुत ज्यादा वाइब सेट है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस इवेंट के बारे में। तो आप जब पता करेंगे तो आपको डिटेल पता भी चल जाएगी कि वाकई में कोई इवेंट बुक्ड है या नहीं। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट का इस्तेमाल करें, हमेशा ट्रस्टेड टिकटिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदें और हमेशा क्रेडिट कार्ड से पे करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको फ्रॉड की सूरत में चार्ज बैक का ऑप्शन मिलता है। अनऑफिशियल लिंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश को सेंड करने से बचें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप फला लोकेशन पे पहुंच कर हमारा उसको आप पेमेंट कर दें, वो आपको एक फिजिकल टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो फिजिकल टिकट भी आजकल बनाने लग गए हैं, आप सही में किसी के पास जाएंगे, वो आपको फिजिकल टिकट देगा, आप उसे कैश देंगे, आपको वो नंबर भी देगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट तो है ही नहीं, आप फिजिकल भी मिलकर आए, आपके पास फिजिकल कार्ड भी है, इवेंट का टिकट भी है, लेकिन जब आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तब तक आपके साथ हो चुका होता है फ्रॉड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस फ्रॉड के बारे में समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं. रिव्यू आपको मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और एक बार फिर से आ गया हूँ ये शो लेकर जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक
0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: जहां पर आपको पता चलता है कि भाई कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं देखनी. और इस बार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बात कर लेते हैं इस बार एक जबरदस्त मूवी के बारे में जो है दायरा.
2: इधर क्यों लाए सर?
3: बताता हूँ क्यों लाए. इधर
4: ये तीसरी बार है ना आप और DCP रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है.
3: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की.
4: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
3: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
4: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
1: दायरा 2026 की ये मूवी जिसमें करीना है बहुत दिनों बाद वापस लौट रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यार एक बार फिर से उसी दौर में अपन आ जाएंगे जहां पर करीना ने लोगों को अपना फैन बनाना शुरू किया था. क्योंकि ये फिल्म इतनी अच्छी तो है कि आप एक बार देखने जरूर जाएंगे और बाकी एक्टर्स के लिए जाएं ना जाएं ये आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इस मूवी में जिस तरह से काम करके दिखाया है, ऑल्दो उनका काम नहीं है एक्टर के मुताबिक अगर हम देखें तो, लेकिन जो काम मेघना गुलजार ने एज अ डायरेक्टर इस मूवी में किया वो गजब का है भाई साहब. तो सबसे पहले अब हम दायरा के मूड के बारे में बात करेंगे, हाइप के बारे में बात करेंगे, कितने स्टार मिले, इन सब के बारे में बात करने के बाद फिर फिल्मिंग लोकेशन एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हम बात करेंगे वर्डिक्ट तक के इस मूवी को देखना. पहले ही मैं बता दूं इस मूवी को जरूर है, इसमें हमारी और आपकी फेवरेट करीना है. करीना के लिए आपको इसको देखना है.
5: प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, FIR दर्ज कीजिए, सर्च शुरू कीजिए.
6: एक्यूज 2 साल से इसी रूट पर था.
4: 2 साल 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं.
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर.
1: दोस्तों दायरा मूवी का मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और मोरली अनसेटलिंग है. इसका मतलब ये है कि फिल्म को देखते वक्त ऑडियंस एक बिल्कुल अलग थोड़ी गंभीर और गहरी दुनिया में चली जाती है. हाँ, फिल्म का टोन बहुत ही ग्रिटी और रियलिस्टिक रखा गया है जो देखने वालों को अंदर तक हिला देगा. ये कोई आम मसाला वाली फिल्म नहीं है बाबू, बल्कि ये एक स्लो हल्के हल्के धीरे धीरे चलने वाली जला देने वाली आपके आपके अंदर कोफ्त को पैदा करने वाली फिल्म है भाई साहब. तो आपको यहां से पता चल गया हो कि कैसे आपको ये मूवी पसंद आने वाली है. अगर आपने मदारी मूवी देखी है तो भी आपको पसंद आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मदारी पिछली इसकी भी स्क्रिप्ट वही है. नहीं, सब बिल्कुल नहीं है. करीना है भाई इसमें, ऐसे थोड़ी हो जाएगा. तो कोई मसाला मूवी नहीं है. स्टोरी जैसे जैसे खुलती है ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन और ग्रीफ

0: दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम के अंदर की खराबियां आम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, जिसकी वजह से हर सीन में एक अजीब सा दुख दर्द जो है वो महसूस होता है। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसी अनकंफर्टेबल स्प्रेस क्रिएट की है जहां हर एक सीन के पीछे एक साइलेंट टेंशन सिमर करता रहता है। और ये तो डायरेक्टर की खूबी है भी। स्क्रीन पर जो चल रहा होता है उसे देखकर व्यूअर्स तंग रह जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो हमारी जिंदगी से रिलेट कर रहा है। और अगर आप जब इस मूवी को देखेंगे इमोशनली आप ड्रेन्ड महसूस करेंगे। इसका हर एक फ्रेम इतना रियल लगता है कि आप चाहकर भी अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप हाफ मूवी यानी कि इंटरवल तक देखें और भाग जाएं।
1: फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। फिर से
2: ह्यूमन राइट्स वालों के PIL पे SIT सेटअप हुई।
1: कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पहली बार थोड़ी SIT सेटअप हुई है।
3: क्या हुआ उस रात को बता सकते हैं?
4: उसने करण सर के होल्स्टर से वेपन छीन लिया, फिर उनकी आंखों में धूल झोंकी।
3: छीनो उनकी आंखों में धूल झोंकी?
5: इधर धूल कहां है साहब जी, ये तो कड़क मिट्टी है।
0: मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और डार्क सिनेमाटोग्राफी सब जबरदस्त है। उसके अलावा ये जो ऑडियंस के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ जाती है वो उसके लिए सिर्फ आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी के हाइप के बारे में बात करें तो इस फिल्म को लेकर मार्केट में और बॉलीवुड फैंस के बीच मैसिव एंटिसिपेशन और बहुत ही जबरदस्त हाइप बनी हुई थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मूवी को डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, जो पहले ही तलवार राजी जैसी फिल्म जो है वो बना चुकी है और बेहतरीन फिल्म बनाई है, ये तो आपको पता है। लोगों को पूरा भरोसा था कि ये फिल्म भी एक हार्ड हिटिंग पैरेलल सिनेमा मास्टरपीस होगा क्योंकि मेघना है। इसके अलावा फिल्म की स्टार कास्ट ने हाइप को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ऑडियंस बॉलीवुड सुपरस्टार करीना कपूर खान और साउथ इंडियन सिनेमा के पावर हाउस एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की इस एक्सप्लोसिव और फ्रेश पेयरिंग को पहली बार एक साथ बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार थे। दोनों ही अपने सॉलिड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए लोगों का जो एक्साइटमेंट था वो डबल हो रहा था। मूवी के जो प्रोएक्टिव ट्रेलर्स रिलीज किए गए थे उन्होंने ऑडियंस को एक फ्लैश और डिबेट्स इन स्टोरीज का प्रॉमिस कर दिया है, तो ये मूवी जबरदस्त होने वाली है। अब जल्दी से स्टार बारे में बात कर लेते हैं बाबू। अब स्टार रेटिंग बारे में बात करें तो इस फिल्म को 5 में से मेरा दिल तो 4.5 का है, लेकिन अंदर क्रिटिक्स भी तो छुपाए ना कहीं अपने दिल में जो बुराइयां है ना वो निकली जाती हैं। और इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छाइयों को तो नहीं पता लेकिन बुराइयों को बहुत ही अच्छी तरह से करीब से पकड़ लेता है, तो इसलिए जहां जहां पकड़ में आई है उसके हिसाब से इस मूवी को मैं 5 में से 3.5 देने वाला हूं। लेकिन ये भी एक सॉलिड स्टार रेटिंग है भाई, जो ये दिखाता है कि फिल्म वाकई देखने लायक है। दायरा को किसी टेक्निकल ब्रिलियंस, डायरेक्टरल रिस्ट्रेन और एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया।
1: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
6: कहाँ ओवर? कोर्ट कचहरी के चक्कर, हमारा पूरा वक्त अभी तो शुरुआत है।
1: उनमें से एक अक्यूज तो पतली गली से निकल गया।
7: वो पतली गली नहीं, जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ है।
1: एक जुवेनाइल जो रेप और मर्डर कर सकता है उसकी प्रोटेक्शन।
0: दायरा मूवी को इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। दोस्तों करीना कपूर खान और पृथ्वीराज ने अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर आग लगा दी। और दोनों की केमिस्ट्री सीरियस रोल में उनकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। बात करें मेघना गुलजार की, जो कि इस मूवी की डायरेक्टर हो, उनको पता है कि किसको लेकर आना है। हालांकि कास्टिंग डायरेक्टर अलग होता है और फिर उन दोनों से काम निकलवाना जबरदस्त है। हालांकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, इसी वजह से मैंने एक पॉइंट काट लिया भाई। सेकंड हाफ में मूवी का मैसेजिंग स्लाइटली जो है वो रिपीटेटिव लगने लगता है कि बार बार एक ही बात क्यों बता रहा है, यानी वही बात बार बार घुमाकर कही जाती है। इसके साथ ही फिल्म का जो पेस है वो भी स्लो हो जाता है, जिससे स्टोरी थोड़ी खिंचती हुई सी महसूस होती है। इन थोड़ी खामियों के बावजूद ये मूवी भाई गदर है। नहीं नहीं, मूवी का नाम गदर नहीं है, ये मूवी गदर है। मूवी का नाम तो दायरा है। अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन क्या है, डायरेक्टर का विजन क्या है इस मूवी के लिए, है ना, इन सब पर भी तो नजर डालना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस मूवी के फन फैक्ट के बारे में। फिल्म के प्रोडक्शन के पीछे कई सारे इंटरेस्टिंग और अनहर्ड फैक्ट्स हैं जो इसको खास बनाते हैं। सबसे पहला अगर कास्टिंग की फैक्ट के बारे में बात करें तो वो है मेल लीड रोल के लिए पृथ्वीराज मेकर्स की पहली चॉइस थे ही नहीं भाई, इतना बड़ा एक्टर नहीं था ओरिजिनली। फिल्म

मेकर कंसिडर कर रहे थे आयुष्मान खुराना को, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर भी काफी डिस्कशन हुआ। काफी सोच विचार के बाद फिर ये हुआ कि यार पृथ्वीराज को इस रोल के लिए फाइनलाइज किया जाए। फिर बाद में बिल्कुल परफेक्ट चॉइस साबित भी हुई, क्योंकि उनका जो काम है इस मूवी में गजब का है। और एक और बड़ा फैक्ट है, डायरेक्टर मेघना गुलजार इनिशियली क्राइम थ्रिलर को सॉन्गलेस यानी कि बगैर गाने के बनाए थे। उनका मानना था कि बिना गानों के फिल्म का सीरियस और इंटेंस ज्वाइंट किया, लेकिन बाद में इसने ऑडियंस के लिए फिल्म में एक चेंज किया। उन्होंने मूवी के एंड में एक सिंगल ऐसा सिंगल प्रमोशनल ट्रैक ऐड कर दिया जिसका टाइटल है सच का दायरा, वो रखा गया टाइटल। इस इमोशनल सॉन्ग को इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर भी प्राक ने गाया, और उनकी गायकी तो आपको पता ही है कैसे वो कितना दर्द भर देते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन। डायरेक्टर मेघना गुलजार का इस फिल्म को लेकर विजन बिल्कुल साफ, अलग और काफी ज्यादा गहरा था। उन्होंने इस मूवी को एक स्टैंडर्ड एक्शन फिल्म की तरह ट्रीट नहीं किया। मेघना गुलजार ने इस मूवी को एक यू नो मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर एक गहरा सवाल खड़ा करने वाला टॉपिक जो है वो बना डाला है। तो कई दिनों तक लोग बात करने वाले हैं भाई साहब इसके बारे में। उनका फोकस इस बात पर था कि कैसे आज का लोग हर चीज का इंस्टेंट और ब्रूटल यानी कि तुरंत बेरहमी से बदला लेना वो कितना चाहते हैं। और ये बात कितनी सच है कि अगर हमें बुरा लगा है तो मैं बदला लूंगा और बहुत बुरी तरह बदला लूंगा, तो ये मूवी में दिखाया गया। और सिस्टम से कैसे लड़ते हैं, सिस्टम कैसे परेशान करता है लोगों को, वो भी दिखाया गया। तो ये जो गंभीर कहानी है ना, ऐसा डीप कहानी है, वो सही तरीके से पेश की गई है। उन्होंने यानी कि गुलजार ने, मेघना गुलजार ने फिल्म में किसी भी तरह का कमर्शियल मसाला या लाउड मेलोड्रामा जो है वो अवॉइड किया, वो नहीं डाला। उनका पूरा ध्यान एक रियल बैलेंस्ड और रियलिस्टिक कहानी दिखाने पर था। अब बात कर लेते हैं मूवी के फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। फिल्म की रियल फील को स्क्रीन पर लाने के लिए ब्लीक रियलिस्टिक और हाई एटमॉस्फेरिक लोकेशन जो पूरी स्टोरी के डार्क और सीरियस टोन को सपोर्ट किया जाए उसका, उन जगहों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आमतौर पे इस मूवी को यानी कि दायरा मूवी को खालापुर, विरार, भिवंडी, मोस्टली महाराष्ट्र में जो है शूट किया गया है, लेकिन इन सब में डिजर्टेड एरियाज भी हैं। ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि लोगों के लिए वल्नरेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब मूवी के जरा हम बात कर लेते हैं एक्टर के बारे में कि एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में कैसी रही है। पृथ्वीराज इस फिल्म में एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं दोस्तों। उन्होंने अपने कैरेक्टर के गुस्से को एक पोलाइट, काम और इंटेंसली डिसिप्लिन बिहेवियर के पीछे बहुत ही बेहतरीन तरीके से छुपाया है। उनका कैरेक्टर ऊपर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही एक्सप्लोसिव और गुस्से से भरा है। तो ये मूवी में अगर फील करा दे रहा है एक एक्टर तो वो कामयाब हो गया। दूसरी तरफ करीना कपूर खान है जिन्होंने अपनी ग्लैमरस और सिग्नेचर यानी कि बेबू का जो पर्सोना है ना वो पूरी तरह से छोड़ दिया है, और इस फिल्म में ग्राउंडेड, रिजिडली फोकस्ड और फियर्सली ऑफिसर जो है वो उनका रोल प्ले किया और दिखी भी वैसे ही है। यूनिफॉर्म में सबसे रिस्पेक्ट कमांड करती हैं। दोनों ही एक्टर्स ने अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से हटकर बहुत ही रॉ और पार पैग्ड एक्टिंग की है। और किसी भी मूवी का दिल और दिमाग या कान अगर कहें तो वो है सिनेमाटोग्राफी और साउंड। सौरभ गोस्वाम की गजब की सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म में साफ चमकती है। लाइटिंग पर, शार्प नेचुरल शेडोज पर, क्लॉस्ट्रोफोबिक कैमरा एंगल्स का बहुत शान दिया है। ये विजुअल डिजाइन कहानी के मोरल कंफ्यूजन और टेंशन को परफेक्टली स्क्रीन पर लाता है। इसके साथ ही कीर्तन सुधा जो मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। टेंस डायलॉग्स के बीच में जो हैवी साइलेंस है ना उसका इस्तेमाल जरूरी है इस तरह से किया जाए कि डायलॉग का इम्पैक्ट ऑडियंस तक पहुंचे और फिल्म के डरावने और अनकंफर्टेबल सच्चाई या माहौल जो है उनको इम्पैक्टफुली ऑडियंस तक पहुंचाए। ये काम केतन ने और सौरभ गोस्वामी ने लाजवाब तरीके से किया। अब बात कर लेते हैं धीरे से कि इस मूवी का प्लॉट क्या है। दोस्तों अगर हम इस मूवी के एक छोटे से स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक हॉरिफिक सिचुएशन के बाद, एक हॉरिफिक कांड के बाद, एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इस मूवी में बिना किसी देरी के सस्पेक्ट के खिलाफ इमीडिएट और लीथल एक्शन ले लेता है। इस बड़े हादसे के बाद डिपार्टमेंट के अंदर ही एक इंटेंस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसे एक रिजिड और बहुत जिद्दी विजिलेंस ऑफिसर लीड करती है। कहानी में एक जबरदस्त ग्रिपिंग क्लैश तब देखने को मिलता है जब दोनों साइड्स आमने सामने आती हैं। दोस्तों इन सब के बीच क्रिटिक्स का कहना यह है कि मूवी तो बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए। प्रोमिनेंट क्रिटिक्स ने यूनिवर्सली इस फिल्म की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और शार्प फर्स्ट हाफ की काफी तारीफ करी है, लेकिन दूसरा जो हाफ है वो थोड़ा स्लो है।

0: जबरदस्ती रिपीटेटिव उन्होंने कहा है लगता है कहीं कहीं, लेकिन ये एक ब्रेव और गजब की राइटिंग, गजब की एक्टिंग, ब्रेव इनिशिएटिव या कहें डायरेक्टर की जो सोच है इस मूवी को बनाने के लिए, उस उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है, तारीफ की गई है उस बात की। उसके अलावा इस मूवी को वर्ड अगर दिया जाए कि मूवी देखनी है या नहीं, तो फाइनल वर्ड यह है दोस्तों कि दायरा एक ग्रिपिंग, हाईली रेलेवेंट और ब्यूटीफुली खूबसूरती से लिखी गई है। ड्रामा इसमें बहुत अच्छा है। फिल्म लीगल जस्टिस और लॉलेस के बारे में बहुत सही तरीके से बताता है। पृथ्वीराज और करीना कपूर की करियर की ये जबरदस्त परफॉर्मेंस है ये फिल्म, और इस गजब की मूवी का लुत्फ उठाइए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए। मूड से लेकर वर्डिक्ट तक सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी शो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा, Qatar's most heard radio station, FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बामरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। कुरान मजीद की हर सूरत अपने अंदर एक मुनफरद पैगाम, एक खास अंदाज और एक गहरी दावत रखती है। आज हम जिस मुबारक सूरत का आगाज कर रहे हैं वो है सूरतुल इंसान। ये सूरत इंसान को उसकी इब्तिदा भी याद दिलाती है, उसके अंजाम से भी आगाह करती है, उसकी जिम्मेदारी भी समझाती है और उसे ये भी बताती है कि अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा है। तो सूरत का मरकजी मौजू खुद इंसान है, वो इंसान जो एक वक्त ऐसा था कि उसका कोई वजूद ही न था, कोई उसे जानने वाला न था, कोई उसका नाम लेने वाला न था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसे अदम से वजूद अता फरमाया, उसे अकल दी, शूर दिया, कुव्वत इरादा अता की और फिर उसे ज़िंदगी के रास्ते पर आजमाने के लिए दुनिया में भेज दिया। इसीलिए सूरत में हमें दो मुख्तलिफ इंसान नज़र आते हैं, एक वो जो अपने रब को पहचान लेता है, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है, हिदायत को कबूल करता है और कामयाब हो जाता है, और दूसरा वो जो अल्लाह की नेमतों को भुला देता है, नाशुक्री इख्तियार करता है, हक से मुंह मोड़ लेता है और खसारे में पड़ जाता है। गौर कीजिए सामने कराम, दोनों की पैदाइश एक ही रब ने की है, दोनों की असल एक ही है, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, दोनों को अकल भी दी गई, इख्तियार भी दिया गया और रास्ता भी दिखाया गया। फिर एक शुक्रगुजार क्यों बना और दूसरा नाशुक्रा क्यों, यही सवाल इस पूरी सूरत के अंदर नहायत खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने आता है। सामने किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद उसे बेसहारा नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ कि इंसान को दुनिया में भेज दिया गया और फिर कहा गया कि जो चाहे करते रहो, नहीं, अल्लाह ताला ने उसके सामने खैर शर दो रास्ते वाज़ह कर दिए, हक को भी वाज़ह किया, बातिल को भी, हिदायत का रास्ता भी बताया और गुमराही के नतायज से भी समझा दिए, फिर इंसान को इख्तियार दिया कि अब तुम खुद फैसला करो। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान जो भी इंतखाब करता है वो अल्लाह ताला के इल्म और उसकी मशीयत से बाहर नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार ज़रूर दिया है, मगर उसका इख्तियार भी अल्लाह की कुदरत के दायरे के अंदर है।

0: इसका जवाब यही है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह के कलाम को समझना सबसे बड़ी सआदत है। तफसीर का इल्म इसीलिए उलूम इस्लामिया में सबसे बुलंद मकाम रखता है। कदीम उलमा पहले अरबी जबान, सरफ़ नहू, बलागत, फ़िक्र, उसूल फ़िक्र, हदीस और दीगर उलूम में महारत हासिल करते थे, फिर तफसीर पढ़ते थे, क्योंकि कुरान के हर लफ्ज़ को सही तनाजुर में समझने के लिए इन तमाम उलूम की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी एक लफ्ज़ का मफहूम समझ में न आए तो पूरी आयत का पैगाम मुतासर हो सकता है। इसलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया, जो शख्स अल्फाज को नहीं समझेगा वो मानी तक नहीं पहुंच सकेगा, और जो मानी तक नहीं पहुंचेगा वो कुरान की हिदायत से भी पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। सबने कराम, हमें चाहिए कि हम सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि अल्फाज पर गौर करें, उसके पैगाम को समझें और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल करने, उसके नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के उस पार बिइज़्निल्लाहि तआला।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली नहीं लौटा। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्र और फहमे कुरान के खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के हलके में, जहां हम सूरह इंसान की पहले चंद आयात पर गौर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम पहली आयत के हवाले से काफ़ी इस पर तफसील गुफ्तगू कर चुके हैं, अब दूसरी आयत की तरफ रुख करेंगे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का मरहला बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफत अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, फिर हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि इस आयत में इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी पूरी नस्ल यानी हम सब इंसान हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। अरबी जबान में नुतफा हर उस थोड़े से पानी को कहते हैं जो किसी जगह मौजूद हो, चाहे वो कुएं में हो, किसी बर्तन में हो, मशकीज़े में हो या किसी और जगह, थोड़ा पानी नुतफा कहलाता है। लेकिन यहाँ मुराद वो मामूली सा कतरा है जिससे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की तख्लीक फरमाते हैं। यही वजह है कि सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्ह अपने नफ्स को नसीहत करते हुए फरमाया करते थे, ए नफ्स, आखिर तेरी हकीकत क्या है? तो सिर्फ़ एक नुतफा ही तो था। मोता के मैदान जंग का वाक़या तारीख में महफूज है। जब जाफर इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु कुछ लम्हों के लिए अपने घोड़े पर रुके। सामने तलवारों की चमक थी, चारों जंग की शिद्दत थी और नफ्स फितरी तौर पर मौत से घबरा रहा था। उस वक्त उन्होंने अपने आप से खिताब किया, ए नफ्स, अल्लाह की कसम, आज तुम्हें ज़रूर उतरना होगा। तुम जन्नत से क्यों घबरा रही हो? आखिर तुम हो ही क्या? तुम तो सिर्फ एक मामूल थी। इंसान हकीकत को याद करे तो तकब्बुर खुद है। सबने कराम, इसलिए हमारे इस्लाफ जब किसी शख्स को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला देखते तो उसे उसकी इब्तिदा याद दिलाते। सबने कराम, ज़रा गौर कीजिए कि इब्तिदा एक मामूली कतरा, इख्तिताम एक मैयत, और इन दोनों के दरमियान इंसान अपनी कमज़ोरियों के साथ ज़िंदगी गुजारता है। फिर आखिर गुरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस बात का, फ़ख्र किस चीज़ पर? कितने ही अहले हिकमत ने इसी हकीकत को अशार में बयान किया है। एक शायर कहता है, उसके अशार का मज़मून यह है, मुझे उस शख्स पर हैरत होती है जो अपनी खूबसूरती पर फ़ख्र करता है

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha Wala Kabir, FM 107 pe, and welcome to another Tech Update. Kaash main aise announce kar pata aise kuch, but anyway, you get the point. Jab bhi main aunga to kuch na kuch aapko aise bata ke jaunga jo aap ya to sochne mein majboor ho jayenge ya fir abhi type karke dekh lenge ye kya keh raha hai. To aaj bhi main aapko kuch websites bataunga, kuch AI ki websites hongi, kuch normal hongi, magar ye aapke kaam zarur aayenge aur aapke kaam ko cheez aa rahi hai to knowledge to bhai sahab baantne se badhti hai. Aap bhejiye mare dhure. ये जो सोशल मीडिया है हमने किस लिए बनाया है, आप आइए बात कीजिए. FM 107 Qatar FM 107 Qatar. अब चलिए बढ़ते हैं पहली वेबसाइट की तरफ. ये जो वेबसाइट है ये बहुतों के काम आने वाली है. इसका नाम है scholarships.com. scholarships SCHO scholar हाँ COLO नहीं LAR SHIPS scholarships.com. इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम नजर आएंगे. आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. तो दुनिया जहां के इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पढ़ाई के लिए आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन सबके नाम आपको नजर आ जाएंगे. तो आप लिटरली डिग्री वाइज जगह वाइज हर तरीके से ढूंढ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं. लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो तलाश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है मेरे को पता लग जाए कि भाई ये स्कॉलरशिप किधर चल रही है. तो ये जो फायदा है आप उठा सकते हैं. और आपके घर में अगर कोई टीनेजर है और आप सोच रहे हैं भाई स्कॉलरशिप की तरह देखा जाए कहीं बाहर विदेश में पढ़ाई कराई जाए, इसका भी एक तरीका है. ये वेबसाइट बहुतों के काम आएगी. स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन. scholarships.com. इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस के. सो यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी सर आपका ये वेबसाइट पे देखा है ये सही है तो आपको बता दे क्यों, बिकॉज ये बहुत ही लेजिट वेबसाइट है. ठीक है, आगे बढ़े. ऑलराइट, अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है swishy.in. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, swishy.ai. swishy.ai. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली नाम क्या के AI लगा हुआ है, तो इसमें AI मोशन डिजाइन्स आपको मिलेंगे. इसमें 100 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं या यू जस्ट वांट टू यूज इट. एवी खामगा यूज करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो आप इन तमाम चीजों को ऐसे का ऐसे ही यूज कर सकते हैं या फिर आप उसमें अगर अपने जुगाड़ से अपने दिमाग से कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये AI बहुत बढ़िया काम करता है. एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोशन डिजाइन है ये सस्ते वाले डिजाइन नहीं लगते, लिटरली लगते हैं कि भाई इसमें मेहनत की गई है. एंड ये आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है. जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे यूज करें, आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू प्रेजेंट विद, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो फिजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं देखो जी स्क्रीन की तरफ या फिर आप किसी को भेज रहे हैं, सब तरीके के लिए ये काम करेगा. बहुत क्रिएटिव भी लगता है. ओके, तो ये जरूर देखिएगा swishy.ai. अब जरा आगे बढ़ जाते हैं. अगली वेबसाइट भाई साहब टाइम पास के लिए, बिल्कुल टाइम पास, टाइम पास के लिए तो आपका टाइम पास हो जाएगा. जवान भी स्लिप हो गई मेरी एक्साइटमेंट में. तो अगली वेबसाइट का नाम है eve.io. eve.io. बहुत ही छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है. ये वेबसाइट उनके लिए जो कि दोस्त आपस में कुछ गेम खेलना चाहते, तो आप इसमें 8-player शूटर गेम खेल सकते हैं. बहुत मजेदार है भाई, इसके लिए कोई डाउनलोड कुछ नहीं चाहिए, मजे से खेलो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छी भी लगेगी वेबसाइट एंड काम की भी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मस्ती मजाक करने जाते हैं. ये भी तो बड़ा जरूरी है ना. चलिए जरा खबर की तरफ बढ़ते हैं. तो जल्दी से खबर बता दूं, एक जो खबर आई है इंटेक न्यूज वो है मार्क जकरबर्ग साहब की. मेटा के सीईओ हैं आप जानती हैं, बहुत मशहूर आदमी हैं. इन्होंने मेटावर्स में बहुत सारी चीजें चेंज करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन रिसेंटली एक वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही शोकेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम अपने AI एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं. और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरा चश्मा देख रहे हो भाई साहब, $1,299 मजाक है क्या, इतना महंगा मेटा VR ग्लासेस पहन के ये घूम रहे थे. और साथ में इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसका नाम था म्यूज चार्म, जो काम करती है कंपनी की. रिसेंटली जितने भी नए नए एआई पर्सनल एजेंट उन्हें लॉन्च करने के लिए। यह आदमी कुछ आगे का कर रहा है, बता रहा हूँ, खिचड़ी पक रही है, अगले 3 सालों में वो खिचड़ी जो है दिख जाएगी या तो जल जाएगी। ये थी टेक अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ एंड विल से टेस्टी।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। नाश्ता सिर्फ पहले दिन का खाना नहीं होता, ये घर वालों को एक साथ लाने, मेहमान का इस्तकबाल करने और सुबह के लम्हात को उत्कृष्ट बनाने का जरिया भी होता है। कतर में पुराने जमाने का नाश्ता अक्सर सादा मगर गजाइत से भरपूर होता था। घर में मौजूद चीजों जैसे रोटी,

और मक्खन को इस्तेमाल करके ऐसे खाने बनाए जाते थे जो दिन भर काम करने के लिए ताकत देते थे। कतरी घरों में नाश्ता कभी एक ही चीज तक महदूद नहीं रहा, खास तौर पर जब मेहमान

0: अंडे की पतली तह या ऑमलेट रखा जाता है। मीठी सेवइयां और नमकीन अंडे का ये इम्तिजाज कतरी और खलीजी खानों की दिलचस्प खसूसियात को नुमाया करता है। सोचिए, एक निवाले में हल्की मिठास, जाफरान की खुशबू और अंडे का सादा जायका, ये बलालीद को पहचान देता है। हर घर में इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसकी रूह वो ही रहती है, रिवायत, मोहब्बत और घर का जायका। कतरी नाश्ते में मुख्तलिफ किस्म की रोटियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। रकाक बहुत पतली और कुरकुरी रोटी होती है, जबकि चबाब एक किस्म की मीठी, नरम या फिर पैनकेक की तरह तैयार की जाती है। इन्हें अक्सर शहद, खजूर के शरबत, अंडे या फिर पनीर के साथ खाया जाता है। रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, पुराने घरों में रोटी बनाना एक हुनर और घर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। तवे की गर्मी, आटे की खुशबू और गर्म रोटी को दस्तरखान पर रखने का मंजर सुबह को यादगार बना देता था। खजूर भी कतरी नाश्ते की एक अहम साथी है। ये मजेदार होने के साथ साथ मेहमान नवाजी के अलावा है। दूध के साथ खजूर या कहवे के साथ खजूर सादगी में भी खुसूसी गर्म जोशी पेश करती है। अरबी कॉफी, जिसे आम तौर पे कहवा कहा जाता है, नाश्ते के तजुर्बे का एक अहम हिस्सा हो सकती है। इलायची की खुशबू वाली ये कॉफी छोटे फंजान में पेश की जाती है। कतर में खाना और मशरूब अक्सर गुफ्तगू के साथ जुड़े होते हैं। एक फंजान के बाद दूसरा फंजान पेश करना मेहमान के लिए इज्जत और तवज्जो का इजहार समझा जाता है। आज के कतर में जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोग काम या फिर तालीम के लिए जल्दी निकलते हैं, इसलिए उनका नाश्ता मुख्तसर भी हो सकता है। होटलों और कैफे में बलाली, चबाब, रकाक और चाय जैसे रिवायती जायके नए अंदाज में मिलते हैं। फिर भी घर का नाश्ता अपनी जगह खास है, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि घर वालों का वक्त, अपनाइयत शामिल होती है। नाश्ते की ये रिवायत हमें खूबसूरत सबक देती है। खाने की कीमत सिर्फ उसके जायके से नहीं होती बल्कि इससे भी होती है जो लोगों को करीब लाए। दस्तरखान पर बैठना, एक दूसरे का हाल पूछना, सुबह का वक्त साथ गुजारना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो जब कभी आप कतर में रिवायती नाश्ता करें, बलालीद का एक निवाला, गर्म रकाक का एक टुकड़ा या कहवे का छोटा सा फंजान सिर्फ खाने के तौर पे ना देखें, इसमें कतर की सुबह, इसकी मेहमान नवाजी और इसकी तारीख की एक छोटी सी झलक मौजूद होती है। आज के कल्चर मोमेंट से हम यही सीख सकते हैं कि नाश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये भी अपने अंदर पूरा का पूरा कल्चर समेटे हुए होता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से दिल।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर की, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी। अजीत वाडेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इंप्रेसिव था, 237 मैचेस में 15380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी। 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इन्हें पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती और दोनों कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी में हासिल हुई। सबसे पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया 1970-71 में। वेस्ट इंडीज के पास गैरी सोबर्स जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे, लेकिन वाडेकर की टीम ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर हिस्ट्री बना दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और इसी सीरीज में एक नौजवान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का शानदार आगाज किया और 774 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है और इंग्लैंड उस वक्त क्रिकेट की दुनिया की मजबूत टीमों में से एक थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैचेस ड्रॉ हुए। फिर आया द ओवल का फैसलाकुन टेस्ट मैच। यहां दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए जबकि इंडिया ने 284 रन का जवाब दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई, जहां लेजेंडरी स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट्स हासिल किए। इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर दी। यह इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी और इसके पीछे वाडेकर की कप्तानी, कैप्टनसी मटेरियल तो थी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वॉज अ मेजर रीजन। वाडेकर ने इंग्लैंड सीरीज में खुद भी बैट से कंट्रीब्यूशन दिया और 204 रन के साथ इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर रहे। वाडेकर के अचीवमेंट सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं थे दोस्तों, वो उस इंडियन टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1967 और 1968 में न्यूजीलैंड को 3-1 से सीरीज में शिकस्त दी। ये इंडिया की पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी। वाडेकर ने इस सीरीज में अपनी पहली और करियर की वाहिद टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर डालूं तो पता चलता है कि वहां पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। मुंबई, जिसे उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, उनकी कप्तानी में 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 और 1973 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेला जाता है, और 1971 की बैक टू बैक ओवरसीज सीरीज विक्ट्रीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर वाडेकर को इंडियन क्रिकेट की एक खास मकाम दिया। बाद में वो इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी। 2011 में उन्हें BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वाडेकर का नाम सिर्फ एक बैट्समैन या कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने इंडियन ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में एक नई पहचान दी। 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में सीरीज जीतकर इंडियन क्रिकेट को एक बुलंदी तक पहुंचाने में अजीत वाडेकर का एक अहम रोल रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स इनके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी, जहां हम बात करते हैं आपके पैसों की पैसों को किस तरह से संभाला और मैनेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की और मनी सेफ्टी की. वेल, आज के सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोटेक्शन. आज की ये डिजिटल, हम सब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल एप्स यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैसे ट्रांसफर भी सिर्फ सेकेंड्स में हो जाते हैं. लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई है, वहाँ ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स ने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं लोगों को स्कैम करने के. अक्सर लोग समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ दूसरों के साथ होता है, लेकिन हकीकत यह है कि स्कैमर्स हर रोज नई तरीकों से आम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं. कभी फेक फोन कॉल्स, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस.

0: कभी सोशल मीडिया लिंक के जरिए लोगों के अकाउंट्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन सबसे कॉमन फ्रॉड फिशिंग स्कैम कहलाता है। इसमें आपको एक ईमेल या मैसेज मिलता है जो बिल्कुल किसी बैंक, कुरियर कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लगता है। मैसेज में लिखा होता है योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। जैसे ही कोई शख्स उस लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स एंटर करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स के पास चली जाती है। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ईमेल या मैसेज के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या फिर पिन कोड नहीं मांगता। एक और कॉमन है ओटीपी स्कैम। आपके फोन आता है और कॉलर खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है या आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, फिर आप और आपसे ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। दोस्तों, ओटीपी आपके अकाउंट की चाबी होती है। अगर आपने ओटीपी किसी को बता दिया तो आप अपने पैसे खुद जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। चलिए वापस से रिपीट करते हैं, ओटीपी, पिन, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना फोन पर, ना मैसेज पर, ना सोशल मीडिया पर और ना किसी लिंक पर। सोशल मीडिया स्कैम्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। कई दफा फेक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की जाती है। आपको कहा जाता है कि सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ दिनों में डबल प्रॉफिट हासिल कीजिए। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो हो सकता है कि वो स्कैम हो, और हो सकता है क्या 100% स्कैम ही हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्विक मनी का कॉन्सेप्ट रिस्क के साथ आता है, और शायद बहुत ज्यादा रिस्क के साथ। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं, अवेयरनेस है। जब हम अलर्ट रहते हैं, वेरीफाई करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, तब हम अपने पैसों को महफूज रख सकते हैं। जाते जाते यही कहूंगी कि याद रखिए, पैसे कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें बचाना आज के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए हमेशा सोचिए, वेरीफाई कीजिए और फिर क्लिक कीजिए। स्मार्ट मनी का सिंपल फॉर्मूला है, स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, स्टे स्मार्ट। ये तो आज का हमारा सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट में एक और नए फाइनेंशियल टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुन 3FM 107, दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun on FM 107.

फूल है अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है पर तू जाने में मजबूर हूँ मैं तेरा मशकूर हूँ तू समझे मुझे अभी तू जैसे कोई

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड एवरी ट्यूजडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से दिस।

देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हर गिज निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई ये उनकी हर गिज मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीट फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालिफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के मानंद हैं जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक आजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र करता तो है कि मैं तुझसे बरी जिम्मा हूं, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। दोनों अंजाम ये होना है कि जहन्नुम में जाएं, और जालिम की यही जजा है।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और मेरी रजा जोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो

हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार चुके हैं, और उनकी रविश ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपाकर उनको दोस्ताना पैगाम भेज दो ताकि जो कुछ तुम आकर करते हो, जो आरियां करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह रास से भटक गया। उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें आजार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम आएंगी न तुम्हारी औलाद। उस रोज अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। तुम लोगों के लिए इब्राहिम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो कतई बेजार हैं। हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। मगर इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं आपके लिए मगफिरत की दरख्वास्त जरूर करूंगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है। और इब्राहिम व अस्हाबे इब्राहिम की दुआ ये थी कि ऐ हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ हमने रजू कर लिया और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना दे, और ऐ हमारे रब, हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। उन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोजे आखिर का उम्मीदवार हो।